सुप्रभात। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की तिथि 31, तदनुसार 21 जून सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में 5:48 और 50 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन। इसमें आप सुनिए योग से स्वस्थ मानव।
1: इस सृष्टि के रचयिता ने पृथ्वी पर समस्त मनुष्यों को अनेक शक्तियों का वरदान दिया है और इन समस्त शक्तियों में निरोगिता अर्थात स्वस्थ शरीर को प्रत्यक्ष शक्ति माना गया है। इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है स्वस्थ शरीर, इसलिए कहा भी गया है हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात स्वास्थ्य ही धन है। एक स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ जीने के लिए एकमात्र विकल्प है योग। योग एक दर्शन, अभ्यास और अनुशासन है जो शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य और संतुलन स्थापित कर आंतरिक शक्ति, स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्रदान करता है। योग शब्द संस्कृत शब्द युज से लिया गया है जिसका अर्थ है जोड़ना। वहीं स्वास्थ्य शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व का अर्थ है स्वयं में और स्थ का अर्थ है स्थिति, अर्थात स्वयं में स्थिति। योग और स्वास्थ्य का अत्यंत गहरा और प्राचीन संबंध है। योग जहाँ एक ओर शारीरिक शक्तियों पर प्रभाव डालता है, वहीं दूसरी ओर मानसिक स्थिति पर भी प्रभावी है, क्योंकि मन का सीधा संबंध शारीरिक स्थिति से होता है और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। शारीरिक स्थिति संयमित होने से हमारी

0: मानसिक स्थिति भी संतुलित हो जाती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना एक के स्वस्थ हुए स्थायी स्वास्थ्य की कल्पना असंभव है। योग शरीर के साथ साथ मन को भी स्वस्थ करता है और आत्मा को उसके स्वरूप में स्थित करता है। योग केवल एक क्रिया नहीं बल्कि अपने आप में संपूर्ण स्वस्थ जीवन शैली है, क्योंकि यह व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिकता के बीच समन्वय स्थापित करता है। योग का अर्थ केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं अपितु आंतरिक शुद्धि के साथ संपूर्ण शरीर का उपचार करना है। योग एक ऐसी साधना है जिसके द्वारा निरोगिता की प्राप्ति के साथ साथ कुविचारों और कुसंस्कारों से मुक्ति मिलती है। इसका उद्देश्य मनुष्य के सर्वांगीण विकास के साथ साथ नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास करना है। योग के कारण लाखों लोगों की दिनचर्या निश्चित और नियमित होने लगी है। विशेषकर सूर्योदय से पहले उठना, सुबह सवेरे उठने की अच्छी आदत ने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना शुरू कर दिया है, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त में योग करना प्रमुख है। योग में समस्त 8 घटकों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि अष्टांग का अभ्यास प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्ण स्वास्थ्य का स्रोत है, जिससे मनुष्य पूर्णतः रोग मुक्त हो सकता है और असाध्य रोग पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, संयोगो योग इत्यको जीवात्मा परमात्मनो, अर्थात जीवात्मा परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं। योग की शक्ति से ज्ञान उदय होने पर जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। योग व्यक्ति के जीवन के अंधकार दूर कर प्रकाश की ओर ले जाता है। योग व्यक्ति के शरीर, मन, भावना और ऊर्जा के स्तर को भी प्रभावित करता है, जिसमें कर्मयोग के द्वारा हम शारीरिक शक्ति का उपयोग करते हैं। भक्ति के योग द्वारा हम ईश्वर के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ज्ञान योग के द्वारा हम अपनी मन बुद्धि में सकारात्मक विचारों का सृजन करते हैं और क्रिया योग द्वारा हम अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जब हम समस्त प्राणियों से ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में प्रेम करते हैं तो यह प्रेम योग है, दिव्य प्रेम का योग। आज वर्तमान युग में भाग दौड़ की जीवन शैली का असर हमारे मन, शरीर और आत्मा तीनों पर पड़ता है। व्यक्ति ईश्वर के प्रति अनासक्त होता जा रहा है। ऐसे में योग व्यक्ति को ईश्वर में विश्वास दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। व्यक्ति में आत्म साक्षात्कार करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, आध्यात्मिकता की ओर ले जाना, प्राणायाम द्वारा उनके प्राण शक्ति को जागृत करना, ये सब योग के मुख्य उद्देश्य हैं। योग वास्तव में एक आध्यात्मिक अभ्यास है। यह शरीर और मन से परे जाने की विधि है और ईश्वर से जुड़ने की प्रक्रिया है। यह जीवन के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने का तरीका है। जब हम यह महसूस करते हैं कि हम दिव्य आत्मा हैं, योग एक ऐसी अवस्था है जहां हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं, उस सर्वोच्च शक्ति के साथ एकाकार हो जाते हैं। मानव जीवन ईश्वर द्वारा प्रदत्त अनमोल उपहार है, जिसको स्वस्थ और सुरक्षित रखना प्रत्येक मानव की जिम्मेदारी है। योग कोई धर्म नहीं, विज्ञान नहीं, क्योंकि इसमें शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का विधान है। इसलिए स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएं, योग करें, इसे अपनी आदत बनाएं।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। इसमें आपने सुना योग से स्वस्थ मानव। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए कृषि सूचनाएं। इसके अंतर्गत आज आप सुनिए कृषि रसायन का सुरक्षित प्रयोग।
2: किसान भाइयों नमस्कार। जब आपके खेत में कोई कीड़ा लग जाता है, रोग हो जाता है या अन्य तरह की गड़बड़ी हो जाती है, पौधे की बढ़वार रुक जाती है, पौधे से उत्पादन अच्छा नहीं होता है, तो हम आपको कृषि रसायनों के प्रयोग की बात करते हैं। यहाँ तक कि बीजोपचार के लिए, अन्न भंडारण के लिए भी कृषि रसायनों का उपयोग कभी कभी किया जाता है। आप कीटनाशियों का प्रयोग करते हैं, रोगनाशियों का प्रयोग करते हैं, आप फफूदनाशियों का प्रयोग करते हैं, तो इन कीटनाशियों के प्रयोग से, फफूदनाशियों के प्रयोग से, रोगनाशियों के प्रयोग से या खाद तथा उर्वरक के प्रयोग से किस तरह से आपकी फसल को, आपको, आपके पर्यावरण को हानि हो रही है, इस बारे में भी आपको सोचना चाहिए। कृषि रसायनों के सुरक्षित प्रयोग के द्वारा काफ़ी हद तक हम पर्यावरण के को होने वाली हानि को, अपने पैसे को कम कर सकते हैं, बचा सकते हैं। फिजूल खर्ची जो होती है खाद पर, कीटनाशियों पर या रोगनाशियों पर, उसे हम

बचा सकते हैं। यदि किसी भी फसल पर 5% से ज़्यादा नुकसान हो रहा हो कीड़ों के द्वारा या रोगों के द्वारा, तभी आप कीटनाशियों का या रोगनाशियों का प्रयोग करें। जब भी किसी रोगनाशी या कीटनाशी का प्रयोग कर रहे हैं तो उस समय आप ये सुनिश्चित कर लें कि इसके द्वारा किसी हमारे अन्य जो लाभकारी जीव हैं, लाभकारी कीड़े हैं जो कि खेती में पर्यावरण में लाभ पहुंचाते हैं।

0: अन्य जो लाभकारी जीव हैं, लाभकारी कीड़े हैं जो कि खेती में पर्यावरण में लाभ पहुंचाते हैं, उनको इससे क्षति नहीं होनी चाहिए। जैसे कि खेत में ज़्यादा मधुमक्खियाँ हों उस समय आप कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करें। अच्छा ये रहता है कि शाम के समय कीटनाशियों का प्रयोग करें ताकि अन्य जो जीव हैं या मधुमक्खियाँ हैं वो खेत में उपस्थित नहीं रहें। जब आप कीटनाशियों का प्रयोग कर रहे हैं तो कपड़े बिल्कुल चुस्त रहने चाहिए, आँखों पर चश्मा लगा लें, मुंह पर आप कोई रुमाल या कपड़ा बांध लें, यदि मास्क मिल जाए तो मास्क भी मुंह पर लगा लें, और जिस तरफ हवा चल रही हो उसकी विपरीत दिशा में खड़े हो करके आप कीटनाशियों का प्रयोग खेत में नहीं करें। अन्यथा कीटनाशी दवा जो है, चाहे वो आप धूल के रूप में बुरकाव कर रहे हैं या घोल रूप में छिड़काव कर रहे हैं, आपके शरीर पर उसका प्रभाव जो है वो पड़ सकता है। जब भी आप कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करें तो आप हाथ में भी दस्ताने जरूर पहन लें। इसके बाद बात आती है कि सांद्रता का ध्यान आप रखें। जैसे जितने लीटर पानी में जितने ग्राम या जितनी मिलीग्राम दवा जो घोलनी है उतने ही का घोल बनावें। यदि अधिक का आप घोल बनाते हैं तो आपको नुकसान होता है, उससे पौधे को भी नुकसान होता है। उसी तरह से जब खाद तथा उर्वरक का आप प्रयोग करते हैं तो मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही खाद तथा उर्वरक का प्रयोग करें, क्योंकि आप बिना मिट्टी जांच कराए उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो इससे जो है मिट्टी की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है, पौधे को भी वो पोषक तत्व तो प्राप्त नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो पोषक तत्व तो पहले ही से आपके खेत में उपलब्ध हैं, और इसमें आपका पैसा बर्बाद होता है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी प्रभावित होती है, धीरे धीरे मिट्टी आपकी बंजर होती जाती है और उसका उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। यदि किसी तरह से कीटनाशी दवा के प्रयोग करने के बाद आपको चक्कर आ रहा है, मिचली आ रही है या मन अकबक कर रहा है, मन में किसी तरह की गड़बड़ी हो रही है, तो आप कीटनाशक दवाओं के प्रयोग को तुरंत ही बंद कर दें और अपने चिकित्सक से संपर्क करें। सबसे जरूरी ये होता है कि जब भी आप कीटनाशक दवा कोई खरीदें तो उस पर देख लें कि लाल रंग का निशान बना हुआ है या हरे रंग का बना हुआ है या पीले रंग का बना हुआ है। उससे ही आपको ये पता चलेगा कि ये कीटनाशक कितना जहरीला है।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि सूचना। इसके अंतर्गत आपने सुना कृषि रसायन का सुरक्षित प्रयोग। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। अब हिंदी में समाचार होंगे।
2: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों लोगों के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में
3: कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरीसन ग्राउंड में होगा।
2: राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वीं दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल
4: मंगूभाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। आईएनएस दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और

0: हम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी योधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनते हैं संवेद स्वर में देश वंदना।

प्रत्येक दिवस का प्रातःकाल हमारे लिए एक नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई ताकत से लवरेज होता है, भरा होता है। मन में सदैव एक ही बात आती है कि आज का दिन बस खुशियों से भरा हो, और इसी खुशी को पाने के लिए हम अपने इष्ट ईश्वर की इबादत वंदना करते हैं।

हमारा मन एक मंदिर है, इसमें ईश्वर की भक्ति से शक्ति मिलती है, इसलिए मन से की गई प्रार्थना हमेशा सफल होती है।

हमारा मन एक मंदिर है, इसमें ईश्वर की भक्ति से शक्ति मिलती है, इसलिए मन से की गई प्रार्थना हमेशा सफल होती है। परमपिता परमेश्वर, जिनके अनेक रूप और अनेक नाम हैं, कोई उन्हें खुदा कहता है तो कोई गॉड, वही सबके निर्माता और वही सब कुछ।

इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए, कोलकाता पश्चिम बंगाल के रेड रोड में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मनाया जा रहा 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह का आंखों देखा हाल।

0: आकाशवाणी है। अब हम आपको रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं, जहां से आप 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। आमंत्रित विशेषज्ञ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आइए आपको योग दिवस कार्यक्रम में ले चलते हैं।
1: नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी खेल प्रेमियों को, स्वास्थ्य प्रेमियों को और योग प्रेमियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत। आज पूरा विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरी मानवता आज एक सुर, एक ताल और एक श्वास में बंधी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में रेड रोड पर विशेष आयोजन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में यहां सामूहिक योग प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं योगाभ्यास कर पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में अपने दो विशेषज्ञों का भी स्वागत कर रही हूं। हमारे साथ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार।
3: थैंक यू, नमस्कार।

0: And we can see that the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, the Honorable Governor of West Bengal, Sri Ravindra Narayan Ravi, and the Honorable Chief Minister of West Bengal, Sri Shubhendu Adhikari, have arrived at the iconic Red Road. And the Honorable Prime Minister will be leading the nation today, and he will personally be performing asanas at the iconic Red Road on the occasion of the 12th International Day of Yoga. And the Red Road is chock-a-block with people from all walks of life. And it is indeed, Neelam, a very momentous day for all the people who have assembled here at Red Road to be performing asanas to be led by the Honorable Prime Minister. And there's a huge crowd we can see from the one end of Red Road till the Eden Gardens. It is chock-a-block with people. And the theme of this year's International Day of Yoga is healthy aging. And we can see that everyone is assembled here, and they're looking forward to join the Honorable Prime Minister and perform asanas.
1: 21 जून 2026 की इस सुहानी और अलौकिक सुबह में कोलकाता की इस ऐतिहासिक भूमि पर हुगली नदी के पावन तटों की गवाही में भव्य तैयारियां की गई हैं आज के आयोजन के लिए. यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी इस वैश्विक उत्सव का नेतृत्व करेंगे. इस बार की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग. बढ़ती उम्र में भी ऊर्जावान और गतिशील बने रह सकते हैं हम, योग के साथ स्वस्थ रह सकते हैं. और आपको बताएं कि बहुत विशाल मंच एक यहां पर बनाया गया है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ ही अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति है. पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, साथ ही माननीय गवर्नर साहब हैं, और यहां पर अब संबोधन हो रहा है.
0: श्री प्रताप राव जाधव, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष.
1: विशाल जनसमूह इस संबोधन को सुनता हुआ.
2: जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री आर्यन रवि जी, पश्चिम बंगाल के ओजस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे दुनिया से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार. आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं. हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया, वह अब 180 से अधिक देशों में मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है. इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है. इस वर्ष के योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें हमने YouTube पर योग लाइव स्ट्रीम करके सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया. हवाई यात्रा में योग के लिए एक नया प्रोटोकॉल विकसित किया गया. 13 जून से 20 जून तक माँ गंगा के तट पर गंगोत्री से गंगा सागर तक 8 अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करके योग श्रृंखला का आयोजन किया गया. कोलकाता में दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया. आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे

0: विश्व भर में सुनाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन विरासत वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस वर्ष के योग दिवस के अभूतपूर्व आयोजन के लिए अपने नेतृत्व में प्रशासन के साथ अपना पूरा योगदान दिया। अंत में मैं यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी व्यक्तित्व और उनके गतिशील नेतृत्व में योग और आयुष की पताका पूरी दुनिया में लहराएगा तथा भारत को विश्व गुरु बनाने में योग और आयुष की महत्वपूर्ण भूमिका भी सिद्ध हो सकेंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे योग।
1: माननीय केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रताप राव गणपत राव जाधव ने अभी सभी का यहां पर स्वागत किया और साथ ही आयुष मंत्रालय ने योग को बढ़ावा देने के लिए जो पहल की है उनके बारे में बताया। हम आपको बताएं कि माननीय राज्यपाल पश्चिम बंगाल श्री आर एन रवि, माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी और प्रधानमंत्री जी स्वयं आज के दिन के लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए परिधान में इस समय है। योग को परिलक्षित करती हुई टी शर्ट्स हैं और साथ ही पतलून पहनी है और जो भी योगाभ्यर्थी यहां पर बैठे हैं, योग साधक यहां पर बैठे हैं रंग बिरंगे मैट्स पर, वो बेहद उत्साहित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में उल्लास है लेकिन साथ ही अनुशासन भी है।
2: यस एंड एवरी एंथुजियास्ट हियर एंड नाउ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी।
3: वंदे समवेत सुनागरिक भद्रमंडली, आमादेर मध्ये उपविष्ट हुएछेन विश्वेर सबचेये जनप्रिय नेता भारतवर्षेर यशस्वी प्रधानमंत्री एवं जार हाथ धरे सिटी अफ जय एई कल्लोलनी तिलोत्तमा कलकाता तथा पश्चिमबंगे जोग कम्स टू होम जोग बंगे फिरे एलो से माननीय नरेंद्र मोदी जी के 11 कोटी पश्चिमबंग वासीर पक्ष थेके राज्य सरकारेर पक्ष थेके हृदय थेके स्वागत अभिनंदन श्रद्धा कृतज्ञता एवं प्रणाम निवेदन करछि। महामहिम राज्यपाल माननीय आर एन रवि जी रयेछेन, भारत सरकारेर माननीय स्वाधीन दायित्व प्राप्त राष्ट्रमंत्री प्रताप राव जाधव जी रयेछेन एवं सम्मानित व्यक्तिबर्ग मीडियार बंधुरा एवं योगप्रेमी जनगण रयेछेन। माननीय प्रधानमंत्रीर नेतृत्वे एकटु परेई एकटि सुविशाल बृहत् ऐतिहासिक कार्यक्रम होते चलेछे। इतिमध्ये कार्यक्रमेर आज के जे आंतर्जातिक योगा दिवस जा माननीय प्रधानमंत्री गोटा पृथ्वीते छड़िए दिएछेन, आमादेर पश्चिमबंगे एतदिन एर संगे राज्य सरकार बा सरकारी उद्योग जुक्त छिल ना, कारण आमादेर अजाना, आमी से कथा बोलतेओ चाई ना एई सुप्रभाते, किन्तु आमरा मने करी पश्चिम बांगलार जनता जनार्दन तारा जे ऐतिहासिक सिद्धांत नियेछेन जार फलश्रुतिते एबारे बंदे जोग जोग पूजा पश्चिमबंगेर सर्वत्र होच्छे। इतिमध्ये प्राय 257,000 रेजिस्ट्रेशन होयेछे, जेखाने विभिन्न संगठन एवं प्रतिष्ठान এই যোগে পার্টিসিপেট করছে। আমার বিশ্বাস

हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक पूर्वोत्तर और पूरब में, बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव जीवन के, मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी

है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मींस दैट वी कैन वर्क टू एंश्योर दैट एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल। योग कैन हेल्प ह्यूमन लाइफ टू एस्पायर फॉर कॉन्स्टेंट ग्रोथ। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर फ्लेक्सिबल एट 40 देन वी वेर एट 20। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर एनर्जेटिक एट 50 देन वी वेर एट 30। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर रेजिस्टेंट टू लाइफस्टाइल डिसीज एट 70 देन वी वेर एट 50। दिस इज वेर योगा कैन हेल्प अस। इट हेल्प्स अस ट्यून अवर बॉडीज टू बी फ्लेक्सिबल। इट कीप्स अवर एनर्जी लेवल हाई। इट ऑल्सो हेल्प्स अस मेंटेन अ काम स्ट्रेस फ्री लाइफ एंड कीप एंड हेल्प टू कीप लाइफस्टाइल डिजीज अवे। मोर ओवर विथ रेगुलर प्रैक्टिस योगा टीचिज अस टू रिमेन लाइफ लॉन्ग लर्नर ऑफ अवर ओन बॉडीज एंड माइंड। द मोर वी नो अबाउट अवर सेल्फ द बेटर वी कैन मैनेज अवर सेल्फ। दैट इज वाई योगा फॉर हेल्दी एजिंग, दिस थीम मस्ट बी सीन एज वन फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस, नॉट जस्ट फॉर द एल्डरली। साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से

चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में

0: हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है, योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं, लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें, योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे, योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे, हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365, योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That was the Honourable Prime Minister Sri Narendra Modi addressing the gathering at Red Road, Calcutta, on the occasion of the International Day of Yoga 2026. And lakhs of yoga enthusiasts have assembled here at the Red Road, Neelam, and everyone is looking forward to the Honourable Prime Minister, who will lead in the day's yoga आसना सेलिब्रेशंस हियर टुडे।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी विशाल जन समूहों को संबोधित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता से स्वागत का उल्लेख किया, साथ ही महर्षि अरविंद को भी याद किया। और महर्षि अरविंद ने कहा था, हमारा पूरा जीवन योग है, हमें इसका बोध हो या न हो, ये हमें फिर से याद दिलाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग से हम ऊर्जावान रह सकते हैं, योग सबको जोड़ता है और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता है। योग से विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। हम आपको बताएं, ये जो विशाल जन समूह है, जहां जहां तक रेड रोड पर नजर जा रही है वहां योग साधक बैठे हैं और योग के प्रिंट वाली टी शर्ट्स पहनकर पूरी तरह से तैयार हैं, रंग बिरंगे मैट्स पर बैठे हैं अनुशासित रूप से। माननीय प्रधानमंत्री जी अब स्वयं योग कर पूरे देश का और इस वैश्विक आयोजन का नेतृत्व करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी योग वाली टी शर्ट पहनी है और साथ ही आपने बाटिक प्रिंट वाला एक स्टोल भी धारण किया है, जिस पर कमल का फूल दमक रहा है। और योग साधक बेहद उत्साहित इस समय नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को वो योगाभ्यास करते हुए देखेंगे और सामूहिक योगाभ्यास का क्रम यहां पर शुरू होगा। एक एक कर आसन किए जाएंगे और हम सभी जानते हैं कि योग के जो आसन है वो न केवल शारीरिक रूप से हमें

0: अब पहुंचाते हैं, बल्कि वो मानसिक रूप से भी हमें बेहद शांत करते हैं, संतुलित करते हैं और आत्मिक रूप से भी हमें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। योग यानी शरीर का मन से जुड़ना और मन का आत्मा से, फिर आत्मा का प्रकृति से जुड़ना।
1: Yes, and the Honorable Prime Minister will be shortly arriving at the venue where he will be leading the countrymen in performing the yoga asanas here at the iconic Red Road. And as you rightly mentioned, Neelam, that the Honorable Prime Minister today made us all remember about the uniqueness of yoga.
0: Ji, aur is samay यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना की जा रही है। ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रार्थना के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इस वक्त जितने भी योग साधक हैं, सभी अपने अपने स्थान पर सुखासन में बैठे हुए हैं, नमस्कार मुद्रा में सभी के हाथ जुड़े हुए हैं और प्रार्थना इस समय यहाँ पर की जा रही है। हमारी संस्कृति जिसमें विश्व शांति की कामना है, साथ ही हम जड़ चेतन की शांति की कामना भी करते हैं, प्राकृतिक तत्वों की शांति की कामना करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम सब एक ही हैं।
2: धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए, आस्ते आस्ते दो चौके खुलून, दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, दो हाथ के स्वाभाविक अवस्था ले आसुन, जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए, निजर जाएगा।
0: मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं
2: हम सब,
0: और योग साधक उन निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने स्थान पर योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं। पंक्तिबद्ध तरीके से मैट्स बिछाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अब हो रहा है। योग साधकों के बीच
1: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट अराइव्ड and he will be going to the designated area, and he has just arrived there, and he will be performing the asanas from here, and he is flanked by ordinary people from all walks of life here at the Red Road, and we can see that the officials are now ready for the International Day of Yoga 2026 main celebrations at Red Road, Kolkata.
0: माँ काली का आशीर्वाद लिए स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसी विभूतियों का दर्शन इस भूमि में है। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत है ये हमारे योगियों की, हमारे मुनियों की। विशेष तैयारियों के साथ आज यहाँ योगाभ्यास किया जा रहा है और इस समय ग्रीवा चालन का अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। और जब हमारे यहाँ पर योग साधक सभी इस कॉमन प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, तो मैं प्रतिमा जी आपसे जानना चाहूंगी, ग्रीवा चालन इस समय हो रहा है, आप हमें इसका लाभ बताएं।
3: जी, ग्रीवा चालन जो है वो मानसिक लाभ भी देता है और साथ ही शारीरिक लाभ भी देता है। मानसिक लाभों की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो तनाव से सभी लोग गुजर रहे हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है।
0: जी,
3: साथ ही जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसको भी प्रिवेंट करता है और साथ में इसको के थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी हैं। और जितने भी ये आसन ग्रीवा संचालन में किए जा रहे हैं, ये सभी के सभी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करते हैं।
0: जी,
3: और इसके अलावा जो और भी बेनिफिट्स हैं वो हमारे पूरे संपूर्ण जो नर्वस संस्थान है, नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि सारी जो भी क्रियाकलाप है हमारे दैनिक, वो हम अपने ब्रेन के कारण ही संपन्न कर पाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही हमारे जो हेड का, सिर का वेट है, उससे रिलेटेड जो हमारी मसल्स, आपने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी गर्दन हिलना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी ये प्रिवेंट करता है, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। जी, यानी हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हुए जिसे एक हल्का फुल्का वार्म अप मानते हैं उसके बहुत सारे लाभ है, ये हमें आपने अभी बताया। हम श्रोताओं को बताएं कि गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं करना, ऊपर नीचे करना, ये ग्रीवा संचालन में आता है। ग्रीवा चालन इस आसन का नाम है और सूक्ष्म व्यायाम इन्हें कहा जाता है,
0: सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों में।

0: जी, और यहाँ पर सभी निर्देशों का पालन करते हुए हम देख पा रहे हैं कि जो योग साधक हैं उनके बीच माननीय मंत्रीगण तो है ही, गणमान्य अतिथि हैं, और साथ ही भारत में इस समय जो विदेशी मौजूद हैं हमारे, वो अतिथि भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हैं।
1: Guruji, Manish Naji, we'd also like to know from you about the importance of the beginning of this asana.
2: Yes, actually, asan ko hum is tarah se samjhe ki seat of awareness. हमारी चेतना हमारे शरीर को फॉलो करती है, हम चित्त से काया की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो ग्रीवासन है इसमें हम क्या होता है कि हमारी जो चेतना है, हमारी जो शरीर को चलाती है सूक्ष्म रूप से, ये जागृत होती है और उसकी आसन वहां पे अवेलेबल हो जाती है। मतलब उसकी इंटेंशन, उसकी पहुंच, उसकी सेंसेशन आत्मा की और चेतना की, ये यहाँ से शुरू होती है और ये बहुत ही बहुत ही फायदेमंद है जब हम आसन शुरू करते हैं तो।
0: जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी मुनेश सिन्हा जी कि एक आध्यात्मिक गुरु के दृष्टिकोण से आप हमें बताएं योग का वास्तविक और गहरा अर्थ क्या है आध्यात्म में।
2: योग पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्म, पूरा विश्व, पूरा जगत एक यौगिक स्थिति को जी रहा होता है, बस जानता नहीं है, है ना। अगर हम कहते हैं जब हम अपने अंदर के असूक्ष्म, जो हमारी जो अव्यक्त स्वरूप है, उससे जब हम जुड़ जाते हैं तो हम व्यक्त हो जाते हैं। इसीलिए व्यक्ति कहा जाता है ना, जितने लोग हैं उनको व्यक्ति कहा जाता है। इसलिए व्यक्ति कहा जाता है कि वो अव्यक्त को व्यक्त कर रहे हैं। तो अव्यक्त को व्यक्त करने की जो प्रोसेस है, आप जब भी हम योग करते हैं अपने स्वयं से जुड़ते हैं, किससे जुड़ रहे होते हैं, जोड़ कौन रहा होता है, हमारी चेतना। हमारी चेतना हमारी तीनों शरीर को अलाइन कर रहा होता है, हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर। जब हम इन तीनों को अलाइन करते हैं, जब हम तीनों के साथ जुड़ जाते हैं, तो अवेयरर ऑफ द अवेयरनेस, एक्सपीरियंसर ऑफ द एक्सपीरियंस, ये हमें जो हमारी अव्यक्त स्वरूप है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। फिर उसका प्रेजेंस हमारे टोटालिटी पे रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। आप चलते फिरते उठते बैठते आप यौगिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, इससे कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होती है, प्रकृति की जागृति होती है। और आज इस पूरे विश्व में जिस भी हम संघर्ष से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम योग से बहुत दूर हो गए हैं, हमारी कलेक्टिव कॉन्शसनेस हमसे बहुत दूर हो गई है। आज इस पूरे समाज को, इस पूरी जगत को, इस पूरे वातावरण को योग की बहुत बहुत बहुत जरूरत है।
0: जी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आज विश्व की आवश्यकता है योग, तो इस समय यहाँ पर स्कंध चालन का अभ्यास किया जा रहा है। प्रतिमा जी आपसे जानना चाहेंगे इसके लाभ क्या हैं।
3: स्कंध चालन जो है ये पूरा थोरेसिक कैविटी पर काम करता है, और थोरेसिक कैविटी जो है उसके अंदर हम सभी को पता है कि लंग्स सिचुएटेड होते हैं, और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं उधर काम हो रहा होता है, और लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी काम करता है, और बहुत सारे अन्य बेनिफिट्स भी इसके होते हैं।
0: जी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर उम्र के योग साधक उपस्थित हैं, युवा भी हैं तो प्रौढ़ भी नजर आ रहे हैं इस विशाल जनसमूह में। और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि योग को एक विषय के रूप में पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि योग जो है अगर हम कहते हैं कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए, तो योग में करियर भी है। और ये हम प्रतिमा जी को देखकर यहाँ समझ सकते हैं कि आपने अलग अलग संस्थानों में कार्य किया है, योग को बढ़ाया है, विभिन्न पदों पर आप रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रतिमा जी, योग में जो करियर है उसके क्या ऑप्शंस हैं हमारे युवाओं के लिए, आप बताएं।
3: योग में करियर के ऐसे जो ऑप्शंस हैं वो डिग्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। जिसमें कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ से भी चले जाते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, एमएससी है, एमए है और पीएचडी है।
0: जी,
3: तो इसमें जिस तरह की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उस तरह से आपका करियर आप डिसाइड कर सकते हैं। वेलनेस इंस्ट्रक्टर के रूप में और योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, योगा थेरेपिस्ट के रूप में, वेलनेस कोच के रूप

0: रूप में, योगासन कोच के रूप में आदि। जी मैं गुरु मुनेश सिन्हा जी आपसे जानना चाहूंगी, युवाओं में आजकल तनाव, अवसाद और अकेलापन बहुत बढ़ गया है, जीवन शैली का हिस्सा होता जा रहा है अकेले रहना, योग और ध्यान उनके इस आंतरिक खालीपन को भरने में कैसे मदद कर सकता है?
1: बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे हम सत्य से दूर हो जाते हैं
0: जी,
1: तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे कि आप अपने घर से जब दूर हो जाते हैं तो आप घर वापस आने की सोचते हैं। जितने हम घर से दूर चले जाएंगे हम उतने स्ट्रेस में रहना शुरू करेंगे। तो आज पूरी दुनिया की ये जो हालत है, हम अपने ही मूल स्वरूप से, अपने ही सोर्स से, अपने ही घर से, अपने ही कहते अस्तित्व से इतने दूर चले आए हैं कि अब हमें वापस आने के लिए भी एक लंबी दूरी की तय करनी पड़ेगी। कहते हैं जब यू टर्न होता है, यू टर्न आप लेना चाहते हैं, आपकी जीवन की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि आप यू टर्न लेते लेते भी कई किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज के युवा को खास करके ये मानना होगा, जानना होगा कि उसकी सच्चाई क्या है, उसके व्यक्तित्व की सच्चाई क्या है, उसके अस्तित्व की सच्चाई क्या है। जब हम अपने सत्य से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे सोल की तरफ, हमारे टोटालिटी की तरफ जुड़ जाता है। आज देखना कि सत्य और सत्य में फर्क है। सत्य सबके अलग अलग होते हैं लेकिन पूरे विश्व का सत्य एक ही होता है।
0: जी
1: yes,
0: और इस समय यहाँ पर ताड़ासन का अभ्यास किया जा रहा है। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर ऊपर की ओर दोनों हाथ उठाए गए और अपने पंजों पर सभी सीधे खड़े हुए। संतुलन में तो ये आसन मदद करता ही है लेकिन साथ ही हमारी जो मेरुदंड है उसे भी एकदम सीधा कर देता है। और ताड़ के पेड़ की तरह हम सीधे खड़े हों तो ताड़ासन कहा जाता है और बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए ये बेहद फायदेमंद है। प्रतिमा जी सही कहा मैंने?
2: बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं। एडोलेसेंट स्टेज वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये आसन।
0: जी
3: And as you were mentioning, Neelam, that today is the International Day of Yoga, and the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for Healthy Aging. And the Honorable Prime Minister also mentioned in his speech that in the 1920s, Paramhamsa Yogananda set up the yoga center in Kolkata and also at other places. And today, the popularity of yoga has spread far and wide. In the 132nd episode of Mann Ki Baat, the Honorable Prime Minister has said that the attraction of yoga is rising across the world. And he also highlighted the work of Mr. Almis in popularizing yoga in Djibouti, Africa, through his Arvind Yoga Center. Similarly, there are many such yoga centers now even in South America. So the popularity of this gift of India, this gift of healthy life for everyone is indeed a gift for humanity by India to the world.
0: जी, यहां पर अभी पादहस्तासन का अभ्यास किया गया और उसके बाद अर्धचक्रासन का अभ्यास अभी किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जमीन पर जब पीठ के बल लेटकर हम पैर और हाथों के बल अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाते हैं तो चक्रासन होता है, लेकिन जब खड़े होकर हम केवल थोड़ा सा झुकते हैं पीछे की तरफ तो अर्ध चक्रासन है, हमारे मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए। और जैसा कि अभी कौशिक जी ने कहा कि ये भारत का एक अनुपम उपहार है विश्व को। हम अब तक गर्व करते हैं कि हमने दुनिया को शून्य दिया है, हमारा दर्शन विश्व में अलग अलग देशों को आगे बढ़ने में प्रेरणा देता रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, उनके नेतृत्व से और उनकी प्रेरणा से अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने दुनिया को योग भी दिया है और अब ये कागजों में भी दर्ज हो चुका है जिसे कि यूनेस्को और यूएन ने भी माना है। यहां पर अभी त्रिकोणासन का अभ्यास होता हुआ त्रिकोण जैसी आकृति बनाई जा रही है शरीर से। प्रतिमा जी, त्रिकोणासन के लाभ क्या क्या हैं?
2: ये खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों में शामिल है। ये घुटने और थाई मसल्स और साइड का जो फैट होता है और मसल्स होते हैं वहाँ काम करता है, साइड फैट को भी रिड्यूस करता है। साथ में जो स्पाइन है, स्पाइन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और जो गर्दन की नर्व्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है, मसल्स को भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है। और ये इवन

0: आईज के लिए भी बेनिफिशियल आसन कहा जाता है।
1: ये मेरे लिए भी चौंकने वाली बात है कि त्रिकोणासन से आंखों को लाभ होता है, क्योंकि मैं भी बचपन से योगाभ्यास करती आ रही हूँ, लेकिन नई जानकारी ये मुझे आपसे मिली है।
0: और ये साइटिका वाले लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल आसन होता है
1: जी। और हम यहाँ देख रहे हैं कि बेहद मनोयोग से सभी योग साधक जो हैं वो निर्देशों का पालन करते हुए एक के बाद एक आसन कर रहे हैं। यहाँ मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इन योग साधकों के बीच है, सबसे बड़ी प्रेरणा यही है। और गुरु मुनेश जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो साधक माननीय प्रधानमंत्री जी के नज़दीक बैठकर योग कर रहे हैं, जीवन भर की एक सुखद स्मृति उनके पास है, और अब भला कोई योग से दूर कैसे हो सकता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रेरित करें। और इस समय सभी योग साधकों के बीच आत्मीय भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी चलते हुए और सभी के नज़दीक से होकर गुजर रहे हैं, सबको देख रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं। और अभ्यर्थी भी हम देख रहे हैं कि बेहद उत्साहित दंडासन में इस समय सभी बैठे हैं, मेरुदंड को एकदम सीधा करके। और अब दंडासन से भद्रासन में सभी योग साधक।
2: And we can also see Neelam and the Honorable Prime Minister is going to many enthusiasts and volunteers who have come here, and he is interacting with them and he is just pepping them up. This shows that how much he cares for the well-being of the common people of this country. And this is, as you rightly mentioned, indeed a moment that everyone will cherish, and every person with whom the Honorable Prime Minister is interacting will carry this memory with him or with her forever in their lifetime.
1: Ji, bilkul. Aur ye jo aasan hai, इनके अगर हम लाभ की बात करें तो हर आसन का विशेष लाभ है। वैसे तो कहा जाता है कि योग में अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो सर से लेकर पांव तक हमें लाभ उसके प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी शरीर के विभिन्न अंगों के लिए अलग अलग आसन हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत से भी प्रतिनिधि उपस्थित हैं, आमंत्रित अतिथि उपस्थित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए, और सभी अपने अपने स्थान पर, निर्दिष्ट स्थान पर बैठकर योग कर रहे हैं निर्देशों का पालन करते हुए। अब धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में सभी आए हैं, एक ऐसा आसन जो हमारे पाचन तंत्र को बेहद तेज कर देता है और कहा जाता है कि हमारे पेट को वज्र के समान मजबूत कर देता है, यानी हम जो भी खाएं वो पच जाए। और प्रतिमा जी, जहां तक मेरी जानकारी है, ये एक इकलौता आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल 100% ये ही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद करते हैं, और ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एब्डोमिनल रीजन में इंक्रीज करता है, इसलिए वो डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है। और जो हमारी पंचवायु कही गई है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इन वायुओं में से जो समान वायु है उस पर विशेष रूप से काम करता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली इंप्रूव होता है। साथ में हमारी जो स्पाइन है वो स्पाइन अलाइंड होती है
1: जी। और अब वज्रासन के बाद अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी अभ्यर्थियों के बीच से वो जा भी रहे हैं, और अभी हमने देखा कि किस प्रकार से एक योग साधक की उन्होंने मदद की है, उसकी जो स्थिति है उसे ठीक किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हाथों की स्थिति को ठीक किया है, और सभी को प्रेरित करते हुए स्वयं उनके बीच में। यहाँ पर ये बोलना गलत नहीं होगा कि जैसे हम अपने गुरु के निर्देश का पालन करते हैं, उनके सामने योगाभ्यास करते हैं, जैसे हमारे ट्रेनर्स होते हैं या हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हमें कुछ सिखाते हैं, उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे परिजनों की तरह एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और सभी को वो सही तरीके से कैसे हमें आसन करना है ये भी बताते हुए, बेहद सुंदर ये भाव, बेहद सुंदर ये दृश्य। कौशिक जी,
2: यस एब्सोल्युटली, एंड एज वी मेंशनड अर्लियर आल्सो, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टेकिंग कीन इंटरेस्ट स्पेशली अमंग द teenagers and youngsters who are present here and just guiding them how to do the asanas in the correct manner. And this is just, as you rightly mentioned, how an elder

0: of the family takes care of the youngsters, the Honorable Prime Minister is doing absolutely just that.
1: जी,
0: और and now about this asana
1: अभ्यास किया जा रहा है शशक आसन का. खरगोश की स्थिति में हम आते हैं जब हम शशक आसन करते हैं, और यहाँ पर जब भी बैक बेंडिंग के आसन किए जाते हैं उसके बाद शशक आसन करने के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करके तुरंत बैलेंस किया जाता है. और यही है योग की बेहद सुंदर अनुभूति कि हमें वो संतुलन सिखाता है. और अब यहाँ पर उत्तान मंडुकासन का अभ्यास किया जाएगा. सभी इस आसन की मुद्रा में आते हुए उत्तान मंडुकासन. प्रतिमा जी, इस आसन के बारे में आप हमें बताएं.
2: जैसे कि अभी आपने कहा कि शशांक आसन जो किया जाता है, शशांक आसन भी बोलते हैं उसको, उसके बाद उत्तान मंडुकासन. शशांक आसन जो है वो स्ट्रेस को रिमूव करने का काम करता है, और इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं. उसके जस्ट बाद जो काउंटर पोस्चर किया जाता है वो बैठकर किया जाने वाला उत्तान मंडुकासन, ये स्पेशली लेडीज के लिए, फीमेल्स के लोअर बॉडी पार्ट्स के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बेनिफिशियल होता है. साथ में आप देख रहे हैं कि जो बॉडी अलाइनमेंट है वो ऊपर की तरफ एल्बोज का डायरेक्शन रहता है, तो ये थोरेसिक कैविटी पर भी काम करता है. साथ में मन को भी शांत करता है, और हमारे घुटनों के लिए और जो बटक्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है. एंड नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, साथ में मन को भी शांत करने वाला आसन है ये.
1: जी, और अगर हम अपने शरीर को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी तनाव होता है, हम किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं जो हमारे लिए जटिल है, हमारे लिए कठिन है, तो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रेस जो है वो इकट्ठा हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, और बाद में किसी ना किसी बीमारी के रूप में वो सामने आता है. तो योग एक ऐसी स्थिति जिसमें पूरे शरीर का तनाव जो है वो दूर किया जाता है, और साथ ही मानसिक तनाव भी दूर किया जाता है.
0: Now I think the enthusiasts are performing Vakrasana.
1: जी बिल्कुल, वक्र यानी तिरछा. तो थोड़े टेढ़े होकर हम ये आसन करते हैं जो हमें बिल्कुल सीधा कर देता है. प्रतिमा जी,
2: बिल्कुल सही है कि हमें सीधा कर देता है, क्योंकि इस आसन को जो हमारा डायबिटीज है, शुगर जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल आसन है. ये मोड़ कर किए जाने वाले आसनों में से आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से किया जाता है ये, और हमारे जो पैंक्रियाज है और लीवर दोनों के लिए पर प्रेशर क्रिएट करता है. तो ये पूरे हमारे जितने भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद है, इसीलिए इसको डायबिटीज वालों के लिए रामबाण कहा जाता है. साथ में ये आंखों के लिए भी बेनिफिशियल है, गर्दन भी इसमें ट्विस्ट होती है, तो पूरी स्पाइन की ट्विस्टिंग करता है ये आसन.
1: और महिलाओं का बहुत इसमें इंटरेस्ट रहता है कि हमारा कटी प्रदेश जो है, हाँ, कमर वाला हिस्सा जो है वो लचीला रहे, पतला रहे, तो ये आसन उसमें बेहद लाभदायक होता है, क्योंकि हमें कॉलेज में बहुत करवाया गया ये आसन.
2: और साइड फैट को भी रिड्यूस करता है.
1: जी, और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हमने कहा कि एक शिक्षक की नज़र से सभी को देखते हुए और परखते हुए, यहाँ पर एक अभ्यर्थी जो है, योग साधक जो है, उनसे जब ठीक से आसन नहीं हुआ तो
0: जस्ट गाइडिंग देम टू डू द आसन,
1: उन्हें बिल्कुल गाइड कर रहे हैं
0: परफेक्ट मैनर. एंड नाउ प्रतिमा जी, अबाउट दिस पर्टिकुलर आसना, इफ यू कैन शेयर विद आवर लिसनर्स.
2: मकरासन, ये पेट कर किए जाने वाले आसनों का शिथिलीकरण आसन है, और ये इसमें देखेंगे आप, जब हम जनरली पीठ के बल लेटते हैं इसमें पेट के बल लेटना होता है, और ये हमारी पूरी जो स्पाइन, अभी तक किए जाने वाले आसनों में जो स्ट्रेच हुई है उसके बेनिफिट को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला आसन है. और साथ में जो हमारा लेफ्ट और राइट बॉडी जो पार्ट्स हैं, और लोअर लिम और अपर लिम है, इसमें आप देखेंगे हील्स अंदर की तरफ हैं, टोज बाहर की तरफ हैं, तो ये पूरी बॉडी को एक तरह से ट्विस्ट भी कर रहा है और अलाइन भी कर रहा है.
1: जी,
2: तो इस आसन के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं. साथ में ये जो सर्वाइकल जिन लोगों को होता है उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद होता है, साथ में जो तनाव मुक्त है वो भी करता है ये.
1: जी, और बेहद खूबसूरत बात यह है कि हम जिन आसनों के नाम ले रहे हैं, अर्ध उष्ट्रासन हो या मकर आसन हो जो अभी हो रहा है, ये हम अपने जीव जंतुओं से प्रेरणा लेते हुए ये आसन हमने अपनाए हैं। अगर हम वज्रासन की बात करें तो हमने

0: पत्थर से भी प्रेरणा ली है। हम बात कर रहे हैं वृक्षासन की, ताड़ासन की, तो प्रकृति से प्रेरणा ली है, तो किस तरह से योग ने समाहित किया है अपने आप में पूरे ब्रह्मांड को और प्रेरित किया है हमें कि हम जिसमें जो अच्छाई है उसे लेकर उसका अनुसरण करके स्वयं को बेहतर करते चले। मकर आसन, मकर यानी मगरमच्छ जिस तरह स्थिति में होता है बिल्कुल सीधा, उस तरह की स्थिति में रहते हुए हम आसन का अभ्यास करते हैं। और अब हम वो आसन कर रहे हैं जिसका नाम है भुजंगासन। यहाँ पर योग साधक भुजंगासन कर रहे हैं। भुजंग यानी सर्प से तो वैसे ही डरा जाता है, लेकिन हमने उससे भी सीख लिया है कि स्वयं को किस तरह से लचीला रखना है। इसके लाभ डॉक्टर प्रतिमा,
1: भुजंगासन और सर्पासन दो नाम सुने होंगे। ये भुजंगासन, भुजंग मतलब कोबरा पोज, और ये हमारे स्पेशली जो स्पाइन है उस पर काम करता है, और ये कुंडलिनी जागरण से संबंधित आसन है जो ग्रंथों में कहा गया है। साथ ही जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल आसन है। स्पाइन भी फ्लेक्सिबल करता है, शोल्डर को भी स्ट्रेंथन करता है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स को पर भी काम होता है। ये कहा जाए कि ये पूरे शरीर पर काम करता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सर्वाइकल वालों के लिए भी आसन बेनिफिशियल कहा जाता है, और सर्पासन अलग है, भुजंगासन अलग है। यहाँ पर भुजंगासन किया गया है क्योंकि भुजंगासन के बहुत सारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ हैं।
0: जी गुरु मुनीश सिन्हा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम योग के लाभों के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि इस तरह के आसन है जिन्हें हर उम्र के साधक आसानी से कर रहे हैं, आपका क्या विचार है? क्या योग को हमारे स्कूली शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए जिसमें आध्यात्मिक पक्ष भी शामिल हो?
2: जरूर जरूर। एक्चुअली जब तक हम अपने रूट से नहीं जुड़ेंगे ना, तब तक हमारी पूर्ण विकास नहीं हो सकती। अगर हम बच्चे से ही, बहुत छोटे कॉन्शियसनेस से ही जब हम योग बताना शुरू करते हैं, योग से उनको जोड़ते हैं, तो हम पूरी पृथ्वी पे एक अच्छे नागरिक को पाते हैं, एक अच्छे इंसान को बनाते हैं, और इससे बहुत पूरी पृथ्वी का भला होने वाला है, पूरी जगत का भला होने वाला है। और मैं तो ये बहुत खुश हूँ कि अपने प्रधानमंत्री जी की जो वो आज एक इंस्ट्रक्टर की तरह हर रो में घूम घूम के सबके पॉस्चर्स ठीक कर रहे हैं, इससे यही योग की जो नेचर है, योग का जो नेचर लव है, यही दिखाता है, जॉय ऑफ गिविंग है, यही दिखाता है। आज वो अपने व्यवहार से, अपने एक्शन से जॉय ऑफ गिविंग, सेल्फ लव और लव फॉर ऑल वो दिखा रहे हैं। तो ये मतलब इतनी रोमांचक जगह है, इतनी इतनी अच्छी हो रही है, मतलब कह नहीं सकता हूँ मैं, बहुत ही सुंदर
0: जी। और यहाँ पर हम अद्भुत अनुशासन भी देख रहे हैं जो कि योग भी हमें सिखाता है, प्राणों के साथ जुड़ना। और सेतु बंध आसन का यहाँ पर अभ्यास किया जा रहा है। सेतु यानी पुल, तो शरीर से पुल जैसी आकृति बनाना सेतु बंध आसन। इसके लाभ हमें डॉक्टर प्रतिमा बताएंगी।
1: ये आसन जो है वो जैसा कि नाम है वैसा काम, बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। साथ में ये जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है, आप देख रहे हैं इसमें स्पाइन ऊपर की तरफ जाती है और पेट ऊपर की तरफ जाता है, तो स्पाइन पर भी काम करता है, एब्डोमेन पर भी काम करता है, शोल्डर्स पर भी काम करता है, थाई मसल्स पर भी काम करता है जी। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आसन है हमारे थेरेपी एस्पेक्ट से, और इसको जब किया जाता है तो हमारी काफ मसल्स पर भी, जो गैस्ट्रोनियस मसल्स होती हैं उनके उन पर भी काम होता है। सेतु बंधासन
0: जी, सेतु बंधासन। और हम यहाँ देख रहे हैं कि लगातार अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आसन सभी कर रहे हैं। योग के बारे में एक अच्छी बात यह भी है कि जितनी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, बढ़ती उम्र के साथ हमें कहा जाता है कि या तो वो कम कर दीजिए या ध्यान सी कीजिए, लेकिन योग एक इस तरह की क्रिया है शारीरिक कि अगर हम लगातार करते रहते हैं तो बढ़ती उम्र, एक तो उसका बढ़ना धीमा हो जाता है यानी एजिंग के जो असर हैं वो धीरे धीरे आते हैं, और दूसरा ये भी होता है कि हम सहज भाव से वो आसन कर पाते हैं। और यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं अर्ध हल आसन शायद यहाँ पर किया जा रहा है, और हल जैसी आकृति शरीर से बनाते हैं तो पांव पीछे की तरफ ले जाकर, सर के पीछे की तरफ ले जाकर जमीन को छूते हैं, लेकिन ये उसका आधा हिस्सा ही किया जा रहा है सभी, ताकि सहज भाव से कर सके। अर्ध हल आसन, पांव सीधे किए गए जमीन पर लेटकर, और अब पवन मुक्त आसन का अभ्यास।

0: सभी कर रहे हैं। शरीर की वो वायु जो हमें कष्ट दे सकती है उससे शरीर को मुक्ति देना, पवन मुक्त आसन। डॉक्टर प्रतिमा,
1: पवन मुक्त आसन जो है आप देख रहे हैं कि लेटकर सुपाइन पोश्चर है ये
0: जी,
1: और पवन मुक्त जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये पवन मुक्त आसन समूह के आसनों में से किया जाने वाला आसन है। और क्यों? क्योंकि शरीर में 80 प्रकार के जो रोग हैं वो वायु विकार के कारण होते हैं, वायु विकार से संबंधित होते हैं। तो ये हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की वायु हैं उन सभी पर काम करता है, इसीलिए इसको पवन मुक्तासन नाम दिया गया है। वायु विकार के कारण हमारा हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन सारे जितने भी हमारे सिस्टम हैं उन सभी सिस्टम से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वायु के कारण होती हैं। तो ये पवन मुक्तासन ग्रुप का किए जाने वाला आसन है पवन मुक्तासन, जिसके कि वायु को व्यवस्थित करने का काम ये हमारे शरीर में करता है
0: जी। गुरु गणेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका क्योंकि ऐसा अनुभव रहा है कि आप हमारे सशस्त्र बलों को भी और अर्धसैन्य बलों को भी योगाभ्यास करवाते रहे हैं, मेडिटेशन की क्लासेस आप लेते हैं, मुझे आप ये बताएं कि किस प्रकार से हमारा मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, वो मदद करता है हमारी।
2: एक्चुअली क्या है, योगा में उसकी जो डेफिनेशन है, योगा चित्त वृत्ति निरोध है
0: जी।
2: हमारी चित्त की वृत्तियां अगर जब तक कंट्रोल नहीं होती हैं तब तक हम अपने जीवन को ढंग से जी नहीं पाते हैं। आप कितना भी सशक्त हो जाएं, अगर आपकी वृत्तियां ही आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, आपकी वृत्तियां ही आपको हर वक्त ऐसे कार्यों में लगाती हैं जो नहीं करना चाहिए, आपकी वृत्तियों से आपका जीवन पूरा चारों तरफ बिखर जाता है। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि आज योग करके अपनी वृत्तियों को कंट्रोल करें, इसीलिए आसन को सीट ऑफ अवेयरनेस कहा गया है, हमारी वृत्तियों को कैसे कंट्रोल किया जाए। और खास करके मेडिटेशन और खास करके योग और ये सारी चीजें उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, वो दुनिया के लिए अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, हमारे जितने सैनिक हैं, हमारे भारत के जितने फोर्स हैं, जितने भी आर्म फोर्स में काम कर रहे हैं, उनकी जीवन में एक बहुत स्ट्रेस होता है, वो घर से बाहर होते हैं, तो उनके लिए योग करना, ध्यान करना, अपनी वृत्तियों पे काम करना, सो दैट अपने देश की रक्षा, अपनी देश की सुरक्षा उनका 100% वो डाल पाएं, ये बहुत जरूरी है कि ध्यान करके अपनी चित्त को कंट्रोल किया जाए, उसमें समाया जाए और उसको उसी की जिंदगी जिया जाए, है ना। योग योग में सबसे पहली बात मैंने देखा है जीवन में, जिनकी चित्त की कंट्रोल नहीं है, जो जो अपने कॉन्शसनेस से कनेक्टेड नहीं है, तो उनकी प्रॉब्लम।
3: डॉक्टर प्रतिमा, नाउ आई थिंक वी आर सीइंग द कपालभाति, सो यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट।
1: कपालभाति षट क्रियाओं में से एक क्रिया है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कपालभाति। कपाल मतलब मस्तिष्क प्रदेश, ब्रेन रीजन, और भाती मतलब वो जो आपने लोहार देखा होगा उसको जो धोकनी चलाता है, उस तरह से हमें फोर्सफुली एक्टिव एक्सेलेशन और पैसिव इनहेलेशन कपाल भाती में करना होता है। और जो हमारे ग्रंथ हैं वो इसको विशेष रूप से ये कहते हैं कि कफ दोष नाशनी, हमारे शरीर में जो कफ विकार है वो इसको करने से संतुलित होता है। और योग एज सच जितने भी हमारे विकार हैं, बात विकार हो, कफ से संबंधित हो, पित्त से संबंधित हो, जो भी बीमारियां हैं वो इन्हीं के असंतुलन के कारण होती हैं और उन्हीं को संतुलन करने का काम योग करता है। तो कपालभाति मस्तिष्क को चमकाने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो आपके सभी काम अच्छे होंगे। और यहाँ मैं एक बात कहना नहीं भूलूंगी कि जो योग है अपने आप में, वो मैंने जो समझा वो यूथफुलनेस ऑर्गेनाइजिंग ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी, गारंटी फॉर हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हार्मोनी, ए स्टैंड फॉर एनालिसिस फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो योग करने से हमारा जो मस्तिष्क है वो तो अच्छे से काम करेगा ही, जब वो अच्छे से काम करेगा तो आपका एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा, और जब एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा तो सोसाइटी में हम इंटरेक्ट पॉजिटिव वे में करेंगे।
0: जी, और अब यहाँ पर नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है, योग साधन।

0: साधक जो हैं वो पद्मासन में बैठे हैं, ज्ञान मुद्रा में हाथ हैं, एक हाथ से नाड़ी शोधन प्रक्रिया आप कर रहे हैं, और कुछ साधक जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सहज आसन में सुखासन में बैठे हैं और नाड़ी शोधन किया जा रहा है। तो नाड़ियों की शुद्धि इससे होती है डॉक्टर प्रतिमा?
1: हाँ, 72,000 नाड़ियों के विषय में योग ग्रंथों में कहा गया है, उन सभी नाड़ियों की शुद्धि इससे प्राणायाम से होती है। प्राण और आयाम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम प्राण ऊर्जा के कारण ही संपूर्ण जीवन के क्रियाकलाप संपन्न कर पाते हैं। तो ये प्राणों को भी लंबा करता है, आयामी लॉन्ग करना, लंबा करना। और ऐसा कहते हैं कि हम गिनी चुनी श्वासें ईश्वर से लेकर आए हैं, तो हम कॉन्शियसली अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसा कि ग्रंथ कहते हैं, प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भवा। मतलब इसका यह है कि प्राणायाम अगर सही ढंग से किया जाए तो सभी रोगों का नाश करता है। लेकिन यहाँ पर योग शब्द है, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भवा, मतलब यदि गलत ढंग से योग अभ्यास या प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो सभी प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसीलिए प्राणायाम को हमें या योग अभ्यास को हमें बहुत सावधानी पूर्वक कहा गया है। ये भी कहा गया है, युक्तम युक्तम त्यजेद वायु, युक्तम युक्तम च पूरियेद, मतलब धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। और प्राणायाम जैसे कि कई प्रकार के हैं
0: जी, और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर अब शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है, गर्मी में भी शीतलता का आभास देने वाला, जो कि कहा जाता है कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन को ग्लोइंग कर देता है। और चेहरे पर अगर किसी भी प्रकार के, किशोर अवस्था में आमतौर पर किशोर जो है वो मुहासे और पिंपल्स का सामना करते हैं, तो उन्हें भी ठीक करता है। डॉक्टर प्रतिमा,
1: जैसा कि आपने कहा कि शीतलता देने वाला प्राणायाम है, निश्चित रूप से ये हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है, साथ ही भूख और प्यास पर भी नियंत्रण लाता है ये। और जो हमारी अग्नि है, वात सॉरी पित्त जो है हमारा, उसको व्यवस्थित करने का काम करता है। और अगर पित्त सही होगा, आग सही जल रही होगी, तो निश्चित रूप से चमक आएगी ही।
0: जी, जठराग्नि को पूरी तरह से व्यवस्थित कर देता है। जी, और अब भ्रामरी प्राणायाम किया जा रहा है।
1: भ्रामरी प्राणायाम के तो इतने फायदे हैं जिसकी की कोई हद। क्यों? क्योंकि ये हमिंग बी जैसे आवाज निकालना होता है इसमें, और षण्मुखी मुद्रा में किया जाने वाला अभ्यास है। डिफरेंट वे में भी किया जा सकता है ये
0: जी।
1: और इसमें आप देख रहे हैं कि आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, और बाकी की जो फिंगर्स हैं वो अलग अलग मर्म स्थानों पर रखी हुई हैं। इसमें सांस लेते हैं और आवाज के साथ सांस को छोड़ते हैं। उस समय हमारे जो आवाज निकलती है वो गले से निकलती है, और जो वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हमारे ब्रेन से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, चाहे वो सेरोटोनिन हो, डोपामाइन हो, इनका सीक्रेशन प्रॉपर करता है, ऑक्सीटोसिन हो, तो ये ब्रेन और ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत फायदा करता है। और जैसा कि योग है वो पेट और पीठ दोनों पर काम करके ब्रेन पर अल्टीमेटली काम करता है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन हाँ, इसको किसे नहीं करना चाहिए या लाउडर पिच में इसको नहीं करना चाहिए, वो हार्मफुल हो सकता है। जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत लाउडर पिच पर नहीं करना चाहिए।
0: यानी शरीर के जो अंदर सॉफ्ट टिश्यूज है, कंपन से हम उन्हें एक्टिव करते हैं और इस तरह से उन्हें मजबूत करते हैं। और ये हाथ इसलिए रखे जाते हैं द्वार पर कि जो कंपन से जो हवा है वो बाहर नहीं निकले, शरीर के अंदर जब वो रहेगी तो हमारे टिश्यूज को हेल्दी करेगी। जी, भ्रमर जैसी आवाज हम
1: और बाहर कनेक्शन कट भी करना होता है, ताकि हम अपने आप में, योग अपने आप में जुड़ना सिखाता है, तो हम अपने आप से जुड़ पाए,
0: स्वयं से ही हम जुड़ते हैं, अपने भीतर हम जाते हैं।
2: नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द आसनास, दैट इज ध्यान और मेडिटेशन, विच इज अ टाइम फॉर आर सेल्फ असेसमेंट एंड बिकमिंग वन विद द यूनिवर्स। डॉक्टर प्रतिमा,
1: मेडिटेशन इज नॉट जस्ट मेडिटेशन, इट इज मेडिकेशन ऑफ बॉडी एज वेल एज माइंड। क्योंकि मैंने कुछ ध्यान के जो लोग हैं उनको से जुड़ी हुई हूँ, देखा है मैंने कि ध्यान से उन्होंने अपनी बीमारियों को ठीक कर लिया। तो मेडिटेशन केवल मेडिटेशन नहीं है, बैठ गए आंख बंद करके और मन कहीं और भटक रहा है, वो नहीं है। मेडिटेशन है श्वास को देखना, जो प्राण का आवागमन है हमारे शरीर में जो हो रहा है उसको देखना, उससे अलाइन होना। तो इसीलिए ये कई प्रकार के रोगों को भी ठीक करता है।
0: जी, और गुरु मुनेश रैना जी, आप तो आध्यात्मिक जगत से जुड़े

0: हैं, आप ध्यान करवाते हैं और स्वयं भी ध्यान में रहे हैं, तो अपना अनुभव आप हमारे साथ साझा करें, किस प्रकार की दिव्य अनुभूति ध्यान से हमें हो सकती है।
1: मैं तो इतना ही कहूँगा कि अगर आपके जीवन में कुछ काम नहीं बन रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ अगर स्टक हो गई है, आप बिल्कुल जैसे मानो कि अंधेरी कोठरी में आपकी जीवन बिल्कुल सिमट गई है, आपको लग रहा पता नहीं चल रहा आप क्या करें, आप ध्यान करना शुरू करें। मैंने अपने जीवन में न जाने हजारों लोगों को ध्यान करवाया है और कई लोग ध्यान की सिर्फ वो शरीर में ही नहीं, आपके पूरे जीवन के हर क्षेत्र के रास्ते को खोल देता है। सारी अपॉर्चुनिटी इन्फॉर्मेशन जो भी वेव्स में अभी तरंगित हैं, द मोमेंट आप ध्यान करते हो, द मोमेंट आप साइलेंस में जाते हो, द मोमेंट आप अव्यक्त स्वरूप में जाते हो, इमीडिएटली आपका सोर्स बहुत पावरफुल होना शुरू हो जाता है और आपके लिए बनी जो भी इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटीज पूरी दुनिया में है, आप स्वयं उसको अट्रैक्ट करने लगते हो। सारी चीजें मैंने लाइफ बताऊं कि मेरी स्पाइन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, वो मैं किसी की हील कर रहा था और वो एम्स के डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि बिना ऑपरेशन के आप ठीक नहीं हो सकते, आपको ऑपरेशन कराना ही कराना होगा। मैंने सिर्फ ध्यान करके उस स्पॉट पे एक प्रकाशित सूर्य को देखा, प्रकाशित शिवलिंग को देखा और विद इन 3 मंथ्स मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं ध्यान के, जैसा कि अभी मैम कह रही थी कि ध्यान से आप अपने पूरे जीवन का उत्तर पा सकते हो, आंसर पा सकते हो। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए ना, आप सिर्फ ध्यान करना शुरू करो, आपकी पूरे जीवन की क्वालिटी बदल जाएगी, आपका सोचने का ढंग चेंज हो जाएगा, आप रिएक्टिव कम हो जाओगे, आप रिस्पॉन्सिव ज्यादा हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान आपके परम स्वरूप से जोड़ता है और जो परम स्वरूप है ना, वही आदि स्वरूप है, वही शिव है, वही अनंत है, वही चैतन्य है।
0: जी, आदि योगी से हमें जोड़ता है हमारा ध्यान। और यहाँ पर अब प्रार्थना
2: शांति
0: मंत्र का पाठ किया जा रहा है।
2: दोनों हथेलियों को घर्षण कीजिए, कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे और आंखों पर,
0: जैसा कि हमने कहा कि हमारी संस्कृति जो है
2: और धीरे धीरे
0: ये अद्भुत बात है, ये विशेषता है कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रकृति की शांति की कामना करते हैं। और मैं गुरुजी आपकी बात जब सुन रही थी तो ये भाव मन में आया कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, हम नेचर के साथ अलाइनमेंट की बात करते हैं, हम पंच तत्वों की बात करते हैं और साथ ही हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात भी करते हैं। तो आपने जैसा कि बताया कि ध्यान हमें खुद से जोड़ता है और कहीं ना कहीं ध्यान में मैं ये सब पा रही हूँ जो आपने कहा कि हमारे बहुत सारे जो अनसुलझे सवाल होते हैं उनके जवाब हमें अपने आप मिलने लगते हैं और आप एक नेट की तरह हो जाते हैं। आपने कहा कि विश्व में जो कुछ भी हमारे लिए निर्धारित है वो स्वयं हम तक पहुंचने लगता है, तो बहुत ही अद्भुत बात आपने ये कही ध्यान से जुड़ी हुई।
3: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज नाउ मेकिंग हिज वे टुवर्ड्स द एग्जिट ऑफ द रेड रोड एंड एवरीवन हु वर प्रेजेंट हियर एंड हु वर लेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन द ओकेजन ऑफ द 12th International Day of Yoga really felt touched when the Prime Minister himself went to every enthusiast and guided them in doing the asanas in the correct manner. This was indeed a great celebration at the iconic Red Road in Kolkata, where more than 3 lakh people had assembled to perform the yogasanas and were led by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.
0: जी, जल थल नभ सभी योग में होंगे। हम जानते हैं कि भारत में तो सूर्योदय जब हो रहा है तो हमने नमस्कार किया है और साथ ही योग अभ्यास किया है। दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनमें जहां जहां भारतीय दूतावास हैं उनकी ओर से विशेष आयोजन होंगे। और अब क्योंकि बहुत सारे देश दुनिया के योग को अपना चुके हैं, पहले से योग प्रचलित रहा है, कभी हम इसे जिम में होता देखते हैं, कभी वेलनेस सेंटर में देखते हैं और इंजर्ड होने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट हमें जिस तरह की एक्सरसाइज बताता है वो हमारे योगासनों से ही प्रेरित होती है। तो योग हमारे जीवन का हिस्सा रहा है, लेकिन अब ये पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत ने दुनिया को योग दिया है और आधिकारिक तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए प्रयास किए और यूएन यूनेस्को ने इसे माना कि भारत का ये उपहार विश्व के लिए अनु

0: है और आज संघर्षों से भरी हुई इस दुनिया में बेहद जरूरी भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि योग को हम केवल एक दिन का उत्सव ना बनाएं बल्कि इसे अपनी दिनचर्या के साथ जोड़ें।
1: योगा 365, दैट इज व्हाट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड मेंशनड एंड वी वुड आल्सो लाइक टू इन्फॉर्म our listeners that as the Honorable Prime Minister has mentioned that the gift of India was just not only Lord Buddha or peace but also yoga. And this yoga has been practiced by Indians since times immemorial. It is as old as our civilization, which is more than 5,000 years old. And today, as Neelam rightly mentioned, that the entire world has accepted yoga, has embraced yoga, as it promotes not only healthy lifestyle, but also healthy mental lifestyle. It brings about a total balance in healthy living. And Guru Munish Sinhaji, you were mentioning about the importance of meditation. So how do a layperson begin to meditate, if you can inform our audience?
2: Yes, सबसे पहले मैं जो लोग ध्यान करना चाहते हैं या ध्यान की दुनिया में आना चाहते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में वो ना जाएं, सिर्फ स्टैचू बन के 10 मिनट रोज एक महीने की प्रैक्टिस करें, एक समय चुनें 10 मिनट या 15 मिनट वो सिर्फ स्टैचू हो जाएं, जैसे बच्चे में हम लोग स्टैचू गेम खेलते थे, चलते चलते अचानक कोई स्टैचू चिल्लाता था और हम जिस पोजीशन में होते थे उसी पोजीशन में रुक जाते थे। अपने जीवन में भी आप अपनी किसी एक फेवरेट जगह पे घर के किसी कोने में आप बैठें और 15 मिनट के लिए सिर्फ स्टैचू हो जाएं और स्टैचू होने के बाद आपके मन की मन, आपकी आंखों की आंख जो आपके अंदर है वो बहुत सारी वृत्तियों को देखेंगी। कई सारे आप पिक्चर्स देख रहे हैं, इमेजिनेशन देख रहे हैं, आप कपड़े देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं, ये सारी आपके मनस्पटल के इसमें चलती चली जाती हैं। आपको सिर्फ उसको देखते रहना है और ये कहना है कि आई एम ओनली द ऑब्जर्वर ऑफ दिस, मैं एक विटनेसर हूं जो हमारे मन के पटल पे चल रहे सारे पिक्चर्स को मात्र देखने वाला हूं। मैं एक दृष्टा हूं। द मोमेंट आप दृष्टा के भाव में जाते हैं तो आपका आपके मन से कनेक्शन दूर हो जाता है, आप शरीर और मन से अलग एक प्योर कॉन्शसनेस हो जाते हैं जहां पे आपका शरीर और मन जन्म लेता है, पलता है और फिर उसी कॉन्शसनेस में विलय हो जाता है। जैसे ही आप इस अस्तित्व में जाते हैं तो समझने वाला और समझ एक हो जाता है। फिर पता चला शरीर और मन जो अभी विचार देख रहे थे, विचार को देखने वाला, ये सारी चीज एक हो जाती है। फिर थोड़े ही टाइम में आपके विचार आने खत्म होने शुरू हो जाते हैं और सिर्फ बचता है तो एक प्योर कॉन्शसनेस जो सिर्फ कहते हैं बीइंग होने का एहसास, इसीलिए ह्यूमन बीइंग कहते हैं, ह्यूमन डूइंग नहीं कहते। ह्यूमन जितने भी इस पूरी पृथ्वी पे, जगत पे जितनी भी सृष्टि में लोग हैं उनको ह्यूमन बीइंग कहा गया है, इसीलिए कि वो अपने अस्तित्व के उस सोर्स से कनेक्ट हो जाएं। द मोमेंट उस सोर्स से वो कनेक्ट होते हैं तो वो जाने अनजाने में इस पूरी ब्रह्मांड के अनंत के एक पार्ट बन जाते हैं और वो अनंत फिर उनके पूरे अस्तित्व में डोमिनेट करने लगता है। शरीर की जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो वर्ल्डली लाइफ को सिर्फ और सिर्फ 25% ऑपरेट करने के लिए वो रहता है, बाकी उसके पूरे अस्तित्व में 75% उस प्योर कॉन्शसनेस की रेडिएशन, उस प्योर कॉन्शसनेस की लाइट रेडिएट हो जाती है। इसलिए ध्यान तो मैं कहूंगा कि हर आदमी को, हर इंसान को, अगर वो इस पूरी जगत का भला चाहते हैं, इस पूरे विश्व का भला चाहते हैं तो ध्यान करें। इससे हमारा कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होगा और कलेक्टिव कॉन्शसनेस से हमारी प्रकृति रेज होंगी। हमारा जो आज ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म और ये सारी चीजें हम विश्व में देख रहे हैं, ये सारी चीज हो ही रही है कि हम अपने से दूर चले गए हैं। अगर इस प्रयास पे जो आज प्रधानमंत्री जी ने 21 जून का ये दिन इतना सुंदर चुना है कि पूरे विश्व की कलेक्टिव कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक हो रही हैं, और ये पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जब एक होती हैं तो प्रकृति की भी कॉन्शियसनेस एक होती है, क्योंकि हम और प्रकृति अलग नहीं है, जो हम हैं वही

0: प्रकृति है, जो प्रकृति है वही हम है।
1: जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। और ध्यान के बारे में हमने सुना है कि जब ध्यान करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ एक यंत्र मात्र हैं और प्रकृति प्राण के रूप में हमें बह रही है, हमारे थ्रू बह रही है। और ये भी हमने कहीं पढ़ा कि हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड से चलते हैं, लेकिन ध्यान हमारे सबकॉन्शियस को भी जागृत करता है और असीम जो ताकत हमारी है किसी भी कार्य को करने की, समझने की, वो हमें देता है। कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर मुझे याद आ रही हैं। स्वयं से स्वयं की मुलाकात है योग, बिखरे हुए अंतस की नई शुरुआत है योग, तन को जो साधे मन को जो शांत करे, मानवता के कल्याण की पावन सौगात है योग, ऋषियों की वो खोज जो वेदों से आई है, आज विश्व ने इसकी शक्ति मानी, अपनी श्रद्धा दिखाई है।
0: Yes, and as Guru Munish Sinhaji mentioned, and as you also mentioned, Neelamji, that today we saw the Honorable Prime Minister lead the nation in performing yogasana at the Red Road, Kolkata. But at the same time also, yoga was just not restricted onto the land. The Indian Navy, the Indian Coast Guard and other units also performed yogasanas aboard the naval ships and Coast Guard ships, and also adjacent to Red Road, there flows the river Ganga, which is also known as Hooghly, and on 500 boats, yoga enthusiasts performed yogasanas there, and in the wonderful mangrove of Sundarbans also, people performed yogasanas on board their boats and yachts. And in the mighty Himalayas, the men who guard us are vanguards of the borders. The Indian Army personnel, the ITBP personnel and others also performed yogasanas there. And also our border security force personnel performed yogasana on the Thar Desert. So this is what the uniqueness of International Day of Yoga is all about, that brings together all Indians across all walks of life to perform this particular yogasana, which is our mantra for healthy aging and to stay fit both physically and mentally.
1: जी, जैसा कि हमने कहा कि जल थल नभ सभी आज योग में होंगे, और अलग अलग जगह पर विभिन्न विद्यालयों में, कार्यालयों में, संस्थानों में योग के विशेष आयोजन होते रहे हैं। इन दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग 365 का उल्लेख किया, योग पार्क जो है वो डेडिकेटेड किए गए हैं, योग को समर्पित किए गए हैं। 100 दिनों के लिए ऑनलाइन माध्यम से योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर से लोग जुड़े। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि 130 देशों से प्रतिभागी इसमें शामिल हुए। और हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि 14 जून को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। देशव्यापी योग सत्र में एक साथ 4,00,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है, और ये ताकत है हमारी संस्कृति की, हमारी इस सभ्यता की, हमारे देश की, कि हम एक साथ एक भाव से जहां खड़े हो जाते हैं, हमारे पास संख्या बल भी इतना है, जनमानस का जो आत्मिक बल है वो भी इतना है कि जब हम एक साथ खड़े हो जाते हैं तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड उस समय बना लेते हैं। और हम अक्सर देखते रहे हैं कि अलग अलग जो आयोजन है उनकी जो स्मृति है वो संजो कर रखी जाती है। तो इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किए गए हैं, और कोलकाता तो आज एक विशेष रंग में रंगा हुआ है। स्थान स्थान पर योगाभ्यास वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, स्टैंडीज लगे हैं। आज मेट्रो ने भी सुबह 4 बजे से पूरी रफ्तार से दौड़ लगाकर योग साधकों की सेवा की है। और जैसा कि आपने कहा कौशिक जी, कि हमारी नदियां जो हैं उन पर जो नाव सजती रहती हैं, उन्होंने भी आज एक अलग रूप दर्शाया है कि उन पर योगाभ्यास किया गया है। और पूरे देश में विशिष्ट 100 स्थानों पर बड़ी संख्या में सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जब मैं ऑफिस आ रही थी तो इंडिया गेट पर मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर योग साधक जुटे थे, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने एरियाज में विभिन्न माध्यमों से योग से जुड़ रहे हैं। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा है, क्योंकि योग जो है वो कोई आयोजन नहीं है, सभी का ये एक

आत्मिक पल बन गया है। सभी की एक निजी उपलब्धि है आज के इस आयोजन में शामिल होना। विश्व भर में 2500 से ज्यादा स्थानों पर उत्सव के रूप में आज योग किया जाएगा और हम उन सभी विदेशियों को भी नमन करते हैं जो हमारे इस गर्व में शामिल हैं। आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता में रेड रोड पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस बार की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग। आपने

0: जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस बार की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग। आपने आकाशवाणी दिल्ली के माध्यम से ये प्रसारण सुना। मार्गदर्शन रहा मनीषा जैन का, प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स। मैं नीलम मलकानी अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ, और साथ ही हमारे दो विशेषज्ञ जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, डॉक्टर प्रतिमा योग मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से, आप वहां पर सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ, और परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस विशेष प्रसारण से अब अनुमति लेती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: कोलकाता पश्चिम बंगाल से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हुए सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ थे परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया। 8 बजने को हैं, अब कुछ पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: रहे तीन टैंकरों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में, बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मेयर लिन स्टेनर भी कार्य

0: आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
3: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है, जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्मचेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
0: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट।

0: सेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रय तटीय रक्षा के लिए टॉर्पीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
2: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मोज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा। मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
4: धन्यवाद भरत। NTA ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट UG पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं नीट का शुद्धि योग, छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले, हारमूज फिर बंद, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमरीका को घेरा, इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की 2 हफ्ते की सुस्ती टूटेगी, 23 से फिर आगे बढ़ेगा, दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा। दुनिया में योग का बिजनेस 12,00,000 करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार, लोकसत्व की सुर्खी है। आज अंतर

0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है, मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। सात सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस। हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, दुनिया के सभी महाद्वीपों के सात शिखरों में से छह पर फतेह की, अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद, प्रतिमाओं में स्मृतियां, हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
1: धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के तीन स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे तीन टैंकरों ने हुरमुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। इंटरनेशनल योगा डे बीइंग सेलिब्रेटेड अक्रॉस द ग्लोब टुडे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीड्स द नेशन इन प्रैक्टिसिंग कॉमन योगा प्रोटोकॉल फ्रॉम हिस्टोरिक रेड रोड इन कोलकाता। Prime Minister to also commission three indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra in Kolkata today. National Testing Agency to conduct NEET UG re-examination in India and abroad this afternoon. Three Indian flagged crude oil tankers carrying over 8.6 lakh metric tons of cargo successfully crossed Strait of Hormuz. IMD issues red alert for extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in cricket, India A to take on Sri Lanka A in tri-series final in Dambulla this morning. The 12th International Day of Yoga is being celebrated across India and around the world today with the theme Yoga for Healthy Aging. The theme highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. Prime Minister Narendra Modi led the nation in observing the International Day of Yoga from Kolkata's Red Road, where thousands of people joined him in performing the morning exercises. Participating in the Common Yoga Protocol session, Mr. Modi performed yoga alongside thousands of practitioners at the iconic venue. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, June the 21st, which marks the longest day in some parts of the earth, has now become the largest community celebration day because of yoga.
3: 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही है। पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है।
2: The Prime Minister said, yoga is not just physical exercise and is not restricted to any age group. It is an expression of human spirit.
3: When we speak of yoga for healthy aging, it means that we can work to ensure that age does not reduce human potential. Yoga can help human life to aspire for constant growth. Our target must be to be more flexible at 40 than we were at 20. Our target must be to be

0: writes that 6 lakh people will perform yoga today with Prime Minister Modi in Kolkata. 2 studies led by AIIMS have found that yoga may improve women's hormone and insulin levels, reports the Times of India. An AI-enabled queue management system will be implemented in Kerala's Sabarimala Ayyappa temple from November, reports the Hindu. In just over 3 months, from the end of February until early June, Indian records in athletics were broken 20 times, reveals the Indian Express. And finally, the ASI has made significant discoveries at Rakhigarhi, perhaps the largest site of the Indus Valley civilization, with the recovery of 8 skeletons and pottery offerings, reports the Tribune. DNA testing is underway. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. International Yoga Day being celebrated across the globe today. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in practicing common yoga protocol from historic Red Road in Kolkata. Prime Minister to also commission 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra in Kolkata today. National Testing Agency to conduct NEET UG re-examination in India and abroad this afternoon. 3 Indian-flagged crude oil tankers carrying over 8.6 lakh metric tons of cargo successfully crossed Strait of Hormuz. IMD issues red alert for extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in cricket, India A to take on Sri Lanka A in tri-series final in Dambulla this morning. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। आज दुनिया भर में योग का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में तारीखी रेड रूट से मुश्तरका योग प्रोटोकॉल अपनाने में मुल्क की क़यादत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में 3 बहरी जंगी जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे को पानी में उतारकर बहरिया में शामिल करने की रस्म भी अंजाम देंगे। इम्तिहान मुनक़िद कराने वाली कौमी एजेंसी आज सहपहर भारत और बैरून मुल्क में नीट UG के दोबारा इम्तिहान मुनक़िद कराएगी। भारतीय परचमबरदार 3 ऑयल टैंकर्स ने कामयाबी के साथ अब नए हुर्मुज पार कर लिया है, जिसमें 8.6 लाख से ज्यादा मेट्रिक टन तेल लदा है। महकमा मौसमियात ने आज ज़ैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट में आज सुबह दम्बुला में 3 मुल्कों की सीरीज के फाइनल में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। अब खबरें तफसील से। आज भारत और दुनिया भर में योग का 12वां आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज योग का मौजू है सेहतमंदी बढ़ती उम्र के लिए योग। इससे सेहतमंद सरगर्म और बावकार बढ़ती उम्र की खातिर योग को जिंदगी भर अपनाने की अहमियत उजागर होती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में तारीखी रेड रोड से योग के बारे में बैनुल अक़वामी दिन की कौमी तकरीब की क़यादत की, जहां आज सुबह हजारों लोग सुबह से ही योग आसन में उनके साथ शामिल हुए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि योग महज जिस्मानी वर्जिश नहीं है और न किसी उम्र के लोगों तक महदूद है, ये इंसानी जज्बे का इजहार है।
2: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट्स सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें योग को किसी मखसूस मौके तक महदूद नहीं रखना चाहिए, इसे हमारी जिंदगी का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
2: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की

0: ताकत है।
1: योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
2: 2015 में योग के आलमी दिन के शुरू होने के बाद वजीर आजम ने नई दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, मैसूरू, न्यूयॉर्क, श्रीनगर और विशाखापट्टनम समेत मुख्तलिफ मकामात से योग तकरीबात की क्यादत की। बहुत से मरकजी वजरा, रियासती वजरा और सीनियर अहलकार भी योग के दिन की तकरीबात में हिस्सा ले रहे हैं, जिसका एहतमाम मुल्क भर में किया जा रहा है। कौमी तकरीब से सेहत, हम आहंगी और इज्तिमाई बहबूद को फरोग देते हुए एक आलमी तहरीक के तौर पर योग के बढ़ते हुए रोल का इयादा होगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: योग के आलमी दिन की शानदार तकरीब में आज मुल्क व बैरून मुल्क में लोग पूरे जोश व खरोश के साथ इसमें शिरकत कर रहे हैं। सकाफत की वजारत भारत के महकमा आसार कदीमा के इश्तराक से 100 आइकॉनिक मकामात पर योग के खसूसी प्रोग्रामों का एहतमाम कर रही है और भारत की मालामाल सकाफती विरासत को उसकी पायदार योग रिवायात के साथ जोड़ रही है। बड़ी तकरीबात नई दिल्ली में लाल किला, हरिद्वार, कोनार, हम्पी, महाबलीपुरम, मुंबई, नालंदा, अहमदाबाद, सारनाथ, ले, हैदराबाद और सिलचर समेत 12 अहम मुकामात पर मुनाकिद की जा रही हैं। आयुष की वजारत ने कहा है कि 6 लाख से ज्यादा तंजीमों ने योग संगम पोर्टल पर इंदराज कराया है, जिससे इस साल की तकरीबात में आवाम की बेमिसाल शिरकत की अक्कासी होती है। बैन अलाक्वामी सतह पर 210 से ज्यादा भारतीय मिशन सकाफती ताल्लुकात के लिए भारतीय काउंसिल की मजबूत कोशिशों के जरिए दुनिया भर में तकरीबन 2500 मुकामात पर योग तकरीबात का इनेकाद कर रही है। दिल्ली में योग तकरीबात कई अहम मुकामात पर मुनक्किद हो रही हैं। नीज योग तकरीबात शांति पथ, कर्तव्य पथ, न्यू मोती बाग, कनॉट प्लेस वे, सेंट्रल पार्क, तालकटोरा गार्डन और यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हो रही हैं। दिल्ली से रोहन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
2: सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में रियासती सतह के योग के आलमी दिन के प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। ये तकरीब सादर में गैरिसन ग्राउंड में मुनक्किद हुई थी। योग के दिन की तकरीब के बाद सदर जमहूरियत रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी पहुंचेंगी, जहां वो मेहमान खुसूसी की हैसियत से यूनिवर्सिटी के 36वें तकसीम असनाद की तकरीब में शिरकत करेंगी। गवर्नर मंगूभाई पटेल भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। बाद में सदर जमहूरियत कूनो नेशनल पार्क जाएंगी, जहां वो सहरिया कबायली बिरादरी, चीता ट्रैकर्स और पार्क की फील्ड टीम के अरकान से मुलाकात करेंगी। योग का 12वां सालाना बैन अलाक्वामी दिन मनाने के लिए कौमी राजधानी खित्ते में बहुत से मरकजी वजरा और तंजीमें योग सेशंस में शिरकत कर रही हैं। सेहत के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने आज शांति पथ में योग के दिन की तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर एक इज्तमा से खिताब करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने योग को आलमी सतह पर ले जाकर जबरदस्त खिदमात अंजाम दी हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज योग के 12वें सालाना बैन अलाक्वामी दिन के मौके पर नई दिल्ली के नेहरू पार्क में योग तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब में भारत में नॉर्वे के सफीर मे एलन स्टेनर भी शामिल हुए। खेलों के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में योग के आलमी दिन की तकरीबात में हिस्सा लिया। अदाकार अक्षय कुमार योग सेशन खेलों के वजीर के साथ शामिल हुए। ब्रह्मा कुमारी संजीम ने भी नई दिल्ली में लाल किले पर योग के आलमी दिन की तकरीब मनाई। उत्तर प्रदेश में आज योग के आलमी दिन के मौके पर खुसूसी योग प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। गवर्नर, वजीर आला, नायब वजीर आला, कानून साज असेंबली के स्पीकर, कानून साज कौंसिल के चेयरमैन और रियासत के सभी वजरा ने मुख्तलिफ जिलों में मुनक्किद योग तकरीबात में शिरकत की। सऊदी अरब के रियाद शहर में 500 से ज्यादा शुरका ने कल योग के आलमी दिन के मौके पर मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की, जिससे मुल्क में योग की बढ़ती मकबूलियत और लोगों की जिंदगी में सेहत और तंदुरुस्ती को फरोग देने में इसके रोल की अक्कासी होती है। आज योग के आलमी दिन से पहले कल मगरबी ममालिक में योग से दिलचस्पी रखने वाले अफराद ने बड़े ग्रुपों में योग की वर्जिश की। कनाडा के टोरंटो में ओंटारियो कानून साज असेंबली में सरकारी नुमाइंदों, सिफारती तंजीमों, योग की मश्क करने वालों और तंदुरुस्ती से मुतालिक इदारों और कम्युनिटी रहनुमाओं ने योग के एक पुरजोश मश्क में हिस्सा लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में भारतीय बहरिया के प्लेटफॉर्म्स में देसी टेक्नोलॉजी से तैयार किए गए 3 बहरी जंगी जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रह को

0: पानी में उतारकर बहरिया में शामिल करने की रस्म अंजाम देंगे। बहरिया के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के जरिए डिजाइन किया गया और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के जरिए तैयार किए गए ये तीनों बहरी जहाज लड़ने की कार्रवाइयों की सलाहियतों को मुस्तहकम करेंगे। इसके अलावा ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे और बहरी आबदोज शिकन जंगी सलाहियत को भी मुस्तहकम करेंगे। INS दुनागरी एक प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट है, जिसका मकसद ब्रह्मोस मिसाइल्स और दरमियानी दूरी की फिजाई दिफाई निजाम से लैस किया गया है। INS संशोधक एक निगरानी करने वाला जहाज है, जो साहिली और गहरे पानी में हाइड्रोग्राफिक ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि INS अग्रह एक आबदोज शिकन जंगी बहरी जहाज है, जिसे टॉर्पेडोज रॉकेट लॉन्चर्स और सुनार निजाम से लैस किया गया है। ये साहिली दिफा के लिए तैयार किया गया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कौमी अहलियत और दाखिले का टेस्ट नीट यूजी 2026 का दोबारा इम्तिहान आज कराया जाएगा। नीट यूजी 2026 का दोबारा इम्तिहान भारत में 551 शहरों और बैरून मुल्कों के 14 शहरों में मुनाकिद होगा, जिसमें 22,79,000 से ज्यादा उम्मीदवार इम्तिहान में बैठेंगे। इम्तिहान अंग्रेजी और 12 भारतीय जबानों में मुनाकिद कराए जा रहे हैं। इम्तिहान से कबल इम्तिहान कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने सभी निजाम जैमर्स CCTV तलाशी लेने वाले अमले और बायोमेट्रिक की तस्दीक करने के लिए कल कौमी पैमाने पर मॉक ड्रिल का इनेकाद किया था। NTA ने कहा है कि वो साफ शफाफ और खुशुसलूबी से इम्तिहान मुनाकिद कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: नीट के इम्तिहान को साफ शफाफ और खुशुसलूबी से कराने के लिए मुशाहिदीन कोऑर्डिनेटर्स पुलिस फोर्सेज और मुंतजमीन समेत 2,00,000 से ज्यादा अमले को तैनात किया गया है। साफ शफाफ और मुनसिफाना इम्तिहान को यकीनी बनाने के लिए एक कसीर सतही सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी तैनात किया गया है। इसमें CCTV निगरानी कैमरे, आधार पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीक, सील बंद प्रोटोकॉल के तहत मखसूस मकामात पर खुफिया इम्तिहान से मुतालिक साजो सामान को महफूज तरीके से हवाले करने और इम्तिहान से मुतालिक साजो सामान की नकल व हमल के लिए GPS से लैस गाड़ियाँ शामिल हैं। NTA गलत मालूमात को रोकने, बेजाबतगी खत्म करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से निगरानी भी कर रही है। नीट के इम्तिहान आज 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक मुनक़िद होंगे। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि 8.6 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा की खेप के साथ भारतीय परचम बरदार खाम तेल के 3 टैंकर्स ने कल आबनाए हुरमुज को कामयाबी के साथ पार कर लिया है और अब वो भारत आ रहे हैं। इन टैंकरों में भारतीय अमले के 94 अफराद सवार हैं। इन टैंकरों के नाम में देश वैभव, देश विभोर और सेमर हेराल्ड हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सोनोवाल ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की फैसला कुन क्यादत में हुकूमत भारतीय बहरी मफादात के तहफ्फुज को सबसे ज्यादा तरजीह देने पर काम कर रही है। जनाब सोनोवाल ने कहा कि उनकी वजारत भारतीय मल्लाहों और तवानाई की लाइफ लाइन्स को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने की जमानत के लिए तमाम मुतल्लिका एजेंसियों के साथ सरगर्म तरीके से तालमेल कायम कर रही है। 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल MIFF आज इख्तिताम पजीर हो जाएगा। दस्तावेजी फिल्मों, शॉर्ट फिक्शन, एनिमेशन और AI सिनेमा का ये 2 साला फेस्टिवल 15 जून को शुरू हुआ था और आज रात एक शानदार इख्तितामी तकरीर के साथ खत्म होगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: सिनेमा के शानदार रंगों से भरे 5 दिनों के बाद मिर 2026 आज इख्तिताम पजीर होगा। ताहम इख्तितामी तकरीब से पहले फिल्म शायकीन के पास मुख्तलिफ सेक्शंस में प्रिज्म, बेस्ट ऑफ फेस्ट, नेशनल कंपटीशन, मोजेक और इंडिया लाइव एंड लैंडस्केप्स के तहत गैर फिक्शन कहानियों की ताकत का तजर्बा करने का एक और दिन होगा। मिर के आखिरी दिन की अहम तरीन पेशकश में से एक वी शांताराम दी पाइनियरिंग स्पिरिट की स्क्रीनिंग होगी, जो इस लेजेंडरी फिल्म साज की 125वीं सालगिरह के मौके पर दिखाई जा रही है। आशा मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में मुनाकिद होने वाली इख्तितामी तकरीब में बैनर अक्वामी और कौमी मुकाबलों के जुमरे में बेहतरीन फिल्मों को 18 अवार्ड दिए जाएंगे। मुंबई से अंकित आपटे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: भारतीय महकमा मौसमियात ने आज जैली, हिमालयी, मगरबी बंगाल और सिक्किम में और बहुत तेज बारिश के सबब रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने जुमेरात तक असम, मेघालय में इक्का दुक्का मकामात पर भी तेज बारिश की पेशगोई की है। क्रिकेट में आज डिम्बुला में खेली जाने वाली 3 मुल्कों की सीरीज

0: वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। योग दिवस पर पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित हुआ मुख्य समारोह। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत बड़ी संख्या में लोगों ने किया सामूहिक योगाभ्यास। देश भर में नीट यूजी की परीक्षा आज दोबारा आयोजित की जा रही है। प्रदेश के 34 जिलों में बने केंद्रों पर 1,56,000 से अधिक परीक्षार्थी हो रहे हैं शामिल। और जदयू की राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद की बैठक आज पटना में, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित योग शिविर में योगाभ्यास किया। योग शिविर में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी योगाभ्यास किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार ने विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मुजफ्फरपुर में, नित्यानंद राय उजियारपुर में और सतीश चंद्र दुबे वाल्मीकि नगर में योग कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से भी योग शिविर के साथ योग दिवस पर अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पटना उच्च न्यायालय में भी इस अवसर पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुंगेर, शेखपुरा और अररिया समेत सभी जिलों के शैक्षणिक संस्थानों में भी योग शिविर आयोजित किए गए। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। यह परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा में अंग्रेजी तथा 12 भारतीय भाषाओं में उत्तर देने का विकल्प है। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। वहीं परीक्षा के लिए राज्य के 34 जिलों में 331 केंद्र बनाए गए हैं। राज्य सरकार ने कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। परीक्षा में 1,56,000 से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। इधर नीट यूजी पुनर्परीक्षा को लेकर पटना में कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा भवन के आसपास विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है। कई मार्गों पर

0: वन वे ट्रैफिक लागू रहेगा। ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार ने बताया कि परीक्षार्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने और शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए कई मार्गों पर डायवर्जन लागू किया जाएगा।
1: जो बापू परीक्षा सेंटर खास करके है, जहां पर जाम की समस्या प्राय हो जाती है, उसके मद्देनजर हम लोग ट्रैफिक की व्यवस्था में कुछ डायवर्जन प्लान बनाए हैं। जो धनकी के तरफ से चाहे जो पहाड़ी के तरफ से जितने पिकअप हैं, टेम्पू हैं, ई रिक्शा हैं, 8 बजे के बाद हम उसको डाइवर्ट किए हैं। अगर उनको टाउन में आना ही है तो बिस्कुमान ऊपर है, बिस्कुमान से होके जो कुम्हरार वाला पुल है उससे फिर जा सकते हैं टाउन में। जो भी बस धनकी पर आएंगे, जो गांधी सेतु की तरफ से आते हैं, चाहे जो पूर्वी दिशा से टोल प्लाजा की ओर से आते हैं, न्यू बाईपास होकर, मीठापुर होकर, गांधी मैदान, चाहे कहीं भी अन्यत्र जाना है तो जाएंगे। धनकी से या बिस्कुमान से कोई भी बस नीचे, चाहे कोई भी कॉमर्शियल गाड़ी, जब तक एग्जाम होगा उस पीरियड में जाने की अनुमति नहीं होगी।
0: इधर परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग की ओर से विशेष बसों का परिचालन किया जा रहा है। साथ ही रेलवे की ओर से भी नीट अभ्यर्थियों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद की बैठक आज पटना के कर्पूरी सभागार में आयोजित हो रही है। अलग अलग होने वाली बैठकों में पार्टी की रणनीति और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा होगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अशफाक अहमद ने बताया कि सुबह में राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, जिसमें परिषद के सभी निर्वाचित पदाधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद राज्य परिषद की बैठक होगी। इधर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि बैठक में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि बैठक में मंत्री, सभी सांसद, विधायक और MLC मौजूद रहेंगे।
3: यहाँ जो है बिहार प्रदेश जनता दल कार्यालय में राष्ट्रीय परिषद का, राज्य परिषद का बैठक होने जा रही है। इसको लेकर हम लोग काफी उत्साहित, सब हमारे पार्टी के जो भी प्रदेश के स्तर के जो भी कार्यकर्ता है, नेता है, सब लोग उत्साहित है। बिहार में पहली बार इसके पहले भी हुआ है, लेकिन बिहार में जो है राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है। परिषद के सभी डेलीगेट सभी प्रदेश से आ रहे हैं, उनको यहाँ गर्मी से स्वागत किया जाएगा।
0: राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी पदाधिकारियों की सूची जारी की। नई कार्यकारिणी में 8 उपाध्यक्ष, 5 महासचिव और 6 सचिव बनाए गए हैं। मधुबनी से विधायक माधव आनंद को एक बार फिर प्रधान महासचिव बनाया गया है। अरविंद वाजपेयी को राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा है कि नई टीम सामाजिक न्याय, सुशासन और विकास के एजेंडे को संकल्प के साथ आगे बढ़ाएगी। उद्योग मंत्री शेरसी सिंह ने कहा है कि सरकार उद्योग और निवेश के लिए एक सक्षम, प्रतिस्पर्धी और निवेश के अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पटना में प्रमुख उद्योग संगठनों के साथ समन्वय बैठक में कहा कि हर 30 से 35 दिन के अंदर उद्योग संगठनों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे उद्योग जगत की जरूरतों के अनुसार सरकार को नीति निर्धारित करने में मदद मिलेगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं संयुक्त परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा में 2027 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है। आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने परीक्षा परिणाम जारी करते हुए बताया कि 593 अंक प्राप्त कर श्रद्धा पांडे टॉपर बनी हैं। वहीं 592 अंकों के साथ शशांक गौरव सेकंड टॉपर बने हैं, जबकि आयुष विजय ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2024 में आयोजित 70वीं BPSC संयुक्त परीक्षा के PT में 4

लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस परीक्षा में 1282 पुरुष और 745 महिला अभ्यर्थी सफल हुए हैं। टॉप 10 में 5 महिला अभ्यर्थी हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य के विकास में अपना सकारात्मक सहयोग दें। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों से ईमानदारी और निष्ठा के साथ दायित्व निभाने की अपील की है। प्रदेश में जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज अब ऑनलाइन ही मिलेंगे। राज्य

0: निभाने की अपील की है। प्रदेश में जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज अब ऑनलाइन ही मिलेंगे। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिया है। निर्देश में कहा गया है कि ऑफलाइन मोड में दस्तावेज जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभाग की उपनिदेशक मोना झा ने इस संबंध में कहा है कि सभी प्रकार के राजस्व अभिलेखों की केवल डिजिटल हस्ताक्षरी प्रतियां ही भू अभिलेख पोर्टल के माध्यम से दी जाएंगी। सरकार ने कहा है कि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण से जमीन संबंधी धोखाधड़ी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि वर्ष 1996 से अब तक के दस्तावेज डिजिटल कर दिए गए हैं। प्रदेश में मौसम के मिजाज में तेजी से बदलाव आ रहा है। दक्षिण बिहार में तपिश की स्थिति बरकरार है, जबकि उत्तर बिहार के कुछ जिलों में बारिश की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज राज्य के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। विभाग ने नवादा और पश्चिम चंपारण जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
1: राज्य के पूर्वी भाग के कुछ स्थानों पर जबकि शेष भागों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के मध्य एवं पश्चिमी भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के पूर्वी भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के नवादा एवं पश्चिम चंपारण जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: इधर राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने भभुआ, भोजपुर और बक्सर जिलों में लू चलने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने नीट परीक्षा से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने नीट परीक्षा पर लिखा है, अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट, मुख्य सचिव और डीजीपी खुद कर रहे निगरानी। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर लिखा है, भरत तिवारी मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच के आदेश। दैनिक भास्कर ने बीपीएससी परीक्षा परिणाम पर लिखा है, 70वीं बीपीएससी में श्रद्धा टॉपर, टॉप 100 में 45 महिलाएं। प्रभात खबर ने केंद्र सरकार के निर्देश को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, लाभ से ज्यादा नुकसान की आशंका वाली 16 एफडीसी दवाएं हुई बैन। राष्ट्रीय सागर लिखता है, पीएम किसान योजना के तहत 9 करोड़ 44 लाख किसानों के खातों में भेजे गए 18,880 करोड़ रुपये। आज अखबार की सुर्खी है, पॉलिटेक्निक संस्थानों में शुरू होंगे नए कोर्स। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। योग दिवस पर पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित हुआ मुख्य समारोह। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत बड़ी संख्या में लोगों ने किया सामूहिक योगाभ्यास। देश भर में नीट यूजी की परीक्षा आज दोबारा आयोजित की जा रही है। प्रदेश के 34 जिलों में बने केंद्रों पर 1,56,000 से अधिक परीक्षार्थी हो रहे हैं शामिल। और जदयू की राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद की बैठक आज पटना में, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
3: PLI है ना?
4: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
5: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
6: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मीडियम वेव 483.1 मीटर।

0: अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में।

ओ हलचल हलचल हलचल हलचल भोर हो गई सूरज की किरणें फूटी हौले हौले हवा चली चिड़ियों का मंडराया दल शीर्षासन कर सर के बल

संचक्रासन चक्रासन कर, योग के सारे आसन कर, हरकत बनी रहे हर पल, रोगों के दलदल से निकल, भोर हो गई।

इस साल यानी 2026 में बैन अल-अक्वामी योगा डे का ये 12वां साल होगा जो एक ख़ास अहमियत का हामिल है। इसकी थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये मौजू यानी सेहतमंदी के साथ बढ़ती उम्र के लिए योगा इस वक्त इंतहाई मुतालका है जब दुनिया भर में मुतवसत उम्र और बुज़ुर्ग अफराद की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और यह ज़रूरी हो गया है कि बढ़ती हुई उम्र का सेहतमंद फ़ाल और बावकार बनाया जाए।

0: योगा की इब्तिदा कदीम हिंदुस्तान से हुई, मगर आज ये महज एक मजहबी या सकाफती रस्म नहीं रहा। अक्वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने इस मौके पर कहा कि अपनी कदीम हिंदुस्तानी जड़ों से निकलकर योगा वाकई एक आलमी मश्क बन चुका है, जो हर अकीदे और सकाफत के लोगों को सुकून और ताकत फ्राहम करता है। योगा सिर्फ जिस्मानी वर्जिश का नाम नहीं, बल्कि ये दिमाग, जिस्म और फितरत के इत्तेहाद का एक जामा तरीक़ा है, जो इंसान को अपने अंदर और बाहर अमन अता करता है। तो सामईन, योगा से मुतल्लिक और भी बातें होंगी, आइए आज चूँकि माह मुहर्रम की 5वीं तारीख भी है, इस मौके पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नौहा तलत नकवी की आवाज में।
1: हुसैन हुसैन हुसैन हुसैन हुसैन हुसैन हुसैन

0: चाहते हैं। हमने क्या बोला कि आपको चेंज करना पड़ा, जिस तरह जितने वक्त पे आप बच्चे को स्कूल भेज रही हैं वक्त पे, उसी तरह वक्त पे आप उसको खाना खिलाइए। और यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे के लिए हम स्पेशल खाना बनाते हैं। बच्चे को हम पेरेंट्स जब खाना खाते हैं वो अपने साथ लेकर के नहीं बैठते हैं, वो बच्चे को पहले खिला देते हैं, फ्री हो जाते हैं, तो फिर माँ बाप अपना इंडिविजुअल। एक बच्चा अगर माँ बाप को देखे मेरे माँ बाप ये खा रहे हैं तो बच्चे को ललक होगा।
1: अच्छा,
0: जब आप पेरेंट्स जब खाना के लिए बैठते हैं खाना खाते हैं, तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ खिलाएं, खुद भी खाएं और बच्चे को खिलाएं। ये हैबिट जब तक नहीं बनेगा बच्चे में चेंजिंग नहीं आएगा।
1: टिफिन में क्या देना चाहिए उन्हें?
0: हाँ, टिफिन में सबसे बेटर फ्रूट्स दीजिए। मखाना आप दे सकती हैं,
1: अच्छा,
0: मखाना आपने दे दिया, एक फ्रूट्स दे दिया, एक फल दे दीजिए।
1: यही बच्चे जब बड़े होते हैं, मतलब 15 साल से 20-22 साल की उम्र में, तो वो फास्ट फूड पे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पीने लगते हैं। वैसे में तो ना उन्हें वो चीजें मिल पाती हैं जो अक्सर खाने में होनी चाहिए, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी, सी, जो भी सारी चीजें, तो उनको कैसे मेंटेन किया जाएगा फिर?
0: देखिए, मैंने बताया कि स्टार्टिंग से ही हमें ध्यान देना है। अगर आप शुरू से ही जब बच्चे स्कूल में जाना आप स्टार्ट किए, उस पीरियड से अगर आपने बच्चे पे गजा पे ध्यान दिया, तो जब बच्चे बड़े हो गए, जब वो 12th 10th क्लास में गए, तो वही हैबिट्स उनमें डेवलप रहेगा। मगर इस हैबिट को आप डेवलप किया नहीं और 10th क्लास 12th क्लास में वो चले गए, फिर उसको बोल रहे हैं आप खाने के लिए बोल रहे हैं, तो वो मुमकिन नहीं कि वो बच्चे एक्सेप्ट करे। आपको बच्चे को शुरू से ही बचपन से ही खाने हर चीज खाने का हैबिट्स बनाना पड़ेगा। अभी एक सुपर फूड्स का आपने सुना होगा भाई, बहुत ज्यादा लोगों के ज़हन में सुपर फूड में ज्वार आता है, बाजरा आता है, रागी आता है, चना दाल आता है, इसको मिलेट्स बोलते हैं। इसमें विटामिन से, मिनरल से, फाइबर है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, ये बहुत ही मुफीद है।
1: तो ये मिलेट्स जो है वो सारे बच्चे, आप तो सही मानों में, मतलब जब बड़े हो जाते हैं वो तो खाना नहीं चाहते
0: नहीं,
1: हैं।
0: खाने का तरीका तो चेंज कर दीजिए, क्यों नहीं खाएंगे हम, उसे बनाने के तरीके को चेंज। जितने भी मैंने बताया, ज्वार, बाजरा, रागी, सभी का आप पाउडर बना लें,
1: अच्छा,
0: पाउडर के फॉर्म में बना के रख लें, और जो नॉर्मल जो रोटी आप बनाती हैं उस नॉर्मल रोटी में डेली चेंज करके दें। जैसे आपने नॉर्मल आटा आटा आपने लिया, उस आटे में एक रोटी में एक चमची वो आप रागी को डाल दीजिए और उसको मिक्स कर लीजिए, और फिर उसकी रोटी बना के दीजिए। बच्चों को भी पता नहीं चला उसमें क्या है, बच्चा भी एक्सेप्ट कर लिया।
1: गुड गुड,
0: आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। बच्चे अगर नहीं खा रहे हैं तो नहीं खाते रहे, ठीक है, वो नहीं खा रहे हैं, मगर कैसे खिलाएं, किस फॉर्म में खिलाएं, उस फॉर्म में चेंज करना होगा।
1: अच्छा,
0: बहुत सारे ऐसे बच्चे दही नहीं खाते हैं, उसको दही पसंद नहीं है, है? तो दही पसंद नहीं है तो आप माँ को एक जहन हो कि मेरा बच्चा दही नहीं खाता, ऐसा नहीं है, दही बच्चा खाएगा। आपको चेंज तो कर दीजिए। चेंज क्या करना है, आटा जो आप गूंदती हैं दही से आटा गूंद दीजिए, दाल आप दे रही हैं दाल में 2 चमची दही डाल दीजिए, पहले थोड़ा तो लेना स्टार्ट करे। यहाँ पर क्या होता है कि लोग स्टार्टिंग से
1: जो चीजें बच्चे को पसंद नहीं
0: हाँ
1: आती है
0: उसको
1: उसको,
0: क्वांटिटी में, यानी ज्यादा
1: हाँ,
0: क्वांटिटी में,
1: नजरअंदाज कर
0: हाँ
1: देते हैं।
0: नजरअंदाज भी कर देते हैं, और जो बच्चे को पसंद नहीं है उसको कम क्वांटिटी से, कम मकदार से स्टार्ट कीजिए उसे, और फिर उसको बढ़ते रहिए, डे बाय डे उसका क्वांटिटी को बढ़ा दी।
1: अच्छा मुमताज साहब, ये आजकल के बच्चे जो हैं जिम वगैरह जो है बहुत ज्यादा करने लगे, जो पहले जिस तरह से लोग खुले आसमान में वर्जिश करते थे, वो वर्जिश तो लोगों ने छोड़ ही दिया है, लड़कों ने तो आजकल सिर्फ जिम को ही अपना लिया, और उसके साथ साथ इस तरह की चीजें खाते हैं, जैसे प्रोटीन के लिए हर तरह की चीजें जो आती हैं वो खाते हैं, मानना है कि उसमें स्टेरॉयड बहुत होता है, ये तो बड़ा नुकसानदेह होता है।
0: देखिए, आपने बताया प्रोटीन में जो स्टेरॉयड होता है, उससे पहले आप देखें जो बच्चे जिम कर रहे हैं, आज जिम फैशन हो गया है, कहाँ जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं। आप ये गौर कीजिएगा, जो लोग जिम जाते हैं उन्हें आप 2 किलोमीटर पैदल चलने के लिए बोलिएगा, वो नहीं चल पाएंगे, दौड़ने के लिए बोलिएगा नहीं दौड़ पाएंगे। वो तो अपना बॉडी को तो बना लेते हैं, मगर वो बॉडी जो बनता है वो कमजोर बॉडी बनता है। क्यों? क्योंकि जहां वो जिम कर रहे हैं वहां उन्हें ताजी हवा नहीं मिल रही है, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े और ऑक्सीजन ले, ना ऑक्सीजन मिला ना ताजी हवा मिल रहा है। और साथ साथ जो मैंने बोला, आप बताया कि वो 2 से 3 किलोमीटर नहीं चल सकते हैं, चलेंगे तो वो हपने लगेंगे। रीजन ये है कि उन्हें विटामिन डी नहीं मिल पा रहा है।
1: अच्छा,
0: आप ओपन जिम में जाइए, वहां बहुत सारा पेड़ पौधा लगा रहता है, पेड़ पौधा लगा रहा है तो उससे आप फ्रेश हवा ले रहे हैं, ऑक्सीजन आपको मिल रहा है, धूप निकल गया तो उससे आपको विटामिन डी मिल रहा है। ऐसी विटामिन डी के नहीं मिलने से आजकल के यंग एज के लड़कों को पैरों में दर्द होता है, चल नहीं पाते हैं, ज्यादा देर वो खड़ा नहीं हो पाते हैं।
1: और ये आजकल का जो फैशन बन गया है कि ऐसी चीजें खाएं जिसमें प्रोटीन है तो उसमें स्टेरॉइड भी बहुत है, तो इसका जो मनफी असर है वो उन्हें नजर ही नहीं आता है।
0: देखिए, प्रोटीन का भी एक क्वांटिटी लिमिटेशन है, बॉडी के हिसाब से, एज के हिसाब से प्रोटीन का एक रिक्वायरमेंट है।
1: जी
0: जैसे छोटे बच्चे 6 मंथ से लेकर के 10 इयर्स, इस एज में क्या होता, बच्ची का ग्रोइंग स्टेज है, बहुत तेजी से वो बढ़ते हैं, उनका हाइट भी बढ़ता है, वेट भी बढ़ता है, पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बढ़ता है। यहाँ पर प्रोटीन का रिक्वायरमेंट

0: ज्यादा है। जैसे वो 20 इयर्स या 22 इयर्स वो क्रॉस कर जाते हैं तो वहां पर एक सडन वेट हो जाता है। जैसे वो 20 इयर्स या 20 इयर्स प्लस में वो गए तो उन कंप्लीट एक हाइट हो जाता है, वेट हो जाता है, फिर वो वेट और हाइट वो आगे नहीं बढ़ते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपका वेट क्या है और हाइट क्या है,
1: उस हिसाब से
0: उस
1: आपको।
0: एक उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोटीन लेना है। वहां पर एक BMI हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स,
1: जी
0: बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, उस कैलकुलेशन के हिसाब से उनका कैलोरी मेजरमेंट करते हैं, कितना कैलोरी उन्हें लेना है, और उस कैलोरी की मेजरमेंट के हिसाब से फिर प्रोटीन डिक्लेयर करते हैं कितना प्रोटीन उनको डेली लेना है। अगर फॉर द एग्जाम्पल अगर 20 ईयर्स यंग मैन है और वो उसे 60 किलोग्राम के हैं, 60 kg के हैं, और उन्हें डेली जो रिक्वायरमेंट है कैलोरी का है वो 1800 से 2200 कैलोरी का रिक्वायरमेंट, क्योंकि वहां पर हो रहा है कि आप उनके वर्क के ऊपर डिपेंड हो जाता है, सेडिमेंटरी वो वर्कर हैं या मॉडरेट हैं या हेवी वर्कर हैं।
1: जी
0: है? कभी यंग पीपल जो हैं वो बहुत हेवी वर्क करते हैं या सेडिमेंटरी वर्कर पढ़ने लिखने वाले हैं, तो वो क्या काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग
1: उनको प्रोटीन लेनी होती है।
0: प्रोटीन भी लेना है और गजा भी लेना है, कैलोरी भी लेना
1: जी
0: है।
1: ममता साहब, अक्सर मैंने देखा है कि फीमेल जो हैं वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाती हैं, उन्हें वो ज़्यादा एनेमिक होती हैं, और ख़ास करके मेंसुरेशन का जो टाइम होता है वो उनका वर्कलोड वैसा ही रहता है, लेकिन उनकी जब वीकनेस हो जाती है तो ना तो वो आराम ले पाती हैं और ना उन्हें सही ग़िज़ा मिल पाती है। ऐसी कौन सी ग़िज़ा लेनी चाहिए जो उन्हें हर तरह से मजबूत रखे?
0: देखिए, आपने बताया कि वो एनीमिक हो जाती हैं, तो पहले तो आपको जानना होगा वो एनीमिक हुई क्यों। सडनली कोई एनीमिक नहीं होता है। नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होना चाहिए एक नॉर्मल लेडी में 12 से 15 या 12 से 16
1: अच्छा,
0: होना चाहिए। अगर वो 7 ग्राम है तो मीन्स एनीमिक हो रही है, एनीमिक है, 7 ग्राम है। अगर 7 ग्राम प्लस है, 8 ग्राम प्लस में है, तो वो एनीमिक नहीं है, वो गजा के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर सबसे पहले वैसी महिलाओं को अपना हीमोग्लोबिन चेक करना होगा और देखना होगा कि उनका हीमोग्लोबिन का जो रेशियो है वो कितना है। अगर 8 ग्राम से ज्यादा है, 9 ग्राम से ज्यादा है, तो वो गजा से फुलफिल हो सकता है, मगर उससे कम है तो फिर उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की जरूरत है। इसके लिए ज्यादा बेहतर होगा कि वो नियरेस्ट में जो भी स्वास्थ्य केंद्र है उस स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और जाकर के वहां जो लेडी डॉक्टर रहती हैं उनसे मिलें और उनके मशवरा से ही वो कुछ करें। जहां तक आपने बताया कि इनकी गजा में क्या लेना चाहिए, ऐसी गजा आप लें जिसमें खून
1: खून बने। हाँ
0: बने।
1: हाँ
0: जैसे मैंने आपको सुपर फूड्स के बारे में मैंने बताया
1: हाँ
0: आपको,
1: हाँ मिलेटेट्स
0: हाँ,
1: के बारे में।
0: बहुत सारी दालें हो गई, इस तरह की चीजों को वो अपने गजा में शामिल करें। फल वो लें, ड्राई फ्रूट्स लें, नॉन वेज अगर खाती हैं तो अंडा ले सकती हैं, चिकन ले सकती हैं, तो इस तरह की चीजों को अपनी गजा में वो शामिल करें।
1: जी अच्छा,
0: और
1: ये बहुत सही बात है कि खून बनाने के लिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मतलब ये मेंसुरेशन का टाइम हो चाहे मेनोपॉज का टाइम हो, ये इन्हीं चीज़ों का कॉमनली उन्हें ख्याल रखना होगा। अच्छा, ये डॉक्टर आप हम ये बताइए कि अक्सर हमने देखा है जो खास किस्म के पत्ते होते हैं, पत्ते जिन्हें कहते हैं कि जैसे कड़ी पत्ता है, जैसे सहजन का पत्ता है, जैसे तुलसी का पत्ता, ये पत्ता जो है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें कौन कौन से पत्ते को हमें खाना चाहिए?
0: पत्ता के बारे में आपने बताया, अभी पत्ते का बहुत अहम रोल हमारी गजा में है। गजा में उस पत्ते को अगर आप शामिल करती हैं, जैसे आपने अमरूद के पत्ते का सुना होगा, हर घर में अमरूद रहता है,
1: हाँ
0: करी लीव्स, तुलसी का लीव्स, पपाया लीव्स, इन सब पत्तों का अगर आप इस्तेमाल कर रही हैं, ऐसा नहीं कि इन सब पत्तों को डेली आप लीजिए, एक हफ्ता आपने करी लीव्स लिया, एक हफ्ता आप तुलसी लीव्स ले लीजिए, फिर एक हफ्ता कभी पपाया लीव्स ले लीजिए, हैं? तो इस तरीके के पत्ते को अगर आप लेती
1: लें
0: हैं,
1: कैसे ये
0: हाँ,
1: बताइए।
0: लें कैसे, जैसे करी लीव से, करी लीव तो डायरेक्ट आप एम्प्टी
1: हाँ
0: स्टोमिक
1: वो
0: ले
1: तो हम
0: चीविंग कर
1: लोग कर
0: सकती
1: हाँ वो
0: हैं,
1: तो हम लोग कर
0: हाँ,
1: लेते हैं
0: तुलसी
1: जी,
0: लीव भी आप चीविंग कर
1: वो भी
0: सकती
1: कर
0: हैं।
1: लेते हैं।
0: जहां तक पपीता का पत्ता आया, उस पत्ते को आप मिक्सी में,
1: अच्छा, उसको
0: हाँ
1: पीस करके
0: हाँ उसको
1: ग्राइंड करके।
0: पीस
1: हाँ
0: ले और 2 टीस्पून में 1 ग्लास पानी में या हाफ ग्लास पानी में मिक्स कर दें,
1: अच्छा
0: और उसमें 1 से 2 चम्मची हनी मिला दें,
1: अच्छा हनी मिला
0: हनी
1: के।
0: मिला दें, तो उसका क्या होगा, कड़वाहट खत्म हो जाएगा और उसमें एक टेस्ट आ जाएगा, तो आप आराम से ले सकते हैं। इस पत्ते का इतना फायदा है, यानी डायबिटीज के पेशेंट के हो या फिर डाइजेशन हो,
1: अच्छा एक मिनट, जब आप डायबिटीज की बात कर रहे हैं तो डायबिटीज में तो शहद तो नहीं खाया जा सकता?
0: नहीं तो शायद आप उसमें नहीं दें, आप आप शहद नहीं मिलाएं, वो करी लीव्स ले लें, करी लीव्स ले सकती हैं, गुआवा लीव्स ले सकती हैं, तुलसी ले सकती हैं, ये लीव ले, वो पाया पपाया लीव का अगर टेस्ट अगर उन्हें अच्छा नहीं लगता है तो वो छोड़ दें। इन सब पत्तों में एंटी वायरल है, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, और जिसकी वजह से ये ब्लड शुगर के लिए, डाइजेशन के लिए, ओरल हाइजीन के लिए, और जिन लोगों का जो लोग हार्ट के मरीज हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहता है।

0: है
1: हाँ हाँ
0: उनके
1: हाँ
0: लिए तो बहुत मुफीद है। उनका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड अगर अपर लेवल में है तो लोअर लेवल में ये सपोर्ट करेगा।
1: अच्छा एक चीज, अभी तो जिस तरह से लोग टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं तो दातून मतलब तो खत्म ही हो गया है, लेकिन अभी आपने बात की कि नीम का पत्ता, तो नीम का पत्ता के साथ साथ नीम का दातून भी बहुत फायदेमंद होता होगा।
0: नीम की दातून का मुकाबला कहाँ है? यहाँ पर क्या होता है, आज फैशन हो गया है, जो चीज हम एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं उस चीज को एक्सेप्ट ज्यादा कर लेते हैं। अगर एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जा रहा है नीम का अर्क डाला हुआ है वो टूथपेस्ट जरूर लेंगे, मगर बाजार में जो नीम के दतमन बिक रहा
1: दातून मिलते हैं,
0: दातून
1: जी
0: बिकता है उस दातून से वो दतमन नहीं करेंगे। तो
1: जी
0: मैं तो गुजारिश करूंगा आपके सुनने वाले को वो हफ्ते में 1 से 2 दिन जरूर नीम का दातून यूज करें। नीम का दातून यूज करने से दांत की सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी और मौत फ्रेशनर वो है।
1: जी तो मुमताज साहब, हम लोगों ने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा, बहुत सारी ऐसी चीजें हमने जानी जो अब तक शायद बहुत सारे लोग जानते ही नहीं होंगे कि किस तरह से पत्ते हमारे इतने फायदेमंद हो सकते, हमारे लिए इतने फायदेमंद हो सकते हैं, किस तरह से दातून मुफीद हो सकता है, ये चीजें तो बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने जानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया।
0: आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने यहाँ बुलाया।
2: अच्छी सेहत मेयारी ग़िज़ा, अभी आप समाअत फरमा रहे थे सेहतनामा के तहत सैयद मुमताज़ करीम से ज़री फातिमा की गुफ्तगू। सामईन, योगा डे के मौके पर इस साल मरकज़ी तकरीब कोलकाता के तारीखी मुकाम रेड रोड पर मुनाकिद की गई। यहाँ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क को कॉमन योगा प्रोटोकॉल की मशक करवाई। इस तकरीब में हज़ारों अफराद ने शिरकत की, जबकि लाखों लोग वर्चुअल तरीके से इस अजीम आलमी तहरीक का हिस्सा बने। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया बल्कि दुनिया भर में 2,210 से ज़ायद हिंदुस्तानी सिफारत खानों और तकरीबन 2,500 मकाम पर योम योगा की तकरीबात मुनक़िद की जा रही हैं। ये इसके आलमी असर को ज़ाहिर करती हैं। आइए सामीन, माह मुहर्रम की 5वीं तारीख के मौके पर समात फरमाएं। ये मरसिया पेश कर रहे हैं सैयद मोहसिन अली मासूमी।
3: मीरानीस का मरसिया उन मोहम्मद की शान में मुलाजो गुल है आदम के ज़ैनब के पसर आते हैं, शोर है बहरे शुजावत के गुहर आते हैं, आफताबे फलके फतो जफर आते हैं, लाख से लड़ने को दो तश्ना जिगर आते हैं। आज खलत हमें लेना है सरफराजी का, हाँ जवानों यही हंगाम है जाबाजी का, वक्त गफलत नहीं ए गाजियों होशियार रहो, खेच लो तेग को खून रेजी पर तैयार रहो, आमद आमद है दिलेरों की खबरदार रहो, असफ जमाए हुए आमादे पैकार रहो, कुछ कमादार तो कुछ बरसियों वाले जावे और दरिया पे सवारों के रसाले जावे, ऐ अलमदारो निशानों के फरहरे खोलो, हाँ कमादारो सवारों के तुम आगे हो लो, बरछियां हाथों में तुम बरछियों वालों तोलो, सर करो जंग तो हाकिम से जो चाहो सो लो, गुलगुला रूम तक इस लश्करे जर्रार का है, इम्तिहां आज दिले राने नमूदार का है, सुनते हैं सिन तो है छोटे पनहायत है जरी, कर चुके हैं इन्हें तालीम वगा सिपते नबी, किस तरह उनसे भला होएगा सर भर कोई, पोते जाफर के हैं ये और हैं सिपतैने अली, इनमें जौहर असदुल्लाह की शमशीर का है और दोनों शेरों में असर फातिमा के शीर का है, जुरते शेर खुदा आज वो दिखलावेंगे, बरकदम नीमचे हर गोल पे चमकावेंगे, चांद से सीनों पर शमशीरों सेना खावेंगे, अब मार के बहुतों को मैदान में मर जावेंगे, इस पर भूलो ना कि दो रोज के प्यासे हैं वो, खौफ की जा है कि हैदर के नवासे हैं वो, गो के कमसिन हैं मगर लाख पावर हैं वो दिलेर, क्यों ना हो साहिबे शमशेर हैं शेरों के हैं शेर, आगे जब फौज को रख लेंगे बजोरे शमशेर, दम में कर देवेंगे लश्कर के जबरदस्तों को जेर, कुवते दस्ते अली हाथों से

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं स्वास्थ्य सूचना के अंतर्गत भेंट वार्ता, संतुलित जीवन शैली के लिए योग का महत्व। भेंट वार्ताकार हैं योग प्रशिक्षक शिवजी कुमार और भेंट करता है रुपेश कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। स्वस्थ जीवन ही जिंदगी का आधार है। कहा जाता है कि अगर आप स्वस्थ हैं तभी सब कुछ है। तो हम कैसे स्वस्थ रखें खुद को और हमारे जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, एक संतुलित जीवन के लिए योग कितना आवश्यक है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। इस विषय पर योग की महत्ता कितने हमारे जीवन में है, इस पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है योगाचार्य शिवजी कुमार को, जो एक योगाचार्य हैं और काफी वर्षों से योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे।
2: धन्यवाद आपको आमंत्रित करने के लिए।
1: जी सर, सबसे पहला सवाल ये है कि योग क्यों जरूरी है? सभी जितने भी लोग हैं उनके लिए योग को हम किस तरह से माने, क्योंकि लोग आमतौर पर मानते हैं कि चलो एक योग है, करने की चीज है, लेकिन उसको उतनी संजीदगी से नहीं लेते।
2: जी जी, लेकिन जब नाना प्रकार के रोग लोगों को होने लगे और योग का प्रयोग कुछ किया जाने लगा उस दिशा में, तो पता चला कि अरे ब्लड प्रेशर ठीक होता है, डायबिटीज ठीक होती है, तो इसको करने से लीवर ठीक हो जाता है, किडनी भी ठीक हो जाती है, मानसिक लेवल जो है मन शांत हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है। तो इतना तरह का लाभ मतलब गिनाया नहीं जा सकता है कि योग से क्या लाभ है। तो जहां की जैसी आवश्यकता है वैसा उसको हम लोग बता देते हैं।
1: अच्छा सर, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि मतलब समझिए कि योग एक ऐसी चीज है जो आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को परिमार्जित करता
2: जी,
1: है
2: जी,
1: और स्वस्थ रखता है
2: जी,
1: आपको।
2: जी।
1: तो कई बार क्या होता है कि लोग योग करने के लिए मन में लोगों के बहुत तरह की शंकाएं होती हैं, कहाँ करें, कब करें, कब क्या करें। तो योग का सही समय क्या है करने का?
2: देखिए, इसका सही समय का जो है इसमें दो पक्ष है, एक तो शारीरिक पक्ष है, एक मानसिक पक्ष है हमारा। तो शारीरिक पक्ष है, जैसे हम लोग शरीर को दो भाग में बांट करके देखते हैं, एक हमारा हार्डवेयर है जो बाहर दिख रहा है, हाथ पैर है, और एक है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर यानी जो अंदर का जो पार्ट है, हृदय है, हमारा मस्तिष्क है, हमारी किडनी है, हमारा लीवर है, हमारा पेंक्रियाज है, हमारी आंतें हैं जो स्वतः काम करती हैं, हमारा उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो वो स्वचालित चीज में हमारा कैसे उसमें इंटर करें, उसमें उसको स्वस्थ करने के लिए, चाहे लीवर में कोई फंक्शन गड़बड़ी हो गई, जिससे फैटी लीवर आजकल हो रहा है, जितना भी यंग लोग है आप जरा सा उसका खाली जांच अल्ट्रासाउंड हो जाए तो पता लगेगा कि फैटी लीवर है। फैटी लीवर की कोई दवा एलोपैथी में नहीं है, ना कोई इलाज है इसका। अब फैटी लीवर कपाल भाति से ठीक हो सकता है, और आयुर्वेद की कुछ दवाएं हैं, ऐसी दवाएं हैं जिनको हम शर्तिया तौर पर कह सकते हैं कि तुम्हारा लीवर ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ऐसी बातें हैं। और सुबह में तो उसके लिए जरूरी है कि खाली पेट रहना चाहिए। खाली पेट जैसे माने पानी, जल पीने के 15 से 20 मिनट के बाद, सुबह शौच आदि से निवृत्त होने के बाद तैयार हो गए योग करने के लिए, तो सुबह में आप कर सकते हैं।
1: सर, आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि प्रातः काल करना योग बहुत सर्वोत्तम है, लेकिन आजकल की सर जो जीवन शैली है उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि लोग इतनी व्यस्तता होती है कि नहीं करते, तो कोई और वक्त ऐसा हो, सुबह ऑफिस जाने की अड़बड़ होती है, तो किस और वक्त में करें वो योग, कैसे करें, किस समय में करें?
2: ऐसा है कि मेरा भी अपना अनुभव है, कभी कभी कुछ ऐसी व्यवस्था रहती है कि सुबह में हमने अपना हार्डवेयर वाला काम तो कर लिया, क्योंकि हार्डवेयर वाला काम सब जगह हो नहीं सकता, उसके लिए स्पेस चाहिए, वासन है, योगिक जॉगिंग है, सूर्य नमस्कार है, बहुत सारे व्यायाम है, तो वो सब नहीं हो पाता है, आप छोटी सी जगह में नहीं कर सकते, उसके लिए पर्याप्त जगह चाहिए। लेकिन प्राणायाम की जो बात करें तो प्राणायाम जो है, आप अब चल रहे हैं ट्रेन में बैठे हैं, तो आप ट्रेन में भी खिड़की के साइड में बैठ करके अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कपालभाति भी कर सकते हैं, भस्त्रिका भी कर सकते हैं। तो ये आपका चलते फिरते वो रास्ते में, हम लोगों ने कई बार इसको देखा।

0: है करके, क्योंकि सुबह सुबह कभी यात्रा में ट्रेन में रहे तो सुबह शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के ट्रेन में ही शुरू कर दिया करना,
1: जी जी
0: तो आप चलते फिरते कर सकते हैं ये
1: अच्छा सर,
0: सुविधा।
1: हम लोग एकदम आखिरी, अब तो समय हो रहा है हमारे कार्यक्रम का, तो उसमें सर बताएं कि जैसे योग करने के जो तात्कालिक शुरुआती फायदे होते हैं, वो मतलब आप एकदम से संक्षेप में बता दें हम, ताकि श्रोता हमारे इस बात से सुने कि भाई योग अगर हम करते हैं तो हमको तुरंत ये फायदा दिखे।
0: देखिए इसमें जैसे हमने आपको कहा ना कि एक हार्डवेयर है एक सॉफ्टवेयर है, तो यदि आप व्यायाम इत्यादि करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, आपका एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। प्राणायाम करते हैं तो आपकी इंटरनल जो भी समस्याएं हैं, चाहे गैस की समस्या हो, चाहे कब्ज की समस्या हो, या पाचन तंत्र की समस्या हो, मूल रूप से यही है इसका कि आप बिल्कुल अंदर से भी स्वस्थ रह सकते हैं, बाहर से भी स्वस्थ रह सकते हैं, मन संयमित हो जाएगा।
1: शिवजी कुमार जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य सूचना के अंतर्गत भेंट वार्ता, संतुलित जीवन शैली के लिए योग का महत्व। भेंट वार्ताकार थे योग प्रशिक्षक शिवजी कुमार और भेंटकर्ता थे रूपेश कुमार। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए रसमंजरी के अंतर्गत फिल्म संगीत, सुनते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

एनिमल फिल्म के इस गाने को अपनी आवाज से सजाया अरिजीत सिंह ने, गरिमा के लिखे इस गीत को अपनी धुन से सजाया श्रेयश पुरनिक ने। रसमंजरी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

अग्निपथ फिल्म के इसी गाने के साथ रसमंजरी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी।

0: तो दोस्तों, आपने सुनना शुरू कर दिया है बाल किलकारी रेडियो कार्यक्रम। बाल किलकारी के नए एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का खूब स्वागत है। अरे आकृति, ये क्या, छुट्टियाँ खत्म होने वाली है और तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल भी दुख नहीं है?
1: दुख क्यों होगा, मैंने तो पूरी छुट्टियाँ मजे से बिताई।
0: और मैंने पूरी छुट्टियाँ आराम से बिताई है।
1: दोनों में बहुत फर्क होता है।
0: हाँ, तुमने छुट्टियाँ बिताई और छुट्टियों ने मुझे बिता दिया।
1: क्यों, ऐसा क्या कर दिया फिर तुमने?
0: सुबह देर से उठना, दोपहर में आम खाना, शाम को मोबाइल चलाना और रात में कल को सुधारूंगा का संकल्प लेना।
1: वाह, क्या अनुशासित जीवन था।
0: धन्यवाद, मैं आलस से विभाग का आजीवन सदस्य हूँ।
1: इसी वजह से तो योग दिवस मनाया जाता है।
0: लेकिन एक मिनट, योग दिवस और मेरी छुट्टियों का क्या संबंध है?
1: बहुत गहरा संबंध है।
0: कैसे?
1: छुट्टियों में शरीर आराम करता है।
0: बिल्कुल सही।
1: लेकिन कभी कभी इतना आराम कर लेता है कि फिर काम करने का मन ही नहीं करता।
0: अरे, मेरे शरीर की शिकायत तुमसे किसने की?
1: तुम्हारी चाल देखकर समझ गई मैं।
0: मैं तो शेर की तरह चल रहा हूँ।
1: हाँ, गर्मी में सोए हुए शेर की तरह।
0: वैसे इस बार योग दिवस का थीम क्या है?
1: स्वस्थ आयु के लिए योग।
0: मतलब?
1: मतलब उम्र चाहे कोई भी हो, शरीर और मन दोनों सक्रिय रहें।
0: अच्छा, तो योग सिर्फ दादाजी और दादी जी के लिए नहीं है?
1: बिल्कुल नहीं।
0: फिर तो मैं भी कर सकता हूँ।
1: क्यों नहीं।
0: लेकिन पहले मुझे एक समस्या बतानी है।
1: आप क्या कर दिया?
0: छुट्टियों में मैंने इतना आम खाया कि अब आम मुझे देखकर रास्ता बदल रहे हैं और कहते हैं बहुत खा लिया, अब अगले साल खाना।
1: और योग देखकर?
0: योग मुझे देखकर रास्ता नहीं बदलते, बस मैं बदल लेता हूँ।
1: मजाक छोड़ो, सच बताओ, छुट्टियों में सबसे अच्छा क्या लगा?
0: नानी के घर की ठंडी लस्सी।
1: और सबसे बुरा?
0: वापस आने की तारीख।
1: मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, पर अलग तरीके से। मुझे सबसे अच्छा किलकारी का चक धूम धूम समर कैंप 2026 लगा, और बुरा आज यानी समापन वाले दिन लग रहा है। पता ही नहीं लगा कि कब ये समर कैंप खत्म भी हो गया।
0: तुम्हें पता है, मेरी नानी एक बात हमेशा कहती है।
1: क्या?
0: जिसने सुबह को जीत लिया, उसने दिन को भी जीत लिया।
1: वाह वाह, बहुत सही कहती है तुम्हारी नानी।
0: और तुम्हारी नानी क्या कहती है?
1: योग करे जो रोज सुबह, मन उसका खिल जाए, तन में ऊर्जा ऐसी भर दे, हर मुश्किल मुस्काए।
0: लगता है तुम्हारी नानी छुप छुप कर कविता लिखती थी।
1: और तुम्हारी नानी छुपी हुई दार्शनिक है।
0: पर आकृति, क्या कभी तुम्हें लगा है कि हमारा मन भी एक बगीचे जैसा होता है?
1: यह नया विचार कहाँ से आ रहा है?
0: छुट्टियों में छत पर लेते लेते सोच रहा था।
1: वाह, आखिर कुछ तो उपयोगी सोचा।
0: अगर मन में अच्छे विचार बो तो फूल खिलते हैं।
1: और अगर आलस बो
0: तो मैं उग जाता हूँ।
1: चलो आज योग दिवस की तैयारी करते हैं।
0: लेकिन केवल बातें करके?
1: नहीं नहीं।
0: फिर?
1: मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ।
0: कहानी?
1: हाँ, एक आलस पर विजय पाने वाले की।
0: यह तो बहुत अच्छा लग रहा है।
1: तो सुनो, आलस्य कुमार और योग का महान युद्ध। एक गांव में एक लड़का था आलस्य कुमार। नाम तो उसका अजय था, लेकिन पूरे गांव ने उसका नाम आलस्य कुमार रख दिया था। कारण भी बड़ा मजेदार था। वह इतना आलसी था कि अगर मच्छर उसे काट ले तो उसे भगाने के बजाय मच्छर से ही कह देता था, भाई अगर काम खत्म हो जाए तो लाइट बंद कर देना। एक दिन गांव में योग शिविर लगा। सभी लोग सुबह सुबह मैदान में पहुँच गए, लेकिन आलस्य कुमार अपने बिस्तर से लिपटा हुआ था। उसकी माँ ने कहा, बेटा उठो, योग करने चलते हैं। आलस्य कुमार अपने आलसपन से कहता है, माँ मैं मन

0: मन योग कर रहा हूँ। माँ हैरान थी, उन्होंने पूछ दिया, वह कैसे? मैं सोच रहा हूँ कि मैं उठ गया हूँ, मैदान पहुँच गया हूँ और योग भी कर लिया है। माँ ने माथा पकड़ लिया था। अगले दिन योग शिक्षक खुद घर पहुँचे। उन्होंने कहा, बेटा योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है। आलस्य कुमार ने बोला, गुरुजी स्वस्थ तो मेरा बिस्तर भी है, 10 साल से वही पड़ा हुआ है। गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने एक योजना बनाई, अगले दिन घोषणा कर दी, जो सबसे अच्छा योग करेगा उसे आम और रसगुल्ले मिलेंगे। बस सुबह 4 बजे सबसे पहले मैदान में कौन पहुंचा होगा?
1: आलस्य कुमार।
0: बिल्कुल सही, लोग दंग रह गए थे। एक अंकल बोले, बेटा तुम्हें तो चलने में भी आलस आता था। तब आलस्य कुमार कहता है, अंकल जहाँ रसगुल्ले दिखाई दे वहाँ ऊर्जा अपने आप आ जाती है। धीरे धीरे अब वह रोज आने लगा था। कुछ दिनों बाद उसका शरीर चुस्त हो गया। एक दिन गुरुजी ने पूछा, आप योग क्यों करते हो? रसगुल्ले के लिए? आलस्य कुमार हंस दिया, नहीं गुरुजी, पहले मैं रसगुल्ले के लिए आता था, अब अच्छा महसूस करने के लिए आता हूँ। गुरुजी ने फिर से कहा, देखा योग ने आलस्य को हरा दिया। आलस्य कुमार बोला, हाँ लेकिन रसगुल्ले ने बहुत मदद की है इस शुरुआत में। और पूरा मैदान हंसी से गूंज उठा और सब ने आलस्य कुमार से उसे वापस अजय बुलाना शुरू कर दिया।
1: वाह, कहानी तो अच्छी थी, लेकिन ये आलस्य कुमार तो मेरे दूर के रिश्तेदार निकले।
0: दूर के?
1: हाँ, क्योंकि मैं अभी भी उनसे थोड़ा ज्यादा आलसी हूँ।
0: चिंता मत करो, योग का दरवाजा सबके लिए खुला है।
1: लेकिन एक बात बताओ, योग केवल शरीर के लिए है या दिमाग के लिए भी?
0: दोनों के लिए।
1: कैसे?
0: जैसे नदी का पानी साफ हो तो उसमें आकाश साफ दिखाई देता है।
1: अच्छा,
0: वैसे ही मन साफ हो तो विचार साफ दिखाई देते हैं।
1: वाह, आज तो तुम पूरी दार्शनिक बन गई हो।
0: नहीं, ये बात मैंने अपने योग प्रशिक्षक से सीखी थी।
1: मुझे लगता है कि मेरा मन कभी कभी बंदर जैसा हो जाता है।
0: कभी कभी?
1: ठीक है, अक्सर।
0: इसीलिए तो योग में एकाग्रता पर जोर दिया जाता है।
1: वैसे योग की शुरुआत कब हुई होगी?
0: हजारों करोड़ों वर्ष पहले।
1: तब तो उस समय मोबाइल भी नहीं होंगे ना?
0: बिल्कुल नहीं।
1: फिर लोग सुबह उठकर क्या करते थे?
0: प्रकृति को देखते थे, सीखते थे, अपने शरीर और मन को समझते थे।
1: और हम?
0: हम उठते ही स्क्रीन को प्रणाम करते हैं।
1: अरे यह तो मेरे ऊपर ही सीधा प्रहार था। लेकिन योग दिवस कब मनाया जाता है?
0: हर वर्ष 21 जून को।
1: जून ही क्यों?
0: क्योंकि वर्ष का सबसे लंबा दिन माना जाता है और इसका विशेष महत्व है।
1: अच्छा, इसलिए पूरी दुनिया इस दिन योग का संदेश देती है।
0: बिल्कुल।
1: मुझे यह जानकर अच्छा लगता है कि भारत की एक परंपरा पूरी दुनिया को जोड़ रही है।
0: यही तो इसकी खूबसूरती है।
1: लेकिन क्या योग करने के लिए बहुत कठिन आसन सीखने पड़ते हैं?
0: नहीं नहीं।
1: सच ना?
0: सबसे पहले नियमितता सीखनी पड़ती है।
1: मतलब अगर कोई रोज 5 मिनट से शुरुआत करे तो भी ठीक है?
0: बिल्कुल।
1: यह तो आसान लग रहा है।
0: शुरुआत हमेशा आसान होती है, निरंतरता चुनौती होती है।
1: अब समझ आया कि मेरी और सफलता की मुलाकात बार बार क्यों टल जाती है।
0: क्योंकि तुम पहले दिन ही पहाड़ चढ़ना चाहते हो
1: और दूसरे दिन आराम करना चाहता हूँ।
0: यही तो समस्या है।
1: लेकिन आकृति, कभी कभी लगता है कि जीवन एक लंबी यात्रा है
0: और उस यात्रा के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है।
1: तभी तो स्वस्थ आयु के लिए योग इतना सुंदर संदेश लगता है।
0: सही कहा।
1: लेकिन मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आ रही है।
0: सुना सुना।
1: सूरज संग जब जागेंगे, नए सपनों को थामेंगे, योग बनेगा पटका साथी, हंसते हंसते आगे बढ़ेंगे।
0: बहुत सुंदर थी।
1: पहली बार मेरी कविता पर किसी ने हंसी नहीं उड़ाई।
0: क्योंकि इस बार कविता अच्छी थी।
1: ओह, प्रशंसा में भी ताना छुपा दिया।
0: प्रतिभा हो तो पहचान नहीं चाहिए,
1: और आलस हो तो
0: उसे विदा कर देना चाहिए।
1: लगता है आज का संदेश बिल्कुल साफ है।
0: स्वस्थ तन, प्रसन्न मन और सक्रिय जीवन,
1: और उसके लिए रोज थोड़ा सा योग।
0: सही कहा।
1: तो मित्रों, आइए इस योग दिवस पर एक छोटा सा संकल्प ले,
0: अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने स्वस्थ भविष्य के लिए।
1: लेकिन आकृति, एक बात बताओ।
0: हाँ हाँ, बताओ बताओ।
1: आज पूरी किलकारी परिसर कुछ अलग सी लग रही है।
0: सही कहा, क्योंकि आज चक धूम धूम समर कैंप का समापन समारोह है।
1: शायद इसी वजह से हर चेहरे पर मुस्कान भी है और थोड़ी सी उदासी भी।
0: वो तो होना ही है।
1: अभी थोड़ी देर पहले मैं प्रदर्शनी देख कर आ रहा था।
0: कैसी लगी?
1: कमाल की।
0: क्या क्या देखा वहाँ पर?
1: रंगों में सपने देखे,
0: और
1: मिट्टी में कल्पनाएं देखी,
0: और पक्का अब कुछ अनोखा ही देखा होगा।
1: हाँ, कुछ चित्र ऐसे थे जिन्हें देखकर लगा कि बच्चों ने अपनी पूरी दुनिया कागज पर उतार दी है।

0: तो कला की ताकत है।
1: और मंच के पीछे तो अलग ही हलचल है।
0: बिल्कुल,
1: कोई अपनी पगड़ी ठीक कर रहा है,
0: कोई नृत्य की अंतिम तैयारी में है,
1: कोई संवाद याद कर रहा है
0: और कोई अपनी बारी का इंतजार।
1: लेकिन सच कहूँ, समापन समारोह किसी मेले जैसा लगता है।
0: लेकिन यह मेला केवल मनोरंजन का नहीं है,
1: फिर
0: सीख, मेहनत और रचनात्मकता का है।
1: लेकिन जानती हो, मुझे सबसे सुंदर क्या लगता है?
0: क्या?
1: यहाँ कोई हारने नहीं आता।
0: सही कहा।
1: जो चित्र बनाता है वह कुछ सीख कर जाता है,
0: जो नृत्य करता है वह आत्मविश्वास लेकर जाता है,
1: और जो मंच पर बोलता है वह तो साहस लेकर जाता है,
0: और जो मित्र बनाता है वह यादें लेकर जाता है।
1: वाह,
0: शायद इसी कारण समापन समारोह थोड़ा भावुक भी होता है,
1: क्योंकि कल से यह चहल पहल नहीं होगी,
0: लेकिन इन दिनों की यादें रहेंगी।
1: मुझे लगता है कि समर कैंप का असली प्रमाण पत्र कागज नहीं होता।
0: और फिर क्या होगा?
1: चेहरे पर आया आत्मविश्वास
0: और मन में जागी नई उम्मीद।
1: बिल्कुल,
0: आज जब मंच पर प्रस्तुतियाँ होंगी तो केवल कार्यक्रम नहीं दिखेंगे,
1: फिर क्या दिखेगा?
0: बच्चों की मेहनत दिखाई देगी,
1: उनके सपने दिखाई देंगे,
0: उनकी उड़ान दिखाई देगी,
1: और शायद कुछ माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू भी।
0: बिल्कुल,
1: सचमुच समापन अंत नहीं लगता,
0: सिर्फ
1: एक नई शुरुआत लगती है,
0: क्योंकि यहाँ से बच्चे अपने साथ केवल यादें नहीं ले जाते,
1: बल्कि नए सपने भी ले जाते हैं
0: और नई ऊर्जा भी।
1: ठीक वैसे ही जैसे योग हमें हर दिन नई शुरुआत करना सिखाते हैं,
0: इसीलिए आज का दिन और भी खास बन जाता है।
1: समर कैंप का समापन
0: और स्वस्थ जीवन का संकल्प।
1: लेकिन बातें बहुत हो गई, अब समय सीमा को देखते हुए हमारे जाने का समय हो गया है।
0: तो प्यारे श्रोताओं, आप भी हमारे इस बाल किलकारी के कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कविता, कहानी या गीत इस कार्यक्रम में शामिल हो तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9142432658।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा नंबर है 9142432658।
0: बाल किलकारी होगा और मजेदार।
1: मिलते हैं अगले रविवार,
0: जिसमें होगी नई सोच, नया विचार। इस कार्यक्रम को दे ढेरों प्यार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: AIR at 90. आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। लीजिए सुनिए बाल कार्यक्रम बाल मंडली।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद दीदी।
0: आज बाल मंडली कार्यक्रम में आपकी साथी अविष्का है और रंजना दीदी साथ में है और आज योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सुबह आपने भी योगा किया होगा, कैसा
1: हाँ दीदी,
0: लगा योगा करके? जैसे
1: योगा करके मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: क्या-क्या अच्छा लगता है?
1: स्ट्रेचिंग ये सब पसंद है, जैसे कि स्ट्रेचिंग, ट्री
0: अच्छा
1: पोज, माउंटेन पोज और सूर्य नमस्कार।
0: अच्छा सूर्य नमस्कार भी आप कर लेती हैं? तो कहा जाता है कि जो लोग बड़े या छोटे सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, यानी उनके पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है और बहुत अच्छा भी महसूस होता है।
1: हाँ दीदी,
0: और सूर्य नमस्कार जब आप करती हैं, इसका सबसे अच्छा समय क्या होता है? सुबह का सूर्य नमस्कार, क्योंकि सूर्योदय तो सुबह में ही होता
1: हाँ,
0: है। सूर्य भगवान किस तरफ दिखते हैं?
1: पूरब।
0: तो पूरब की दिशा में यदि आप खड़े होकर अच्छे से मैट बिछाकर घास पर आप खड़ी हैं, तो वहाँ यदि आप खड़े होकर सूर्य नमस्कार करेंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको इसके फायदे तो पता ही है। तो
1: हाँ
0: रोज
1: दीदी,
0: सुबह हम करें योग, तन मन अपना करें निरोग, सूर्य नमस्कार प्राणायाम, स्वस्थ रहे अपना हर काम। यदि सुबह सुबह हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो पूरे दिन के लिए हमको क्या मिल जाती है?
1: एनर्जी।
0: वेरी गुड। अविष्का को तो पता है क्योंकि ये महसूस भी करती हैं कि उनको एनर्जी मिलती है। प्राणायाम के विषय में जानती हैं? अपने श्वासों पर जब नियंत्रण रखते हैं, प्राणायाम कई तरह से हम कर सकते हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये
1: मैं
0: सब है ना।
1: अनुलोम विलोम सबसे ज्यादा करती हूँ।
0: कहा जाता है कि प्राणायाम का राजा अनुलोम विलोम है। इससे हमारे कई सारी परेशानियां ठीक होती हैं। और यदि हमको कोई एक परेशानी, एक बीमारी के लिए अनुलोम विलोम करने का मौका मिलता है, तो हमारे शरीर में जो भी बीमारी आने वाली है वो भी ठीक हो जाएगा। तो है ना ये जादू के समान।
1: हाँ, और इसको करने से हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं
0: जब अगला काम करते हैं उसको कैसे करेंगे?
1: अच्छे से मन लगा के।
0: और एनर्जी भी खूब मिलेगी। लेकिन योगा प्राणायाम के साथ साथ एनर्जी के लिए और अच्छे मन के लिए और क्या हम कर सकते हैं?
1: जैसे कि अगर आप योग करें तो आपको सबसे ज्यादा पढ़ाई में कंसंट्रेशन भी मिलती है।
0: बिल्कुल। और अच्छे शरीर के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए योगा प्राणायाम तो जरूरी है, और साथ साथ अच्छा भोजन, अच्छी नींद और साफ सफाई, ये भी आपको पता होगा।
1: हाँ दीदी,
0: आपको भोजन में क्या-क्या पसंद है?
1: चावल दाल ये सब, और
0: और
1: हेल्दी फूड में वेजिटेबल्स जैसे कि आलू, मटर, ये धनिया और भी बहुत कुछ खाती हूँ।
0: गोभी, परवल, भिंडी, लौकी, सब कुछ पसंद है सच्ची में?
1: हाँ, पर मैं करेली नहीं खाती क्योंकि वो बहुत कड़वी होती है।
0: या खाइए तभी तो जानिए वो कड़वी होती है
1: हाँ मैं खाई हूँ,
0: हाँ।
1: बहुत अजीब टाइप का उसका टेस्ट होता है।
0: को थोड़ा सा मम्मी अगर दूसरे तरीके से बना देंगी, उसकी कड़वाहट कम करेंगी, तो आपको शायद पसंद भी आने लगेगा। तो ट्राई करिएगा, अभी तो आप छोटी हैं, धीरे धीरे शायद आपको करेली पसंद आने लगे।
1: मैं जब बहुत छोटी थी तब से मुझे ये सारी की सारी सब्जियां बहुत पसंद है।
0: और अभी हम लोग बात कर रहे थे अविष्का योग पर, तो एक चुटकुला सुना दे रंजना दीदी, आप भी सुनिए और आपके नन्हे साथी भी सुनेंगे। टीचर,

0: कहते हैं, योग करने से क्या-क्या फायदा होता है? तो बच्चा कहता है, सर मम्मी डांटे तो गुस्सा भी कम आता है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन कोई
1: जब
0: ना,
1: कोई बच्चा शरारत करेगा तभी तो मम्मी डांटेगी।
0: और मम्मी ही तो फर्स्ट टीचर होती है,
1: और
0: शुरू करते हैं।
1: परिवार हम लोगों का पहला स्कूल होता है।
0: हाँ, और मम्मी फर्स्ट टीचर होती
1: वही
0: है।
1: तो हमें शुरू से ABCD KKG 1 2 3 4 यही सब वो पहले से सिखा के भेजती हैं।
0: और उसके साथ साथ जो मैनर्स होते हैं कि सुबह उठना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए, खेलना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, ये सब चीजें भी तो मम्मी सिखाती है ना। और स्कूल में हम इसको फॉलो करते हैं तो अच्छे बच्चों में हमारी गिनती होती है।
1: ये जो सारी बातें हैं जो हमें हमारी मदर सिखाती हैं, ये सारे के सारे मेरे स्कूल में नॉर्मली रूल्स ही हैं।
0: बच्चों, आपकी फरमाइशें कौन पूरी करते हैं? सिर्फ फरमाइशें ही नहीं, आपको गाइड करते हैं।
1: वो मेरे पेरेंट्स हैं।
0: और भी जो बड़े बुजुर्ग हैं, सभी हमारे पेरेंट्स होते हैं, उन्हीं से हम अपनी फरमाइशें करते हैं और पूरी भी होती है।
1: हाँ दीदी,
0: हमारा फरमाइश पूरा करने वाला जो खजाना है बड़े लोगों का, उसको हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए।
1: हाँ दीदी,
0: हाँ, क्योंकि कॉपी किताब हो, कोई भी सामान खरीदना हो, कहीं जाना हो, कुछ लेना हो, कहीं घूमने जाना हो, सारे फरमाइश हम अपने घर में करते हैं और वही लोग पूरी करते हैं। लेकिन कभी-कभी फरमाइश पूरी नहीं होती है, तो
1: हाँ
0: क्या
1: दीदी,
0: होता है?
1: कि सोचते हैं कि छोड़ो कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा, इतना भी तो वो चीज़ जरूरी नहीं था।
0: अविष्का ने अपने नन्हे साथियों को ये बात बताई कि कोई फरमाइश यदि मम्मी पापा से पूरी ना हो तो इतना भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपको लगता हो मुझे तो ये चाहिए था, लेकिन आपके मम्मी पापा को लगे कि ये अभी नहीं देना जरूरी है, या इसके लिए ये जरूरी नहीं है।
1: दीदी जैसे कि आइसक्रीम बिस्किट ये सब सारी चीजें उतनी जरूरी नहीं होती हैं। हमारे मम्मी पापा तो हर चीज करते हैं, हमारे हर एक चीज का ख्याल रखते हैं। अगर एक फरमाइश उनसे ना हो तो क्या ही हो जाएगा।
0: और हो सकता है उनका भी मन हो कि मेरे बच्चे को ये पसंद है, उसको वो दिलाएंगे भी। और अविष्का, आज जब विशेष दिन है योगा का, तो आप अपने नन्हे साथियों को अपनी तरफ से कुछ योगा के विषय में बताइए।
1: योग प्राचीन भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण परंपरा है जो शरीर मन और आत्मा को स्वस्थ और संतुलित रखने में सहायता करता है। योग करने से मन शांत और प्रसन्न रहता है। यह हमारी शरीर की लचीलापन बढ़ाता है। योग तनाव और चिंता को कम करता है। नियमित योग करने से एकाग्रता बढ़ती है। योग शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। यह कई बीमारियों से बचाव में सहायक होता है, जैसे श्वास लेने की क्षमता योग से बेहतर होती है। यह अच्छी नींद लेने में मदद करता है। हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ और खुश रहें।
0: और खुशी आपके चेहरे पर भी दिख रही है। योग प्राणायाम भी एक खेल की भांति ही होता है।
1: कुछ योग ऐसे होते हैं जो कि कभी कभार अगर आप उसे रोज करें तो वो कुछ दिनों के बाद खेल लगने लगते हैं,
0: और
1: जैसे ट्री पोज, माउंटेन पोज या सूर्य नमस्कार।
0: आप कोई गेम भी खेलती हैं? उसको खेलना ज्यादा पसंद करती हैं?
1: चेस और
0: चेस।
1: कराटे।
0: अच्छा, कराटे भी आप सीखती हैं?
1: हाँ दीदी,
0: अविष्का अभी बातें कर रही हैं, चेस भी खेलती हैं, कराटे भी इनको पसंद है, और भी कुछ पसंद है?
1: हाँ मैं स्केटिंग करना बहुत पसंद करती हूँ।
0: ये तो छोटी सी अविष्का बड़े गेम भी खेलती हैं और इनको पसंद भी है। कुछ बताइए ना अपने नन्हे साथियों को स्केटिंग के बारे में।
1: रोलर स्केटिंग ऐसी टाइप की स्केटिंग होती है जिसमें आप रोलर स्केट्स पहन के स्केटिंग करते हैं। इस स्केटिंग को रिंग में किया जाता है। इस पे आधारित बहुत सारे चैंपियनशिप्स होते हैं, जैसे नेशनल्स, इंटरनेशनल्स।
0: जब आपने शुरुआत की होगी तो डर लगा था?
1: नहीं, जैसे ही मैं चली इतना मजा आ रहा था कि मुझे जाने का मन नहीं कर रहा था।
0: पहिए पर चलना एक तो मुश्किल है, लेकिन अविष्का के लिए ये मजे की बात है। तो बच्चों, खेलेंगे, कूदेंगे, आगे बढ़ेंगे, नशे से समाज को दूर रखेंगे, स्वस्थ रहेगा भारत सारा, यही

0: अपना प्यारा नारा। नशे की बात रंजना दीदी अपने बच्चों के बीच रख रही हैं, और नशे के विषय में आप जानती हैं अविष्का?
1: नशा बहुत खराब होता है, इससे सबको दूर रहना चाहिए।
0: नशा दीमक के समान होता है जो शरीर को बिल्कुल खोखला कर देता है। हमारे शरीर के अंदर सारे ऑर्गन्स खराब होने लगते हैं। शरीर में जब ऑर्गन्स ही ठीक नहीं रहेंगे तो हमको बहुत सारी बीमारियां घेरेंगी। बड़े तो बड़े, बहुत सारे छोटे बच्चे भी इस लत में पड़ जाते हैं।
1: हाँ दीदी,
0: इससे उनकी पूरी जिंदगी तो खराब होती है, शरीर बीमार, लाचार, और सारे ऑर्गेन्स ही जब खराब होने लगेंगे तो हमारे लिए जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा।
1: हाँ दीदी,
0: पैसे की बर्बादी, शरीर की बर्बादी हमारे माहौल को भी खराब करता है। यदि ऐसा कहीं माहौल सुनने में आता है तो हम उसमें कुछ सहयोग कर सकते हैं। कैसे, बताएंगी? जैसे नशे का माहौल यदि कहीं है तो हम वहां सीधे जाकर उस माहौल में तो कुछ नहीं कर सकते हैं।
1: नशा सबसे ज्यादा होता है जब कोई गंदा माहौल हो, तो हम लोग एक ही काम कर सकते हैं, उस गंदे माहौल से उस आदमी को बाहर निकाल के उसे अच्छे माहौल में रखने के लिए।
0: लेकिन जब बड़े भी उनका साथ देंगे तो उस माहौल में जाकर हम उनको बताएं कि नशे से क्या-क्या हानि हो सकती है, कैसे पैसे की बर्बादी होती है, कैसे हमारा शरीर कमजोर हो जाता है और इससे हासिल कुछ भी नहीं होता है, परेशानी बहुत हो जाती है। तो इसके लिए हम पोस्टर बना सकते हैं। आपके कुछ साथियों को अच्छी ड्राइंग करनी आती होगी, वो नशे से जो परेशानी होती है उसकी ड्राइंग करें, कोई चित्र सामने होगा कि नशे से कैसे बर्बादी होती है, कैसे हमारा शरीर खराब होता है। अगर ये ड्राइंग से दिखाया जाएगा तो ज़्यादा लोग देख पाएंगे, समझ पाएंगे।
1: हाँ दीदी,
0: और एक मज़ेदार तरीका और वो होता है नाटक, नुक्कड़ नाटक या कोई कविता इस तरह का।
1: हाँ
0: आपको है शौक छोटे छोटे नाटक इस तरह के जो स्कूल में होते हैं,
1: हाँ
0: या
1: दीदी,
0: मौका मिले तो? आपको ये मौका मिलता है कि उस जगह में नशे से संबंधित कोई प्ले करना है छोटा सा, तो आपको अच्छा लगेगा?
1: हाँ दीदी, अच्छा होगा। जिन जिन को नशा है उनके लिए ये एक संबोधन हो सकता है जिससे वो लोग समझ सके।
0: तो इसके लिए हमको जागरूक तो रहना ही चाहिए, जागरूक तो हमेशा रहना चाहिए अविष्का, चाहे हम घर में रहें। अभी गर्मी का मौसम है ना,
1: हाँ
0: जब हम उस कमरे में नहीं है तो उस कमरे की लाइट, पंखे, एसी, कूलर सबको क्या करना चाहिए?
1: हमें बंद कर देना चाहिए
0: हाँ,
1: क्योंकि
0: तब
1: इससे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है।
0: आइसक्रीम
1: हाँ
0: खाती हैं?
1: हाँ दीदी,
0: हाँ तो खाती हैं तो खाइएगा, लेकिन अपने नन्हे साथियों को आइसक्रीम के बारे में भी कुछ बताइएगा।
1: आइसक्रीम एक स्वादिष्ट और ठंडी मिठाई होती है, ये बच्चों और बड़ों सभी को पसंद होती है। आइसक्रीम दूध और क्रीम चीनी जैसे सामानों से बनाई जाती है। इसके कई स्वाद होते हैं जैसे चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी आदि। गर्मियों में लोग आइसक्रीम खाना बहुत पसंद करते हैं। आइसक्रीम खाने से ठंडक और ताजगी मिलती है, लेकिन हमें आइसक्रीम का सेवन सीमित मात्रा में ही करनी चाहिए। आइसक्रीम हमें खुशी और आनंद देती है।

0: आपको ही नहीं सबको आनंद मिलता है, और इसी आइसक्रीम पर हम अपने नन्हे साथियों को एक चुटकुला सुना दें।
1: दीदी।
0: आइसक्रीम खाने दो दोस्त जाते हैं, तो एक ने दूसरे से पूछा तुम्हें कौन सी आइसक्रीम पसंद है, तो दूसरा दोस्त तपाक से बोलता है जो मुफ्त में मिल जाए। तो ऐसे मुफ्त में तो मिलती नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी ऑफर जरूर होता है
1: दीदी।
0: ना। तो यदि ऐसा ऑफर है तो उसके मजे लीजिए, लेकिन दुकान से कोई भी खरीदारी करिए तो उसका सही दाम देना चाहिए,
1: हाँ
0: उस पर
1: दीदी।
0: लिखा होता है ना वो देखकर। कभी कभी दुकानदार जानबूझ के या कभी कभी गलती से हमसे ज्यादा पैसे ले लेते हैं।
1: हाँ दीदी।
0: और क्या देखना चाहिए खरीदारी करने समय?
1: खरीदारी करते समय उसकी एक्सपायरी डेट देखनी चाहिए।
0: हाँ, इसका मतलब अविष्का खरीदारी करती हैं,
1: हाँ
0: मार्केट से
1: दीदी।
0: चीजें लाने जाती हैं।
1: हाँ दीदी। मॉम के साथ जाती हूँ कभी कभार, डैड के साथ, और कभी कभार मैं अकेले जाती हूँ।
0: अकेले जाती हैं तो क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है? सही दाम देखकर दुकान वाले को देना चाहिए, और दुकान वाले जो पैसा वापस करता है उसको भी चेक करना चाहिए कि कितना बैलेंस हमको देना है या वापस लेना है।
1: हाँ दीदी।
0: अपने नन्हे साथियों के लिए अविष्का से पूछ रही हैं कि जब घर से बाहर निकलती हैं, मार्केट जाती हैं, आसपास जहां भी, तो रास्ते में क्या-क्या सावधानी रखनी पड़ती है?
1: कि पैसा ना भुला जाए, आमने सामने से कोई गाड़ी ना आ जाए,
0: हाँ,
1: और सबसे जरूरी कि कोई भी स्ट्रेंजर या अनजान इंसान आए तो उसे एकदम नहीं बात करनी चाहिए। वो कुछ दे तो उसे भी नहीं खाना चाहिए, और अगर साथ चलने के लिए बोले तो चलना भी नहीं चाहिए,
0: यदि
1: हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए।
0: हाँ वो है, जब भी घर से छोटी बड़ी कोई भी खरीदारी के लिए निकले तो अपने साथ कपड़े का थैला भी रखना चाहिए।
1: हाँ दी, ताकि हम लोग सामान अपने हाथ में कंटिन्यूअस रख नहीं सकते हैं, और बहुत सारा सामान भी नहीं रख सकते, इसलिए अगर हम लोग कपड़े के बैग में डालेंगे तो हम लोग आसानी से ले जा सकते हैं।
0: और प्लास्टिक से प्रदूषण भी बहुत फैलता है और डिजॉल्व भी नहीं होता है। कम घरों में भी प्लास्टिक के जो पानी के बॉटल वगैरह होते हैं उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। लंच बॉक्स भी हो तो वो स्टील का हो, कांच का हो।
1: मैं एक कविता अपने नन्हे साथियों को सुनाऊंगी।
0: सुनाइए।
1: मेरी कविता का शीर्षक है मेरे नगपति मेरे विशाल। मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग गरोवंत नित महान, निस्सीम व्योम में तान रहा, युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड चिर समाधि, यतिवर कैसा अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा, किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। ओ मौन तपस्या लीन यति, पल भर को तो कर त्रिगुणमेश, रे ज्वालाओं से दग्ध विकल, है तड़प रहा पथ पर स्वदेश, सुख सिंधु पंच नद ब्रह्म पुत्र, गंगा यमुना की अमीय धार, जिस पुण्य भूमि की ओर बही तेरी विगलित करुणा उदार, जिसके द्वारों पर खड़ा क्रांत, सीमापति तूने की पुकार, पद्दलित इसे करना पीछे, पहले ले मेरा सिर उतार, उस पुण्य भूमि पर आज तपी रे आन पड़ा संकट कराल, व्याकुल तेरे सुत तड़प रहे, डस रहे चतुर दिक विविध व्याल, मेरे नगपति मेरे विशाल। कितनी मणियां लूट गई मिटा, कितना मेरा वैभव अशेष, तू ध्यान मग्न ही रहा इधर, वीरान हुआ प्यारा स्वदेश, वैशाली के भग्नावशेष से पूछ लिच्छवी शान कहाँ, ओहरी उदास गंडकी बता, विद्यापति कवि के गान कहाँ, तू तरुण देश से पूछ अरे गूंजा कैसा यह ध्वंस राग, अम्बुधि अनंत स्थल बीच देख यह सुलग रही है कौन आग, प्राची के प्रांगण बीच देख चल रहा स्वर्ण युग अग्नि ज्वाल, तू सिंह नाद पर जाग तपी मेरे नगपति मेरे विशाल। रे रोक युधिष्ठिर को ना यहाँ जाने दे, उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौट।

0: दे अर्जुन भी वीर। कह दे शंकर से आज करे वे प्रलय नृत्य फिर एक बार। सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर मोहच्चार। ले अंगड़ाई हिल उठे धरा कर निज विराट स्वर में निनाद। तू शैली राट हो कार भरे फट जाए कुहा भागे प्रमाद। तू मौन त्याग कर सी हिनाद रे तपी आज तपका नकाद। नौ युग शंख ध्वनि जगा रही तू जाग जाग मेरे विशाल मेरे नगपति मेरे विशाल।
1: अविष्का ने तो इतनी भाव भंगिमा से इतनी लंबी कविता सुनाई कि हम तो बस मौन होकर सुनते ही रहे। तो हमारे नन्हे साथी भी सुन रहे होंगे अविष्का की ये कविता। गर्मी की छुट्टियां चल रही है तो होमवर्क भी होगा साथ में।
0: हाँ दीदी।
1: और लेकिन आज आप समय निकाल कर आई हैं अपने नन्हे साथियों से बातें करने और रंजना दीदी से भी बात करने। आप और जो नन्हे साथियों के लिए लेकर आई हैं उसको भी सुना दीजिए।
0: एक कहानी हॉकी का जादूगर। 1905 का साल, इलाहाबाद का एक साधारण परिवार। 29 अगस्त को एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया ध्यान सिंह। पिता सोमेश्वर सिंह ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे और हॉकी खेलते थे। 16 साल की उम्र में ध्यान सिंह भारतीय सेना में शामिल हुए और ड्यूटी के बाद वे रात में हॉकी का अभ्यास करते थे। कहते हैं कि वे रात के सन्नाटे में चांद की चांदनी में प्रैक्टिस करते थे। चांद की रोशनी में अभ्यास करने के कारण ही उन्हें ध्यानचंद उपनाम मिला। ध्यान जो चंद ध्यानचंद। शांत मैदान, ठंडी हवा और एक अकेला लड़का जो स्टिक और गेंद को अपना दोस्त बना चुका था। वक्त गुजरा और वही लड़का हॉकी का जादूगर बन गया। सन 1928, 1932, 1936 लगातार 3 ओलंपिक में स्वर्ण जीते। एक बार गेंद उनके स्टिक को छू लेती थी। लोग कहते थे गेंद उनके स्टिक से ऐसी चलती थी मानो कोई अदृश्य धागा बंधा हो। एक बार भारतीय हॉकी के जादूगर ध्यानचंद भारतीय टीम के साथ हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम गए थे। यहाँ ओलंपिक के खेल हो रहे थे। भारतीय टीम एक के बाद एक मैच जीत रही थी और उसका श्रेय जाता था ध्यानचंद को। एक बार गेंद उनके स्टिक को छू लेती थी तो हटती नहीं थी। जरूर ध्यानचंद अपनी हॉकी में गोंद लगा कर रखता है, इसलिए गेंद उसके स्टिक से चिपक जाती है। हॉलैंड के खिलाड़ी ने कहा, हमें उसकी हॉकी की जांच करनी चाहिए। दूसरा ने कहा, हॉकी का खेल जब खत्म हुआ तो उन्होंने ध्यानचंद को रुका, श्रीमान जी हम आपकी हॉकी देखना चाहते हैं। ध्यानचंद मुस्कुराए और उन्होंने अपनी हॉकी उन्हें पकड़ा दी। उन्होंने स्टिक तोड़कर हर कोने से जांच की। चुंबक ट्रिक कुछ भी नहीं, बस थी लोगों के होश उड़ाने वाली प्रतिभा। उन्हें विजर्ड ऑफ हॉकी कहा गया। सन 1936 बर्लिन ओलंपिक और सामने हिटलर, उस लड़के को देखने जिसने हॉकी को जादू बना दिया था। हॉकी का मैच जब खत्म हुआ तो उन्होंने ध्यानचंद से पूछा, जर्मनी आओगे, हमारी टीम संभालोगे? लेकिन ध्यानचंद ने बड़ी विनम्रता से कहा, नहीं, मैं सिर्फ भारत के लिए खेलता हूँ। आज भी हर 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते ताकि हर खिलाड़ी याद रख सके कि मेहनत अगर ध्यान से हो तो खेल जादू बन जाता है। पद्म भूषण धारक ध्यानचंद की कहानी सिर्फ गोल और मेडल की नहीं, ये पुरानी जड़ें हैं साधन, लगन और देशभक्ति की।
1: ये कहानी भी अविष्का ने बहुत अच्छी भाव भंगिमा के साथ सुनाई और हमारे नन्हे साथियों ने भी सुना। अविष्का, आप अपने कॉपी किताब से तो पढ़ाई करती ही हैं, लेकिन आज के समय में सोशल मीडिया, कंप्यूटर, इन सब से भी हम कुछ पढ़ाई भी करते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। हाँ, आप क्या करती हैं?
0: मैं सोशल मीडिया से और कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त करती हूँ, पढ़ती हूँ, चित्र बनाती हूँ और खेल भी खेलती हूँ।
1: तो कंप्यूटर गेम में क्या खेलती हैं और कैसा लगता है और हम लोगों को कितना खेलना चाहिए कंप्यूटर गेम?
0: कंप्यूटर गेम में जैसे कि बहुत सारे गेम्स होते हैं, वीडियो गेम्स होते हैं, पर मैं उसमें चेस, ऑनलाइन चेस खेलती हूँ। और जैसे कि एक होता है आईसाइट का गेम जिसमें एक बॉल को एक कप में डाल के फिर उसके बाद उस कप को अदला बदली उसकी की जाती है और फिर उसके बाद गेस करना होता है कि वो बॉल किस कप।
1: अच्छा, यानी दिमागी खेल भी कंप्यूटर से खेले जाते हैं।
0: हाँ दीदी।
1: तो अविष्का तो पॉजिटिव यूज करती हैं कंप्यूटर का और कंप्यूटर गेम्स का, तो थोड़ा मन लगने के लिए

0: ये तो करना ही चाहिए, और जब तक कंप्यूटर हम लोग ऑपरेट करना नहीं जानेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे काम, बहुत सारी जानकारियाँ हमारे पढ़ाई लिखाई से संबंधित, मनोरंजन से संबंधित, कहीं घूमने जाएं, इन सब से संबंधित जानकारी हम लोगों को सोशल मीडिया, कंप्यूटर, इन सब से ही मिलती है।
1: हाँ दीदी,
0: तो इसको तो जानना जरूरी भी है,
1: हाँ दीदी,
0: और भी कुछ जरूरी है नन्हे साथियों के लिए जो अविष्का के पास है। हाँ अविष्का, अभी आप गर्मी छुट्टियों में कहीं जाने वाली हैं,
1: हाँ मैं अपने नाना नानी के घर जाने वाली हूँ।
0: यानी अपने प्यारे रिश्तेदार से मिलने का समय अब आ गया है। गर्मी की छुट्टियां हो गई तो वहां तो सिर्फ नाना नानी नहीं, उस घर में और लोग भी होंगे, आसपास भी लोग होंगे,
1: हाँ दीदी,
0: तो अपने रिश्तेदार, हमारे जो रिश्तेदार होते हैं उनके विषय में आप क्या बोलेंगी?
1: हमारे रिश्तेदार हमारे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, जैसे नाना नानी, मामा मामी, बुआ मौसी आदि। वे हमें बहुत प्यार और स्नेह देते हैं। रिश्तेदार हर सुख दुख में हमारा साथ देते हैं। हम त्योहारों और खुशियों के अवसरों पर उनसे मिलते हैं, जिससे परिवार में खुशी और अपनापन बढ़ता है। रिश्तेदार हमें अच्छे संस्कार और जीवन के महत्वपूर्ण अनुभव भी सिखाते हैं। हमें अपने रिश्तेदारों का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहिए।
0: और अच्छे बच्चे वही कहलाते हैं जो सबका सम्मान बढ़ाते हैं, योग करें और मेहनत करें, सपनों को साकार करें, नशे से दूर रहें, हम सारे भारत बने सबका प्यारा सबका न्यारा। एक पहेली अपने नन्हे साथियों के लिए भी और मेरे पास बैठी अविष्का के लिए भी।
1: हाँ दीदी,
0: हाँ तो पहेली है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो चलती भी है रुकती भी है लेकिन उसके पैर नहीं होते?
1: घड़ी।
0: वाह, घड़ी। और घड़ी हमेशा चलती जाती है आगे, हमको चलना होता है घड़ी के साथ। तो अपने कार्यक्रम का समय हो रहा है समाप्त, तो हम अपने नन्हे साथियों से विदा ले लें। जय हिंद बच्चों।
1: जय हिंद दीदी।

0: अभी आप सुन रहे थे बाल कार्यक्रम बाल मंडली। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्स पर।
1: दी, ये देख कैसा है।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

90. एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: हेलो, बोलिए। कौन साहब बोल?
1: हम धराजी जिला छपरा बिहार से। मेरा
0: पहले तो अपने बारे में बताइए कि क्या करते हैं आप।
1: नाम है सुकेश तिवारी। हम पेशा से शिक्षक हैं और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं लंबे
0: जी जी
1: समय से,
0: जी
1: और रेडियो के श्रोता हैं 30-40 साल से हैं।
0: आकाशवाणी
1: साल
0: पटना का कौन सा कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगता है?
1: आकाशवाणी पटना के सभी कार्यक्रम, जो भी गाने आते हैं या बच्चों के लिए जो कार्यक्रम आते हैं, सभी कार्यक्रम जो है बहुत ही लाभकारी हैं और मनोरंजन भी करते हैं।
0: और बताइए कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: गाना जो है हमको आदमी खिलौना का सुनना है, रब जो चाहे वही तो होना है।

0: हेलो।
1: मैम नमस्ते।
0: हाँ नमस्ते।
1: राम सकल चौधरी बोल रहा हूँ, चोचकपुर बाजार जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। मौसम
0: वहाँ का मौसम कैसा है ये बताइए।
1: धूप है मैम, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। और आकाशवाणी आपका प्रोग्राम सुनते रहते हैं पटना
0: अच्छा
1: जी, रेडियो सुनना हमको बहुत अच्छा लगता है। अभी तो हम लोग मनाए 90 वर्ष
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष।
1: जी मनाए, और मिठाई उठाई परिवार में बांट के खाए हम लोग
0: जी जी जी बहुत अच्छी
1: जी।
0: बात है।
1: और जो है कि समझ मैम, रेडियो एक ऐसा माध्यम है, वो एक परिवार जैसा है।
0: बिल्कुल सही
1: भी
0: कहा आपने।
1: रेडियो सुन सकते हैं, दुकान हो या खेती बाड़ी हो, कहीं भी आप बाधा नहीं पहुंचता है इसको सुनकर।
0: आप कहीं भी रख दीजिए, कोई भी काम करते रहिए, रेडियो सुनते रहिए, मनोरंजन भी होगा,
1: जी गाना
0: ज्ञानवर्धन भी होगा। तो आज आप कौन सा गाना सुनेंगे, क्या फरमाइश है आपकी।
1: एक मैम गाना सुना दे, देशभक्ति सुना दीजिए। गाना ये है ना, करमा फिल्म का है ना, दिल दिया है जान भी देंगे, आए वतन तेरे लिए।
0: कर्मा फिल्म का गाना आप सुनेंगे, तो लीजिए
1: जी
0: सुनिए
1: मैम
0: ये गाना।

0: हेलो
1: जी, नमस्कार जी। जी,
0: जी, नमस्कार। कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जम्मू कश्मीर जिला डोडा तहसील साठी गांव कंठी से पुष्कनाथ शर्मा बात कर रहा हूँ। दीदी जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: जी जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपके साथ आज पहली बार बात हो रही है मेरी, तो मुझे बड़ी
0: जी
1: खुशी हो रही है। तो आप प्रोग्राम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मेरी तरफ से एक बार फिर से आपको प्रणाम।
0: जी जी बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। मौसम कैसा है वहाँ का पहले ये बताइए।
1: मौसम बहुत अच्छा है।
0: अच्छा, तो आप अपनी फरमाइश बता दीजिए।
1: जी, गाने के बोल आज गाना में आपको डेडिकेट करूंगा। जहां भी मेरी पहली बार कॉल लगती है तो गाना मैं वही सुनूंगा। फूलों का तारों का सबका गहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, हरे राम
0: वाह
1: हरे
0: वाह
1: कृष्णा
0: वाह
1: का
0: वाह
1: सुनना है मैंने।
0: जी, तो हम आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो
1: हम राष्ट्रीय बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में।
0: जी, नमस्कार मैम, कैसी हैं? और मैं सुरीत राय, जिला भागलपुर बिहार से बात कर रहा हूँ। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं बहुत बढ़िया हूँ
1: जी, कैसा मौसम है भागलपुर का?
0: मैम। भागलपुर का मौसम जैसा अभी पटना में है वही है, गर्मी से काफी परेशान है। रात में तो इतना गर्मी करता है कि स्नान करना पड़ जाता है,
1: अच्छा
0: कभी कभी
1: अच्छा
0: तो
1: बहुत
0: नींद भी
1: गर्मी
0: नहीं आती है।
1: मौसम का तो क्या ही कहना, एकदम बाहर निकलिए तो पसीने पसीने होता रहता है आदमी। आप क्या करते हैं
0: जी,
1: पहले ये बताइए।
0: मैं तो ब्लाइंड हूँ, बचपन से मुझे दिखाई नहीं देता है, तो मैं ज्यादातर म्यूजिक से ही लगाव रखता हूँ और रेडियो के
1: अच्छा,
0: कार्यक्रम मैं अक्सर सुनता रहता हूँ। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं स्मार्टफोन को अपने टॉकबैक, एक असिस्टेंट होता है एक्सेसिबिलिटी जिसे कहते हैं, उसके थ्रू ही चलाता हूँ। और जब मैं मैसेज भी करता हूँ तो ज्यादातर तो ऑडियो मैसेज भेजता हूँ, और अगर ज्यादा कहीं बेशोर शराबा हो रहा है तो थोड़ी सी वॉइस टाइपिंग में जितना हो मुझसे बन सकता है उतना मैं टाइप करके भेज देता हूँ। अगर जहाँ पे कुछ गलत टाइप होता है तो लोग वहाँ पे मैनेज कर देते हैं, करके ही पढ़ते हैं उसको।
1: अच्छा, आप गाते भी हैं?
0: जी मैं थोड़ा बहुत गा लेता हूँ।
1: कुछ सुनाइए।
0: पल पल दिल के पास

0: हेलो
1: मैं शेख जफर हसन, कुवात, जिला रोहतास, बिहार।
0: रोहतास सासाराम से।
1: जी मैडम, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ,
0: जी।
1: एक शेर सुन लीजिए।
0: वो सुनाइए।
1: जो जो गाना पसंद करेंगे, दो लाइन, क्योंकि आपसे पहली बार बात हो रही है।
0: जी।
1: जी, और अच्छा भी बोल रही है, जुबान भी आपकी साफ है, तो शेर गौर कीजिएगा।
0: जी
1: ख्वाब जब टूट के बिखरे तो हकीकत समझो,
0: के
1: ख्वाब जब
0: बिखरे।
1: टूट के बिखरे तो हकीकत समझो,
0: वाह
1: कोई अपना कभी रूठे तो मोहब्बत समझो।
0: वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया।
1: मैडम, फिल्म का नाम है गजल।
0: बोल।
1: इश्क की गर्मी जज्बात किसे पेश करूं। मैडम,
0: वाह।
1: आप इजाजत से तीन दोस्त का नाम ले लूं।
0: हाँ बिल्कुल लीजिए।
1: भदरवा जम्मू कश्मीर के पुरुषोत्तम कुमार, पूरा मऊ उत्तर प्रदेश के उस्मान अली अंसारी और अनवर बिहारी।
0: सुनवाते
1: जी
0: हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश में आपका स्वागत है। कौन सा आप बोल
1: जी
0: रहे हैं? आप
1: हम बोल रहे हैं बेगूसराय से, रविभूषण प्रसाद सिन्हा
0: कैसे
1: जी।
0: हैं?
1: हाँ बहुत अच्छे हैं सर, सब ऊंचा प्रोग्राम सुनते हैं टोटल।
0: अच्छा, कौन सा
1: हाँ
0: प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है
1: हमको प्रोग्राम उसमें से चिंतन बहुत अच्छा लगता है।
0: सुबह में? हाँ
1: हाँ चिंतन, हम कहीं रहते हैं चिंतन के टाइम में हम घर चले आते हैं और उसको सुनते हैं,
0: जी
1: और
0: जी
1: उसमें कुछ ऐसी बात है जो बुझाता है कि ये ज्ञान की बात है और
0: जी
1: सुधारने की बात है कि भी अगर 1 महीना का कोई चिंतन अगर सुन ले कि आचरण बदल सकता है।
0: फरमाइश बताइए, क्या गाना सुनेंगे आप?
1: जीवन मृत्यु का अगर सुना दीजिए,
0: जीवन मृत्यु का कौन सा गाना?
1: झिल मिल सितारों का आनंद होगा।
0: ठीक है, हम आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हम शिवम कुमार लालो चकंगारी भागलपुर से बोल रहे हैं।
0: शिवम जी, कैसे हैं आप? क्या करते हैं?
1: हम तो अभी क्लास 9 में पढ़ाई करते हैं
0: पढ़ने के अलावा
1: और ऐसे छोटा मोटा सब काम वाम कर लेते हैं।
0: कौन कौन सा कार्यक्रम सुनते हैं?
1: हेलो फरमाइश। हाँ
0: युवाणी नहीं सुनते हैं?
1: वो भी सुनते हैं,
0: युवाओं के लिए कार्यक्रम युवाणी, बहुत
1: सुनते
0: ज्ञान
1: हैं।
0: की बातें बताई जाती हैं उसमें।
1: हम तो 2015 से लगाने कर रहे हैं, अभी तक लगा नहीं था।
0: अच्छा, आज पहली बार लगा है।
1: हाँ
0: अच्छा, कौन सा गाना सुनेंगे? अपनी फरमाइश बताइए।
1: पक्षी सुर में गाते हैं, भौरा गुनगुनाते हैं।
0: अच्छा, ये गाना सुनेंगे।
1: जी जी
0: अच्छा, तो हम सुनवाते हैं आपको ये गाना।

0: हाँ हेलो।
1: हाँ हेलो फरमाइश, मैं राशि जी बोल
0: फरमाइश।
1: रही हूँ। आप कहाँ से बोल रहे
0: हमें
1: हैं?
0: मेरा नाम कार्तिक कुमार गुप्ता है जी। ओड़ो बस्ती बीघा से बोल रहे हैं, नवादा डिस्ट्रिक्ट से।
1: नवादा डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं।
0: बहुत प्रयासरत थे, बहुत दिन के बाद आज पहली बार हमारा फोन लगा।
1: अच्छा, बहुत प्रयास के बाद लगा आज फोन, पहली बार।
0: जी
1: कैसा
0: जी
1: लग
0: जी
1: रहा है फोन लगा तो?
0: बहुत अच्छा लग रहा है।
1: बताइए अपने बारे में कुछ, क्या करते हैं?
0: हमारा एक मिठाई का छोटा सा दुकान है।
1: बाप, अपने खुद भी बहुत
0: ऐसे
1: मीठा
0: मेरा
1: बोल रहे हैं आप।
0: मेरा प्रसिद्ध जलेबी का दुकान है।
1: उसमें भी जलेबी,
0: जलेबी हमारे यहाँ
1: गरम गरम जलेबी
0: जलेबी
1: का तो जवाब ही नहीं है। क्या सुनेंगे कार्तिक जी?
0: आए मेरे दोस्त लौट के आ गया।

0: हेलो फरमाइश,
1: जी हाँ, हेलो फरमाइश से बोल रहे हैं। मैं राजश्री बोल रही हूँ।
0: मोहम्मद कलीम, लाल पोखर, नाका नंबर 5, दरभंगा, बिहार से मैं बोल रहा हूँ। मैं आकाशवाणी पटना के सभी प्रोग्राम की पाबंदी अजीत चौधरी से सुनते हैं, जैसे हेलो फरमाइश, किसी चर्चा, उर्दू प्रोग्राम वगैरह वगैरह भी सुनते रहते हैं।
1: अच्छा,
0: आकाशवाणी पटना के पुराने श्रोता भी हैं और बहुत इस प्रोग्राम से भी हम लाभ उठाते हैं और सुनते रहते हैं।
1: मोहम्मद कलीम जी, क्या सुनेंगे आप?
0: आज धर्मवीर फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं, मोहम्मद रफी की आवाज में। वो मेरी महबूबा महबूबा तू ये जाना है जा, मेरी मर्जी है मेरा जा।
1: तो हम सुनवाते हैं आपको ये गाना।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

बोल रहे हैं। मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है मैथिली लोकगीत। कलाकार हैं चंद्रावली और रंजना कुमारी झा। पहले सुनिए चंद्रावली से देवी गीत।

बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मैथिली लोकगीत। कलाकार थीं चंद्रावली और रंजना कुमारी झा।

श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आकाशवाणी पटना के खास कार्यक्रम वैज्ञानिकी में, जिसे हम लेकर आते हैं माह के पहले, तीसरे और पांचवें रविवार दोपहर

0: के 12:30 पर। हमारा ये कार्यक्रम ज्ञान, रोमांच और नई सोच का है शानदार मेल। तो चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और सबसे पहले आकाशवाणी के सभी सुधी श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। आज के इस अंक की शुरुआत करेंगे चर्चा से। विषय है विश्व रक्तदान दिवस, जिसे हर वर्ष मनाया जाता है 14 जून को। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित किया गया। वर्ष 2004 में स्थापित इस कार्यक्रम का उद्देश्य सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और रक्तदाताओं को सुरक्षित जीवन रक्षक रक्त के दान करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए आभार व्यक्त करना है। इसी को ध्यान में रखकर इस वर्ष को थीम दिया गया है मानवता की एक बूंद। रक्तदान करें, जीवन बचाएं। यह कार्य हमें याद दिलाता है कि प्रत्येक रक्तदान मात्र एक चिकित्सीय कार्य नहीं है, यह एकजुटता, करुणा और सामूहिक कर्तव्य की एक महान अभिव्यक्ति है। इसलिए यह दिन स्वैच्छिक रक्तदान को सामान्य बनाने पर बल देता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पे कोई भी मरीज रक्त की कमी से अपनी जान ना गवाए। लोगों में आज भी रक्तदान से जुड़े कई मिथ हैं, जिनमें रक्तदान दर्दनाक होता है, रक्तदान करने से कमजोरी होती है, शाकाहारी लोग रक्तदान नहीं कर सकते, या बार बार रक्तदान करना असुरक्षित है। तो आपको बता दूं कि रक्तदान करना बिल्कुल सुरक्षित है, पर रक्तदान से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है। कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिनको करने के बाद अगर डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी संतुष्ट होते हैं तो ही आपका रक्त लिया जा सकता है। तो बिना डरे, बिना हिचके रक्तदान करें और किसी की जिंदगी को बचाने में अपना योगदान दें। और कहते भी हैं रक्तदान महादान, तो इस महादान से ना चूकें और जब भी आपको मौका मिले रक्तदान अवश्य करें। हमारा अगला विषय है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस। इसे हर साल 17 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और सूखे जैसी गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों के बारे में जागरूकता फैलाना तथा बंजर होती भूमि को उपजाऊ बनाने के वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना है। श्रोताओं, भूमि हमारे अस्तित्व का आधार है, जिस पर खाद्य सुरक्षा, जल संरक्षण और जलवायु संतुलन निर्भर करता है। वर्तमान में भूमि के अत्यधिक दोहन और प्राकृतिक संसाधनों के क्षय से न केवल कृषि प्रभावित हो रही है, बल्कि आजीविका छिनने और पलायन जैसी समस्याएं भी बढ़ रही है। तो आवश्यकता है मरुस्थलीकरण रोकने के उपायों पर ध्यान देना। इसके लिए वृक्षारोपण सबसे अधिक कारगर है, क्योंकि पेड़ लगाकर मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। वर्षा जल संचयन और ड्रिंक डिप सिंचाई जैसी तकनीकों का उपयोग कर भी हम मरुस्थलीकरण को रोक सकते हैं। रासायनिक उर्वरकों के बजाय जैविक खेती अपनाना चाहिए, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। अत्यधिक चराई को नियंत्रित करके घास के मैदानों को संरक्षित करना भी आवश्यक है। आज के समय में इस चुनौती से पार पाने के लिए प्रौद्योगिकी सबसे प्रभावी और व्यवहारिक समाधान बनकर उभरी है, जैसे रिमोट सेंसिंग और GIS यानी उपग्रहों के माध्यम से भूमि के स्वास्थ्य, नमी और वनस्पति आवरण की लगातार निगरानी की जाती है। इसके मदद से सूखे की भविष्यवाणी, भूमि क्षरण के हॉट स्पॉट्स की पहचान करना और मिट्टी के कटाव को ट्रैक करना आसान हो गया है। सटीक और स्मार्ट सिंचाई ये पानी की बर्बादी को रोकती है और सीधे पौधों की जड़ों तक पानी पहुंचाती है। वहीं खेतों में लगे नमी सेंसर्स यह तय करते हैं कि कब और कितना पानी देना है। अगर बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की, तो AI मौसम पैटर्न का विश्लेषण करके बता सकता है कि किन क्षेत्रों में भविष्य में सूखा पड़ने की आशंका है, जिससे किसानों को मौसम के अनुसार सही फसल और उर्वरक चुनने में मदद मिलती है, इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। वहीं ड्रोन तकनीक पर्यावरण संरक्षण और भूमि सुधार में गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तकनीक हर क्षेत्र में अपना योगदान भी दे रहा है। ऐसा ही एक क्षेत्र है 3D तकनीक। आइए जानते हैं दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर चंदन कुमार से विषय 3D तकनीक और इसके अनुप्रयोग।
1: आज के दिन में 3D प्रिंटिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है।

मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ। जितनी भी मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रही है। इस चेंज के दौरान जो नए मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी आ रहे हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और डोमिनेटिंग नेम जो है वो 3D प्रिंटिंग है। इसी को हम रिवर्स इंजीनियरिंग या रैपिड प्रोटोटाइपिंग से भी जानते हैं। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इसका दूसरा नाम भी है। इस टेक्नोलॉजी के अंदर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स शेप के प्रोडक्ट को बना सकते हैं। वर्तमान में ये टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है। डिफरेंट टाइप्स के प्रिंटर्स अवेलेबल हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप के प्रिंटर्स पे रिसर्च चल रहा है। इन प्रिंटर्स को और सस्ता और इफेक्टिव बनाया जाए इस पे पूरी दुनिया काम कर रही है। आने वाले भविष्य में 3D प्रिंटर का इस्तेमाल घरों में भी होगा ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि 3D प्रिंटर के मदद से हम कुछ भी बनाने का काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमें ज्वेलरी बनाना है तो हम 3D प्रिंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, गियर बनाना है तो 3D प्रिंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल के विभिन्न कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग के मदद से हो सकता है, एरोस्पेस में खास करके जहां एक दो कंपोनेंट चाहिए, ज़्यादा मास लेवल पे कंपोनेंट नहीं चाहिए, वहां पर इस टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है। आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन सभी जगह इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है उसमें यह 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी काफ़ी कारगर है। यह टेक्नोलॉजी में जो मशीनें बन रही हैं वो इंटीग्रेशन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल के। इसके अंदर मशीनों के अंदर हम मटेरियल्स को 3 डायमेंशन में लेयर बाय लेयर डिपॉजिट करते हैं और फिर आवश्यकता अनुसार फर्दर मैकेनिकल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, जैसे सिंटरिंग, बाइंडिंग एटसेट्रा, टू गिव ए डिजायर्ड शेप। इस मशीन के इस्तेमाल से पहले हमें कंप्यूटेशनल मॉडल चाहिए होता है प्रोडक्ट का। तो जो इस टेक्नोलॉजी में प्री रिक्विजिट है वो है डिजाइन सॉफ्टवेयर का नॉलेज। डिजाइन सॉफ्टवेयर लाइक कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, सॉलिड वर्क्स, कैट या प्रो ई, और इन सब के इस्तेमाल के बाद जो कैड मॉडल है उसके डेटा को हम मशीन को देते हैं और मशीन जो है उस कैड मॉडल से जो डेटा मिल रहा है, कोऑर्डिनेट्स मिल रहा है, उस हिसाब से मटेरियल को डिपॉजिट कर करके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी से जब प्रोडक्ट बनता है तो वेस्टेज बहुत मिनिमाइज हो जाता है। सबसे बड़ा एडवांटेज है वेस्टेज बहुत मिनिमाइज हो जाता है। और जैसा हम जानते हैं जब कैड मॉडल जो बन रहा है तो कितने भी कॉम्प्लेक्स शेप को हम वहाँ पे तैयार कर सकते हैं, अपने मॉडल को मॉडिफाई बहुत तेज़ी से कर सकते हैं, ईजिली मॉडिफाई और एडिट कर सकते हैं। जो कैड मॉडल है वो ट्रांसपोर्ट बहुत आराम से हो सकता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, इंटरनेट के थ्रू यहाँ एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, और फिर प्रिंटर के ऊपर प्रिंट हो जाता है। तो जो 3D प्रिंटर है आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लगभग 80% इनसे ही होने वाला है। वर्तमान में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग, चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, उन सब में 3D प्रिंटिंग का एप्लीकेशन देखा जा रहा है। मेडिकेयर के अंदर भी 3D प्रिंटर का इस्तेमाल हो रहा है। जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो इन मशीनों के थ्रू ऑर्गन्स को बना रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर हमारा कोई पैर जो है वो ख़राब हो जाए, टूट जाए, किसी कारणवश हमें रिप्लेस करना है, तो हम 3D प्रिंटर के मदद से एक्यूरेट शेप और साइज का पैर बना सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। 3D प्रिंटिंग को और भी सशक्त कर रहा है इसके साथ जुड़ा हुआ 3D स्कैनिंग टेक्निक। 3D स्कैनिंग टेक्निक के थ्रू कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को आप स्कैन कर सकते हैं और फिर उसका कैड मॉडल बन जाएगा और उस मॉडल के मदद से 3D प्रिंटिंग मशीन पे प्रोडक्ट बना सकते हैं। किसी भी ह्यूमन बींग को हम 3D स्कैनर से स्कैन करेंगे और उसका स्टैचू बना लेंगे। ये एक सिंपल उदाहरण है। आने वाले समय में मेडिकेयर, मेडिसिन, सिविल इंडस्ट्री, मैकेनिकल इंडस्ट्री सब में ही इस टेक्नोलॉजी का जोरदार इस्तेमाल होने वाला है। भविष्य में देश के अंदर तो ही डिफरेंट इंडस्ट्री इस्तेमाल करेंगे ही। बिहार में जिस तरह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है वहाँ भी इस तरह इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की संभावनाएं काफ़ी बढ़ गई है। जो आने वाला समय है उसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। रोबोटिक्स भी इम्पोर्टेंट

0: रिप्लेस कर रहा है। तो जो भी रोबोट के आर्म्स बनने हैं, ड्रोन के फ्रेम्स बनने हैं, फैंस बनने हैं, वो सारा ही मैन्युफैक्चरिंग में 3D प्रिंटर्स अपना रोल प्ले करेंगे और मास लेवल पे 3D प्रिंटर्स बिकेंगे, बिकना शुरू भी हो गए हैं। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEITY मेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीडैक के कोलकाता के कोलेब्रेशन से एक्सलेंस सेंटर बनाया हुआ है, जहाँ पे हम 3D प्रिंटर पे लड़कों को ट्रेनिंग दे करके इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल बना रहे हैं, ताकि वो यहाँ से निकल कर जाएँ और सीधा ही 3D प्रिंटर पे काम करना शुरू कर दें। उनकी स्किलिंग हम कर रहे हैं 3D प्रिंटर टेक्नोलॉजी पे और फ्यूचर इंडस्ट्रियल लैंडस्केप ऑफ इंडिया की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। एक्सलेंस सेंटर सिर्फ हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, बल्कि हमारे अड़ोस पड़ोस के ITI डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को भी ट्रेनिंग देती है। इस तरह के सेंटर पटना NIT के अंदर भी है और भागलपुर के अंदर भी इन्होंने सीडेक वालों के कोलेब्रेशन से इस्टेब्लिश हुआ है। बिहार की परिदृश्य बहुत तेज़ी से बदल रही है इंडस्ट्री के अंदर। आने वाले समय में इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा और इंडस्ट्री की डिमांड में जो भी प्रोडक्ट्स कंपोनेंट्स चाहिए, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 3D प्रिंटर अपना रोल प्ले करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में ऐसा कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है जहाँ 3D प्रिंटर रोल प्ले नहीं करे। मुझे तो यह भी संभावना दिखती है कि आने वाले समय में 3D प्रिंटर के मदद से मेहंदी का लगाने का काम हो, या सजने सजाने का काम हो, या फिर घर के डेकोरेशन के लिए कुछ प्रोडक्ट बनाना हो, सभी जगह 3D प्रिंटर्स अपना रोल प्ले करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो 3D प्रिंटिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है, जिसके अंदर मशीन्स के द्वारा लेयर बाय लेयर प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, मटेरियल्स को ऐड करते हैं एज पर डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का कैड मॉडल या स्कैन कैड मॉडल, और फिर प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट की खासियत ये होती है कि उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, एक्यूरेसी अच्छी होती है, फिनिशिंग अच्छी होती है, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स शेप के भी प्रोडक्ट इस पे आसानी से बन जाते हैं। बदलते बिहार में इसका रोल काफ़ी है और इस हिसाब से हम लोग ट्रेंड ह्यूमन पावर को भी डेवलप कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पे ट्रेंड हों और वो इस पे काम करें। जितने भी 3D प्रिंटर से जुड़ने वाले हमारे भविष्य में छात्र होंगे, उनको मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं कि वो अच्छी ट्रेनिंग हासिल करें और अच्छा काम करें, अपना व्यवसाय शुरू करें या अच्छे इंडस्ट्री में रोजगार प्राप्त करें।
1: और अब एक जरूरी जानकारी। नशा मुक्ति भारत अभियान सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया एक प्रमुख राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को मादक पदार्थों के सेवन से दूर रखना, उनके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और नशे के शिकार लोगों के लिए उपचार व पुनर्वास की सुविधा प्रदान करना है। नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान है। यह अभियान त्रिआयामी यानी मांग में कमी, आपूर्ति नियंत्रण और चिकित्सा उपचार रणनीति पर काम करता है। इसमें स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, महिला मंडलों और युवाओं को मास्टर स्वयंसेवकों के रूप में प्रशिक्षित करके जमीनी स्तर पर जागरूकता फैलाई जा रही है। आप घर बैठे भी नशा मुक्त भारत अभियान ई प्रतिज्ञा के माध्यम से नशे के खिलाफ राष्ट्रव्यापी शपथ ले सकते हैं। आप अभियान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नशा मुक्ति मित्र पंजीकरण के माध्यम से स्वयं सेवक भी बन सकते हैं। यदि आपको या आपके किसी परिचित को नशे की लत से बाहर आने के लिए परामर्श या उपचार की आवश्यकता है, तो आप नशा मुक्ति हेल्पलाइन नंबर 1-4-4-4-6, एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, 1-4-4-4-6 पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के बारे में, जिसे प्रत्येक वर्ष 30 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी को क्षुद्र ग्रहों के

संभावित खतरों के बारे में जागरूक करना है और अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देना है। दिसंबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने की आधिकारिक घोषणा की। इस दिवस को इसलिए चुना गया क्योंकि 30 जून 1908 को रूस के साइबेरिया में तुंगुस्का घटना हुई थी। यह आधुनिक इतिहास में पृथ्वी पे दर्ज सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह प्रभाव था, जिसे हजारों वर्ग किलोमीटर का जंगल नष्ट हो गया था। यह दिन खगोलविदों को क्षुद्रग्रहों की ट्रैकिंग, निगरानी और भविष्य में किसी भी क्षुद्रग्रह के टकराव की स्थिति में बचाव की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। अंतरिक्ष अन्वेषण में क्षुद्रग्रहों की भूमिका की अगर बात करें तो इससे हमें सौरमंडल की उत्पत्ति, जल और जीवन के स्रोत का पता, अंतरिक्ष खनन, ग्रह रक्षा जैसी बातों का पता चलता है। और अब हम बात करेंगे योग के विज्ञान की, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, जिसे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 21 जून को, यानी आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। श्रोताओं, योग केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह मन, शरीर और आत्मा को जोड़ने का एक प्राचीन विज्ञान है। इस दिन को मनाने का प्रस्ताव 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा था, जिसे 11 दिसंबर 2014 को यूएन द्वारा मंजूरी दी गई। इसे 177 देशों का समर्थन मिला, जो किसी प्रस्ताव के लिए अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 21 जून की तारीख चुनी गई क्योंकि यह दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है, जो ऊर्जा और जीवन शक्ति का प्रतीक है। इस वर्ष इस दिन को विषय दिया गया है स्वस्थ आयु के लिए योग। यह थीम इस बात पर जोर देता है कि योग केवल फिटनेस का माध्यम नहीं, बल्कि बढ़ती उम्र में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य बनाए रखने का प्रभावी तरीका भी है। वैज्ञानिक रूप से अगर बात करें तो योग माइंड बॉडी मेडिसिन के रूप में कार्य करता है। यह श्वसन और ध्यान के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। अनुसंधान बताते हैं कि नियमित अभ्यास से तनाव हार्मोन यानी कॉर्टिसोल कम होता है, हृदय गति में सुधार होता है और मानसिक स्पष्टता व एकाग्रता बढ़ती है। बढ़ती उम्र में स्वस्थ रहने के लिए योग की भूमिका पर विश्व भर में वैज्ञानिक समुदाय का ध्यान तेजी से आकर्षित हो रहा है। पपमेट सेंट्रल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले दशक के दौरान वृद्धावस्था में योग से संबंधित वैज्ञानिक प्रकाशनों में काफी वृद्धि देखी गई है, जहां 2014 में इस विषय पर केवल 183 शोध पत्र प्रकाशित हुए थे, वहीं 2025 तक यह संख्या बढ़कर 1207 प्रकाशनों तक पहुंच गई। साल 2020 में शोध का यह आंकड़ा 500 प्रकाशनों को पार कर गया था और तब से इसमें लगातार निरंतर वृद्धि हो रही है। यह वृद्धि उम्र से जुड़ी शारीरिक और मानसिक चुनौतियों से निपटने में योग की भूमिका के प्रति वैज्ञानिकों की बढ़ती रुचि को दर्शाता है। और आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोलकाता में लोगों के साथ योग किया और योग से जुड़ने का संदेश दिया। तो करें योग, रहे निरोग। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम योग की बात कर रहे हैं और इसमें योग दर्शनकार पतंजलि की बात ना हो तो बात अधूरी सी है। योग दर्शन 6 भारतीय आस्तिक दर्शनों में से एक शास्त्र है। योग सूत्र की रचना 400 ईसा पूर्व महान भारतीय मनीषा महर्षि पतंजलि ने की थी। योग सूत्र में चित्त को एकाग्र करके ईश्वर में लीन करने का विधान है। पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना ही योग है, अर्थात मन को इधर उधर भटकने ना देना, केवल एक ही वस्तु में स्थिर रखना ही योग है। महर्षि पतंजलि का योग दर्शन समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य इन चार पदों या भागों में विभक्त है। समाधि पाद में यह बतलाया गया है कि योग के उद्देश्य और लक्षण क्या हैं और उसका साधन किस प्रकार होता है। साधन पाद में कलेश, कर्म विपाक और कर्म फल आदि का विवेचन है। विभूति पाद में यह बतलाया गया है कि योग के अंग क्या हैं, इसका परिणाम क्या होता है और इसके द्वारा अर्णिमा, अहिमा आदि सिद्धियों की किस प्रकार प्राप्ति होती है। कैवल्य पाद में कैवल्य या मोक्ष का विवेचन है। संक्षेप में योग दर्शन का मत यह है कि मनुष्य को

0: अविज्ञा, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पांच प्रकार के कलेश होते हैं और उसे कर्म के फलों के अनुसार जन्म लेकर आयु व्यतीत करनी पड़ती है तथा भोग भोगना पड़ता है। पतंजलि ने इन सबसे बचने और मोक्ष प्राप्त करने का उपाय योग बतलाया है और कहा है कि क्रमशः योग के अंगों का साधन करते हुए मनुष्य सिद्ध हो जाता है, यानी वो अपने पे कंट्रोल करना सीख लेता है। और अब साइंस अपडेट, जिसमें हम जानेंगे मानवता की एक बहुत बड़ी खोज के बारे में। एक ऐसा अंतरिक्ष यान जिसने सौरमंडल को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। नासा द्वारा 1977 में छोड़े गए जुड़वां प्रॉप्स में से एक वॉयजर 1 इस साल नवंबर में पृथ्वी से 1 लाइट डे की दूरी पर पहुंच जाएगा, यानी वह दूरी जो प्रकाश एक दिन में तय करता है, लगभग 26 अरब किलोमीटर। वॉयजर 1 पहले ही किसी भी मानव निर्मित वस्तु से ज्यादा दूर जा चुका है, पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि नासा अब भी इस प्रोब में खबरें सुन रहा है। 5 साल तक चलने के लिए बनाए गए वॉयजर 1 और 2 लगभग 50 साल बाद भी अंतरिक्ष में काम कर रहे हैं और खगोलविदों को ब्रह्मांड के बारे में अनमोल जानकारी दे रहे हैं। यह सब उस तकनीक पर चल रहा है जो आज के समय में बेहद पुरानी लगती है।
1: राष्ट्रीय क्वांटम मिशन यानी NQM भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसे 2023-24 से 2030-31 के दौरान क्वांटम टेक्नोलॉजी यानी QT में शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दी गई है और इस दौरान कुल परिव्यय लगभग 6,003 करोड़ रुपए है। इससे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास के लिए एक जीवंत पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देकर क्वांटम प्रौद्योगिकियों में भारत को एक अग्रणी वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी मदद से प्रौद्योगिकी आधारित आर्थिक विकास में तेजी लाई जा सके और स्वदेशी क्षमताओं का निर्माण किया जा सके। यह मिशन मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों पर केंद्रित है। क्वांटम कंप्यूटिंग, ये 8 वर्षों के भीतर 50 से 1000 भौतिक क्यूबी वाले मध्यवर्ती पैमाने के क्वांटम कंप्यूटरों का विकास है। दूसरा, क्वांटम संचार। भारत में 2000 किलोमीटर से अधिक के उपग्रह आधारित सुरक्षित संचार और लंबी दूरी के अंतः शहरी क्वांटम कुंजी वितरण की स्थापना। तीसरा, क्वांटम सेंसिंग एवं मेट्रोलॉजी। नेविगेशन और संचार में अनुप्रयोगों के लिए उच्च संवेदनशीलता वाले मैग्नेटोमीटर और सटीक परमाणु घड़ियों का निर्माण। अगला, क्वांटम सामग्री एवं उपकरण। स्वदेशी हार्डवेयर विकास का समर्थन करने के लिए क्वांटम सामग्री के लिए विनिर्माण क्षमताओं में उन्नति। यह मिशन संपूर्ण भारत में प्रमुख संस्थानों में आयोजित 4 थीमेटिक हब के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। यह डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसी व्यापक राष्ट्रीय पहलों के साथ संरेखित है, जिसमें सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में सामरिक अनुप्रयोगों पर बल दिया गया है। इसके तहत 23 शैक्षणिक संस्थानों को क्वांटम शिक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
0: और श्रोताओं, क्या आपने नंदिनी हरिनाथ का नाम सुना है? आप एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं जो अपने जीवन के सबसे खास दिनों में से एक दिन को याद करते हुए बताती हैं कि उस दिन वो लाल और नीले रंग की चमकदार रेशमी साड़ी पहनकर दफ्तर पहुंची थी। अब वही साड़ी अमेरिका के वॉशिंगटन स्थित स्मिथसोनियन के नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम में खास जगह पर प्रदर्शित की गई है। नंदिनी भारत के पहले मंगल अभियान मंगलयान में डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर थीं। नंदिनी को जो साड़ी अपने पिता से गिफ्ट में मिली थी वो उनके लिए बेहद खास है। इन्हीं में से किसी साड़ी को वो अक्सर किसी बड़े अवसर या भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने के समय पहनती रही हैं और ये भारत के लिए सच में बहुत ही खुशी और गर्व की बात है। और अब वक्त है सवाल हमारे जवाब आपके का, तो बिना देर किए आज के 2 सवाल पूछने से पहले हम आपको पिछले अंक में पूछे गए दोनों सवालों के सही जवाब बताएंगे और उसके बाद पूछेंगे आज के 2 सवाल। पिछले अंक में हमने आपसे पूछा था विश्व दुग्ध दिवस यानी विश्व दूध दिवस कब

मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है विश्व दूध दिवस 1 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और दूसरा प्रश्न था भारत के पारिस्थितिकी के जनक यानी फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है भारत के पारिस्थितिकी के जनक यानी फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया के नाम से डॉक्टर रामदेव मिश्रा को जाना जाता है। और अब आज के दो सवाल बहुत ही ध्यान से सुने, नोट भी कर लें। पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाते हैं? सवाल एक बार फिर से, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाते हैं? और दूसरा प्रश्न, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? सवाल को ध्यान से सुने, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रोताओं, इन दोनों प्रश्नों के जवाब आप हमें चाहे तो पत्राचार के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से लिख भेज सकते हैं। हमें रहेगा इंतजार आपके सही जवाब का, साथ ही साथ आपकी प्रतिक्रियाओं का। तो आप नोट करें हमारा पत्राचार का पता, कार्यक्रम वैज्ञानिकी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी पटना 800-001। हमारा ईमेल पता है feedback@gmail.com। और चलने से पहले एक आवश्यक जानकारी, श्रोताओं किसी भी तरह की साइबर क्राइम से संबंधित जानकारी हो या कोई शिकायत हो, आप भारत सरकार के सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता पहल अर्थात ISEA के तहत व्हाट्सएप नंबर 9490771800 या फिर टोल फ्री नंबर 1930 पर संदेशों का आदान प्रदान कर साइबर अपराध से संबंधित जानकारी को हासिल कर सकते हैं या शिकायत कर सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये अंक यही समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार के साथ मुझे यानी अल्पी को अनुमति दीजिए, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के तीन पोत दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए

0: विशेष कदम उठाए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योग अभ्यास में भाग लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने अपनी पत्नी के साथ बीच रोड पर एक कार्यक्रम में योग किया। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ करेंगे। श्रीलंका के डांबुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 41 ओवर में 5 विकेट पर 288 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, लीजिए सुनिए कार्यक्रम संवेदना शिक्षा।

0: अच्छा बच्चों, सब लोग आ गए हैं ना?
1: हाँ, आ गए हैं।
0: आप किस स्कूल में पढ़ते?
1: मारुति संगीता पाठशाला।
0: मारुति संगीत पाठशाला के बच्चे हैं आप लोग?
1: हाँ।
0: तो आज हम एक नया गाना सिखाएंगे।
1: हाँ, सिखाएंगे।
0: किसने लिखा है मालूम है? दोड्ड रंगे गौड़ा। किसने लिखा है ये गाना?
1: दोड्ड रंगे गौड़ा।
0: तो आप गाना सीखने के लिए तैयार हैं?
1: हाँ, तैयार है।
0: इस गाने का शीर्षक है कडल हक्कीगळु। क्या है?
1: कडल हक्कीगळु।
0: तो पहले क्या करना, इस गाने को लिख लेना है ना?
1: हाँ।
0: तो बाद में हम गा सकते हैं, नहीं तो नहीं गा सकते, है ना?
1: हाँ, हाँ।
0: तो पहले क्या करना, पेन पेंसिल पेपर सब उठा के अपने आगे रख लेना है।
1: हाँ।
0: रख लिया है?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो मैं डिक्टेट करती हूँ, आप हाँ। सब लिख लीजिए।
1: हाँ? हाँ।
0: हाडु तिहवु हारु तिहवु
1: आडु तिहवु हारु तिहवु
0: कडल करेय खग कुला
1: कडल करेय खग कुला
0: यनितो मुगिला
1: यनितो मुगिला उद्द अगला जी की दनितु
0: बांदड़ा
1: बांदड़ा।
0: अच्छा, तो एक पहला स्टैंजा है।
1: हाँ?
0: हाँ। आगे का स्टैंजा है बान लोक नगुव नाक
1: बान लोक नगुव नाक
0: हारो हक्की पालीगे
1: हारो हक्की पालीगे।

0: कर्नाटक संगीत में ये चक्रवाक राग होता है और हिंदुस्तानी में इस राग को कहते हैं आहिर भैरव। इसका ताल है कर्नाटक संगीत में चतुरस्र जाति एक ताल तीसर नड़े। इस ताल को हिंदुस्तानी में कहते हैं दादरा। तो अब भैया विश्वनाथ नाकुट जी भी यहाँ आए हैं, वे तबला बजाने के लिए तैयार होके बैठे हैं। तबला बजा के दिखाते हैं ना।
1: धा दिन्ना
0: अब आप लोगों को मालूम हो गया ना यह गाना कौन सी राग पर आधारित है। अब दीदी आपको सिखाती है ये गाना।

दूसरा अंतरा का धुन कैसा है ये मालूम हो गया, मगर जो स्वर आते हैं वो नहीं मालूम हुआ है ना। तो गीता दीदी स्वर को भी सिखाती हैं।

अब ये आखिर का अंतर जो है ना वो पहली अंतर था ना, बान लोक नगुना का, उसी के जैसे ही है। अच्छा तो गाते हैं।

0: तो बच्चों, अब इस पूरे गाने की धुन आपको याद होगी, है ना? अब घर पे जाके खूब प्रैक्टिस करना, तो आप सब लोगों को ये गाना बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी, करेंगे ना? अच्छा बच्चों, तो नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संवेद गान शिक्षा।

0: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम। थीम है संस्कृति।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: 12 वर्षों के कार्यकाल में वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी को भागीदार बनाकर राष्ट्र विकास का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसके तहत उन्होंने जो एक लक्ष्य रखा है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का भारत को, उसमें उन्होंने चार जो स्तंभ है उनकी पहचान की है, जिसे ज्ञान भी कहा जाता है, गरीब, युवा और अन्नदाता यानी कि हमारे किसान और नारियां। तो इन चारों जो वर्ग है उनके सशक्तिकरण पर सरकार ने लगातार बल दिया है। अगर हम हर बजट में देखें, जो भी प्रमुख संबोधन होता है प्रधानमंत्री जी का, उसमें इन वर्गों को सशक्त करने की बात की जाती है। और आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सर्जना शर्मा जी और नीलू रंजन जी जुड़े हैं। इनसे हम समझना चाहेंगे कि इन 12 वर्षों में जो ये चार वर्ग है इनको सशक्त करके कैसे जो देश को समृद्ध करने का सपना है उसको साकार करने की तरफ हम बढ़े हैं।

0: दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में।
1: थैंक यू सोने जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद
0: सरजना जी। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, लेडीज फर्स्ट कहा जाता है, सो आपसे मैं महिलाओं की ही बात करना चाहूंगी। जिस तरह का विकास महिलाओं का हुआ है और जो सरकार का मूल मंत्र रहा है कि विमेन्स डेवलपमेंट से आगे बढ़कर हमें विमेन्स लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास जो है उसकी ओर बढ़ना है, हमें बताएं कि इन 12 वर्षों में कौन से ऐसे परिवर्तनकारी रिफॉर्म्स हैं जो महिलाओं के लिए लाए गए हैं जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं।
1: सोनू जी देखिए, महिला जो है वो कोई भी परिवार है, परिवार की धुरी महिला है, और जो एक अच्छा परिवार है वो एक अच्छे समाज का, और एक अच्छा समाज अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। अगर महिला सशक्त है, अगर महिला समृद्ध, मेरा मतलब खाली पैसे से नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसको समावेशी विकास कहते हैं, अगर महिला उस तरह की है तो वो पूरे अपने परिवार को बढ़िया करेगी, समाज को अच्छा बनाएगी और फिर राष्ट्र को। तो इसका मतलब धुरी जो है परिवार से लेकर राष्ट्र तक महिला के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता। भले ही आज से कुछ साल पहले तक महिलाएं बहुत घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन घर में रहते हुए भी जो उनकी अर्थव्यवस्था है, जो उनका मनी मैनेजमेंट है, जो उनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, पुरुषों को तो शायद बहुत चीजें घर की पता भी नहीं होती जितना वो खुद सब मैनेज कर लेती हैं। आपने देखा होगा कि कोविड में पूरी दुनिया की इकोनॉमी ध्वस्त हुई, लेकिन भारतीय महिलाओं को जिस तरह की ट्रेनिंग है पैसे को जोड़ने की और आत्मनिर्भरता का जो उनका मूल मंत्र है, तो उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही, क्योंकि सेविंग की बहुत आदत है हमारी महिलाओं को। तो मोदी जी ने जो ये सोचा, तो उसमें देखिए दो तीन चीजें तो मैं कहूंगी कि जो सबसे अच्छी रही, एक है उज्ज्वला योजना और एक है हर घर नल हर घर जल। तो ये जो दो चीजें सुलभ हुई है महिलाओं को, उससे उनकी जो फिजिकल लेबर है वो कम हुई है, उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई है। आपको लकड़ियां बिनने जंगल में नहीं जाना और धुएं में काम नहीं करना। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको सब्सिडाइज सिलेंडर मिल रहा है, तो आप सोचिए उसकी कितनी मेहनत कम हुई। खाना अच्छा बनेगा, वो भी खुद भी रिलैक्स रहेगी। दूसरा है, अगर हम देखें कि हमारे भारत में बहुत सी ऐसी जगहें थी जहां पे महिलाओं की आधे से ज्यादा एनर्जी पानी लाने में भी लगती थी
0: जी,
1: तो ये जल मंत्रालय ने जो काम किया है, हर घर नल जो पहुंचाया है, हर घर जल पहुंचाया है, उसका भी बहुत लाभ हुआ है। फिर आपने इनको कहा है कि जरूरी नहीं कि आप 10 से 5 की जॉब करने जाओ, अगर आपके घर के आसपास या अपने घर में बैठे आप क्रोशिया भी बुनते हैं, आप स्वेटर भी बुनते हैं, आपको सिलाई भी आती है, या आपके आसपास जैसे कि मखाना की खेती में आपने देखा होगा मशरूम खेती, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो लखपति दीदी बनी है उन्ही चीजों से। जरूरी नहीं कि आपके पास बीए एमए की डिग्री हो, ऐसा भी नहीं है। तो जो इस तरह की योजनाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए जिसमें कि लगभग 91 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है और 10 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं
0: जी,
1: तो इस तरह की जो योजना। और दूसरा मुद्रा योजना जो है कि अगर अपने घर में मुझे कोई काम शुरू करना है, मुझे लगा कि मुझे एक सिलाई स्कूल खोलना है, मुझे लगा कि मुझे क्रोशिया सेंटर बनाना है अपने घर में, मुझे लगा कि मेरे पास जो स्किल है जो मुझे किसी स्कूल से नहीं अपनी फैमिली से ट्रेडिशनल मिली है, अगर मैं उसी को आगे विकसित कर, कौशल हुनर जो कि परंपरागत हमारे यहाँ आपने देखा कि कोई साड़ी बनाता है तो कोई लकड़ी का सामान बनाता है, तरह तरह की चीजें हैं, मतलब गिनाना मुश्किल है क्योंकि भारत में इतनी विविधता है। अब कुछ तो महिलाएं जैसे हल्दी उगा रही है, कोई मशरूम उगा रहे हैं, तो उनको जो लोन मिल रहा है सस्ती किश्तों पर, मतलब कि उनको बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी, और मुद्रा लोन जो मिल रहा है इससे भी उनका जो लाइफ है वो बहुत आसान हुई है। दूसरा है शिक्षा को लेकर भी बहुत काम हुए हैं, केजी टू पीजी जो है कि आप केजी से लेके पीजी तक बच्चियां जो हैं वो पढ़ेंगी। और फिर ये है कि सुरक्षा का वातावरण, आप देखेंगे कि कई राज्यों में तो ऐसा था कि 6 बजे के बाद लड़कियां घर से नहीं निकलती। उत्तर प्रदेश का मैं आपको एक उदाहरण दूं जैसे कि, तो अब देखिए वहां बेखौफ लड़कियां रात को 2-2.5 बजे तक भी आराम से घूम सकती हैं क्योंकि सुरक्षा इतनी ज्यादा। जब तक माँ और बेटी को नहीं लगेगा कि वो सुरक्षित है तो बेटी बाहर काम करने उसको कोई जाने नहीं देगा।
0: बहुत इम्पोर्टेंट ये सशक्तिकरण का,
1: ये बहुत सुरक्षा की भावना, वो जो इस सरकार ने सुरक्षा की भावना दी, महिला थाने खोले, महिला हेल्पलाइन खोली कि आप तुरंत फोन कीजिए, आपको मदद मिलेगी। और एक और देखिए कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव में डबल किया है, 3 महीने से 6 महीने किया। ये भी एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण है महिला का।
0: बिल्कुल।
1: मातृत्व सुरक्षा योजना है, शिशु योजना है, इन सब योजनाओं ने महिलाओं के जीवन को आसान किया है, सुविधा दी है। मैं बात कर रही हूँ उन महिलाओं की जो कि अभी तक बहुत बाहर निकल के काम नहीं करते। अब हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो पढ़ लिख के

0: आगे, जैसे कि आपने सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए खोल दिया गया, जैसे कि एनडीए खोल दिया गया लड़कियों के
1: जी
0: लिए, लड़कियां फाइटर पायलट हैं, तो ये जो इस तरह की चीजें भी आई है ना, उससे पूरे देश में बाकी लड़कियों को भी एक प्रेरणा मिली। 26 जनवरी परेड का आपने जो स्वरूप बदलते हुए देखा होगा, आप
1: जी
0: देखिए
1: बिल्कुल
0: कैसे स्वरूप
1: बिल्कुल
0: बदला है। पहले आप देखिए किसी भी कंटिजेंट में लेडी नहीं लीड करती थी,
1: एकदम गर्व से सर ऊंचा हो
0: अब
1: जाता
0: आप
1: है।
0: देखिए अब 26 जनवरी परेड का रूप बदल गया है। तो मुझे लगता है बहुत सारे, और इसका सबका कारण मैं एक समझती हूँ, क्योंकि इस सरकार का जो है अंत्योदय, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, शुरू से ही भाजपा का ये मूल नियम रहा है अंत्योदय, अंत से उदय करना है। तो ये बहुत सी योजनाएं जो है, जो सबसे वंचित वर्ग है वहां से शुरू होती हैं, और जैसे कि जो अफोर्ड कर सकते हैं एलपीजी, तो उनको अब आप देखिए सबका हटा दिया, हमने भी सरेंडर किया,
1: बिल्कुल,
0: और वो उन वर्गों तक पहुंचा जिनको उसकी आवश्यकता थी।
1: सो बिल्कुल टारगेटेड जो है,
0: जी
1: फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन
0: जी
1: भी हुई है रिफॉर्म्स की। नीलू जी, अगर हम एक बहुत बड़ी जो शक्ति मानी जाती है भारत की, कि भारत एक युवा देश है, यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, सो जिस तरह से जो युवा पीढ़ी है उस पर जो ध्यान दिया है सरकार ने, और जिस तरह से उनका सशक्तिकरण हुआ है, आप किन पहलुओं को इन 12 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? अगर आप टॉप 2-3 हमें बताएं कि कौन सी आपको पॉलिसी डिसीजन जो है वो सबसे आपको लगता है कि परिवर्तनकारी सिद्ध हुए हैं या हो सकते हैं।
2: देखिए, सबसे बड़ी बात है युवाओं के लिए कि युवाओं में अपनी ऊर्जा बहुत होती है, शक्ति उनकी अपनी बहुत है
1: जी।
2: उस ऊर्जा को अवसर देने की जरूरत है, उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको
1: जी।
2: ये पहली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और समस्या ये थी कि युवाओं को अवसर नहीं मिलता था, और वो जीवन के हर फील्ड में, चाहे वो अर्थव्यवस्था के किसी भी फील्ड में चले जाएं, शिक्षा में चले जाएं, खेल में चले जाएं, हर फील्ड में वो काम कर सकते हैं, उनकी एनर्जी है, और सबके अपने अपनी खासियत है। तो जो उनकी रुचि है, जो वो कर सकते हैं, उसमें अवसर कैसे दिए जाएं, तो मैं ये कह सकता हूं कि युवाओं के लिए अवसर की ऐसी अनंत संभावनाओं के दरवाजे खुल गए हैं कि हर युवा जो है वो अपने अपने कौशल के विकास में, अपने अपने क्षेत्र में जिसमें करना चाहता है वो कर रहा है। और इसलिए आप देखें, खेल हो, शिक्षा हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे वो साइंटिफिक चीजें डेवलपमेंट हो, नई टेक्नोलॉजी हो, जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, आईटी से रिलेटेड है, आप युवाओं को देखेंगे पूरी दुनिया में छा रहे हैं भारत के युवा। इसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है जो देखने की बात है कि जैसे युवाओं के लिए अवसर की जब मैं बात करता हूं, तो पहले मेडिकल की सीटें जो थी, अगर एमबीबीएस के देख लें तो 55-56 हजार की होती थी, 140 करोड़ के देश में केवल 56 हजार एमबीबीएस आप बना रहे थे, आज वो 1,25,000 की सीटें हो गई हैं, डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट थी वो लगभग 30-32 हजार के आसपास थी, वो लगभग 65-70 हजार हो गई, डबल से ज्यादा वहां भी हुई हैं। ये यूथ पहले बाहर जाता था, यूक्रेन से कर रहा है, चीन से कर रहा है, नेपाल से कर रहा है, वहां जो यूक्रेन की आपदा में कैसे फंस गए थे सब देख रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। वैसे यूनिवर्सिटीज जो है, मेडिकल कॉलेजों की संख्या जो है, सीटें बढ़ी है, तो मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है, वो लगभग 380 के आसपास थी आजादी के बाद, 2014 तक खोली गई थी, वो लगभग 750 के आसपास हो गई है। 50-60 और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जो सिटी जो है एमबीबीएस की वो 50,000 और बढ़ने वाली है। ये युवाओं को अवसर दिया देश के भीतर कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपके लिए है। ऐसे यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आप देखते थे कितना मारामारी है, एडमिशन नहीं मिलता था, लोग जो है वो ओपन स्कूलिंग करते थे, ओपन स्कूलिंग अभी भी खुला है और वो एक बढ़िया विकल्प है कि उसमें हम कैसे कर सकते हैं, क्या हम और कोई काम करते हुए भी हम ओपन स्कूलिंग से कोई शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज की संख्या लगभग 800 से बढ़ करके और 1300-1400 हो गई है, वो डबल हो गई है, ये तो उन्हीं के लिए हुआ है। और खेल में प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार ने पैसे दिए हैं, जो स्कीमें लाई हैं, जो युवा खेल जो प्रतिभाएं हैं उनको कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आप देखें कि ओलंपिक खेल हो, चाहे एशियाड खेल हो, चाहे कोई भी खेल हो, जो भारतीय युवा, जो कहा जाता था कि खेलों के लिए भारत में युवाओं का जो शारीरिक संरचना है वो ऐसे खेलों में कंपटीशन के लिए नहीं है, वो कहीं ना कहीं कम है, वो गलत थी बात, वो कहा जाता था।
1: और ये अपॉर्चुनिटी दी खेलो इंडिया जैसे आयोजनों के,
2: खेलो इंडिया, वही मैं कह रहा हूँ, खेलो इंडिया आयोजन वो तो एक आयोजन है, लेकिन आप जो साई के सेंटर्स हैं, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सेंटर्स हैं, वहां पे युवाओं पे जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उनपे जो खर्च हो रहे हैं, इंटरनेशनल कोचेज अगर युवा को अच्छा कर रहा है, ओलंपिक के और एशियाड के लायक कर रहा हो, तो जर्मनी हो चाहे कहीं भी, सरकार के खर्चे पे ट्रेनिंग हो रही है। तो ये एक बड़ा अवसर जो है युवाओं के लिए है। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि सारे युवाओं को जो है वो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, सारे युवा इस तरफ नहीं जाएंगे, तो वोकेशनल स्टडीज का जो

0: है एक बड़ा उन्होंने किया है ट्रेनिंग, और जो आईटीआई हमारा जो ट्रेनिंग का जो था उसका मॉड्यूल को पूरा चेंज किया है। पहले युवाओं को होता था कि वहीं पे है आईटीआई करो, जो कोर्सेज है वही करो, वो सब पुराने कोर्सेज हो गए हैं। अब उसको रीडिजाइन किया जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर आईटीआई है तो उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से उद्योग हैं, वहां कहाँ प्रशिक्षित युवाओं की मांग है, तो ऐसे वहां पे उसी लेवल पे उनको ट्रेनिंग दें, वहां फैसिलिटीज दें। अब कितने ट्रेनर हैं, किस किस फील्ड में हैं, ये नहीं पता था। अब सरकार एक नया बना रही है डायरेक्टरी जिसमें कि किस फील्ड के कितने अच्छे ट्रेनर हमारे कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ गैप है, कहाँ क्या डिमांड है, दे सकते हैं। तो एक बड़ा चीज है। और सबसे बड़ी चीज जो है, वो सबसे बड़ी चीज जो सबसे ऊपर जाती है, वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। वो तो बिल्कुल विशुद्ध युवाओं के लिए है।
1: और बदलते परिवेश के अनुसार जो जरूरतें हैं उसके अनुकूल है।
0: उसने जो 10+2+3+2 का पूरा शिक्षा मॉडल था, उसका शिकंजे से युवाओं को मुक्त कर दिया है कि आपको 12th करना है, फिर 3 साल जो है आपको बीए करना है, फिर 2 साल पीजी करना है, फिर एमफिल करना है, ये करना है, उसके बाद कम्पिटेटिव एग्जाम देना है। अगर बीच में आपकी पढ़ाई छूट गई तो छूट गई, आपकी सारी मेहनत खत्म। अब उसमें बिल्कुल फ्लेक्सी कर दिया है कि क्रेडिट सिस्टम होगा, आपने 1 साल पढ़ा, 1 साल के बाद आपकी कोई जरूरत पड़ गई, घर में कोई समस्या हो गई, कुछ कहीं नौकरी आपको करनी पड़ रही है, या आपको कहीं कोई अच्छी नौकरी मिल गई, आप वहां चले गए, आपको लगा कि वो पढ़ लेते तो मेरा हो जाता, तो जो आपने 1 साल पढ़ा हो, 2 साल पढ़ा हो, वो आपके क्रेडिट में है, वो आप कर सकते हैं। जो सिलेबस चुनने में जो था, जो समस्याएं थी कि बच्चा क्या करेगा, साइंस लेगा तो बायोलॉजी लेगा, केमिस्ट्री लेगा, जब वो कहा होता मैथमेटिक्स लेगा, फिजिक्स लेगा, मतलब एक था कि आप सेट हैं उसी में हैं। अब कोई बच्चा जो है वो हिस्ट्री में पढ़ना चाहता है और मैथमेटिक्स में अच्छा हो, वो क्यों नहीं ले?
1: तो युवाओं के लिए बहुत सारे जो
0: मतलब
1: विकल्प
0: जितने
1: खोल दिए
0: शिकंजे थे, जो
1: जी।
0: अनंत संभावनाएं, जो अवसर उसके युवाओं के लिए है, वो अवसर के दरवाजे सरकार ने खोले हैं
1: बिल्कुल
0: कि आप जो करना चाहे करो। युवाओं में इतनी ऊर्जा है कि वो बाकी सब कुछ कर लेंगे, उनको करने के लिए आपको कुछ सपोर्ट की जरूरत नहीं है, केवल अवसर देने की जरूरत है। और पिछले 12 सालों में वो अवसर मैंने इतने गिनाए आपको कि जो जो करना चाहे, जहां करना चाहे, इस देश में अवसर है, आपको देश छोड़ के जाने की जरूरत
1: तो
0: नहीं है।
1: सरकार का जो ये एक सोच है कि आप जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बने, आत्मनिर्भर उद्यमी, जिस तरह से अगर हम स्टार्टअप्स की अगर हम जब स्टेटिस्टिक्स देखते हैं कि 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में, और अब वो बढ़कर जो संख्या है 2.2 लाख हो गई है, आपको लगता है कि ये जो एक इनोवेशन की स्पिरिट, एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट, इसको बहुत बढ़ावा दिया गया है इन 12 वर्षों में?
0: बिल्कुल निश्चित रूप से। स्टार्टअप्स जब शुरू शुरू आया था तो लोग कह रहे थे कि भाई युवाओं को नौकरी चाहिए, स्टार्टअप में क्या कर लेंगे, कैसे कर लेंगे। अब आप देखें कि उसमें जो स्टार्टअप्स हैं वो अब बड़े बड़े बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के रूप में हो रहे हैं। 8,000-10,000 करोड़ का उनका टर्नओवर वो तत्काल हो रहा है। 150-200 स्टार्टअप ऐसे हो गए हैं जिनका टर्नओवर जो आप देखें तो अच्छी अच्छी कंपनियों से बेहतर है। वो एक अवसर। और स्टार्टअप में सरकार का जो मदद है
1: स्टार्टअप इंडिया द्वारा,
0: कि उसमें आपको ये टैक्स में छूट है, और इसमें आपके जो पुराने इंस्टीट्यूट है, IIT है, IIM, उन्होंने जिस ढंग से उनको आगे बढ़ाया है, वहां उनके टीचर जो मेंटोर है, वहां पे एक इकोसिस्टम बन रहा है, वो चल रहा है। और अगर स्टार्टअप में देखेंगे तो टेक के क्षेत्र में जो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में ज्यादातर वो काम कर रहे हैं, बाकी तो नए नए जो वेंचर्स उसमें भी आ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि पेटेंट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी। यानी कि जो हमारे यूथ जो कहीं रिसर्च में लगे हुए हैं, कुछ नई चीज ढूंढ रहे हैं, पहले पेटेंट नहीं होता था, पूरा पेटेंट के जो रजिस्ट्री, जो पूरे मैकेनिज्म है वो चेंज किया जा रहा है। लाखों यूथ जो हैं वो अब नए नए पेटेंट के लिए हर साल लाखों अप्लाई हो रहे हैं, और पेटेंट मिल रहा है। पेटेंट मिलने का मतलब यह है कि बिल्कुल नई चीज, नए इनोवेशन करके आप दे रहे हैं। तो ये हर क्षेत्र में यूथ के लिए उन्होंने, चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, अगर आप रोजगार देने वाला स्टार्टअप जैसे अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो वो अवसर भी है जो पहले नहीं मिलता था।
1: बिल्कुल। और अगर हम तीसरे स्तंभ की बात करें किसानों की, तो किसानों के सशक्तिकरण का रंजन जी जो एक क्रांतिकारी हमने बदलाव देखा है प्रोडक्शन फिगर्स में, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम टॉप 10 एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड में अब शामिल हो गए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, और जिस तरह से नई मिनिस्ट्रीज का गठन हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, एलाइड सेक्टर्स के लिए एक अलग मिनिस्ट्री, किसानों के सशक्तिकरण को आप कैसे देखते हैं पिछले 12 सालों में, और इसका आधुनिकीकरण जो हुआ है उसके प्रमुख पहलू आप क्या मानते हैं?
0: देखिए, उसमें पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब खेती में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक तो होता है इनपुट कॉस्ट कि आप जब खेती करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या उसमें लगाना पड़े?

0: और अगर खराब हो गई फसल, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया, आपदा आ गई, तो आपका क्या होगा? पहले जो समस्या थी कि इनपुट कॉस्ट की तुलना में जो हम मिनिमम जो गारंटी सरकार देती भी थी कि हम खरीदेंगे, तो कुछ फसलों पे थी, चावल था, गेहूं था, एक दो फसलें और थी, वो नहीं थी कि ये हम आपको खरीदेंगे। अगर आप देखेंगे 12 सालों में तो जो उर्वरक है, जो फर्टिलाइजर है, कीमत उसकी लगभग सेम है, 12 साल में नहीं बढ़ा है, सरकार को सब्सिडी बढ़ रही है, लेकिन वो लगभग 250-300 रुपए की बोरी जो 45 किलो की जो यूरिया की थी आज भी वही है।
1: बहुत बड़ा समर्थन है।
0: इसका मतलब कि जो कॉस्ट आपका है वो उर्वरक वाला वो नहीं बढ़ा है, वो सेम है। दूसरा कि पूरे देश में बिजली जो है वो 24 घंटे उपलब्ध है लगभग, मतलब ग्रामीण इलाकों में कहते हैं कि एवरेज 22-23 घंटे बिजली आज है, पहले नहीं होती या और किसान अधिकांश जो राज्य हैं उसमें किसानों की बिजली फ्री है, तो सिंचाई के लिए आपको अलग से कोई कॉस्ट नहीं आ रहा है, और आपके खाद्यान्न की कीमत अगर आप देखेंगे तो कुछ बढ़ा ही है। दूसरी इससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार जो सहायता दे रही है 2,000 रुपए का,
1: 6,000 प्रति वर्ष, 3 इंस्टॉलमेंट
0: में, 2,000 के, 3 इंस्टॉलमेंट में, 6,000 के हैं, तो वो उसका अगर आप समय देखेंगे कि वो उस वक्त दिया जाता है, और छोटे किसान, आपके अधिकांश जो देश में किसान हैं 12 करोड़ छोटे किसान हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, जिस वक्त उनको बुआई करनी होती है, जो खेत लगाना होता है, कुछ करना हो तो बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उनके लिए उस वक्त उनको पैसे दिए जाते हैं, वो मदद उनको दी जा रही है, किसान क्रेडिट कार्ड उनको दिया जा रहा है कि लाख रुपए तक अगर आपका खर्च कोई करना हो तो बहुत सस्ते में, कुछ नहीं देना है आपको, आप उसमें खर्च कर सकते हैं। जो फिशरीज का जो अलग से मिनिस्ट्री बना करके उनका जो ब्लू रिवॉल्यूशन जो उनका किया है और जो एक्सपोर्ट बढ़ा है, वो आप देखिए हॉर्टिकल्चर में जो भारत का एक्सपोर्ट जो मेनली जो आपको दिख रहा है एक्सपोर्ट जो कृषि क्षेत्र में, वो उसमें दिख रहा है, क्योंकि उसमें 10-12% का ग्रोथ है, वो एक बड़ी ताकत के रूप में भारत उभर रहा है। तो किसान एज ए होल कह लें आप, बड़ा परिवर्तन हुआ है, और किसान अगर आप कहते हैं ना सिर्फ, तो किसान नहीं होता है सिर्फ, उसी घर में महिलाएं भी, महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहा है,
1: जैसा अभी सर्जना जी बता रही हैं,
0: तो वो भी तो वही बन रही है, जो 10 करोड़ महिलाएं हैं वो भी तो किसान परिवारों से ही आती है, वो किसान परिवार सशक्त हो रहा है, जो मार्केट का डेवलपमेंट, जो आपकी सड़कें बन रही हैं, तो उन सड़कों के बनने से किसान का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक आसानी से पहुंच रहा है, और आपने आज 20-25 फसलें ऐसी हो गई हैं जिनके गारंटी सरकार दे रही है खरीदने के लिए कि हम उसको खरीदेंगे, है ना, आप उपजाओ और गारंटी है इस कीमत पे हम करेंगे। कई राज्य सरकारों ने इधर भावांतरण योजना शुरू कर दी है कि अगर आपको मार्केट से कम कीमत में आपको बेचना पड़ रहा है, मार्केट नहीं बेच रहे हैं, तो वो उस कीमत का पैसा हम आपको देंगे, यानी किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो अन्नदाता है उसके लिए उन्होंने खोला है, सारी चीजें व्यवस्था हो रही है, जो मतलब जो जो सीधे से किसान से नहीं जुड़ा है, किसान से लगता है कि जुड़ा हुआ नहीं है। अब मान लिया कि जो सरोवर बनाने का था कि जीर्णोद्धार करना है, तमाम तालाबों का सब भर गए थे, सब कुछ है, वो किसका, पानी का लेवल बढ़ रहा है, वहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, किसको जा रहा है फायदा, ये कई चीजें सीधे उनसे जुड़ी हुई नहीं है। जो ग्रामीण इलाकों में जो गरीब परिवार हैं उनका जो फ्री में इलाज जो 5 लाख का हो रहा है, उसमें बहुत सारे परिवार ऐसे गरीब हैं जो आयुष्मान भारत योजना के तहत, वो किसान परिवार से आते हैं, जो 55-60 करोड़ लोग हैं, वो कहां से 55-60 करोड़ लोग हैं, बहुत सारे वहां से भी हैं। इसीलिए किसानों पे जो इनपुट कॉस्ट है, उनके जो जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं, जो खर्चे हैं, सरकार ने उसे कम किया है, उनकी उत्पादकता बढ़ाई है, और अब कोऑपरेशन मिनिस्ट्री अलग से बना करके उनका कैसे वो जो फार्मर का जो प्राथमिक जो है वो संघ बने, कोऑपरेटिव बने, उसकी 1 लाख के आसपास हो गया है, उसमें है कि 2-3 लाख कोऑपरेटिव बनाने हैं, कोऑपरेटिव बना करके सिर्फ कोऑपरेटिव नहीं करना है, इंटरनेशनल कैसे उनका ऑर्गेनिक खेती करें, कैसे वो विदेश में एक्सपोर्ट हो, इसके लिए अलग से कोऑपरेटिव बना दिया है।
1: बिल्कुल,
0: तो हर तरफ से किसानों को सशक्त कर, किसान सशक्त मतलब देश सशक्त।
1: बिल्कुल सर्जना जी, अगर आपके पास आए, जैसा कि अभी नीलू जी कह रहे थे कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, जो सारे चारों स्तंभ हैं ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, अगर हम खासतौर से वंचितों की बात करें, जिन्हें हम मार्जिनलाइज्ड कहते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इनके जैसे जो जनजातीय समूह के लिए जो स्टेप्स उठाए गए हैं या जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं, ये मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए आप हमें बताएं कि किस तरह के परिवर्तनकारी उपाय हुए हैं।
2: वर्ग में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, वो ऐसे आया है कि एक तो सबसे पहले

0: उस वर्ग में आत्मसम्मान आत्मगौरव की भावना पैदा करना, जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जिनको पहले आदिवासी बोला जाता है, अभी वनवास
1: जनजाति
0: जैसे हैं, तो इनके लिए आप देखें कि जो उनके हीरो रहे हैं बिरसा मुंडा हैं और बहुत सारे, उन सबको इन्होंने निकाला और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी के नाम से। फिर आदि मेले लगने शुरू हुए और एकलव्य स्कूल बनाए गए हैं इन बच्चों के लिए, उसका नाम है एकलव्य स्कूल, कि जितने ट्राइबल बच्चे हैं, क्योंकि अगर वो रेगुलर स्कूल में नहीं जा पा रहे तो आप उनको बोर्डिंग स्कूल है ये, उसमें आप उनको पूरी तरह से एक आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं, आप उनको शिक्षा से जोड़ रहे हैं। दूसरा, जो ट्राइबल्स हैं वो हमारे जल वन के रक्षक और संस्कृति के रक्षक सबसे ज्यादा वो हैं। हम जो पढ़े लिखे शहरी हैं, हम पर्यावरण की उतनी रक्षा नहीं कर सकते जितना वो लोग करते हैं, तो उनके लिए जो वन धन योजना है उससे बहुत लाभ है। उनको कहीं नहीं जाना, नौकरी के लिए एप्लीकेशन नहीं देना, क्योंकि उन लोगों को ये भी मालूम है कि कौन सी जड़ी बूटी का क्या असर है। उन पत्तों को हम नीलू जी या आप जंगल में जाके नहीं पहचान सकते। उनको पता है कि कौन सा फूल जब खिलेगा तो उसके बाद कब बारिश होगी, कब आंधी आएगी, तो वो लोग प्रकृति के साथ सहचर हैं प्रकृति के। ये जो मंत्रालय है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, तो ये भी आप देखिए कि वैसे तो अटल जी के समय में बना था, लेकिन अब इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं और ये खेलने में बहुत अच्छे हैं। ये हॉकी में है, स्पेशली तीरंदाजी में, कुश्ती में, तो उस पर भी ध्यान दिया गया है। इनके लिए बोर्डिंग्स खोले गए, इनके लिए कोचेस दिए गए हैं, इनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। और जिस एरिया में जो चीज ज्यादा जो पैदावार हो रही है, अब देखिए कि जैसे मखाना बोर्ड बिहार में बनाया गया, पहले तो नहीं था। दूसरी बात, खाली मखाना बोर्ड बना देने से काम नहीं होगा, ट्रेनिंग है उनकी, फिर उनकी प्रोडक्ट की कीमत है, फिर उनकी प्रोडक्ट को देश में और विदेश में सब जगह पे उनको मंच मिले, ई कॉमर्स जिसको वो भी चला रहे हैं। अभी जब मोदी जी यात्रा पर गए, हमारे प्रधानमंत्री जी, फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 में, तो मैं जो लिस्ट देख रही थी, आप सोचिए, उसमें वो पिछली बार मखाने लेके गए थे, इस बार वो ठेकुआ भी लेके गए। ठेकुआ भी आप मतलब,
1: हाँ, उन्होंने सम्मान दिलाया है पूरे,
0: श्री अन्न उसको नाम दिया, जिसको मोटा अनाज सब बोलते थे, अब उसको देखिए मान श्री अन्न, और सब चीजों की कीमतें भी बढ़ गई उसकी वजह से, और उसका किसान को लाभ हो रहा है। आज मखाने का आप रेट देखिए बाजार में, तो वो सारा आप सोचिए कि वो लाभ किसान को जा रहा है। और दूसरा, जैसा अभी नीलू जी ने कहा कि खाली विकास समग्र होना चाहिए, अगर मेरे पास प्रोडक्ट है और मैं मंडी तक ही नहीं पहुंच पाऊं, तो मेरे पास मंडी तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, साधन नहीं है, तो मेरी प्रोडक्ट का क्या होगा, क्योंकि ये तो पेरिशेबल आइटम जो होती है, तो उनको तुरंत बाजार चाहिए, तो ये भी बहुत सुविधा हुई है उसके लिए
1: जी।
0: और जब ये MSP की बात होती है, तो MSP अब कहा कि आप जाके किसान अपनी फसल, जरूरी नहीं कि किसी को, भाई जिसको जो कीमत दे रहा है किसान को, जितनी दे रहा है, और जिसके पास वो जाके खरीद ले,
1: हो जाता है।
0: नहीं, खरीद लीजिए जाके जितना रेट है। तो ये विपक्ष जो कहता रहा, जो किसान आंदोलन हुआ, उन्होंने MSP की बात की, तो वो उससे चार कदम आगे चले। तो वंचित वर्ग में फिर है कि पढ़ाई है उनकी, पहले लोगों को लगता था कि अगर बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा, अब किसी को नहीं लगता। सुकन्या समृद्धि योजना है, लड़कियों को वर्दी है, लड़कियों को सब कुछ। और दूसरा, अगर मान लीजिए अब जो असंगठित क्षेत्र था, जहां पर ये वंचित वर्ग जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई स्किल, कोई एजुकेशन कुछ नहीं था, या उसके पास अपना पारंपरिक हुनर भी, कौशल भी नहीं है कोई भी, तो खैर कौशल विकास मंत्रालय भी खोला गया और कौशल विकसित किया जा रहा है। तो अगर उसके पास कुछ भी नहीं, तो वो किसी मान लो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो ये भी सरकार ने सुनिश्चित किया, जो नए 4 लेबर कोड आए हैं, कि अगर कोई असंगठित क्षेत्र में है और काम कर रहा है, स्पेशली महिलाएं हैं, तो उनका वेजेस तय कर दिए गए हैं कि आप इससे कम वेज पे बिल्कुल काम नहीं करवाओगे
1: जी।
0: तो ये आप देखिए कितनी अच्छी बात है। फिर दूसरा, अगर महिला आपके यहाँ काम कर रही है, तो आप उसको घर पहुंचाने की व्यवस्था भी करेंगे, फैक्ट्री आपकी करेगी, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब सैनिटरी पैड पर देखिए, लड़कियों की जो सबसे बड़ी एक समस्या होती है, कि वैसे इसको कहा गया था कि ये बातचीत करने के, लेकिन ये भी 1 रुपए में जन औषधि केंद्र में सैनिटरी नैपकिन मिल रहा है लड़कियों को, किशोरियों को। तो आप सोचिए महिलाओं को तो ये भी
1: बहुत बड़ा,
0: हम इसको एक अगर देखे तो एक तरह से ये भी एक सशक्तिकरण की ओर एक बड़ा कदम है। पिंक टॉयलेट्स हैं, महिलाओं के लिए अलग से अच्छे शौचालय बनाए गए हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको अगर हम किसी मैनेजमेंट स्कूल की बुक देखें तो उसमें ये चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन पिछले 12 साल में जो इतनी छोटी छोटी चीजों को सोच के समझ के जिनके ऊपर काम किया गया पिछले 12 साल

0: हजार फिर जनधन खाते खोले गए, डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनका कौशल विकसित किया गया
1: और एक तरह से जो हमारी ट्रेडिशन है हमारे देश की वो भी अलाइव,
0: मतलब कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो मैकॉले ने जो लाया था उसने व्हाइट कॉलर जॉब को बहुत प्रेफरेंस दिया था, पर ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो सरकार की औद्योगिक नीतियां हैं, जो एमएसएमई आप देखिए ना, एमएसएमई सेक्टर में कितनी चीजें जो महिलाएं घर में बैठे बैठे शौक शौक में बना लेती हैं, जिनको ये शौक है, जिनके पास स्किल है, अपनी दादी नानी माँ से सीखा है, तो उसके लिए भी सरकार लोन दे रही है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बहुत महिलाओं का सशक्तिकरण। दूसरा मैं आपसे कहूंगी कि जैसे मातृत्व वंदन है, वो योजना कितनी अच्छी है, जो मातृ शिशु रक्षा योजना है, तो ऐसी योजनाएं पहले था कि हाँ,
1: और एक्चुअली वो फिगर्स में दिखाई दे रहा है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो अस्पतालों में अब हो रही हैं, उनका संख्या इतनी बढ़ गई है, 98% पे पहुंच गई है, और भी जो मॉर्टेलिटी रेट है,
0: बेसिक मेरी जरूरत है वंचित वर्ग की अगर हम बात करते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान
1: जी,
0: तो उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिया जा रहा है
1: जी,
0: ठीक है, उनको जो राशन दिया जाता है एक बीपीएल जो है उससे बिलो में जो राशन मिलता है, ठीक है, वो आज नहीं तो कल कमाने लगेगा, वो भी बाकी समाज के साथ पेश मिलेगा, लेकिन जब उसको अपनी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं तो उसको उसके लिए नहीं स्ट्रगल करना, इसलिए उसका जीवन स्तर आगे बढ़ा। और कितने करोड़ लोग नीलू जी गरीबी रेखा से ऊपर उठे,
2: 25 करोड़
0: गरीबी रेखा से ऊपर उठे, और डिजिटल पेमेंट देखिए आप, सारी दुनिया आज हमसे सीखना चाहती है भारत,
1: और ये जो डिजिटलाइजेशन की आप बात कर रही हैं वो पूरे देश में है।
0: सब्जी वाला भी कहता है जी यहाँ पे पेमेंट कर दो, जो फूल बेच रहा है वो भी कहता है, गोलगप्पे वाला
1: जी,
0: टिक्की वाला,
1: व्यापक सशक्तिकरण है। अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें, समावेशी विकास की बात करें, तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 71% बेनिफिशियरीज जो हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी फार्मर्स हैं, और मुद्रा योजना की अगर हम बात करें या जनधन योजना की बात करें तो 70% से अधिक जो अकाउंट्स हैं वो महिलाओं के हैं। सो आपको लगता है कि जो स्कीम्स हैं वो अच्छी भी हैं, लेकिन वो ज्यादा जरूरी है कि वो इम्प्लीमेंट बहुत कहें कि सिंसियरिटी से हुई है।
2: निश्चित रूप से मैं ये अनुभव अपना बताता हूँ, जहाँ मैं अभी गया था पिछले दिनों, जगदलपुर गया था, जगदलपुर का नाम सुनते ही बस्तर सोचते हैं लोग, नक्सली प्रभावित था, नक्सली इलाके में कोई सरकारी कर्मचारी जा ही नहीं सकता था, स्कूल जला दिए थे, जो जंगल में जो लोग थे उनको सारी चीजें नहीं मिलती थी। अब वहां के जो प्रोडक्ट हैं, जो वहां ट्रेनिंग दी जा रही थी, और बिल्कुल एक संस्थागत रूप में सब कुछ लाया जा रहा है वहां पे, कि जो कैंप लगे थे, नक्सल समस्या खत्म हो गई, तो जो सुरक्षा बलों के कैंप थे उसको सेवा केंद्र में बदला जा रहा है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो खुद हमारे साथ थे, उनके साथ मैं भी था, वहां मैंने देखा कि जो जंगल के प्रोडक्ट हैं, जैसे इमली बहुत होती है, अब इमली वहां पे जो तोड़ा अब वो बिचौलिए सब खाते थे और जैसे थे जाता था, अब वो मशीनें लगी हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि इमली को कैसे आप पैकेजिंग करो, 500 ग्राम के, 1 किलो के छोटे पैकेजिंग, बिल्कुल एकदम उसको, और उसके बीज हटने चाहिए, उसका ये होना चाहिए, और बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक बिना किसी केमिकल, और उसकी बहुत डिमांड है। एक वहां महुआ बहुत होता है, फ्री में चुनते हैं, अब महुआ और बाकी जो श्री अन्न है मिला करके इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके, तो मार्केटिंग की एक सोच का अंतर आया है,
1: एक अवेयरनेस क्रिएट,
2: अवेयरनेस नहीं, सोच का अंतर यह है कि जब देश आजाद हुआ था तो हमने ये मान लिया था कि ये तो ट्राइब्स हैं, ये जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, इनमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी, इनको हमारे डेवलपमेंट होते हैं, इनको हमारे स्कूल नहीं चाहिए, इनको हमारी बिल्डिंग नहीं चाहिए, इनको गाड़ी नहीं चाहिए, इनको जहाज नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको ये जंगल में ही खुश है। अब आपने उनको छोड़ दिया तो उस जंगल में नक्सली घुस गए। अब जो चेंज आया है कि सारी सुविधाएं वो जंगल में रहें, जहां हैं जैसे जी रहे हैं रहें, लेकिन सारी सुविधाएं हम पहुंचाएं और उनके जो चीजें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक भी जाए, बाकी जगह भी जाए,
1: विकास और उनके बच्चे पढ़े भी, अगर वो चाहे शिक्षा वहां पे पहुंची।
2: एकलव्य स्कूल का उन्होंने नाम लिया कि आदिवासी बच्चे।
1: अच्छा, आप जो सोच की बात कर रहे हैं नीलू जी, यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो टर्मिनोलॉजी भी यूज की गई है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, कितनी खूबसूरत है कि रिकॉग्नाइज कर रही है सरकार की एस्पिरेशंस है उन लोगों की, और उनको पूरा करने के लिए ये पॉलिसी मेजर्स उठाए जा रहे हैं।
2: वो यही है कि जब आप सिंसियरली देखते हो कि जिले हैं तो कौन कौन से जिले देश में जो है वो पिछड़े, पहले होता था पिछड़े राज्य की बात, लेकिन अगर आप देखोगे केरल में भी तो केरल कहें कि वहां बहुत साक्षरता है, वहां महिलाओं का सशक्तिकरण है, ये है, तमाम चीजें हैं, लेकिन वहां भी कुछ जिले जो है पीछे रह जाते हैं।

0: और जब बिल्कुल आप पिछले जो कहोगे छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ के कुछ जिले बहुत अच्छे हैं। तो जो जिले पीछे छूट गए हैं वो किन किन मापदंडों पे छूटे हैं, वहां क्या क्या करने की जरूरत है। अब वो जब हो गया तो जिले के भीतर ब्लॉक है तो अब 500 ब्लॉक्स के अलग चल पड़ी है वहां पे। यानी कि जब समग्र और समेकित विकास की आप बात सोचते हो कि अंत्योदय जो उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी का था कि कोई छूटे न पीछे, ये जब आपकी सोच होती है तो जितने लोग छूटे हुए हैं सबको आप चुनते हो, क्यों छूट गया, क्या कमी है, क्या हम लगाएं कि यहाँ पे आ जाए, वो चीजें हो रही है।
1: सर्जना जी आप भी कुछ कहना चाहेंगी?
2: देखिए मुझे जो सबसे अच्छा दो तीन चीजें लगती हैं, एक है विरासत के साथ विकास
1: जी,
2: जो स्लोगन है वो बहुत बढ़िया लगता है मुझे कि हम अपनी परंपराओं को अपनी ट्रेडिशंस को बचाते हुए विकास की राह पर चले। ऐसा विकास ना हो जो हमें हमारी जड़ों से अलग कर दे। तो हमारी जड़ों से जोड़ने का जो विकास है वो ये सोच बहुत अच्छी है। अगर मैं अपनी जड़ से उखड़ कर कहीं बहुत उन्नति करती हूँ अपने समाज से, अपने रीति रिवाज से, अपनी परंपराओं से, तो वो विकास एक दिन जाकर मुझे दिल को बहुत दुखी करेगा। लेकिन मैं अपनी जड़ों से भी जुड़ी हूँ, अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, और उसके साथ मेरा विकास हो रहा है। अब एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि यूनेस्को धरोहर में अब हमारी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कितनी सारी चीजें आ गई। आप सोचिए हमारा गरबा, हमारी दुर्गा पूजा, हमारी दिवाली, हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो अब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होगी। और एक और सोचिए पर्यावरण की दृष्टि में रामासर जो आर्द्र भूमि जिनको हम बोलते हैं, अब वो 100 होने वाली है। 99 तो हो ही चुकी, हो गई शायद 100 हो गई।
1: और ये सब चीजें युवाओं को भी प्रेरित करती है। हमारा
2: रामासर लेक जो है पहले हमारे पास 13 या 14 थी, अब आप देखिए कितनी हो गई। तो ये समग्र विकास जो है ना विद मेरे विरासत के साथ, तो ये एक बहुत 12 साल की एक उपलब्धि है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर्जना जी। नीलू जी आप आए और आपने हमें इतनी खूबसूरती से समझाया कि जो 4 स्तंभ जो माने गए हैं वर्तमान सरकार द्वारा विकास के, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया गया है पिछले 12 सालों में और आगे भी क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद
2: सोनू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: अभी आप सुन रहे थे सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम। थीम थी संस्कृति। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। योग दिवस का मुख्य आयोजन आज सुबह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वयं तारासन, अर्ध चक्रासन, भद्रासन, त्रिकोणासन सहित कई योग मुद्राओं का अभ्यास किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि योग आज दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव बन गया है। प्रधानमंत्री ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य योग के माध्यम से शरीर को स्वस्थ, ऊर्जावान और सक्रिय बनाए रखना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित योग कार्यक्रम

भाग लिया। उन्होंने लोगों से योग को अपनी जीवन शैली में शामिल करने की अपील की है। राष्ट्रपति ने कहा कि योग बढ़ती आयु में भी व्यक्ति के सक्रिय और आत्मनिर्भर बने रहने में सहायक होता है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में विश्व कल्याण के एक सशक्त माध्यम के रूप में योग पद्धति की पहचान और भी मजबूत हुई है। इधर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने लोकभवन में आयोजित योग शिविर में भाग लिया। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को

0: जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने लोकभवन में आयोजित योग शिविर में भाग लिया। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि योग शारीरिक स्फूर्ति, मानसिक संतुलन तथा स्वस्थ एवं गरिमापूर्ण जीवन का आधार बन सकता है। इधर राजधानी पटना समेत राज्य के विभिन्न स्थानों पर योग दिवस के अवसर पर योग शिविर और योगाभ्यास का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित शिविर में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और रामनाथ ठाकुर, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों ने योगाभ्यास किया। वहीं विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से भी योग शिविर कार्यक्रम आयोजित किए गए। पटना उच्च न्यायालय में भी इस अवसर पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभिन्न शिक्षण संस्थानों में भी योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए आज देश भर में नीट यूजी पुनर्परीक्षा का आयोजन कर रहा है। ये परीक्षा स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित की जा रही है। परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ताजा जानकारी के अनुसार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा शुरू हो चुकी है। प्रदेश के 34 जिलों में 331 केंद्रों पर नीट यूजी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। पटना में कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा भवन के आसपास विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है। साथ ही कई मार्गों पर आज परीक्षा की समाप्ति तक वन वे ट्रैफिक सिस्टम लागू रहेगा। इधर परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग की ओर से विशेष बसों का परिचालन किया जा रहा है। अभ्यर्थियों के लिए इन बसों में यात्रा निःशुल्क है। साथ ही रेलवे की ओर से 7 विशेष ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद की बैठक आज पटना स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित की जा रही है। बैठक में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज सुबह सबसे पहले राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, इसके बाद राज्य परिषद की बैठक आयोजित की गई। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपराह्न 3:30 बजे से राष्ट्रीय परिषद की बैठक का दूसरा सत्र आयोजित होगा। बैठक में पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल होने की संभावना है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप वसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। पूरे मुल्क में आज 12वां आलमी योम योगा मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है बढ़ती उम्र के असर को रोकने के लिए योगा। योम योगा का अहम इनाकाद आज सुबह मगरबी बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रोग्राम में योग अभ्यास की क़यादत की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने खुद तारासन, अर्ध चक्रासन, भद्रासन, त्रिकोणासन समेत कई योग हालतों का मश्क किया। वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी ने मौजूद आवाम से खिताब करते हुए कहा कि योगा आज दुनिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव त्यौहार बन गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने योगा को जिस्मानी और जहनी सुकून

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कंप्यूटर असिस्टेंट हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि

21 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.allahabadhighcourt.in से प्राप्त किया जा सकता है।

कर्मचारी चयन आयोग एसएससी सीजीएल 2026 के आलोक में कुल 12,256 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम किसी भी विषय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस के कुल 4500 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और 100 उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलीबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से

0: सामाजिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है जो स्वस्थ संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
3: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए तो सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
4: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में

0: लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि DPR बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
3: मेरा पूरा भरोसा है NTA के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होके बैठे, चिंता मुक्त होके बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: श्री प्रधान ने बताया कि CBSE के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
3: CBSE की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे CBSE के 17,00,000 बच्चों से लगभग 15,50,000 बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था वो काम लगभग पूरा हो चुका है। CBSE जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपए के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10,00,000 रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री विंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा

0: तैयार की जाएगी एक रिपोर्ट। ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरों मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है, जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालिबफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष M.B. कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए मोहम्मद रफी को। फिल्म का नाम है नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे।

लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को फिल्म मजबूर में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

तुम बिन एक दिन ऐसे बीता जैसे उमरिया बीती, सब कुछ भूल जाना आसान है, सब कुछ भूल।

0: लीजिए सुनिए ज्वार भाटा फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: लूटा है मना लेंगे वो तो बिगला है बना लेंगे।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

0: कर ली, मन तुझे नियत कर ली,
1: मैंने हंसकर हामी भर ली,
0: ओ यारी छूटे ना
1: छूटे ना,
0: हाँ कर ली तो कर ली, सब कर।

0: चाहे रब रूठे या दुनिया मैंने तेरी बाह पकड़ ली। अब चाहे रब रूठे या दुनिया मैंने तेरी बाह पकड़ ली। मैंने तुझे नियत कर ली,
1: मैंने हंसकर हामी भर ली।
0: ओ यारी छूटे ना
1: छूटे ना
0: हाँ कर ली तो कर ली। चाहे सर फूटे या माथा,
1: अब चाहे काटे मिले कलियां,
0: अब चाहे लग जाए हथकड़ियां,
1: अब चाहे घर छूटे या सखियां,
0: अब चाहे रब रूठे या दुनिया, अब चाहे मां रूठे या बाबा।
1: यारा मैंने तोहफा कर ली,
0: अब चाहे सर फूटे या माथा, मैंने तेरी बाह पकड़ ली।

फिल्म दाग में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। गीतकार थे साहिर लुधियानवी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज चुके हैं। इसी के साथ हमारी आज की पहली सभा समाप्त होती है। हम फिर आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे शाम के 4:30 पर। उस समय तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
1: बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रेडियो डॉक्टर के इस बेहद खास एपिसोड में। जी हाँ, स्पेशल ऑन इंटरनेशनल योगा डे। दोस्तों, सुबह से योग दिवस की शुभेच्छाओं और शुभकामनाओं का तांता तो लगा ही होगा, लेकिन हमें भी अवसर मिला है इस प्रोग्राम के जरिए हम आप तक एक बार फिर से योग दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं पहुंचाएं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। चलिए मिलते हैं योगाचार्य डॉक्टर शालू गुप्ता से, जो आज हमारे एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर शालू गुप्ता, और आपको भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।

नमस्कार, धन्यवाद। योगा दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। और ये बहुत ही बड़ा विषय है। मैं ये कहना चाहूंगी कि 21 जून का यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इसीलिए ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भी यह आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का उचित समय है। तो 21 जून का जो दिन रखा गया है, यह बहुत ही सोच समझ कर रखा गया है। और हम आज योग दिवस के अवसर पर बहुत सी चीजें सीखेंगे

0: समझने लगे हैं, लेकिन थोड़ा बेहतर जानेंगे योगाचार्य शालू गुप्ता से, आपसे। तो आज का जैसा कि टॉपिक है योग फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए योग।
1: देखिए, योग का अर्थ है जोड़ना। जैसा हम हमेशा से समझते आए हैं, योग किसी भी चीज को जोड़ता है। तो योग हमें मानसिक तौर पर शरीर के अंदरूनी स्वास्थ्य की बात करें तो योग हमें पूर्ण तरीके से जोड़कर हमें एक पूर्ण हेल्थ मिलती है। अब महर्षि पतंजलि ने इसीलिए योग को अष्टांग योग कहा है और योग को आठ पहलुओं में बांटा है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब यदि हम यम नियम की बात करें तो यम नियम है शरीर शुद्धि और आहार शुद्धि। योग आसन जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि यदि हम अपने शरीर को एक स्पेसिफिक पोजीशन में रखना सीख लेते हैं तो हम बहुत सी बीमारियों पर निजात पा सकते हैं। जब हमारा शरीर शुद्धि हो गई है, आहार शुद्धि हो गई है और हमारा शरीर अपने आप को कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस में रख सकता है और हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है, तो हम मानसिक तौर पर बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और जिससे हम जो आगे के पड़ाव हैं, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनको बहुत ही जल्दी अचीव कर सकते हैं। बहुत सी क्रियाएं हैं जो योग में की जाती हैं इन चीजों को अचीव करने के लिए, तो हम इनके बारे में वन बाय वन डिस्कशन करेंगे जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आते जाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल शालू जी, तो योगाचार्य शालू गुप्ता हैं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। मैं सुजाता रथ और हमारे तमाम लिसनर्स बहुत सारी बातें जानना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे हमारे आज के योगा एक्सपर्ट से। लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद लौटेंगे आज के बेहद खास रेडियो डॉक्टर में स्पेशल ऑन इंटरनेशनल योगा डे।

0: स्वास्थ्य के लिए योग, यही आज का हमारा विषय है ऑन वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे में। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर शालू गुप्ता और मैं हूं साथ में सुजाता रथ। तो शालू जी, आपने बताया कि योग का जो शाब्दिक अर्थ है वो ही है जोड़ना। तो एक सवाल आया है मनोहर लाल गांधी जी का कि योग द्वारा हम अपने आप से कैसे जुड़ सकते हैं, अपने आप से कैसे जुड़ सकते हैं।
1: देखिए, आज का जो समय है इसमें हम लोग बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं मेंटली। वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स एट द वेरी सेम टाइम। होता क्या है कि हम लोग हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारी फूड हैबिट्स हैं, हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो ऑफिस एनवायरमेंट है, इससे हमने बिल्कुल अपनी बॉडी की प्रायोरिटी को खत्म कर दिया है। हमें सीखना यह है कि पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया सीखने के लिए हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि हमारी जो दिनचर्या है उसमें हमारा शरीर भी कहीं एग्जिस्ट करता है। जब तक हमारी ब्लड रिपोर्ट्स में कोई बीमारी नहीं आ जाती तब तक हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं। योग करने से क्या होगा? योग का सबसे पहला अर्थ ही है जोड़ना। और जैसे मैंने कहा, योग को अपनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने जीवन में नियम बनाने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे आप अपने दिनचर्या में नियम बनाएंगे वैसे वैसे आपके हर चीज का नियम हो जाएगा। सोने का समय, उठने का समय, खाना खाने का समय, शौच जाने का समय। और जैसे जैसे आपका समय फिक्स होता जाएगा वैसे वैसे आप ये समझेंगे कि आपके शरीर में जो सुबह उठते ही थकान होना, सारा दिन परेशानी रहना, बॉडी में लथार्जी रहना, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन होना, ये सब चला जाएगा। आप अगर एक अच्छा आहार अपनाएंगे, सीजनल फ्रूट्स खाएंगे, सीजनल लिक्विड्स लेंगे, तो उसको लेने के बाद आपका शरीर निरोगी रहेगा। और जब शरीर निरोगी रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि आपकी जीवन में आपके शरीर की कितनी इम्पोर्टेंस है। तो जैसे जैसे शरीर निरोगी होगा उसके बाद जब हम अपनी बॉडी पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो हम अपने शरीर को जिसे हम कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, ऐसे ऐसे हम अपने शरीर को परमात्मा से मेल कर पाएंगे, जिसमें फिर हमारी धारणा, ध्यान और समाधि आ जाती है, जिसमें हम राम नाम, प्रभु नाम सब कुछ जोड़ देते हैं।
0: जी, कुछ कॉलर्स हैं। हेलो।
2: हाँ दीदी, प्रणाम।
0: प्रणाम, कौन बोल रहे हैं?
2: सतीश कुमार पांडे।
0: हाँ सतीश कुमार पांडे जी बोल रहे हैं, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं।
2: आपको अंतर्राष्ट्रीय योगा डे की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद
2: जी। और डॉक्टर मैम को भी नमस्कार।
1: नमस्कार
2: जी। डॉक्टर मैम, मेरे से आपसे सवाल ये है कि कुछ आंखों के लिए कोई योगा है क्या?
1: हाँ जी बिल्कुल है।
2: बता दीजिए।
1: हाँ जी, आपकी आंखें कमजोर हैं या आंखों से पानी आता है?
2: जी पानी नहीं, मैम आँख थोड़ा कमजोर है।
1: ठीक है, देखिए आंखों के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जिसे हम बोलते हैं त्राटक। वो हमारे षटकर्मा का पार्ट है। उसमें जनरली हम करते क्या है कि आपने किसी भी, त्राटक का अर्थ है कि आप किसी भी वस्तु पर लगातार देखते रहें। इसको करने का प्रोसेस क्या होता है कि आपने मान लीजिए कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर लिया और एक मोमबत्ती को जला लिया। आप उस मोमबत्ती की लौ को एक टक देखते रहेंगे, तब तक देखते रहेंगे जब तक आपकी आंखों में आंसू आने वाले हैं। मतलब आंसू आने से पहले ही आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है। ये एक्सरसाइज आप कई और जगह और कई और चीजों से भी कर सकते हैं, नंबर वन। दूसरी चीज है अपनी आंखों को आंवला से धोएं, आंवले के पानी से धोएं।

0: या त्रिफला के पानी से धोएं, रात को त्रिफला भिगा दें और सुबह उससे अपनी आंखों का आई वॉश करें, उससे भी आंखों में बहुत ही अच्छा असर आता है। तीसरी चीज है त्रिफला, त्रिफला
1: जी।
0: और तीसरा है विटामिन ए रिच चीजें खाएं, जिनमें जैसे पपीता है, सेब है, अनार है। आहार का भी ध्यान साथ साथ रखना पड़ेगा, तभी आपकी आंखों में रोशनी लौट वापस आएगी और आपकी आंखें पहले से बेटर हो जाएंगी।
1: जी,
0: शुक्रिया सतीश जी, दार्जिलिंग से हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और कॉलर है, उनसे जुड़ते हैं। हेलो,
2: नमस्कार मैम।
0: हाँ नमस्कार,
2: मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ।
0: जी राजा साहब बताइए।
2: जी जी, आज जैसा कि योग दिवस है तो मैं खास करके ये जानना चाहूंगा, जैसे हम लोगों का काम होता है कि काफी 8-9 बजे से बैठो और शाम को लगभग 5-6 बज जाता है, तो इसमें हम लोग ज्यादा टहल नहीं पाते हैं, इस वजह से जो है कुछ मोटापा भी बढ़ने लगता है। तो कौन से आसन या योगा है, हमें मैम से ये पूछना है कि जो अपने आप सुबह या शाम में उनका उपयोग करें और अपनी सेहत और अपने स्वास्थ्य पर अच्छा ध्यान केंद्रित करके अपनी सेहत को फिट रखें और ज्यादा मोटापा ना बढ़ने पाए, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं।
0: हाँ जी राजा जी, देखिए इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, कई सारी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। नंबर वन, जब आप अपने ऑफिस में आते हैं और आपको ये पता है कि मैंने 7 से 8 घंटे बैठना है, तो आपको ये फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना ही पीना है, नंबर वन। नंबर टू, आपको ये फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे अपने अपने काम के दौरान हर 30 से 40 मिनट के बाद 10 से 15 मिनट मैं टहलने के लिए जाऊं, अपनी सीट पर ही ना बैठा रहूं। नंबर थ्री, अगर आप लैपटॉप पर काम करते हैं या कंप्यूटर पर काम करते हैं तो कोशिश कीजिए कि टांगे लटकाकर जमीन पर ना रखी हों, मतलब ये है कि आप पैरों के नीचे एक छोटी सी चौकी रखें कि आपके पैर जमीन से ऊपर की तरफ हों, इससे आपकी कमर पर कम असर आएगा और आप ज्यादा देर तक अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे। चौथी चीज है कि जो भी हमें ये नहीं सोचना कि मैं अब ऑफिस आ गया हूं तो मैं डिब्बा बंद खाना ले आया हूं तो मुझे बस रोटी सब्जी खाकर घर चले जाना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस भी रीजन में रहते हैं, आप जहां भी रहते हैं, वहां पर अवेलेबल जो भी फ्रूट्स हैं, जो भी जूसेस हैं या जो भी सलाद है, आपको उसका पूरा सेवन करना है। यदि आपका भोजन अच्छा है तो आपके शरीर में फैट जमा नहीं होगा।
2: जी।
0: अब रही बात आसन की, आसन के लिए हमें ये ध्यान रखना है जो लोग बैठे रहते हैं कि हमेशा जो आगे झुकने वाले आसन होते हैं जिसमें हमारा पेट दबता है, हमें ऐसे आसन ज्यादा करने चाहिए। और क्रियाओं में आप अग्निसार क्रिया कर सकते हैं।
2: आज हम सुबह करें कि शाम को भी कर सकता है?
0: शाम को सूरज ढलने से पहले आप कर सकते हैं और खाने के मतलब खाली पेट होना चाहिए जब भी आप आसन करेंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक अग्निसार क्रिया बहुत ज्यादा फायदे मन है, जिसमें सांस लेना, सांस छोड़ना और उसके साथ साथ पेट को घुमाना, इससे बहुत लाभ होगा आपको।
2: ओके मैं।
0: जी जी राजा साहब, बहुत ही अच्छे से शालू जी ने हमें बताया ये सारी बातें। एक मैसेज है मोहम्मद सरफराज आलम जी का दर्शना बाजार से कि ये साइटिका के दर्द से परेशान है, कौन सा योग करना चाहिए? हाँ जी, देखिए साइटिका में वैसे तो बहुत से आसन होते हैं, जैसे गरुड़ आसन है, वज्रासन है, गौमुखासन है, पवन मुक्तासन है, लेकिन हमें हर इंसान को अपनी बॉडी का नेचर देखना चाहिए कोई भी आसन करने से पहले। यदि तो आपको दर्द एक पैर में जा रहा है तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस रखनी पड़ेंगी, और यदि दर्द दोनों पैरों में जा रहा है तो कुछ और प्रिकॉशंस रखनी पड़ेंगी। तो जो बहुत बेसिक सी चीज है उसमें क्या है, जैसे आप सीधे लेट जाएं और अपने पंजों को एक बार आगे एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे, तो कम से कम 10 बार इसे रिपीट करें दोनों ही पंजों के साथ, नंबर वन। नंबर टू, जो आपका पैर है उसको आपको सीधे ही लेटे रहना है और पैर को बिल्कुल स्ट्रेट, अपनी टांग को ऊपर उठाना है। जब आपकी टांग ऊपर उठेगी तब तक उठाएं जब तक आपसे सहन होता है कि वो दर्द हो रहा है। जब आपको लगता है दर्द सहन से बाहर है तब वहां स्टॉप कर दीजिए। तो उस पैर को ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और इसी तरह दोनों पैरों को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। बाकी तो मैंने आपको आसन के नाम बता दिए हैं, बस आपको खाने पीने में भी ये ध्यान देना है कि आप वायु कारक चीजें ना खाएं, दूध और दही का सेवन छोड़ दें, और हार श्रृंगार के पत्ते बहुत ज्यादा फायदा करते हैं, उन्हें उबाल कर

0: का पानी पी लीजिए।
1: रोहतक से नितिन कुंडू जी का सवाल है कि एट व्हाट एज आवर चिल्ड्रन कैन स्टार्ट योगा।
0: देखिए, योगा के लिए तो कोई एज ही नहीं है। आपने देखा है ना, जब बच्चा बिल्कुल पैदा होता है और अपने बेड पर होता है, वो भी अपने हाथ पैर मारता रहता है। तो योगा के लिए कोई एज नहीं है। योगा और योग आसन तो किसी भी उम्र में किया जा सकता है, चाहे वो 2 महीने का बच्चा हो, चाहे वो 2 साल का बच्चा हो। उम्र नहीं देखी जाती, सिर्फ ये देखा जाता है कि हमें कोई बीमारी तो नहीं है। जैसे कोई हार्ट पेशेंट है या कोई और है, तब हम योग नहीं कर सकते। अदरवाइज आप किसी भी उम्र में योगा कर सकते हैं।
1: तो अगर यहाँ पर अगर कोई बीमारी है किसी को, तो वो किसी प्रशिक्षक के नियंत्रण
0: अगर
1: मार्गदर्शन में करें।
0: हाँ जी, अगर आपको कोई बीमारी है तो आप किसी भी योग शिक्षक के प्रशिक्षण में ही वो करेंगे।
1: हाँ,
0: हाँ जी।
1: और इन्होंने मैम एक और क्वेश्चन में क्या कि प्लीज सजेस्ट योगा फॉर शार्प मेमोरी।
0: ओके, देखिए, शार्प मेमोरी के लिए तो सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ। जैसे आपने गाना सुना, हम कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जिसपे जब वो बजते हैं तो हमारे पैर धुनकते हैं, ऐसा होता है। लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसमें हम बिल्कुल साइलेंट बैठे रहते हैं, जैसे मिले सुर मेरा तुम्हारा। जब ये बजता है तो हमें ऐसा लगता है कि दिमाग बिल्कुल शांत है। तो शार्प मेमोरी के लिए हमेशा कोशिश करें कि आप बिल्कुल शांत धुने सुने, ओम चैंटिंग, ओंकार, इससे बहुत ज्यादा लाभ होगा। और डीप ब्रीदिंग करें। अच्छी मेमोरी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्राणायाम। कोई भी प्राणायाम करें, सांस भरें, रोकें और छोड़ें। जैसे जैसे आपकी सांस को रोकने की टेंडेंसी बेटर होती जाएगी, वैसे वैसे आपकी मेमोरी शार्प होती जाएगी।
1: तो शालू जी, अपने गानों की बात कही कि ऐसे गाने जो जिनको हम एकदम शांत रहकर सुन सके, तो ये गाना जो मैं आपके पसंद का प्ले करने जा रही हूँ, मेरे ख्याल से ये गाना उस कैटेगरी में आता है। सुनिए।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: और आज का विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर विशेष है ऑन इंटरनेशनल योगा डे। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर शालू गुप्ता जी हमारे साथ हैं, योगाचार्य। डॉक्टर गुप्ता, कुछ देर पहले हमने एक गाना सुना था आपके पसंद का, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। तो हमारे जो कुछ लिसनर्स हैं उनका ये कहना है, खास करके दिनेश दयाल जी ने कहा है कि आपके गाने को सुनकर हमें याद आया कि ओ योगा तेरे बिना क्या जीना।
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: तो आज योग जो है हमारे जीवन का जो है एक अभिन्न हिस्सा बनता जा रहा है। मैं कहूंगी कि धीरे धीरे सारे विश्व में इस ये संदेश फैल चुका है और सभी के जीवन का जो है एक अभिन्न हिस्सा बनता जा रहा है। कुछ कॉलर्स हैं जिनकी बात हम सुन ले। हेलो।
3: हेलो।
1: हाँ जी।
3: हाँ नमस्कार मैम, गुरविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ।
1: जी नमस्कार गुरविंदर जी।
3: डॉक्टर शालू गुप्ता जी को भी नमस्कार और प्रणाम।
2: नमस्कार।
3: मैडम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे किसी मरीज का एलोपैथिक आयुर्वेदिक या होम्योपैथी में इलाज चल रहा है, जैसे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो उसमें अगर योग की सहायता ले ली जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, तो क्या ये संभव है?
2: बिल्कुल जी, बिल्कुल संभव है। और सबसे पहले योग की सहायता लेनी चाहिए, फिर कहीं और जाना चाहिए।
3: मैडम एक छोटी सी प्रॉब्लम हो रहा है कि कई बार खाना खाते समय हिचकी आ जाती है, तो उस समय कौन सा योग करें?
2: वैसे ऐसे में देखिए दो चीजें हैं, एक तो हम अपनी जीभ को पकड़ लें थोड़ी देर के लिए। जनरली आप 5-7-10 मिनट के लिए जीभ को पकड़ लेते हैं तो हिचकी आना बंद हो जाती है। दूसरी चीज है आप तुरंत पानी पी लें, उससे भी हिचकी बंद हो जाती है।
3: थैंक यू मैम, थैंक यू सुजाता मैम, नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार। एक व्हाट्सएप मैसेज है शालू जी, ये लिखा है शरद चंद्र पाणीग्रही जी ने ओडिशा से। इनका 3 महीने पहले ओपन हार्ट सर्जरी हुई है इनकी, और ये लिखते हैं कि सर्जरी से पहले ये बहुत सारे योगासन किया करते थे, जैसे कि अनुलोम विलोम, कपालभाति, वश्चिका, वज्रासन और भी बहुत सारे नाम इन्होंने गिनाए हैं। और अभी इनके जो स्टूल है वो क्लियर नहीं होता है, तो इन्हें पूछा है कि काइंडली एडवाइस विच टाइप ऑफ योगा और प्राणायाम कैन आई कंटिन्यू।
2: ठीक है, देखिए आप थोड़ा सा ये देखिएगा कि आप किसी तरह की कोई मेडिसिन तो नहीं खा रहे हैं जिसकी वजह से आपका पेट बंधा है, तो आप अग्निसार क्रिया कर सकते हैं, उससे भी आपका पेट साफ होगा। दूसरी चीज है मंडूक आसन, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है।
1: ये आसन ही कर सकते हैं। और पहले जो आसन किया करते थे वो
2: उसमें ओपन हार्ट सर्जरी के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रांग प्राणायाम नहीं करने चाहिए, तो आप नॉर्मल अनुलोम विलोम कर सकते हैं। और डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की रिकवरी कितनी हो चुकी है। अगर आपकी बॉडी फुली रिकवर हो चुकी है तो आप धीरे धीरे आसन को अपनी प्रैक्टिस में ला सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी बॉडी अभी रिकवर नहीं हुई है तो आप और थोड़े दिन रुक जाइए, तब तक आप सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम कर सकते हैं।
1: जी हेलो।
4: हेलो।
1: हाँ जी
4: मैम नमस्कार।
1: नमस्कार बोलिए।
4: अंशुल बात कर रहा हूँ मेरठ से।
1: जी जी अंशुल बोलिए।
4: जी मैम मुझे गैस की बहुत प्रॉब्लम है।

0: जैसे कुछ खा लिया उसके बाद गैस बन गई, बेवजह भी बन गई, क्या योग के माध्यम से इसका समाधान हो सकता है? दवाई बहुत खा ली।
1: हाँ जी अंशुल, बिल्कुल हो सकता है। आपको ये देखिए कि जब आपको गैस बनती है तो आपका पेट फूल जाता है खाने के
0: जी
1: बाद,
0: बिल्कुल
1: ठीक
0: बिल्कुल
1: है। तो सबसे पहले तो जब भी ऐसा हो तो आप वायु मुद्रा ट्राई कीजिए, जिसमें आपने अपनी जो सबसे पहली उंगली है हाथ की, उसके नाखून पर अंगूठे को रखना है। तो वायु मुद्रा जब हम करते हैं तो हमें डकारें आना शुरू होती हैं और हमारे पेट में जो जमा गैस है वो निकल जाती है। दूसरी चीज है कि गैस जो बनती है उसका सबसे ज्यादा समाधान होगा आपके खान पान से। जब आप अपना खान पान बदलेंगे तब गैस का समाधान होगा। तो आप खाने में जो कोशिश कीजिए, जो आपके सीजनल फ्रूट्स हैं उनको ज्यादा खाइए, जूस को ज्यादा लीजिए और पका आहार को कम कर दीजिए। और जब भी आप खाते हैं खाने के बाद आधा चम्मच अजवाइन पानी से ले लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा गैस है, तो आप रात को सोने से पहले अमलतास ले सकते हैं। अमलतास एक बहुत अच्छा हर्ब है, बहुत इजीली मिल जाता है। उसको उबाल के रात को पानी पीकर सोइए तो आपका पेट बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा और आपको गैस नहीं बनेगी।
0: तो मैम, ये बेवजह जो डकारें आती हैं क्यों आती हैं?
1: ये इसलिए आती है कि आपके आमाशय में जो खाना है वो पड़ा सड़ रहा है और वो निकल नहीं रहा। जैसे एक डस्टबिन में कूड़ा रहता है ना, तो उसमें से गैस निकलती रहती है। ये एग्जाम्पल बिल्कुल उसी के लिए है। तो हमारे पेट में जो मल नहीं निकल रहा है इसलिए गैस बनती है। तो कुछ दिन आप अमलतास का पानी ले सकते हैं, दूध का फटा पानी भी ले सकते हैं। उससे जो आपके आंतों में गंदगी जमा है वो निकल जाएगी और फिर आपको गैस बनना बंद हो जाएगी।
2: राम
0: थैंक
2: मोहन थैंक यू राम मोहन विश्वकर्मा जी का मैसेज है इटावा से। ये सिलाई बुनाई का काम करते हैं और इन्हें कम से कम 10 घंटे बैठना पड़ता है।
1: मैम।
2: इनकी उम्र है 32 साल। इन्होंने लिखा है कि इन्हें कौन सा योगासन करना चाहिए।
1: देखिए, इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका काम है जैसे बैठने का, और आपको अपने कंधे और हाथ यूज करने हैं, तो आपको कॉन्स्टेंटली सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए। जैसे आपने अपने हाथों की मुट्ठी बनाई और उन्हें गोल गोल घुमाया, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। उसके बाद अपना पूरा हाथ सीधा किया और हाथ को घुमाया, जिससे आपके जो सर्वाइकल ज्वाइंट्स हैं, जो शोल्डर ज्वाइंट्स हैं, वो हमेशा फ्लेक्सिबल रहें। जितना ज्यादा आप अपने शोल्डर ज्वाइंट्स को और सर्वाइकल ज्वाइंट्स की मूवमेंट रखेंगे, उतना ज्यादा आप लंबे समय तक अपने काम को कर सकते हैं। तीसरी चीज है जो आपकी जो आपका नेक रीजन है, जो आपकी गर्दन है, उसको भी उस अपनी ठोड़ी छाती पे लगाइए और फिर सांस भरते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए और फिर सांस छोड़ते हुए दोबारा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए। तो यदि आप ये तीन चीजें कॉन्टिन्यूअसली फ्लेक्सिबली करते रहेंगे, सुबह 15 से 20 मिनट अपने आप को दीजिए, इससे आपके ज्वाइंट्स खुले रहेंगे और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा।
2: जी, और अभी थोड़ी देर पहले आपने ये बताया कि जिन्हें जिनका बैठने का काम है लगातार लगातार ना बैठे रहें,
1: हाँ जी हाँ
2: बीच
1: जी,
2: बीच में
1: लगातार
2: उठ
1: ना
2: के।
1: बैठे रहें, और बीच में उठ के भी जब आपको लगता है हाथ पैर थोड़े से अकड़ गए हैं या कुछ है, तो फिर से वो एक्सरसाइजेस दोबारा कीजिए, मूव करते
2: मूव
1: रहिए।
2: करते रहे।
1: हाँ जी
2: हेलो,
3: जी हेलो,
2: हाँ कौन सा बोल रहे हैं?
3: मैं अनुराग वाजपेयी बोल रहा हूँ यहाँ रायबरेली से।
2: जी अनुराग जी बोलिए।
3: मैम, हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें अनुलोम विलोम बीच बीच में, जैसे 1-2 महीने की बीच बीच में जब करते हैं, तो कुछ इधर राइट इधर बाएं साइड में सर में ऐंठन टाइप में होती रहती है, हो जाती है, और जब बंद कर देते हैं तो ठीक हो जाती है। तो इससे क्या कुछ ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि अनुलोम विलोम तो जैसे हमें सूट ही नहीं करता है?
1: अच्छा, वैसे ऐसा होता नहीं है। आपको कहीं साइनस की तकलीफ तो नहीं है?
3: नहीं, एंजाइटी की तकलीफ है, मेडिसिन खाते रहते हैं।
1: तो ये तो हो सकता है कोई एंजाइटी का साइड इफेक्ट हो। वैसे अनुलोम विलोम से ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसको थोड़े समय के लिए कीजिए, लेकिन कीजिए रेगुलर। जब आप थोड़े थोड़े समय के लिए करेंगे, मतलब जैसे 5 मिनट के लिए किया, 5 मिनट के लिए किया, तो आपकी बॉडी धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करने लगेगी। छोड़िए मत इसे, बट इसका बेनिफिट ही होगा आपको।
2: जी
1: आप एक काम कर सकते हैं आप, कि आप अपनी नाक में तीन तीन चार चार बूंद तेल डालिए रोज, कुछ दिन के लिए डालिए और फिर बताइए, फिर ऑब्जर्व कीजिएगा कि क्या ये ऐंठन हो रही है।
2: ओके, तो राय बरेली से हमारे ये श्रोता थे। तो शालू जी, अनुलोम

0: अनुलोम जो है मुझे लगता है कि सबसे आसान
1: है,
0: योगासन
1: बिल्कुल,
0: हर
1: बिल्कुल,
0: कोई इसे कर सकता
1: हाँ जी,
0: है ना,
1: हाँ जी।
0: तो क्या फायदे हैं इसके?
1: अनुलोम विलोम तो देखिए, सांसों का लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, हम कहते हैं ना कि वायुमंडल में, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा तो वायु है, वायु और जल है। तो जब हमारी सांसों का अंदर जाना और बाहर आना, ये पैसेज बिल्कुल क्लियर होता है, तो सबसे ज्यादा असर हमारी मेमोरी पर, हमारी एंग्जाइटी लेवल्स पर, हमारी सोच पर पड़ता है। अब आजकल क्या है ना कि बंद कमरों में हम बैठे हैं और हम वही ठंडी हवा ले रहे हैं, वही छोड़ रहे हैं। तो जब तक खुली हवा, अनुलोम विलोम जब जैसे जैसे हम करते हैं, वैसे वैसे एयर पैसेज पूरी बॉडी में होता है और ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो जाता है। वी फील हैप्पी, हैप्पी एंड हैप्पी, यस।
0: ओके, चलिए हैप्पी एंड हैप्पी हम फील करेंगे एक और गाना सुनने के बाद। लेकिन एक सवाल मैं ले लेती हूँ सीमा गांधी जी का, गाजियाबाद से लिखा है कि हम महिलाएं मॉर्निंग में घर का काम होने के कारण योगा प्राणायाम नहीं कर सकती, क्या दोपहर और शाम के वक्त हम योग कर सकती हैं?
1: बिल्कुल कर सकती हैं। देखिए, शाम में कर सकती हैं, क्योंकि योग करने के लिए खाली पेट या खाने के 2.5 से 3 घंटे बाद ही योग करें, दोपहर में ना करें। मैं सजेस्ट करती हूँ शाम को करें। और जो महिलाएं योग नहीं कर सकती हैं सुबह, वो योग की जगह खूब सारा पानी पिएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, और ये कोशिश करें कि वो 10 बजे तक भूखे पेट ना रहें। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, कोकोनट वाटर लें, ड्राई फ्रूट्स लें, सोक्ड ड्राई फ्रूट्स लें, उससे भी, वो भी योग का ही हिस्सा है। आप योग को सिर्फ योग आसन से ना जोड़ें, योग का अर्थ आहार भी है। तो आप एक अच्छा आहार फॉलो कीजिए मॉर्निंग में और शाम को योगासन कर लीजिए, दैट विल गिव यू अ परफेक्ट हेल्थ।
0: जी वैसे शालू जी, इतने सवाल आ रहे हैं ना, मुझे लगता है कि आपको आज क्या कहते हैं, आपको आज बोलने का ही मौका मिलेगा हमारे शो में। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि शालू जी थक जाए, तो चलिए उनके पसंद का एक गाना सुन लेते हैं हैप्पी हैप्पी करने के लिए।

0: एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं ऑन इंटरनेशनल योगा डे। आज का हमारा रेडियो डॉक्टर है स्पेशल ऑन वर्ल्ड योगा डे, योग फॉर हेल्थ। हमारी एक्सपर्ट शालू गुप्ता जी को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही, इतने कॉल्स आ रहे हैं और इतने मैसेजेस आ रहे हैं। तो शालू जी, हम अपनी तरफ से आपसे कुछ पूछ ही नहीं सकते क्योंकि श्रोताओं की तरफ से ही बहुत बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी
1: जी, अजय कुमार बात कर रहा हूँ।
0: हाँ जी अजय जी बोलिए।
1: कुछ ये जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, छह सात से और 12-13 साल तक, इन बच्चों के बारे में मैम कुछ बताइए, इनके लिए योगा कुछ बता दीजिए बच्चों के लिए।
2: बच्चों के लिए तो देखिए, सबसे अच्छा योगा ही खेलना है। अगर आप बच्चों को अगर हम देखिए, जब पहले की बात भी करें तो यदि बच्चे बाहर, आपको सबसे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को बाहर निकलने दें, बच्चों को घर में ही ना बंधे रहें। उनकी एक्टिविटीज फिक्स कीजिए कि उन्हें 1 घंटा रोज साइकिलिंग करनी है या 1 घंटा मिट्टी में खेलना है। अपने आप में ये सबसे अच्छा योग है बच्चों के लिए। बच्चे तो चलते फिरते ही इतने सारे स्टेप्स कर जाते हैं। अगर आपको लगता है कुछ और भी नहीं कर रहे तो घर में 1/2 घंटा डांस कर लें, सबसे अच्छा योग यही है बच्चों के लिए।
1: धन्यवाद।
2: हाँ जी,
0: शुक्रिया। हेलो
3: हेलो
0: हेलो, हाँ जी
3: जी, एजाज अहमद, एजाज लहरपुरी
0: जी, बोलिए।
3: ऐसा कोई योग बता दें आसान जिससे दिल, दिमाग और लेंस स्वस्थ रहे।
2: देखिए, दिल दिमाग स्वस्थ तभी रहेगा जब हम पूर्ण योग करेंगे, जिसमें हमारा आहार भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और प्राणायाम। यदि आप रेगुलर प्राणायाम करते हैं और अपने आप को हाइड्रेटेड रखते हैं, मतलब ये है कि आपको दिन में 3 लीटर पानी पीना ही पीना है और साथ में प्रकृति के दिए हुए प्रॉपर जो प्रकृति ने दिया फल और सब्जियां, उनका सेवन आप करते हैं और आप 1/2 घंटा हंस भी लेते हैं, तभी आपका दिल और दिमाग स्वस्थ रहेगा। कोई एक योग आसन का नाम नहीं है जो आपको स्वस्थ रख सकता है, ये एक टोटल हेल्थ है जो आपको लेनी है। तो अपने आहार का भी ध्यान रखिए, खूब मौज मस्ती कीजिए और कुछ चीजें प्रभु पर छोड़ दीजिए कि यदि जीवन में कोई तकलीफ आती है तो जिसने दी वही ले लेगा। अगर हमारा ये हमारा जज्बा है तो हम दिलो दिमाग से हमेशा शांत रहेंगे।
0: जी,
3: बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लहरपुरी साहब कॉल करने के लिए। एक मैसेज है शालू जी, महापारा जी का है, लिखा है कि आई वांट टू नो योगा फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म एंड व्हिच काइंड ऑफ फूड इज यूजफुल इन आयुर्वेदा फॉर दिस डिजीज।
2: ओके, देखिए, हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए सबसे पहले जनरली मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि आपको जो

0: भी डिजीज है, सबसे पहले आपको उसका ये ज्ञान होना चाहिए कि डिजीज कौन से ऑर्गन से है और वो ऑर्गन हमारे शरीर में कहाँ है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए आप जनरली काग आसन और जो प्राणायाम है, जो जिनमें भी ऐसे प्राणायाम जिसमें भी हमारे गले में घर्षण होता है, हम भ्रामरी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, जो हमारे गले को अफेक्ट करते हैं, दैट हेल्प्स। और रही बात खान पान की, खान पान में आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप गोभी या ब्रोकली जैसी चीजें ना खाएं। धनिया जो है, वो धनिया हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा क्लिंजर है। उसको रात को भिगाकर सुबह उसका पानी पीजिए, और नहीं तो धनिया की चटनी भी खा सकते हैं। हरे धनिये को बहुत ज्यादा उपयोग में लाएं। उसके बाद सिंहासन बहुत ज्यादा यूजफुल है, जिसमें हम जीभ को बाहर निकालकर सिंह की तरह गर्जना करते हैं। बाकी जो थायराइड है, उसका सिक्रेशन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, इसीलिए हमें अपनी जो रेगुलर हमारा खान पान है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर वन, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। नंबर टू, टेक इनफ अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरी डे।
1: जन्नत आयशा खान ने मेरठ से पूछा है कि शुगर को कंट्रोल करने के लिए कौन सा आसन होना चाहिए।
0: शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत से आसन हैं, जैसे मंडूक आसन, भुजंग आसन, मत्स्येन्द्र आसन, हल आसन, धनुरासन, और भी कई सारे ट्विस्टिंग आसन हैं जिनमें हमारा पैनक्रिया स्पेशली अफेक्ट रहे। दीज आर दी आसन्स।
1: जी हेलो।
2: हेलो,
1: हाँ जी,
2: दत्तारथ मैडम जी को हाथ जोड़कर नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
2: रघुविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ।
1: जी रघुविंदर जी,
2: और योग गुरु को भी हमारा सादर प्रणाम।
0: नमस्कार।
2: मेरा सवाल ये है कि जिन लोगों को हर्निया की प्रॉब्लम होती है, उनको कौन से आसन करने चाहिए और कौन से आसन नहीं करने चाहिए, और जो लोग बीपी से ग्रस्त हैं, तो क्या उनको शीर्षासन करना चाहिए, कृपया बताने का कष्ट कीजिए।
0: देखिए, जो लोग जिन्हें हर्निया है उन्हें स्पेशली कपाल भाति नहीं करनी चाहिए और अग्निसार क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी नर्व्स अफेक्ट होती हैं। और जिनका बीपी हाई है उन्हें शीर्षासन नहीं करना चाहिए।
2: थैंक यू रघुविंदर सिंह चट्ठा की तरफ से, जय हिंद।
0: धन्यवाद। जय हिंद।
1: हेलो
3: जी, नमस्कार सर।
1: नमस्कार।
3: मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार करना चाह रहा हूँ।
0: नमस्कार
3: जी डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं, मैं रमेश कुमार बोल रहा हूँ बाराबंकी से।
0: हाँ जी
3: जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आंखों का ब्लड प्रेशर होता है, तो उसमें कौन सा योग करना चाहिए जिससे जो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए।
0: आपका मतलब है जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसमें क्या करना चाहिए, राइट? देखिए, जब ब्लड प्रेशर हाई होता है उसके लिए आप नॉर्मल अनुलोम विलोम कीजिए, बिल्कुल सांस भरना, रोकना और छोड़ना। नंबर टू, आपको गर्म पानी में पैर रखने चाहिए, जिससे खून का बहाव ऊपर की तरफ जाता है और ब्लड का प्रेशर लोअर डाउन हो जाता है। तीसरी चीज है, अगर ब्लड का प्रेशर बहुत हाई है उसी वक्त, तो अपने सिर को भिगाएं या सिर पर गीला तौलिया रख लें, और खान पान का ध्यान रखें। स्पेशली खान पान में बहुत सा कच्चा आहार और लिक्विड्स लें।
3: ये जी, मैं खाना शुद्ध शाकाहारी आदमी हूँ, मैं खाना शुद्ध खाता हूँ।
0: ठीक है
1: जी, पानी प्रचुर मात्रा में पीना चाहिए, ये मैम बोल रही हैं। चलिए, जैतपुर धामपुर से कवि प्रेमचंद प्रेमी जी का सवाल है शालू जी।
0: हाँ जी।
1: कि स्लिप डिस्क की स्थिति में कौन सा योगासन करना चाहिए।
0: स्लिप डिस्क, देखिए, स्लिप डिस्क में वही प्रॉब्लम है जैसे साइटिका में होती है, कि हमें या तो कमर में दर्द रहता है नीचे के हिस्से में, या हमारे पैर में जाता है। तो इसके लिए गरुड़ आसन है, और हमारा गौमुख आसन है, पवन मुक्त आसन है, और भुजंगासन है, ये हम कर सकते हैं। बाकी जैसा मैंने पहले भी बताया था कि आपने सीधा आप लेट गए हैं, और आपको दोनों पैरों को सीधा 90 डिग्री तक स्ट्रेट आप ऊपर ले जाएं और फिर नीचे ले आएं।
1: जी, कालका जी साउथ दिल्ली से दिनेश दयाल जी का कहना है मैम कि ये सूत्र नेति,
0: हाँ जी,
1: जो नाक में,
0: हाँ जी,
1: रस्सी,
0: हाँ जी,
1: डालने वाली जो क्रिया है वो कर लेते हैं, तो इन्होंने जानना चाहिए कि ये मंथली या वीकली कितनी बार करना चाहिए।
0: देखिए, अगर आपको कोई भी तकलीफ नहीं है तो आप सूत्र नेति कुछ दिन, 10 से 15 दिन रेगुलर कीजिए। ये हमारी मेमोरी के लिए, आईज के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और जब आपको लगता है कि आपकी नाक, दोनों नॉस्ट्रिल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से खुल गई हैं, तो आप इसे वीक में एक बार भी कर सकते हैं। 15 दिन में ज्यादा है, वीक में एक बार कीजिए, इट हेल्प्स।
1: सूरज यादव ने लिखा है बैंगलोर से कि हाउ कैन वी ओवरकम स्पीच स्टैमरिंग बाय योगा प्रैक्टिस।
0: स्पीच स्टैमरिंग के लिए देखिए कुछ सारी चीजें हैं, जैसे कि बलून फुलाना।

0: आपको अपने मुंह को मुंह से प्रेशर देकर बाहर एयर डालनी है। कुछ ऐसे ही एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें हम सांसों को छोड़ते हैं, मुंह से बहुत प्रेशर से वो छोड़ते हैं, उससे स्टैमरिंग में बहुत ज्यादा रिलीफ होता है। हमारे कुछ टेस्टेड ये हैं कि जब हम पेशेंट कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं स्टैमरिंग वाले जिन्हें हम जब मिर्च खिलाते हैं, मतलब उनकी नॉर्मल मिर्च से ज्यादा मिर्च खिलाते हैं, तो भी स्टैमरिंग में आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है।
1: जी, तो ये जो प्रक्रिया आपने बताई मिर्च खिलाने वाली, ये प्रॉपर गाइडेंस में होनी चाहिए, घर में
0: नहीं,
1: कोई
0: घर में भी
1: भी
0: कर सकते
1: घर
0: हैं
1: में
0: आप।
1: कर
0: हाँ
1: सकते
0: जी,
1: हैं?
0: घर में ट्राई कर सकते हैं, इट हेल्प्स।
1: ओके, हेलो।
2: हेलो।
1: हाँ जी
2: हाँ जी, नमस्ते जी।
1: नमस्ते, कौन सा बोल रहे हैं बताइए।
2: मैं पानीपत से मनवादर बोल रहा हूँ।
1: जी जी बोलिए।
2: मैडम, मेरा जो कमर में दर्द रहता है, मतलब ये इसके लिए कौन सा ये करना चाहिए वैसे?
0: कमर में दर्द कमर में है या पैरों में भी जा रहा है?
2: कमर में ही खाली दर्द होता है, उठने बैठता हूँ तो उठता हूँ तो टेढ़ा हो जाता है, और उठता हूँ तो बैठने में थोड़ी मुश्किल हो जाता है।
0: ठीक है, इसके लिए आप जनरली गौमुख आसन कर सकते हैं, पवन मुक्तासन से भी फायदा होगा। और थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि खाने में वायुकारक चीजें बंद कर दीजिए, जैसे दूध और दही है। और अपनी मोमेंट को फ्लेक्सिबल रखिए, मतलब एक ही जगह पर बहुत ज्यादा लंबे समय तक ना बैठे रहें।
2: थैंक यू मैडम।
1: ये अंकित जी का मैसेज है, लिखा है कि प्लीज प्लीज मेरा मैसेज शामिल कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक हमने मेरे ख्याल से सारे जो शारीरिक परेशानियों
0: हाँ जी।
1: को डील करने वाले मैसेजेस शामिल किए हैं। इनका कहना है मैम कि डिप्रेशन और मेंटल इलनेस से मुक्ति के लिए कौन सा योग करना चाहिए?
0: देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, डिप्रेशन और मेंटल इलनेस के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका प्राणायाम और आपका अनुलोम विलोम। प्राणायाम से जब आपको जब आपकी सांसें सांस आपकी दोनों नाड़ियां खुलती हैं, ईड़ा और पिंगला नाड़ी, तो आपको बहुत ही ज्यादा अपनी मेंटली यू फील बेटर। क्योंकि डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत लोगों को तो रिजल्ट होता है एसिडिटी का। आई एम नॉट श्योर आपके केस में क्या है, लेकिन प्राणायाम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज है, आप अपने आहार को इतना अच्छा रखें, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। मैं इसीलिए बात बार बार कह रही हूं क्योंकि रोज हम पेशेंट्स को ऐसे ही देखते हैं, क्योंकि हमें रूट कॉज को पकड़ना है, हमें फाइनल बीमारी को नहीं पकड़ना है। तो अल्टीमेटली एक तो नाक में तेल डालें, दिन में 2 से 3 बार दो दो बूंद तेल डालें। नंबर 2, अपने खूब सारा पानी पिएं। नंबर 3, अनुलोम विलोम करें। नंबर 4, कोशिश कीजिए प्रकृति में रहें, पार्क में जाएं, पहाड़ों पर जाएं, प्रकृति में बैठें, अपने आप को प्रकृति से एक्सपोज करें।
1: तो शालू जी, ये बहुत जरूरी है, आज की जो तनाव से भरी जिंदगी है,
0: हाँ जी,
1: डिप्रेशन और मेंटल बीमारियों का बहुत सारे लोग जो है शिकार हो रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारे जो बहुत सारा जो यूथ तबका है, जो उन्हें उनमें एग्जामिनेशंस का डर
0: हाँ
1: रहता है,
0: जी,
1: फियर रहता है आगे चल के फ्यूचर में क्या होगा, नौकरी को लेकर बहुत सारी इस तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स होती है। तो ऐसे में योग जो है उनका बहुत बड़ा एक मददगार साबित होता है।
0: हाँ जी। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है राम नाम, जो हम योग में भूल जाते हैं, वही है कि ट्राई टू एक्सेप्ट लॉट ऑफ थिंग्स जो हमारे हाथ में नहीं है। जब हम एक्सेप्ट करना भी सीख लेते हैं, तो भी हम मेंटल डिप्रेशन और एंजाइटी से दूर चले जाते हैं।
1: जी, तो अभी भी बहुत से कॉल्स आ रही हैं,
0: हाँ
1: बहुत
0: जी,
1: से मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सभी के घूम फिर के वही सवाल हैं
0: हाँ जी,
1: जो आप ऑलरेडी आंसर दे चुकी हैं। बीपी को लेकर है, गुर्दों को लेकर
0: हाँ
1: है,
0: जी।
1: किडनी, एक सवाल था कि गुर्दों में किडनी में दर्द रहता है, उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगी?
0: किडनी में दर्द के लिए देखिए, वैसे किडनी का दर्द, किडनी में एज सच ऐसे दर्द नहीं होता है, लेकिन अगर आपको किडनी में दर्द लगता है, तो आप ये कर सकते हैं कि 100 ग्राम के करीबन आप अदरक को कूट लें, उसका पानी गर्म कर लें और उसमें कपड़ा भिगोकर अपनी किडनीज पर रखें। तो इसको हम बोलते हैं जिंजर पैक। इससे किडनी में अगर कोई बीमारी भी है, तो उससे भी आपको बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलता है, प्लस पानी बहुत ज्यादा पिए।
1: जी, तो जैसे कि शालू जी ने बताया कि योग क्या है, योग है एक तरह से अपने आप का जीवन का संतुलन,
0: हाँ जी,
1: जीवन का संतुलन
0: हाँ जी,
1: कि हम अपने आप को नियम में बांधे, सुबह उठने का नियम, शौच जाने का नियम, ब्रेकफास्ट का नियम, भोजन का नियम, और
0: हाँ जी,
1: रात को सही समय पर
0: सोने
1: सोने
0: का
1: का एक
0: नियम,
1: नियम है, और आहार आहार पर बहुत ज्यादा ध्यान दें, क्या खाते हैं, कितना खाते
0: बिल्कुल
1: हैं,
0: बिल्कुल
1: और अगर जो कुछ हमारे बस में नहीं है तो उसे ईश्वर पर छोड़ दें।
0: बिल्कुल सबसे

0: बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज। और आपने ये भी कहा कि आधा घंटा कम से कम हंस लें, खुलकर हंस लें, एक स्वाभाविक सी जो हंसी है।
1: हाँ जी,
0: तो इसी बात पर शालू जी हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू सो मच। आप मैंने जैसे कहा कि बिना सांस लिए आप बोलती रहीं, हमारे जो लिसनर्स के सवाल थे उनके जवाब देती रहीं। थैंक यू सो मच। योगाचार्य डॉक्टर शालू गुप्ता हमारी एक्सपर्ट थी, और उन्हीं के साथ चलिए एक संकल्प लेते हैं आज इंटरनेशनल योगा डे पर कि और कुछ ना सही तो आधा घंटा हंस तो हम सकते हैं, है ना।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर 9:00 बजे।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।

0: श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट

0: श्रोताओं, अभी हमने सुना ये गीत फिल्म एनिमल्स है, जिसे आवाज दी है सोनू निगम ने। तो आइए अब बिना देर किए वे श्रोताओं सुनते हैं हमारे कुछ प्यारे दोस्तों के संदेश फादर्स डे के अवसर पर। जानते हैं वो अपने पापा को क्या मैसेज देना चाहते हैं और उनके लिए उनके फादर क्या मायने रखते हैं।
1: नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और मेरे दुलारे पिताजी विभीषण। विभीषण नाम सुनते ही हम सभी के जहन में एक भाव जगता है, जहाँ अधर्म खड़ा हो वहाँ विभीषण बन जाना ही सबसे बड़ा धर्म है। और मेरे प्यारे पिताजी इस कथन को हर दिन अपने कर्मों से सच करते हैं। पिताजी, जिन्हें मैं प्रेम से पापा, पप्पू, पीटर और प्यारों बुलाती हूँ, महीनों बाद इस छुट्टी पे घर आई हूँ। नहीं, घर से पहले सफर की बात साझा करना चाहूंगी। जिस रोज मेरी टिकट कंफर्म होती, उस वक्त से हर दिन मुझे घंटे गिनवाते और कहते, मेरा राजकुमार बस कुछ दिनों में घर होगा। और वो सफर का दिन, हर मिनट की खबर लेते, स्टेशन पहुंचे, खाना खाया, सीट मिली, कौन सी स्टेशन क्रॉस की। और वो मेरा सबसे अलौकिक दृश्य, उन्हें स्टेशन पे देखना। हालांकि झाझा स्टेशन आने से पहले प्रकृति की अनेकों रचनाएं मेरे नयन को मोह लेती, ऊंचे पर्वत, नील गगन, पवन की शीतलता में झूमती हुई फसलें और वो चारवाहों की मनमोहक गीत। परंतु ट्रेन झाझा पहुंचते ही एक नजारा इन सभी अलौकिक भूमिकाओं को शून्य कर देता। वो सफेद शर्ट में एक व्यक्ति, जिनके आंखों से मानो हीरे के अंश टपक रहे हों। 3 साल हो गए, आज तक आभास नहीं हुआ किस तरह मैंने अपने सामान को ट्रेन से उतारा। बस पापा को देर तक गले लगाया और घर पहुंच गई। चिंता मत कीजिए, मेरा प्यारा भाई मेरे सामान का रखवाला है। फादर्स डे के अवसर पर आप सभी से कुछ पंक्तियां साझा करना चाहूंगी, जो कुछ इस प्रकार है। मेरे सारथी मेरे पिताजी, मेरे सारथी मेरे पिताजी, मैं कुरुक्षेत्र की अर्जुन नहीं, ना मेरे पास गांडीव ना रथ का घमंड, परंतु आप मेरे श्री कृष्ण, जो बिना कहे मेरी हर राह आसान कर देते। पापा, जितना उजाला आपके कुर्ते में, उससे कहीं ज्यादा रोशनी आपके हृदय में है। हर सब्जी में आपका प्यार घुला है, हर फल में आपका दुलार मिला है, हर महीने आंगन को नए पौधों से भर देते। मामा के राजा हमारे प्यारे पापा, आपसे ही घर बनता गुलिस्ता हमारा। और वो शाम की बाइक राइड पापा, जब आप कहते चलिए सोनपरी, पेड़ों से बातें करके आते, ठंडी हवाएं, लंबी राहें और हमारी खट्टी मीठी कहानियों का सिलसिला आप हमें सिखाते। सोनू, कितना भी कठिन हो दिन, आप कभी ना हारना, हर किसी की सहायता करना, परंतु कभी हिसाब ना रखना। आपको सब याद रहता है ना पापा, मेरा टेस्ट, दिदिया का फॉर्म, बाबू का क्लास, मम्मी की पसंद की चाय, गमले का पानी, पक्षियों का खाना। आप बस अपनी थकान को याद रखना भूल जाते हो ना पापा। पापा, मैं तो आपकी वो छोटी सी केवट हूँ, जो आपका हाथ थामे हर लहर को पार कर जाती हूँ। हैप्पी फादर्स डे पापा।
2: नमस्कार, मैं निशांत कुमार, बिहार का रोहतास जिले का निवासी हूँ। आज पिता दिवस के अवसर पर मैं अपने पिता को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। मेरे पिता आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा सिखाया गया हर शब्द, हर सीख और हर संस्कार आज भी मेरे जीवन का मार्गदर्शन करता है। उन्होंने मुझे सिखाया, परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उनका विश्वास, उनका समर्पण और उनका संघर्ष आज भी मुझे आगे बढ़ने में प्रेरणा देती है। जब भी मैं किसी चुनौतियों का सामना करता हूँ, पिता केवल एक व्यक्ति नहीं होता, वे हमारे जीवन का वह शक्ति होता है जो हमें गिरकर संभलना, हारकर भी उठना और सपनों को सच करने में हौसला देता है। भले आज मेरे पिता मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनकी याद, उनका आदर्श और उनका आशीर्वाद हर पल मेरे साथ है। इस पितृ दिवस पर मैं अपने पिता को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और संकल्प लेता हूँ कि उनके बताए रास्ते पर चलकर अपने सपनों को साकार करूँगा।
3: हाय, मैं हूँ काजल गुप्ता और मैं मेरे पापा की तीसरी बेटी हूँ। घर में मुझे सब प्यार से बप दुलरी कहते थे, इट्स मीन पापा की दुलारी। हम तीनों बहनों में अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थी कि मेरे पापा हम तीनों में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। बट समय बीतता गया।

और अब हम अलग हो गए। पहले हम पापा का इंतजार किया करते थे और अब पापा हमारा इंतजार किया करते हैं, और हमारी जाने पे वो बच्चों की तरह खिलखिला उठते हैं। और जब हमारे आने का वक्त होता है तो वो गले लगाकर माथा नहीं चूमते, बस अपनी आंखों में ये कह रहे होते हैं कि कुछ भी परेशानी हो तो चले आना, मैं हूँ यहाँ। सो आज फादर्स डे है और मैं उन्हें बोलना चाहती हूँ, आई लव यू सो मच पापा। आप सूरज की तरह हो जो थोड़ा गर्म तो हो मगर आपके बिना हमारी जिंदगी अंधेरी सी है। सो टुडे आई वाना डेडिकेट यू दिस सॉन्ग।

0: I love you, Papa.
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

बंदों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: श्रोताओं, अभी हमने सुना ये गीत थ्री इडियट्स से, और अब हम बात करेंगे मॉनसून की।
1: मौसम की पहली बारिश में कुछ इस तरह का जादू है। मौसम की पहली बारिश में कुछ इस तरह का जादू है। मिट्टी की सौंधी खुशबू है और दिल थोड़ा बेकाबू है। चाय की प्याली से उठती उस धुएं में तुम दिखते हो। अरे जनाब, इस रिमझिम में छुपा यादों का पुराना तराजू है।
0: वाह, बिल्कुल प्रीतेश, मौसम सिर्फ एक मौसम नहीं है, बल्कि ये एक एहसास है दोस्तों। सूखी धरती की प्यास बुझाने से लेकर हमारे चेहरों पर मुस्कान लाने तक मानसून अपने साथ एक नई जिंदगी लेकर आती है।
1: बिल्कुल, और यही नहीं शिवांगी, अगर आप देखें तो जब सूखी मिट्टी पर पानी की पहली बूंद गिरती है तो जो गजब की खुशबू आती है, दिल करता है उसे बस सांसों में भर ले। क्या आप जानती है कि विज्ञान की भाषा में इसे भीनी भीनी खुशबू को क्या कहते हैं?
0: नहीं,
1: इसे पैट्रिचोर कहा जाता है।
0: वाह प्रीतेश, ये महक तो वाकई जादुई है। दरअसल दोस्तों, ये खुशबू मिट्टी से मौजूद एक विशेष बैक्टीरिया से उत्पन्न होती है, और जब ये पौधों से निकलने वाले तेल के साथ जब पानी मिलता है, तब ये खुशबू हमारे जहन में उतरती है।
1: और श्रोताओं, हमारे लिए मानसून भले ही लॉन्ग ड्राइव या पकौड़े खाने का बहाना हो, लेकिन हमारे अन्नदाता यानी किसानों के लिए यह उनकी पूरी साल की मेहनत और जिंदगी का सवाल है शिवांगी।
0: बिल्कुल प्रीतेश, जब आसमान से पहली बार बादल उमड़ते हैं तो किसान भाई खुशी से झूम उठते हैं। धान की बुनाई से लेकर मक्के की खेती तक सब कुछ इसी बारिश के पानी पे भरोसा है होता है। मॉनसून का सही समय पर आना देश की तरक्की और उन्नति का अवसर होता है।
1: बिल्कुल, बात अगर हमारे बिहार की करें तो यहाँ मानसून का एक अलग ही रंग देखने को मिलता है। जब पूर्वा हवा चलती है ना, आपने तो सुना ही होगा पूर्वा हवा, तो आसमान घिर आता है, तो खेतों में हल चल पड़ते हैं। हमारे यहाँ आर्द्र नक्षत्र के शुरू होते ही धान की रोपनी का काम त्योहार की तरह शुरू हो जाता है।
0: जी हाँ प्रीतेश, खेतों में घुटने तक पानी से खड़ी औरतें जब सोहर गाते हुए धान रोपती हैं, तो वो नजारा, ओहो,
1: क्या अद्भुत है।
0: ये हमारी संस्कृति और श्रम का सबसे सुंदर तालमेल है। तो दोस्तों, मानसून बिहार की लोक संस्कृति की आत्मा में बसा हुआ है, और साथ ही
1: थोड़ा जायका की बात कर ली जाए, तेज बारिश हो रही है, खिड़की पर बूंदे की टप टप आवाज हो, तो ऐसे में रसोई से आने वाली किस चीज की खुशबू आपको सबसे ज्यादा बेचैन करती है शिवांगी?
0: मुंह में पानी आ गया प्रीतेश, गर्मा गर्म प्यास के पकोड़े और चाय।
1: आय हाय हाय, क्या बात है। मानसून हमें सीधे हमारे बचपन में ले जाता है, क्यों?
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: याद कीजिए वो दिन जब बारिश होते ही हम स्कूल की छुट्टी के लिए दुआ करते थे, और जैसे ही गलियों में पानी जमा होता था, हम रंग बिरंगी कागज की नावें बनाकर पानी में छोड़ देते थे।
0: बिल्कुल प्रीतेश, और आज के बच्चे भले ही वीडियो गेम में बिजी हो, लेकिन बारिश के पानी में छपाक छप करना तो आज भी किसी ने नहीं छोड़ा है। तो
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ दोस्तों, सुनते हैं हमारा अगला ट्रैक, बातें जारी रहेंगी।

0: तो शिवांगी, अब वक्त हो चला है हमारे एक खास सेगमेंट का जिसको कहते हैं रोचक तथ्य।
1: बिल्कुल प्रीतेश, और मॉनसून के साथ साथ क्यों ना फलों का मौसम भी चल रहा है, तो आज बात करेंगे दो एक ऐसे फलों की जिसे देखकर मुंह में पानी ही आ जाता है।
0: आम और लीची।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: और क्योंकि मानसून के साथ साथ आपने देखा ही है कि फलों का भी मौसम चल रहा है, तो पहला रोचक तथ्य आम के बारे में ही ले लिया जाए। क्या आप जानती हैं कि आम को फलों का राजा कहा जाता है? ये तो सबको पता है। और भारत में आम की 1,000 से अधिक किस्में पाई जाती हैं, इसीलिए।
1: बिल्कुल, और एक और दिलचस्प बात यह है कि आम सिर्फ स्वाद में नहीं बल्कि विटामिन ए, सी और कई एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है दोस्तों।
0: वाह,
1: और अब बात लीची की करें तो लीची का जन्म स्थान आपको पता है?
0: नहीं कहाँ है?
1: लीची का जन्म स्थान चीन माना जाता है, लेकिन
0: अच्छा,
1: भारत दुनिया का सबसे बड़ा लीची उत्पादक देशों में से शामिल है, और बिहार की हमारी शाही लीची तो देश विदेश में अपनी खास पहचान भी रखती है दोस्तों।
0: बिल्कुल। और क्या आप जानते हैं कि लीची में लगभग 80% तक पानी होता है, इसलिए यह गर्मियों में शरीर को ठंडक और ताजगी देने का काम करती है।
1: बिल्कुल श्रोताओं, आज के कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे।

0: कि एक ऐसी सोच की जो हर युवा के लिए बहुत ही जरूरी है, सपने देखने की हिम्मत।
1: हाल ही में दुनिया के जाने माने उद्यमी एलन मस्क ने कहा कि अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो रास्ते में रुकावट भी आएंगी, लेकिन अगर आप अपने सपनों पर भरोसा रखते हैं तो वही रुकावटें आपको और मजबूत बनाती हैं।
0: इसी उम्मीद और सकारात्मक सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अपने सपनों पर विश्वास रखिए, खुद पर भरोसा रखिए और हर दिन कुछ नया सीखते रहिए। नमस्कार।

युवाणी, अभी आप सुन रहे थे युवाओं को संबोधित ये कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। आप सुनेंगे मैथिली कार्यक्रम भारती।

श्रोता नमस्कार। आजुक भारती में पवन अपने लोकनिक स्वागत करते हैं। श्रोता, आई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस थी। आई अवसर पर मीरा कुमारी की वार्ता सुना बिख्या है। भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थी योग। संग ही मीना मिश्रा गीत सुनोती, मुदा आओ पहने हम लोग किछ गप कर लै छी। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। स्वतः भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के लिखल ई पाइत मातृभाषाक विकासक गप करित अछि। एकर माने ठीक अपन मातृभाषाक प्रगति सब प्रगतिक जड़ थिक। मातृभाषा के ज्ञानक अभाव में अपन हृदय के तकलीफों के ककरो सोझा व्यक्त नहीं कैल जा सकै छ। एकर मूल में जो जाए तो विचारक स्पष्टता के लेल मातृभाषा जरूरी थिक। मातृभाषा माने मायक भाषा। कोनो नेना अपन माय सँ जे भाषा बाजब सीखैत अछि ओ भेल मातृभाषा। विचारक आदान प्रदान करबाक लेल सबसे आसान अछि मातृभाषा। जखन विचारक आदान प्रदान नीक सँ हुआ लागत तखने समाज आ देशक सर्वांगीण विकास कयल जा सकै छै। हमरा लोकन के देश विदेशक साहित्य कला आदि के ज्ञान जहाँ धरि संभव हो करक चाही। आन भाषा के ज्ञान सेहो सिखबाक चाही। ओहि सब में ज्ञानी बनि गेलाक बादो जँ ओहि ज्ञान के बाँटब वाला गप करी तो सुगमता से ओ अपनही भाषा में संभव थिक। ज्ञानक प्रसारक लेल जरूरी थिक निज भाषा मातृभाषा। श्रोता, आई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस थिक। सब वर्ष 21 जून का दुनिया भर में योग के शारीरिक मानसिक आ आध्यात्मिक लाभक प्रति जागरूकता बढ़ेबाक लेल मनाओल जाइत अछि ई दिवस। पहिल बेर ई दिवस वर्ष 2015 में मनाओल गेल छल। 21 जून वर्षक सबसे पैघ दिन थिक। योगक दृष्टि आजुक दिन प्रकृति आ आध्यात्मिक ऊर्जाक लेल बड़ महत्वपूर्ण आ सकारात्मक मानल जाइत अछि। स्वतः दिवस के मुख्य उद्देश्य दुनिया भरिक लोक के स्वस्थ जीवन शैली आ तनाव सँ फराक रहबाक लेल प्रेरित करैत अछि। संगहि योग प्राचीन भारतीय संस्कृतिक प्रतीक थिक जे वसुधैव कुटुम्बकम केर भावना के संग सौंसे दुनिया के एकजुट करैत अछि। कहल गेल छे योग बनावे निरोग। योग हमरा लोकनिक दिमाग के तेज करैत अछि, जाहि सँ बुद्धि बढ़ै छै। योगक अभ्यास जँ नियमित रूपे कयल जाए तऽ ओहि सँ हमरा लोकनिक आत्म अनुशासन आ आत्म जागरूकता बढ़ैत अछि। श्रोता, योग मात्र शारीरिक व्यायामक साधन तँ नहि थिक, ई मानसिक आ आत्मिक शांति सेहो अनैत अछि।

श्रोता, शारीरिक स्वास्थ्यक लेल योग बड़ जरूरी थिक। आसन आ प्राणायामक अभ्यास सँ शरीरक लोच, ताकत आ सहन शक्ति बढ़ैत अछि। नियमित योग कयला सँ मांसपेशी मजबूत होइत अछि, देह में खूनक संचार में सुधार होइ छै आ पाचन तंत्रक काज करबाक क्षमता सेहो बढ़ि जाइ छै। एहिसँ हृदय स्वस्थ रहैत अछि आ कतेक रास व्याधि सँ शरीरक रक्षा होइ छै। योग शरीरक संतुलन के नीक बनबैत अछि, जाहिसँ शरीर में ऊर्जाक बढ़ोतरी होइ छै आ शरीर में स्फूर्ति बनल रहै छै। श्रोता, मानसिक स्वास्थ्यक गप करी तो योग कयने एहिमे सेहो फायदा भेटै छै। ध्यान आ प्राणायामक माध्यम सँ तनाव, चिंता आ अवसाद कम होइत अछि। योग मस्तिष्क केर काज करबाक क्षमता बढ़बै छै आ एकाग्रता आ स्मरण शक्ति में सुधार करैत अछि। ध्यानक अभ्यास सँ मानसिक शांति आ संतुलन भेटै छै, जाहिसँ विचार में अस्पष्टता अबैत अछि आ निर्णय लेबाक क्षमता बढ़ै छै। योग हमरा लोकनिक मन में सकारात्मक भावना जगबैत अछि, एहिसँ आंतरिक शांति आ खुशीक अनुभव होइ छै, माने चित्त प्रसन्न रहैत अछि। योगाभ्यास सँ आत्मनियंत्रण आ अनुशासन अबैत अछि, एहिसँ नैतिक आ आध्यात्मिक विकास सेहो होइ छै। श्रोता, योगक बड़ बेसी महत्व हमरा लोकनिक जीवन में छै। ई शारीरिक, मानसिक आ भावनात्मक रूपे व्यक्ति के स्वस्थ रखैत अछि। एकर नियमित अभ्यास सँ जीवन स्वस्थ, सुखद आ समृद्ध बनैत अछि। तैं जीवन में योग के अपनाबी आ अपना के सदिखन व्याधि मुक्त, चिंता मुक्त आ तनाव मुक्त राखी। श्रोता, आओ आप कार्यक्रम दिस बढ़ी, आओ पहिने सुनी हमरा लोकनि मीना मिश्र सँ ई गीत।

0: श्रोता छले मीना मिश्रा सुना रहा छले विद्यापति गीत। आगा कार्यक्रम में इनका सार गीत सुना। आओ हमरा लोकन जे गप कर रहा छलो हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में, तो योग कोना हमरा सभक भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग थी, अहि संदर्भ में जानी मीरा कुमार जी मीरा कुमारी की विचार हिनक वार्ता के बिखाय अछि भारतीय सांस्कृतिक अभिन्न अंग योग। आओ सुनै छी हमरा लोकन ई वार्ता मीरा कुमारी से।
1: भारतीय संस्कृति विश्व के सबसे पुरान आ महान संस्कृति में से एक अछि। ई सांस्कृतिक पहचान केवल ओकर त्यौहार रीति रिवाज और आध्यात्मिक परंपरा से नहि बल्कि योग जेहन मूल्य धरोहर से होइत अछि। योग भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग अछि, किएक तँ ई मनुष्य के शरीर मन आ आत्मा के संतुलित आ स्वस्थ बनेबाक मार्ग प्रशस्त करैत अछि। योग हमरा सबके विरासत में भेटल अछि, ई महर्षि पतंजलिक देन अछि। हिनका द्वारा योग के व्यवस्थित रूप देल गेल। योग शब्द संस्कृत धातु युज सँ बनल छै, जकर अर्थ होइत अछि जोड़ या मिलल। योगक उद्देश्य आत्मा के परमात्मा सँ मिलन तथा मन शरीर आ बुद्धि में संतुलन स्थापित केनाइ अछि। योगक परंपरा हजारों वर्ष पुरान अछि। एकर प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता सँ भेटैत अछि। वेद उपनिषद भगवत गीता आ पुराण में एकर विस्तृत वर्णन अछि। महर्षि पतंजलि योग सूत्रक रचना करिकऽ एकर वैज्ञानिक रूप प्रदान केलनि, एहि लेल हुनका योगक जनक कहल जाइत छनि। एहि योग जखन अंग्रेजी में योगाक नाम सँ विदेश में प्रसिद्ध भेल तँ विदेशी लोग एकरा अपना कऽ अपन मानसिक शारीरिक शक्ति के मजबूत करऽ लागल। तखन भारतीय सब में योगक प्रति जागरूकता बढ़ल। जखन कि हमर अनुकरण विश्व करैत अछि आ एहन महत्वपूर्ण बात के हमसब बिसरि कऽ सुतल छलहुँ आ पश्चिमी सभ्यताक ओर आकर्षित भेल रहूँ, अपन असीम क्षमताक नहि पहचानलहुँ। करे योग रहे निरोग के सूत्र के आत्मसात करिकऽ भारतीय जीवन शैली के अपनाबू। प्रकृति के जीवन शैली वैदिक जीवन शैली सँ किछु सीख लिअ तथा एकरा अपना कऽ कैंसर जेहन घातक बीमारी के दूर करू। योग शरीर के स्वस्थ एवं निरोग बनबैत अछि। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी के द्वारा

संदेश देल गेल कि योग सँ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यक पोषण भेटैत अछि। योग ओ जीवन शैली छै जाहि सँ विषाणु रोगाणु सँ लड़बाक अपूर्व शक्ति पैदा करैत अछि आ रोग के दूर करेबाक शक्ति बढ़ला सँ कोनो स्वास्थ्यक दुश्मन के संक्रमण हमरा किछु नहि बिगाड़ सकत। हमर शरीर के प्रत्येक कोष सक्रिय रहे एकरा लेल शारीरिक क्रियाशील होयबाक जरूरी अछि जाहि सँ रक्त संचालक प्रक्रिया सही ढंग सँ होयत, अन्यथा त्वचा कसावट नहि रहत, शरीरक चर्बी बढ़ जायत, खून नीक जकाँ शरीर के प्रत्येक कोष मे नहि पहुँचत, उपरांत अनावश्यक मोटापा शरीरक थुलथुलापन बढ़ जायत आ त्वचा बदरंग भऽ के लटकऽ लागत। शरीर के जोर मे जकरन पीड़ा रक्तचाप ऊंच नीच हृदयक धड़कन असमान भऽ जायत, मधुमेह अपच कब्ज भूख नहि लागत, अनिद्रा इत्यादि रोग बढ़ जायत। योगासनक अभाव मे शरीर मे अनेक तरहक बीमारी विषाणु अपना स्थायी घर बना लेत जेकर दुष्परिणाम ई होइत कि हम कखनो स्वस्थ नहि रहब, कोनो काज करबाक इच्छा नहि करत, सदिखन कमजोरी आलस लागत, शरीर दुर्बल भऽ जायत। यदि हम अपनाके क्रियाशील राखब तऽ शरीर रूपी मशीन के कल पुर्जा मे जंग नहि लागत, शरीरक विकार के बाहर निकालि कऽ कलपुर्जा के स्वच्छ गतिशील बना कऽ राखक काज योग जीवन शैली करैत अछि। एकरा अभाव मे शरीर के कई तरहक कठिनाई के सामना करबाक पड़ैत अछि। प्रातः के अमृत बेला मे शुद्ध प्राण वायु मे योगासन प्राणायाम बंद मुद्रा एवं ध्यान अपना कऽ अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के ठीक रखबाक चाही। योग सँ प्रत्यक्ष लाभ ई होइत अछि जे शरीर सुगठित रहत, अस्थि तंत्र मजबूत बनत, शरीर मे इम्यूनिटी पावर बढ़त आ मानसिक रोग नष्ट सेहो होइत। आजुक तनावपूर्ण जीवन मे मानसिक शांति होयबाक जरूरी अछि। ध्यान और प्राणायाम सँ मन एकाग्र होइत अछि तथा चिंता और तनाव के कम सेहो करैत अछि। ई समग्र मानसिक स्वास्थ्य मे सुधार करय वाला शक्तिशाली उपकरण सिद्ध भ सकत। नियमित योग अभ्यास के माध्यम सँ युवा अपन भावना के प्रतिबंधित कऽ सकत, अपन आत्म जागरूकता बढ़ा कऽ जीवन के प्रत्येक चुनौतीक सामना करबाक लेल मार्ग प्रशस्त कऽ सकता। भारतीय सदिखन अपन जड़ के हे दृष्टि से देखलक, किएक तऽ पश्चिमी सभ्यता मे बताएल गेल कि हमसब हीन आ असभ्य छी, मुदा आइ एकर अस्वीकारिता बढ़ रहल अछि। विश्व ई निष्कर्ष पर पहुँच रहल अछि कि मन तन के स्वस्थ रखबाक लेल योग जरूरी अछि। एहि विद्या सँ मानव जीवन के सर्वांगीण विकास संभव थिक। ई विज्ञान समस्त विद्या अपन नाम के अनुरूप विश्व के जोड़बाक शांति एवं सद्भावक संदेश देबाक काज कऽ रहल अछि। योगक माध्यम सँ एक खुशहाल विश्व के निर्माण होयबाक संगे संग इहो भाव व्याप्त भ रहल छै कि विश्व एक परिवार अछि। भारतीय संस्कृति के अभीष्ट यही थिक। हमर जीवनक मूल आधार योग के लोकप्रिय बनेबा एवं ओकर महत्व सँ परिचित करेबाक श्रेय भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अछि, किएक तऽ ओ संयुक्त राष्ट्र के मंच सँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनेबाक लेल समस्त लोग सँ आग्रह केलनि। योग विश्व के भारत के एक एहन देन अछि जे कोनो वरदान सँ कम नहि अछि। योग और भारतीय संस्कृति मे घनिष्ठ संबंध अछि। ई भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक आ धार्मिक परम्पराक अहम हिस्सा थिक। प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक परम्परा से ही उत्पन्न भेल आ देश के संस्कृति के अभिन्न अंग बनल। एहि संस्कृति मे आत्मा और परमात्मा के संबंध के विषय मे बताएल गेल। योग व्यक्ति के आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नतिक ओर लऽ जाइ छै। स्मृति पुराण और सब धार्मिक ग्रंथ मे योगक संदर्भ मे उल्लेख भेटैत अछि। एकर विशेषता ई थी कि ई केवल सैद्धांतिक ही नहि बल्कि व्यवहारिक सेहो अछि।

0: स्वस्थ शरीर तथा सबल आत्मा दुनू ही एकर प्रतिपाद्य विषय अछि। योग मूलतः एक अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित अनुशासन अछि जे मन और शरीरक मध्य सामंजस्य स्थापित करैत अछि। ई स्वस्थ जीवन जीवा कला और विज्ञान अछि। भारत में योगक इतिहास 5000 साल से भी अधिक पुरान अछि। योगक पहिल लिखित उल्लेख ऋग्वेद में भेटल अछि। अथर्ववेद में सांस पर नियंत्रण के महत्व पर जोर देल गेल। 21 जून के आदि योगी भगवान शिव अपन शिष्य के योगक ज्ञान देवाक शुरू केलन। एहि लेल ई दिवस योगक उद्भव कहलायल। खगोलीय और आध्यात्मिक महत्वक कारण ही 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनायल जाइत अछि। आजुक जीवन तीव्र गति आ अत्यधिक प्रतिस्पर्धाक भावना कारण युवा वर्ग अभूतपूर्व स्तर सँ तनाव, चिंता और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहल छथि। शैक्षणिक प्रदर्शन, सोशल मीडिया और सामाजिक उपेक्षाक दबाव के कारण ओ अभिभूत, अवसादग्रस्त और बर्नआउट के महसूस करै छथि। एहन स्थिति में योग तनाव, चिंता के कम करके समस्त मानसिक स्वास्थ्य में सुधारक काज करै छै। एही कारण सँ योगक महत्व खूब बढ़ गेल। विद्यार्थी, कर्मचारी, खिलाड़ी, बुजुर्ग वर्ग सब योगासन पर विशेष ध्यान दियो लागल आ एकर लाभ से लाभान्वित हुओ लागल। व्यक्ति ध्यान एवं साधनाक माध्यम सँ अपन आंतरिक शक्ति के पहचान कऽ आत्मा और परमात्मा सँ जुड़ेबाक प्रयास करऽ लागल। योग आत्मिक उन्नति के सर्वोत्तम साधन मानल गेल अछि। अतः योग भारतीय संस्कृतिक अमूल धरोहर अछि। ई मानव जीवन के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक सब पक्ष के विकास करैत अछि। योग हमरा सबके स्वस्थ शरीर, शांत मन, सुदृढ़ चरित्र और उच्च जीवन मूल्य के शिक्षा दैत छै। एकरा बिना सफल एवं सुव्यवस्थित जीवन जीबाक कल्पना केनाय मुश्किल ही नहि, असंभव। वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति के योग के अपन दैनिक जीवन में शामिल करबाक चाही। तखन ओ स्वस्थ, सुखी और संतुलित जीवन जी सकता आ भारतीय संस्कृति के महान परंपरा के आगू बढ़ा सकता। तो आओ आ संकल्प लिए कि सफल एवं सुखमय जीवन जीबाक अछि तो योग के अपनाओ आ आगू बढ़ कर सबके एकरा अपनावक लेल प्रेरित करू।
1: हाँ श्रोता, जरूरत अही गप के छे कि अपनो योग करी आ संगहि लोक के योग करबाक लेल प्रेरित करी, जाहिसँ एकटा स्वस्थ व्यक्तिक संग स्वस्थ समाज आ स्वस्थ देशक संग स्वस्थ दुनिया के निर्माण भ सके। धन्यवाद दियन मीरा कुमारी के अब वार्ता के लेल। विख्यात छल भारतीय संस्कृतिक अभिन्न अंग योग। आओ अब हम लोग मीना मिश्रा से सुनै छी ई अगला गीत।

श्रोता छली मीना मिश्रा सुना रहा छली बियाह गीत। एखन जे मलेमास छले, मलेमास के खत्म भेला के बाद फिर से बियाह दान के काज शुभ कार्य जे छे से शुरू भ गेल छे, तो तैं लक बियाह गीत अपने लोकन सुनल। आओ अब हम लोकन मीना मिश्रा से सुनी अगला गीत सुना रहा छथि झूमर।

श्रोता छल झूमर सुना रहा छी मीना मिश्रा। आजुक सब गीत के लिए मीना मिश्रा के मन से धन्यवाद दियन। आ श्रोता आजुक भारती में आई बस हेतव। अगला कार्यक्रम में फिर भेंट घाट हेतु गपशप हेतु। तादर पवन के विदा दियो। नमस्कार।

मैथिली कार्यक्रम भारती, अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 6 बज चुके हैं। हम आपको बता दें आज की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में।

श्रोता, अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 6:05 पर भोजपुरी बुलेटिन यानी भोजपुरी समाचार का प्रसारण होगा। इसके बाद योग दिवस पर विशेष परिचर्चा होगी जो प्रादेशिक समाचार एकांश की प्रस्तुति होगी। 6:20 पर सुनिएगा संस्कृत में समाचार। पर आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ओल्ड टर्फर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे। सात पर प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण होगा। जिले की हलचल सुनेंगे 7:52।

8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज़ एट 9 और 9:15 पर उर्दू में खबरें प्रसारित होंगी। ये थी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

0: सिलसिलेवार ढंग से बताता हूँ कि एएनएम का कोर्स जो होता है वो इंटर पास लड़कियां कर सकती हैं। इंटर पास किसी भी स्ट्रीम से इंटर पास होना चाहिए और वो 2 साल का कोर्स होता है। इसमें भी नर्स की पूरी पढ़ाई होती है, मतलब एनाटॉमी फिजियोलॉजी की सारी बात बताई जाती है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग बताया जाता है, उसके साथ साथ उसके बायोकेमिस्ट्री बताए जाते हैं, फिजियोलॉजी बताए जाते हैं, साइकोलॉजी बताई जाती है, बायोकेमिस्ट्री की सभी विधाएं बताई जाती है। इस तरह से एएनएम की पढ़ाई भी एक पूरी नर्स की पढ़ाई है। और ये जो देखते होंगे कि एक्जिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी इसको कहते हैं, जो पहले 1.5 साल का होता था अब 2 साल का हो रहा है। अब ये जो होता है बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा होती है, पहले बीएनआरसी के द्वारा होता था, अब बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा होता है। तो ग्रोल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग के, ग्रोल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एएनएम की पढ़ाई शुरू हो गई। उसके साथ साथ जीएनएम है, तो जीएनएम होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ये उससे कुछ ऊपर दर्जे का हुआ और ये 3 साल की पढ़ाई होती है। इसमें एएनएम और जीएनएम से में विशेषता क्या है कि एएनएम तो एक तो 3 साल की पढ़ाई हो गई और उसके साथ साथ इसमें कुछ एडवांस पढ़ाया जाता है उससे, कि ताकि ये सब जो एएनएम को उससे ऊपर की पढ़ाई कर लेने के बाद जैसे और ज्यादा सघन चिकित्सा की जरूरत पड़ती है, आईसीयू की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ एएनएम को नहीं रखा जाता, वहाँ जीएनएम को रखा जाता है, क्योंकि वो ज्यादा जानकार होते हैं और उसमें ज्यादा दक्ष होते हैं, तो उसकी पढ़ाई थोड़ा उससे लेवल जो होता है वो ऊपर होता है। और उसके साथ साथ अब जो होता है तीसरे 3 साल के बाद एक और पढ़ाई होती है जिसको कहते हैं बीएससी नर्सिंग। तो बीएससी नर्सिंग जो होता है ये नर्सिंग का ही क्षेत्र है और ये बैचलर का कोर्स होता है, तो ये 4 साल का कोर्स होता है। इसको भी बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ही संचालित करती है। और इस तरह से ये उससे भी एडवांस होता है, एएनएम से एडवांस जीएनएम हुआ, जीएनएम से एडवांस बीएससी नर्सिंग हुआ। तो इस तरह से ये तीनों कोर्स जो है वो नर्सिंग क्षेत्र में अपना अपना योगदान देती है। एक सबसे नीचे का जो हुआ डिप्लोमा कोर्स जो हुआ वो हुआ एएनएम का कोर्स, उसके बाद डिप्लोमा से थोड़ा ऊपर इसको मेजनाइन कोर्स कहते हैं, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होता है, जीएनएम का कोर्स होता है, और बैचलर का कोर्स डिग्री कोर्स जिसको कहते हैं वो होता है बीएससी नर्सिंग का कोर्स।
1: ये पूरी जानकारी दी, एक बात बता दें आपको, हाँ यहाँ जो गोरौल में
0: अच्छा बीएससी नर्सिंग में एक चीज बातें जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के बाद एक बात बताना भूल गया,
1: बोलिए
0: कि उसमें क्या है कि जीएनएम कोर्स और बीएससी नर्सिंग कोर्स इसमें लड़का लड़की दोनों कर सकता है।
1: क्या बात है।
0: अच्छा जीएनएम में जो है किसी भी स्ट्रीम से कर सकता है, कोई भी स्ट्रीम से इंटर पास किया हो, लड़का कॉमर्स भी हो, आर्ट्स भी हो, साइंस भी हो, कोई भी स्ट्रीम से हो तो वो कर सकता है। और उसके साथ साथ पीएससी के जहां तक बात होती है तो उसमें सिर्फ आईएससी पास ही लड़के कर सकते हैं, लड़का लड़की कर सकती है, आईएससी बायोलॉजी से होना चाहिए और उसके बाद ही ये 4 साल का कोर्स कर सकता है। तो इसमें बाध्यता है कि आईएससी बायोलॉजी होना चाहिए, बाकी में कोई बाध्यता नहीं है।
1: बाकी में कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी तीनों में है। हेल्थ सेक्टर के बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स हैं बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम। अगर इसके अलावा आपको कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो डॉक्टर साहब का नंबर है 9162413233 और दूसरा नंबर है 9155558888। और ये संस्थान जो है गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जैसा कि हमने बताया था एसएस प्रोफेशनल के समय कि गोरौल स्टेशन से लेकर के आप जब पीएससी की तरफ आते हैं तो बीच में कौन सा नगर पड़ता है, संस्कार नगर में ये संस्थान है। बहुत बड़ा कैंपस है, आप देख सकते हैं जाके। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, प्रैक्टिकल की जरूरत होती है तो बच्चों को ये बताइए कि क्या व्यवस्था कर रहे हैं वहाँ प्रैक्टिकल के लिए।
0: देखिए वहाँ अपना अस्पताल भी संचालित होने वाली है, कुछ ही दिन में उसका उद्घाटन हो जाएगा
1: जी।
0: और उसके साथ साथ जो श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग के जो कैंपस अपना है उसको एडवांस के लिए तो यहाँ है ही, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो वहाँ पर है गोरौल है
1: जी, जी।
0: उसमें भी हमने व्यवस्था कराई है कि उसका जब 2 साल हो जाएगा, दूसरे साल में उसको वहाँ पर प्रैक्टिकल की सुविधा दी जाएगी।
1: मतलब कुल मिलाकर समझिए, ये सवाल हमने आपकी तरफ से डॉक्टर साहब से किया था, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। और बहुत खुशी की बात है कि डॉक्टर साहब ने कहा कि गोरौल में तुरंत हॉस्पिटल की स्थापना हो रही है, उद्घाटन होगा। इसके अलावा श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल है इस संस्थान

0: क्योंकि ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन तो श्री राज ग्रुप है, आप पटना भी आ सकते हैं और पीएससी में भी आपको मौका मिलेगा। आपके घर के अंदर, आपके घर में, मोहल्ले में कहिए कि ये संस्थान आ गया। क्या सोचकर आपको लगता है कि सफल होगा वहाँ, के बच्चों के लिए कुछ फायदेमंद होगा?
1: 100%। इसलिए जरूरी कि सबसे मांग वाली, देखिए बच्चों को आजकल अभी भी बिहार इतना एडवांस हुआ, उसके साथ साथ भी अभी भी कुछ ऐसे हैं कि जो होम सिकनेस रहता है कि पास के में ही पढ़ने तो अच्छा रहे, हमारी बच्ची उतना दूर नहीं जाएगी, नजदीक में ही होगा तो हम पढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो आसपास के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बहुत दूर आना बहुत लोगों को संभव नहीं होता है, तो उनको लिए वो है। बाकी जो रेसिडेंशियल रहना चाहते हैं वो तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ लोग डे स्कॉलर जो होता है वो चाहता है कि हमारा घर का भी काम हो जाए, पढ़ भी ले और इस तरह से उच्च शिक्षा भी पाले, तो उसके लिए यह सबसे उपयुक्त जगह है। गरौल बहुत ही अच्छा जगह में हम लोग ने इसकी व्यवस्था किया है, तो संभवतः मुझे पूरी आशा है कि वहाँ के लोगों के लिए यह एक माइलस्टोन होगा।
0: ऐसे भी बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और एएनएम हॉट केक है। हाँ, हेल्थ के सेक्टर में हमेशा सीट की कमी रहती है। दो सवाल पूछना चाहते हैं आज के एपिसोड में डॉक्टर साहब। इतनी बड़ी बात आपने यहाँ की है कि गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना और इसी सत्र से ये तीन कोर्सेज आ रहे हैं। अगर जो लड़के मुजफ्फरपुर से या छपरा, शीतलपुर या इस इलाके से आएंगे तो उनके लिए इनिशियली बच्चे या बच्चियों के लिए रहने की व्यवस्था है या
1: हॉस्टल है? अपना हॉस्टल है,
0: अपना
1: दोनों के लिए, लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल है।
0: हाँ।
1: दोनों को हमने हॉस्टल की व्यवस्था कराई है।
0: हाँ।
1: और पूर्ण रूप से व्यवस्था कराई है।
0: और इसी सत्र से क्या उन्हें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलेगा?
1: जी हाँ,
0: मिल जाएगा।
1: एएनएम में तो नहीं मिलता, लेकिन जीएनएम और बीएससी में दोनों में मिलेंगे।
0: दोनों में मिल जाएगा, यानी पैसे की समस्या भी नहीं है। तो गोरौल और उसके आसपास वालों, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। डॉक्टर साहब से अगले एपिसोड में और बातचीत होगी। जब आपके रिस्पांस आना शुरू होंगे, आपके सवाल आना शुरू होंगे, तो हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब आप आए रोजगार कार्यक्रम में, और एसएस प्रोफेशनल में जो बीबी और बीसीए है वो तो एज इट इज है, अभी
1: एज इट इज है, उसी का ग्रुप, उसी ट्रस्ट के अंतर्गत ये गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: जी धन्यवाद।
2: धन्यवाद धन्यवाद हो गया, डॉक्टर साहब ने जानकारियां दी और निकल गए। गोरौल वालों, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हेल्थ सेक्टर में लगातार जो है ना रोजगार ही रोजगार है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जिस कोर्स में भी 4 लाख तक का लोन मिलेगा वो इसी सत्र से प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपकी बच्चियां अगर घर पर बैठी हैं, इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ उन्होंने किया है, तो अब ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है, एकदम स्टेशन के बगल में है। फिलहाल चलने से पहले हम नंबर बता दें, हाँ फोन करना न करना आपकी मर्जी, हम तो कहेंगे कीजिएगा। नंबर है 9162413233, 9162413233, और दूसरा 9155558888, यही नंबर है। तो इस अपॉर्चुनिटी, ये जो आपके घर आंगन में आया है मौका, उसका फायदा जरूर उठाइए और अपने बच्चों को हेल्थ सेक्टर में प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जी हाँ बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, हाँ ये सारी चीजों का दिलवाइए और एक अच्छे फ्यूचर की तरफ उन्हें आगे बढ़ने में मदद कीजिए। और बीसीए बीबीए भी करना चाहते हैं तो आप जाकर के मिल सकते हैं या इस फोन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो राजेश को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज।
4: श्रोता सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम। शाम के 7:15 हुए हैं और अब आईसीसी विमेंस टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे।
5: I can tell you because Shiti Bandana is in form and that's why you saw having Marizan cap was so ferocious out there. 3 overs bowled, 30 for 1. Yastika Bhatia comes in. Now India need a very, very good partnership from here on. Chloe Tryon. Well tossed up and she's found the gap over there. Shefali Verma between extra cover and mid-off down to the wide long up boundary for 4.
6: ये लगा आभा का चौका
7: और शिफाली वर्मा के बल्ले से ये निकलता हुआ खूबसूरत चौका ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी। आगे बढ़कर

0: कदम आगे निकाले और उसे कवर बाउंड्री के बाहर उन्होंने धकेला। चार रन के लिए एक खूबसूरत शॉट लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, लेग स्टंप के बाहर गेंद और ये गेंद सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
2: Well, Shafal is not going to stop. If you're going to bowl those kind of ones, the last delivery was exactly there for the sweep. And Shefali Verma goes through with it down to the backward square leg boundary for four. Beautifully played. 38 for one India. 3.2 overs. I just wonder, was it right to bring in Chloe Tryon? Round the wicket. Here's Chloe Tryon. This time to Shefali Verma, who goes down the wicket. Lofts it out and high. Has she got the distance? Over long goal for the first six of the match.
1: ये लगा आभा का छक्का।
0: और इस मैच का ये पहला छक्का शेफाली वर्मा के बल्ले से निकलता हुआ आगे बढ़े और उसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर भेजा। उन्होंने खूबसूरत स्ट्रोक पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे टाइमिंग के साथ इस गेंद को उन्होंने सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया। 74 मीटर लंबा ये छक्का उनके बल्ले से निकलता हुआ और इस छक्के के साथ भारतीय स्कोर जो बढ़ता हुआ 44 रन पर पहुंचा एक खिलाड़ी के नुकसान पर 3.3 ओवर्स की समाप्ति के बाद। के अभी तक 7 चौके और एक छक्का लग चुका है बल्लेबाजों के रूप में और शेफाली रुकने का नाम ही ले रही। अगली गेंद को उन्होंने धीरे से डिफ्लेक्ट किया डीप मिड विकेट की तरफ। एक प्रोटेक्शन लगाई गई थी जो डीप मिड विकेट पर और जब तक गेंद को फील्ड किया गया बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले।
2: प्राइस टू द सिंगल, शी वाज 27 ऑफ 9 दैट पेज।

भारती पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे की शौर्य गाथा। ७१ में पाकिस्तान की ओर से युद्ध का आभास होते ही संभावित हमलों को रोकने के लिए रक्षात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई। इसके तहत 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री को मध के पास साकी नाले पर फतेहपुर लोपोक का भार सौंपा गया। इस इन्फेंट्री में ही शामिल थे सिपाही पांडुरंग सालुंखे।

0: इस इन्फ्रेंटे ने छनकला, तुर और भिंडी औलक गांवों में निगरानी रखने के साथ ही वेरा में भी लड़ाकू दस्ता स्थापित कर दिया। मराठा लाइट इन्फ्रेंट्री के इस कदम से फतेहपुर, बुर्ज और घोगा इलाके की सीमा सुरक्षा बल पोस्ट को भी मजबूती मिली। यूं भी मराठा लाइट इन्फ्रेंट्री अकेली नहीं थी, उनके साथ एक फील्ड रेजिमेंट और 66वीं आर्मर्ड रेजिमेंट की विजयंत टैंक स्क्वाड्रन भी थी। वहीं अमृतसर के दिशा में शत्रुओं को रोकने के लिए दूसरी बटालियन तैनात थी और तीसरी बटालियन को गुरदासपुर सेक्टर में मोर्चा दिया गया। इस तरह हम शत्रुओं के लिए पूरी तरह से तैयार थे।
1: बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, सिंह से दहाड़ के जुल्म के पहाड़ पे चढ़े चलो, बढ़े चलो बहादुर, बढ़े चलो,
2: बढ़े चलो, बढ़े चलो,
1: पत्थर जो आए सामने ठोकर से उड़ा दो, चट्टान आए बीच में सीने से हटा दो, ये आंधिया अगर बढ़े करे मुकाबला, तुम आग बन के आंधियों के

0: तलवार चाहिए न कोई ढाल चाहिए, बहादुरों के खून में उबाल चाहिए।
1: सिंह के दहाड़ पे, जुल्म के पहाड़ पे चढ़े

0: निज पूर्वजों की आन बान शान की कसम, जननी धरा वसुंधरा महान की कसम। बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो।
1: अनुमान के अनुसार पाकिस्तान ने 3 और 4 दिसंबर की रात अपनी 2 बटालियन के साथ हमला बोला। 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री का मुकाबला 43वीं बलूच के साथ हुआ। देर रात शुरू हुए इस हमले में पाकिस्तान को बढ़त मिली और उसने घोगा, बहलोल, गुलगढ़ के साथ पूरे धुस्सी बंद पर कब्जा कर लिया, जिसमें दक्षिण छनकला से लेकर दक्षिण भिंडी औलक भी शामिल थे। सुरक्षा सीमा बल की फतेहपुर पोस्ट पर भी दुश्मनों का कब्जा था। भारतीय सेना के हाथ में गांव बने रहे, लेकिन एक बड़ा क्षेत्र दुश्मनों के कब्जे में था। युद्ध के मैदान में हार जीत बनी रहती है, लेकिन सबसे जरूरी होता है अपने हौसले और धैर्य को बनाए रखना। यहाँ हम ये नहीं देखते कि दुश्मन के हाथों में क्या है, बल्कि इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि हमारे पास मौजूद संसाधनों का उपयोग किस तरह किया जाए। यही वो गुण है जो हमारी भारतीय सेना के जवानों के अंदर मौजूद है।
2: आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के।
3: आंखों दिखा हाल आप पुनः सुन सकेंगे। पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। एक अंतराल के बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
4: एक जमाने से कहानी है सुना।

0: आया आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री

0: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने संदेश में कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की घोषणा, अगले वर्ष से योग राज्य के स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नीट यूजी पुनर्परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न, राज्य के 34 जिलों के 331 केंद्रों पर किया गया परीक्षा का आयोजन। और वैभव सूर्यवंशी के नाम नया विश्व रिकॉर्ड, श्रीलंका ए के खिलाफ एक दिवसीय मुकाबले में 11 गेंदों पर सबसे तेज अर्धशतक लगाया। अब समाचार विस्तार से। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के

0: अवसर पर आज देश विदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। योग दिवस का मुख्य आयोजन आज सुबह पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वयं तारासन, अर्ध चक्रासन, भद्रासन, त्रिकोणासन सहित कई योग मुद्राओं का अभ्यास किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि योग आज दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन माना जाना चाहिए।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित योग कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने लोगों से योग को अपनी जीवन शैली में शामिल करने की अपील की है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने लोक भवन में आयोजित योग शिविर में भाग लिया और योगाभ्यास किया। इधर राजधानी पटना समेत राज्य के विभिन्न स्थानों पर योग दिवस के अवसर पर योग शिविर और योगाभ्यास का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित शिविर में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और रामनाथ ठाकुर, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों ने यहां योगाभ्यास किया। विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से भी योग शिविर कार्यक्रम आयोजित किए गए। पटना उच्च न्यायालय में इस अवसर पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि अगले वर्ष से बिहार के स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में योग को शामिल किया जाएगा। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग भारत की प्राचीन और अमूल्य सांस्कृतिक विरासत है तथा स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन का आधार है। उन्होंने लोगों से नियमित योगाभ्यास को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की है। श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से योग को वैश्विक पहचान मिली है। आज दुनिया के अनेक देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे। इससे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने मुख्यमंत्री से राज्य के स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में योग को शामिल करने का अनुरोध किया था। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री कुमार ने कहा कि आधे घंटे का योग कार्यक्रम वैकल्पिक तौर पर पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए।
2: आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैंने अनुरोध की है कि योग को बिहार के जितने भी स्कूल कॉलेज हैं उसके पाठ्यक्रम में शामिल करें। आधे घंटे का एक प्रोग्राम होना चाहिए योग का, जिसमें योग ध्यान, योग निद्रा कराई जाए और वो कोई बाध्य नहीं है आप करने के लिए। हम इलेक्टिव रखेंगे, आपको करना है करें, ना करना है ना करें। उसके लिए कोई अटेंडेंस बनाने की जरूरत नहीं है, क्लास करने की जरूरत नहीं है। अगर करें तो करें, कोई एग्जाम नहीं लेंगे बस।
0: मुंगेर स्थित बिहार योग विद्यालय के पादुका दर्शन आश्रम में विद्यालय के अध्यक्ष स्वामी कैवल्यानंद महाराज के संचालन में योगाभ्यास किया गया। इसमें योग साधकों, श्रद्धालुओं और आम नागरिकों ने भाग लिया। औरंगाबाद के सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित योग कार्यक्रम में पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। कटिहार के फणीश्वरनाथ रेणु ऑडिटोरियम में रेल मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने योग शिविर में भाग लिया। शिविर का उद्घाटन डीआरएम किरेंद्र नरह ने किया। लखीसराय के बड़ैया प्रखंड अंतर्गत बीएनएम कॉलेज परिसर में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त समेत कई वरीय अधिकारी शामिल हुए। भभुआ व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित योग कार्यक्रम में न्यायिक पदाधिकारियों ने योगाभ्यास किया। पटना की

0: इको पार्क में सशस्त्र सीमा बल सीमांत मुख्यालय पटना और एसएसबी की 40वीं वाहिनी के संयुक्त तत्वावधान में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अरवल के समाहरणालय पार्क में आयोजित योग कार्यक्रम में जिलाधिकारी अमृता बैंस समेत विभिन्न पदाधिकारियों ने योगाभ्यास किया। भोजपुर जिला मुख्यालय आरा स्थित खेल भवन में आयोजित योग शिविर में विभिन्न खेल संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों और खिलाड़ियों ने योग किया। सुपौल के महात्मा गांधी चिल्ड्रन पार्क, दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर, अररिया के व्यवहार न्यायालय प्रांगण और खेल भवन, बक्सर के रामरेखा घाट समेत सभी जिलों में योग शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के तत्वावधान में आज नीट यूजी पुनर्परीक्षा का आयोजन किया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षा भारत के 551 और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की गई। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए। प्रदेश के 34 जिलों में 331 केंद्रों पर नीट यूजी परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो गई। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू हुई और अपराह्न 5:15 बजे समाप्त हुई। कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। पटना में कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा भवन के आसपास विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई। इसके साथ ही कई मार्गों पर परीक्षा की समाप्ति तक वन वे ट्रैफिक लागू रहा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहा

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद की आज पटना में आयोजित बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर निर्वाचन की विधिवत घोषणा की गई। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इससे संगठन को नई वैचारिक ऊर्जा मिलेगी। बैठक में उमेश सिंह कुशवाहा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर निर्वाचन को भी औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया। राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि अन्य राज्यों में भी जदयू को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर वे स्वयं अन्य राज्यों में जाकर पार्टी के विस्तार के लिए कार्य करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई।
3: राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी के निर्वाचन का अनुमोदन किया गया। इस बैठक में 4 प्रस्ताव पेश किए गए।
2: बैठक में पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, विधायक और विधान पार्षद शामिल हुए। समस्तीपुर के रहने वाले युवा क्रिकेटर खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। वैभव ने श्रीलंका के दाम्बुला में खेले जा रहे त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में आज श्रीलंका ए के खिलाफ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 11 गेंदों में अर्धशतक बनाया। इनमें 5 चौका और 5 छक्का शामिल है। वैभव ने 29 गेंदों में 94 रन बनाए। इधर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और प्रसिद्ध खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने वैभव की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत को अगला स्टार मिल गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यह खिलाड़ी कई और रिकॉर्ड ध्वस्त करेगा। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल की कप्तानी में 15 सदस्यीय टीम में विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल की वापसी हुई है। दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन ने टीम में अपनी जगह बनाए रखी है। सीरीज का पहला मैच 14 जुलाई को एजबेस्टन में

0: खेला जाएगा। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार हो रही हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मानसून की एक ट्रफ रेखा राज्य के जमुई और मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है, जिसके प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर भागों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश हो सकती है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी भागों के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। अररिया, कटिहार एवं किशनगंज जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात तथा उष्ण लहर के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा एवं सुपौल जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर राज्य के दक्षिणी भागों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आज भी बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर समेत विभिन्न जिलों में लू की स्थिति बनी रही। प्रचंड गर्मी के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी स्कूलों में 30 जून तक शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन प्रातःकालीन सत्र में ही करने का निर्देश दिया है। इधर पटना के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने 8वीं कक्षा तक सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 27 जून तक शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। भोजपुर जिला प्रशासन ने कक्षा 8 तक सभी स्कूलों में 24 जून तक पठन पाठन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने अपने आदेश में कहा है कि वर्ग 9 से 12 तक की कक्षाएं सुबह 11 बजे तक ही संचालित की जाएंगी। दरभंगा और जयपुर के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस सेवा आज से शुरू हो गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान की राजधानी जयपुर के खातीपुरा में आयोजित समारोह में सप्ताह के 6 दिन चलने वाली इस नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। रेलवे से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस ट्रेन का नियमित परिचालन कल से शुरू होगा। नई ट्रेन सेवा से मिथिलांचल और उत्तर बिहार के यात्रियों, विशेषकर कामगारों, व्यापारियों और पर्यटकों को राजस्थान आने जाने में अधिक सुविधा मिलेगी। पटना जिले के दानापुर अनुमंडल अंतर्गत शाहपुर दियारा के हेतनपुर गांव में गंगा नदी में स्नान के दौरान डूबने से 3 किशोरों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार नहाते हुए ये किशोर गहरे पानी में चले गए और डूब गए। अंचलाधिकारी चंदन कुमार ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दानापुर से भाजपा विधायक और सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मृतक के परिजनों को नियमानुसार उचित मुआवजा और सरकारी सहायता दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वैशाली जिला प्रशासन द्वारा संचालित जियो नन्ही परी पहल को बालिका सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रतिष्ठित एस्कॉच अवार्ड मिला है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने यह सम्मान प्राप्त किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने संदेश में कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की घोषणा, अगले वर्ष से योग राज्य के स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नीट यूजी पुनर्परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न। राज्य के 34 जिलों के 331 केंद्रों पर किया गया परीक्षा का आयोजन। और वैभव सूर्यवंशी के नाम नया विश्व रिकॉर्ड, श्रीलंका ए के खिलाफ एक दिवसीय मुकाबले में 11 गेंदों पर सबसे तेज अर्धशतक लगाया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: एक जमाने से कहा

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार।

0: आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभे खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है गोपालगंज जिले की हलचल। गोपालगंज जिले की हलचल को पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता मदीश कुमार तिवारी।
4: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज जिले में विभिन्न स्थानों पर योग शिविरों का आयोजन किया गया। शहर के मिंज स्टेडियम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में सदर विधायक सुभाष सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और योगाभ्यास किया। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG री एग्जाम का आयोजन जिले के 7 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। परीक्षा को कदाचार मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए सभी केंद्रों पर CCTV कैमरों से निगरानी की गई तथा पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती की गई। परीक्षा में कुल 3,906 अभ्यर्थियों ने शामिल होने की व्यवस्था की गई थी। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए राज्य सरकार द्वारा बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बीते दिनों प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास कार्य हुए हैं। इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें बिना CTET या TET उत्तीर्ण शिक्षकों को वर्ष 2028 तक यह योग्यता प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। मंत्री ने कहा कि बिहार की स्थिति अन्य राज्यों से अलग है क्योंकि यहां बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक, शिक्षा मित्र और TRE के माध्यम से नियुक्त शिक्षक कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है तथा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है।
5: क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के हम भी चिंतित है और सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो देश भर के मामले को देख करके और कोई ना कोई डायरेक्शन हमेशा वहां से पास होता रहा है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर न हम हैं न हमारी सरकार है, उसका अध्ययन करेंगे। हमने अपने लीगल टीम को कहा है कि उसका अध्ययन करिए।
4: जिले में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप लगातार जारी है। गर्म हवाओं और उमस भरे मौसम के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। वर्षा नहीं होने के कारण कृषि कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि सारण नहर में पानी छोड़े जाने के बाद नहर क्षेत्र के किसानों ने धान की नर्सरी तैयार करने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासन ने लोगों से दोपहर में अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यालयों के संचालन को लेकर विशेष निर्देश जारी किया है। जिला पदाधिकारी ने आदेश जारी कर जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र तथा कक्षा 1 से 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 27 जून तक रोक लगा दी है। वहीं कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई केवल सुबह 11 बजे तक ही संचालित करने का निर्देश दिया गया है। इधर जिले में प्रशासनिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। गोपालगंज के जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा का स्थानांतरण कर दिया गया है। उनकी जगह पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी समीर सौरभ को नया जिलाधिकारी बनाया गया है। बीते दिनों जिले में विसूत्री कार्यान्वयन समिति की बैठक प्रभारी मंत्री विजय सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार तथा अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की गई तथा जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
6: जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है और NDA सरकार केंद्र और राज्य की योजनाओं का हमारी जनता तक सही रूप से पहुंचे, इसको गंभीरता के साथ अगली बैठक के पूर्व अनुपालन को लिए निर्देश दिया गया।
4: इधर रेल यात्रियों के लिए जिले में एक महत्वपूर्ण सुविधा शुरू हुई है। छपरा थावे रेलखंड के दिघवा दिघोली स्टेशन पर थावे सूरत ताप्ती गंगा एक्सप्रेस का ठहराव प्रारंभ हो गया है जिसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने किया। उन्होंने कहा कि इस ठहराव से क्षेत्र के लोगों को बड़े शहरों में आने जाने की सुविधा मिलेगी और क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी। पिछले दिनों जिले के सभी न्यायिक पदाधिकारी पैदल चलकर न्यायालय पहुंचे। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

0: नीता गुप्ता ने बताया कि ईंधन की उपलब्धता में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए ऊर्जा संरक्षण और देश हित के संदेश के रूप में यह पहल की गई है। गोपालगंज को पश्चिम चंपारण से जोड़ने वाले मंगलपुर सेतु में पिलर संख्या 5 के समीप स्पेन में गैप पाए जाने के बाद प्रशासन ने बड़े मालवाहक वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है। सेतु की तकनीकी जाँच के लिए IIT और NIT पटना के विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई है, जिनकी निगरानी में मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है। मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह को गोपालगंज न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली गई है। विशेष MP MLA न्यायालय ने शर्तों के साथ उन्हें जमानत प्रदान की है। उन पर मीरगंज थाना में हथियार लहराने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
1: अभी आप सुन रहे थे गोपालगंज जिले की हलचल। गोपालगंज जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मदीश कुमार तिवारी।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर 7:52 हो रहे हैं। और अब ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ओल्ड ट्रैफोर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल सुनिए।
3: एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है, डी क्लार्क तेज गेंदबाजी भी करती हैं और बल्ले से भी तेज रन बनाने की यो हमेशा कोशिश में रहती हैं। 83 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर हरमनप्रीत ने पहली गेंद पर 1 रन चुनाया। अब जेमिमा रॉड्रिक्स से सामना करने वाली है डी क्लार्क की अगली गेंद का। भारत 83 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर 10.1 ओवर की समाप्ति के बाद 8.16 की औसत से ये रन बनते हुए राइट आर्म ओवर द स्टंप्स और ये उठाया है और ये आउट। बहुत ही आसान सा कैच, बॉलर ने खुद बताया अपनी गेंद पर और डी क्लार्क ने एक वो विकेट चटकाई है कि जिससे एक जो सबसे जरूरी भागीदारी बनने की कोशिश की जा रही थी। और ये जो दोनों बल्लेबाज हरमनप्रीत और जेमिमा रॉड्रिक्स, जिन्हें ये बोला जाता है कि ये बहुत लंबी पारी खेलने की क्षमता अपने पास रखते हैं, उसे सिर्फ मोड़ने की कोशिश करी गई थी लेग स्टंप की तरफ, बल्ले ने बाहरी किनारा लिया और एक आसान सा ही कैच अपनी ही गेंद पर डी क्लार्क ने पकड़ा और भारत ने जेमिमा रॉड्रिक्स के रूप में अपना चौथा विकेट गवाया। भारत 83 रन 4 खिलाड़ी के नुकसान पर 10.2 ओवर्स की।
4: आइए सुनते हैं अब इस गीत की धुन को, बांसुरी पर है पारसनाथ।

0: माल।
1: यस सर।
0: जब से हमने ये वन टू ऑल डिपार्टमेंटल स्टोर खोला है, यहाँ पर मक्खियाँ ही मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। मक्खियाँ।
1: सर मैं आपको मतलब नहीं समझ।
0: मतलब तुम उस दिन समझोगे भैरवीलाल, जब इस स्टोर में ताले लग जाएंगे।
1: ऐसा ना करिएगा सर, ऐसा ना करिएगा।
0: बजाय इसके कि तुम लोग किसी कस्टमर से बात करो, किसी मोटे ग्राहक को भांसो, सारे दिन मक्खियां मारते रहते हो।
1: क्या करें सर, यहाँ पर कोई खास कस्टमर तो आता नहीं।
0: कस्टमर आता नहीं? अरे जब आता है तब तुम कौन सी तोप मार लेते हो। कस्टमर खाली हाथ चला जाता है, और खरीदता भी है तो 10-5 रुपए का। ऐसे कैसे काम चलेगा क्यूमिस पाउडर वाला?
2: यस बॉस।
0: तुम सारा दिन अपना मेकअप और हेयर स्टाइल ठीक किया करती हो, कभी किसी कस्टमर को अटेंड करती हो?
2: पन तो अपना सब कस्टमर अटेंड करता है सर, पर इधर कौन सा बड़ा कस्टमर आने ही मांगता है।
0: मेस पाउडर वाला कस्टमर वही बड़ा होता है जिसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, समझी तुम?
1: सर जब से आपने हमें ये सिखाया है कि हर ग्राहक को अपना बाप समझो, तब से मैं हर ग्राहक को अपना बाप समझ रहा हूँ।
2: Yes sir, I also treat my every customer like my daddy.
0: लेकिन जिस डैडी की जेब न साफ की जाए वो डैडी कैसा? मेरा मतलब है अब से तुम हर ग्राहक को मछली समझो।
1: मछली?
2: You mean a fish?
0: Yes, हर ग्राहक को मछली समझो।
1: अच्छा।
0: और अपने आप को बगुला, जो ही मछली स्टोर में घुसे उस पर
1: झपटो।
0: राइट,
1: हम तो कहीं से कसके पे पहुंच ले जान लो पावे। सर वेरी गुड आइडिया।
0: देखो कस्टमर के सामने अपने माल की तारीफों के पुल बांधो, और कस्टमर को किसी चीज की प्राइस डिस्कस करने का मौका मत दो, बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि उसको बोलने का मौका मत दो, उसको इंटरटेन करो, और फिर देखो कस्टमर कितना बड़ा ऑर्डर देता है तुमको।
2: रियली सर, इट इज अ वंडरफुल आइडिया। अब तो कोई भी कस्टमर इधर से बच के जाएगा ही नहीं सर।
1: जाए कैसे मैं
0: कस्टमर आया है।
2: कस्टमर ना कहिए सर।
3: वंडरफुल, आपने बाहर बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ सूरज से लेकर कार तक हर चीज मिलती है।
0: देखो भाई, आज इस ग्राहक से बड़ा ऑर्डर लेना है। आप लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में जाइए जाइए जाइए। आइए सर, आइए आइए आइए। खुश आमदेद, वेलकम, स्वागतम। वन टू ऑल स्टोर हमने आपके लिए ही खोला है सर। यहाँ पर हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज मिलती है।
3: वेरी गुड। ऐसा पूछिए तो मुझे ऐसी ही दुकान की यानी ऐसे स्टोर की तलाश थी।
2: हाय,
3: क्या मुझे काफी ज्ञान मिला।
2: हाँ,
3: मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
0: सर आप फिक्र न करें, जो चीज आपको शहर में किसी दुकान पर नहीं मिलेगी वो आपको यहाँ मिलेगी। यानी कि सुई से लेके कार तक सर। और सर आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं सर, आप यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। सुनो, मछली फंस गई।
2: मोटी मछली?
0: जी, मेरा मतलब है मोटी मछली। वो आप देख रहे हैं सर, वो हमारे खिलौनों का डिपार्टमेंट, टॉयज डिपार्टमेंट।
3: योर मेन टॉयज डिपार्टमेंट?
0: जी हाँ सर, वहाँ पर हर तरह के खिलौने मौजूद है सर, और वहाँ पर एक मोटी मछली भी है।
3: You mean fat fish?
0: जी हाँ सर, fat fish। आइए ना, आपको हर डिपार्टमेंट की सैर कराई जाए। चलिए सबसे पहले हम वहीं चलते हैं, मिस पाउडर वाला।
2: Yes, of course.
0: सबसे पहले हम वहीं चलते हैं।
2: Sure.
0: ये देखिए सर, ये है हमारा टॉयज डिपार्टमेंट। ये देखिए सर, ये भालू, भालू देखिए, भालू कितना सुंदर है। और ये कुत्ता देखिए सर, और ये सर कबूतर, और ये सर ये देखिए मोटी मछली है।
3: मोटी मछली? Oh, I see. It's a really lovely fat fish.
0: सर ये मछली कितनी हैंडसम है, कितनी इनोसेंट है।

हवा महल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं झलकी मोटी मछली। लेखक हैं वी एम आनंद और निर्देशक जयदेव शर्मा कमल।

0: लवली फैट फिश।
1: सर ये मछली कितनी हैंडसम है, कितनी इनोसेंट है, बिल्कुल
2: आपकी तरह।
1: सर ये देखिए।
0: I like it very very much।
1: Oh thank you sir, thank you। आपकी चॉइस बेमिसाल है सर। क्या मैं पूछ सकता हूँ सर कि आपके छोटे बच्चे की एज क्या है?
0: मेरा छोटा बच्चा?
3: Yeah।
0: Oh, he is only 5 months old।
3: Oh good,
1: very good sir, very good। तो फिर आप ये बच्चा गाड़ी जरूर पसंद करेंगे। सर हमारे पास बच्चा गाड़ी का नया स्टॉक आया है, ये देखिए लेटेस्ट मॉडल, लेटेस्ट डिजाइन। क्या मैं पूछ सकता हूँ सर कि इन बच्चा गाड़ियों में से आपको कौन सी गाड़ी पसंद है?
0: अगर मुझसे पूछा जाए तो ये गाड़ी सबसे बढ़िया है।
1: ओह वंडरफुल सर, वंडरफुल, योर चॉइस इज वंडरफुल। सर ये बच्चा गाड़ी ऑटोमेटिक है।
0: ऑटोमेटिक?
1: जी हाँ, यूं समझिए कि जब आप और मेम साहब शाम को घूमने निकलेंगे तो साथ साथ ये बच्चा गाड़ी आप ही आप चलती जाएगी सर।
0: वंडरफुल, वंडरफुल, यानी कि अपने आप चलती जाएगी।
1: हाँ सर, देखिए वो बात यूं है कि कभी आप बच्चा गाड़ी पकड़ेंगे तो मेम साहब साथ चलेंगी, कभी मेम साहब साथ चलेंगी तो आप बच्चा गाड़ी पकड़ेंगे, बस इस तरह से ये गाड़ी अपने आप चलती जाएगी सर।
0: Oh, I see, I see।
1: और ये देखिए सर, इस बच्चा गाड़ी में एक निपुल लटका हुआ है, जब भी बच्चा रोने लगे आप ये निपुल चूस सकते हैं। मेरा मतलब है सर, ये बच्चे को निपुल चूसा सकते हैं सर।
0: Oh, I see, very good।
1: आइए साहब इस तरफ आइए। जी हाँ जी हाँ, यहाँ पर ये देखिए सर, ये हमारा कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट है सर, और इनसे मिलिए सर, ये हमारे कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट की इंचार्ज है मिस पाउडर वाला।
3: गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
1: पाउडर वाला बी टैक्टफुल, ये बहुत बड़ा कस्टमर है, मोटी मछली।
0: मछली,
3: ओके बॉस। सर आप सर हाथ आके देंगे?
0: यू मीन मैं अपना हाथ बढ़ाऊं?
3: यस सर। ये सेंट लगा रही हूँ आपके हाथ में, जरा सुनकर देखिए कैसा खुशबू है।
0: बहुत बढ़िया खुशबू है इसका।
3: सर ये सेंट काटा माटा जैस्मिन सेंट का है।
0: काटा माटा जैस्मिन सेंट?
3: यस सर, काटा माटा जैस्मिन सेंट का खुशबू है। सर जो भी कोई इस सेंट को लगाकर बाजार में जाएगा ना, सारी दुनिया उसके पीछे पीछे पागलों की तरह भागेगा। और सर ये देखिए, रॉक एंड रोल फॉक्स ट्रॉट पाउडर। सर ये पाउडर कोई ऑर्डिनरी पाउडर नहीं है, इस पाउडर को लगाकर सारा फिल्म इंडस्ट्री महकता है सर। फिल्म का डायरेक्टर, हीरो, हीरोइन, साइड हीरो, साइड हीरोइन, सब लगाता है सर, वन टू ऑल सब लगाता है, पता सर? नॉट ओनली दैट, इधर देखिए सर, ये पाउडर जो है ना, फिल्म का डायरेक्टर तो डायरेक्टर, ड्रामा डायरेक्टर, स्टेज डायरेक्टर, यहाँ तक कि रेडियो का डायरेक्टर भी इस्तेमाल करता है सर। फिर आप क्यों नहीं यूज करेगा? करेगा ना। और सर ये देखिए, ओटो कमन शैम्पू, इस शैम्पू से आपका सर का बाल एकदम मुलायम हो जाएगा सर।
0: लेकिन ये शैम्पू,
3: समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया, आप ये शैम्पू लेकर क्या करेगा? आई एम सॉरी सर, ये शैम्पू आपके लिए नहीं है, आपका मेम साहब के लिए है। आई नो सर, आप तो सिर का गंजा है।
1: ओ मिस पाउडर वाला,
0: बच्चे चुप रहे,
1: तुम साहब को गंजा कहती हो? डोंट यू नो ए कस्टमर इज नेवर गंजा।
3: आई एम सॉरी सर।
1: इट्स ऑल राइट सर, आई एम वेरी सॉरी सर, वो मुझे बड़ा अफसोस है कि इसने आपको गंजा कहा सर।
0: डजंट मैटर, डजंट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
1: बात क्यों नहीं सर, बात क्यों नहीं है? अगर देखा जाए सर तो आप गंजे नहीं है सर, मेरा मतलब आप गंजे लगते जरूर है मगर आप गंजे है या नहीं, लेकिन फिर भी आपके सर पे बाल है, मतलब बाल नहीं है लेकिन फिर भी बाल है, लेकिन नहीं है लेकिन है, मेरा मतलब आपके सर पर थोड़े थोड़े बाल हैं।
0: ओह यस, ओह यस
1: सर, आई थिंक नाउ यू नीड दिस शैम्पू।
0: व्हाई नॉट, व्हाई नॉट।
1: और सर इनसे मिलिए, ये हमारे म्यूजिकल डिपार्टमेंट के इंचार्ज है मिस्टर भैरवी लाल, यानी कि मिस्टर बी लाल।
4: गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
4: ये देखिए सर, हमारे पास तरह तरह के नए से नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी हर साज यहाँ मौजूद है, हर साज यहाँ पर बिकता है। हुजूर आप कौन सा साज बजाने का शौक रखते हैं? मेरा मतलब है बेंजो, गिटार, सारंगी।

0: तानपुरा तबला ढोलक
1: मुझे आई मीन हर साज बजाने का शौक है। इट्स माय हॉबी।
0: वंडरफुल सर, वंडरफुल। वो तो हुजूर के चेहरे से नजर आ रहा है कि हुजूर को हर साज बजाने का शौक है और हुजूर को रिकॉर्ड सुनने का भी तो शौक होगा।
1: व्हाई नॉट, व्हाई नॉट।
0: तो सर आप ताल, कहरवा, भैरवी, पहाड़ी ख्याल, मैदानी ख्याल, तीन ताल, चार ताल, नैनीताल, मल्ली ताल पसंद करेंगे या दादरा ठुमरी गजल के रिकॉर्ड पसंद करेंगे या फिर आप फिल्मी गाने
1: झुमका गिरा रे पप्पा रे
0: जैसा कि कल जो मेरा चौपाटी पर
1: आग मटका होई गवा हो अखिया मिला के जिया भर माँ के चले नहीं जाना
2: चले नहीं जाना
1: चले नहीं जाना।
3: तो चुप रहिए। मुझे आई मीन सिर्फ कथकली के रिकॉर्ड पसंद है।
0: कथकली? लेकिन सर कथकली तो नाच का नाम है, किसी गवैये का नाम तो नहीं सर।
4: भैरवी लाल, डोंट यू नो ए कस्टमर इज ऑलवेज राइट। कस्टमर जो कहता है ठीक कहता है।
0: नो सर, नो सर, आई मीन यस सर, आप ठीक कहते हैं। कथकली हमारे देश की एक मशहूर गायिका है।
3: ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, नाउ यू अंडरस्टैंड।
0: कथकली ने सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब नाम कमाया है। उसके गले में क्या दर्द है, मेरा मतलब है गले में क्या आवाज है, आवाज में क्या दर्द है, दर्द में क्या कसक है, कसक में क्या जादू है। कथकली का गाना सुनते ही आंखों में पसीना और माथे पर आंसू, मेरा मतलब है आंखों में आंसू और माथे पर पसीना आ जाता है।
3: You are right, you are right.
4: मिस्टर भैरवी लाल साहब हमारे स्टोर में पहली बार तशरीफ लाए हैं, इनके लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक लाओ। आप तशरीफ रखिए सर, मैं भी मंगवाता हूँ
0: कोल्ड ड्रिंक।
4: सुनो सुनो सुनो,
1: एक मिनट, लाइका
4: ओहो
0: मैंगो जूस,
4: मैंगो जूस लाओ।
1: बुलाए के साहब
0: मैंगो जूस, जाओ जल्दी, जाओ जल्दी
4: सर। ये लिए सर, आप मैंगो जूस पीजिए सर।
3: मैंगो जूस
4: आप तो शर्मिंदा करते हैं सर, आप जैसे वैल्यूएबल कस्टमर्स को एंटरटेन करना हमारी ड्यूटी है सर। आप ये सेब खाइए सर, आप ये नाशपाती खाइए, नाशपाती।
3: भाई अब मजबूर कट तो खाना ही पड़ेगा।
4: इट्स अ प्लेजर सर।
0: देखा भैरवी लाल कितना बड़ा ग्राहक फंसा है आज। ग्राहक ना कहिए सर, मोटी मछली।
4: भैरवी लाल आज उस ग्राहक से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है।
0: ये सब आपके टैग का नतीजा है सर।
4: सर तो फिर आप अपना ऑर्डर नोट करा दीजिए सर।
1: ये सर
3: बात ये है कि मैंने अभी तो आपका सारा स्टोर देखा था। आपने बाहर बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ सुई से कार तक।
4: यस सर, यू राइट, सुई से कार तक।
3: हाँ तो आपका वो सुइयों का डिपार्टमेंट किधर है?
4: व्हाट, सुइयों का डिपार्टमेंट? सर वो तो हमने यूं ही लिख रखा था, सुइयां हमारे पास नहीं है सर। आप तो मजाक कर रहे हैं।
3: लेकिन मुझे तो सिर्फ एक पैकेट सुइयों का चाहिए।
4: पैकेट सुइयों का चाहिए? सुइयों का पैकेट?
3: आपने बेकार मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। अच्छा मैं चला।
1: अरे लेकिन सर सुनो, अरे सर रुकिए,
5: अरे चले गए, चले गए,
1: चले गए।
0: मोटी मछली।
6: मोटी मछली, वीएम आनंद की लिखी ये झलकी अभी आप सुन रहे थे हवा महल कार्यक्रम में। इसके निर्देशक थे जयदेव शर्मा कमल। ये थी आकाशवाणी इलाहाबाद की भेंट।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म धुरंधर द रिवेंज से, आवाज़ें खान साहब और शाहसत सचदेव की थी। गीत के बोल नुसरत फ़तेह अली खान के और संगीत शाहसत सचदेव और नुसरत फ़तेह अली खान का।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म सितारे ज़मीन पर से। आवाज़ें अरिजीत सिंह और शरीबा पारुलकर की थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म धड़क 2 से। आवाज़ अरिजीत सिंह की थी। गीत के बोल सिद्धार्थ गरिमा के और संगीत श्रेयस पुराणिक का।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म बागी 4 से, आवाज़ जोश ब्रार की थी। गीत के बोल परंपरा टंडन के, संगीत कुमार और जोश ब्रार का था।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: थोड़ी देर में समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न।

0: तमिलनाडु के पेरियापलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7,00,000 पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
3: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या शून्य सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है।

0: ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जे डी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्किन ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की धनराशि ईरान को वापस कर दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मुस्तहकम करना है। भारतीय महकमे मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम और मगरबी बंगाल के जेली हिमालयी खित्ते में हफ्ते तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने फाइनल में मेजबान न्यूजीलैंड को 0 के मुकाबले 2 गोल से हराकर FIH नेशंस कप जीत लिया है। और क्रिकेट में भारत ने फाइनल में मेजबान श्रीलंका को 66 रन से हराकर 3 मुल्कों की ए सीरीज जीत ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जदीद दुनिया में समुद्री ताकत की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि मजबूत बहरी सलाहियतें किसी भी मुल्क की इक्तसादी और स्ट्रेटेजिक असर रसूख का फैसला कुन उनसुर होती हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस हकीकत को बखूबी समझता है और इसी के मुताबिक वो अपनी तैयारी कर रहा है। वजीर आजम ने आज कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर मुल्क में ही डिजाइन और तैयार करदा भारतीय बहरिया के 3 जंगी जहाजों को पानी में उतारा। इनमें जदीद स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, अहम सर्वे जहाज INS संशोधक और आबदोज शिकन जंगी सलाहियत से लैस कम गहरे पानी का जहाज INS अग्र शामिल हैं। वजीर आजम ने कहा कि इन जहाजों की तैयारी में 200 से ज्यादा MSMEs ने हिस्सा लिया, जिससे मुल्क भर में रोजगार के मौके पैदा हुए और माशी सरगर्मियों को फरोग मिला।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। आज INS अग्रय, INS दुनागिरी और INS संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं। ये तीनों पोत भारत के 3 महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं।
0: अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए अहलियत और दाखिले से मुतालिक कौमी इम्तिहान नीट UG 2026 आज सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान दोबारा मुनाकिद किया गया। इम्तहान का इनेकाद करने वाली कौमी एजेंसी NTA ने कहा है कि मुल्क भर के 5,440 इम्तिहानी मराकज और बैरून मुल्क के 14 मराकज पर होने वाले दोबारा इम्तिहान में 20 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की। अंग्रेजी और हिंदी समेत 13 जबानों में मजकूरा इम्तिहान का इनेकाद किया गया। NTA ने कहा कि 10,000 से ज्यादा माजूर अफराद समेत तमाम उम्मीदवारों के लिए वसी इंतजाम किए गए थे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इम्तिहान के तमाम मराकज पर आधार पर मबनी बायोमेट्रिक और चेहरे की शिनाख्त, CCTV निगरानी, सिग्नल जैमर्स और रियासती पुलिस की मदद से 2 सतही जांच जैसे सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए। CCTV निगरानी के लिए NTA हेडक्वार्टरों, वजारत तालीम, महकमे आला तालीम के तहत मरकज की मुआवनत से चलने वाले 34 इदारों के साथ साथ तमाम रियासतों और जिला कलेक्ट्रेट में कमान और कंट्रोल सेंटर कायम किए गए थे। इम्तहान का इनका मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्स, उमूर खारजा की वजारत, महकमे डाक, भारतीय फिजाइया और वजारत दाखिला समेत दीगर इदारों की मदद से किया गया। मुख्तलिफ रियासती हुकूमतों ने भी तलबा और वालदेन के लिए इंतजाम किए। इनमें इम्तहान के मराकज पर धूप से बचने के लिए इंतजाम, पीने का पानी, खाना, एम्बुलेंस और जरूरी तिब्बी सहूलियात शामिल थी। आकाशवाणी से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: CBSE ने 12वीं जमात की तस्दीक और दोबारा जांच के नतायज मरहलावार जारी करना शुरू कर दिए हैं। आज मौसूल होने वाली दरखास्त में से 87% से ज्यादा नतायज का ऐलान कर दिया। बोर्ड ने कहा कि बाकी नतायज भी जल्द अज जल्द जारी दिए जाएंगे और तलबा से अपील की है कि ताज़ा मालूमात के लिए सिर्फ CBSE के सरकारी जराए और डिजी लॉकर से ही राब्ता करें। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में आज समुद्री खुराक बरामद करने वाली एक कंपनी में अमोनिया गैस के अखराज के 22 कम से कम 7 अफराद हलाक और 70 से ज्यादा वर्कर्स जख्मी हो गए। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है क्योंकि इमदादी और तिब्बी कार्रवाइयां जारी हैं। आफात की सूरत में काम करने वाली कौमी फोर्स NDRF और केमिकल हयातियाती और न्यूक्लियाई खतरात से निमटने वाली खसूसी टीमों ने फौरी तौर पर बचाव की कार्रवाई शुरू की और सख्त हिफाजती जवाबित के तहत गैस के अखराज पर काबू पाने की कोशिश की। वजीर आला सी जोसेफ विजय ने हादसे की आला सतही तहकीकात का हुक्म दिया है और 3 रुकनी कमेटी को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि मजकूरा वाकये की जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर आला ने महलुकीन के अहले खाना के लिए 2-2 लाख रुपए की इमदादी।

0: रकम का ऐलान किया है। नायब सदर जमहूरिया सी पी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में समुद्री खुराक की बरामदाती इकाई में अमोनिया गैस लीक होने के वाकये में जानी नुकसान पर ताजियत का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब राधा कृष्णन और जनाब मोदी ने मुतासरा खानदानों के तई अपनी ताजियत का इजहार किया और जेर इलाज जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। योग का बैन अक्वामी दिन आज दुनिया भर में मनाया गया। इसकी मरकजी तकरीब वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में कोलकाता के रेड रोड में मुनद हुई। वजीर आजम ने इस तारीखी तकरीब गाह पर हजारों शुरका के साथ योग किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम ने जोर दिया कि योग जहन को तंदुरुस्त रखने से लेकर जिस्म को सेहतमंद बनाने तक की राहें हमवार करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है।
0: इस साल के योग के बैन अक्वामी दिन के मौजू सेहतमंद बुढ़ापे के लिए योग पर रोशनी डालते हुए वजीर आजम ने कहा कि योग महज जिस्मानी वर्जिश नहीं है और न ही ये उम्र के किसी तबके तक महदूद है, बल्कि ये एक इंसानी जज्बे का इजहार है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में गैरिसन ग्राउंड में योग किया। उन्होंने कहा कि योग भारत की अजीम रिवायत का जश्न है और इसने इंसानियत को सेहतमंद मुतवाजिन और बाबानी जिंदगी का रास्ता दिखाया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत 2026 की ब्रिक्स की अपनी सदारत के तहत इस महीने की 25 और 26 तारीख को हरियाणा के गुरुग्राम में ब्रिक्स मुल्कों के तवानाई के वजीरों की 11वीं मीटिंग की मेजबानी करेगा। मीटिंग में तीन अहम तरजीहात तवानाई की यकीनी फराहमी और पायदारी, तवानाई तक मसावी रसाई, नीज टेक्नोलॉजी और इख्तरा पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ब्रिक्स के तमाम 11 रुकन मुल्कों के तवानाई के वजरा और सीनियर हुकाम इस मीटिंग में शिरकत करेंगे ताकि तवानाई की यकीनी फराहमी, पायदारी और जिद्दत तराजी के शोबों में बाहमी तआवुन को मजीद मुस्तहकम किया जा सके। ये मीटिंग भारत को आलमी खित्ते जनूब की तरजीहात को आगे बढ़ाने और एक जामे आलमी तवानाई मुस्तकबिल की तश्कील में अहम रोल अदा करने का मौका फराहम करेगा। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजाद तजारती मुआहदा इस साल के दिसंबर तक होने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि मुआहदे के अगले बरस फरवरी और मार्च के दरमियान नाफिज होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इस मुआहदे से भारतीय कारोबारियों को यूरोपीय बाजार तक तकरीबन सिफर दरामदी ड्यूटी के साथ रसाई हासिल होगी। मगरबी एशिया तनाजे को खत्म करने की कोशिशों को आगे बढ़ाने और अबूरी मुआहदे को मजबूत बनाने की खातिर आज स्विट्जरलैंड के बर्गिन स्टॉक में अमरीका और ईरान के दरमियान मुजाकरात शुरू हो गए। अमरीकी वफद की क्यादत अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरानी वफद की क्यादत स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और वजीर खारजा अब्बास इराकची कर रहे हैं। इस मुजाकरात में कतर और पाकिस्तान सालसी का रोल अदा कर रहे हैं। ये बातचीत ऐसे वक्त हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइली हमलों के जारी रहने के बायस दोबारा आबनए हुरमुज को बंद करने का ऐलान किया था। ताहम अमरीकी फौज के मुताबिक ये अहम आबी गुजरगाह अब भी तमाम बहरी जहाजों के लिए खुली हुई है। ईरानी हुकूमत के मुताबिक अमरीका, कतर और पाकिस्तान के साथ मुजवजा 4 फरीकी मुश्तरका मुजाकरात से कबल बातचीत करने वाली टीम ने बर्गिन स्टॉक में कतर के सालसों के साथ बातचीत की। 4 फरीकी मुजाकरात से पहले अमरीकी वफद ने भी पाकिस्तान की सालसी टीम से मुलाकात की। गुज़श्ता हफ्ते जारी किए गए 14 निकाती समझौते की पहली शिक तमाम महाजों पर जंगबंदी का मुतालबा करती है, जिसमें लेबनान भी शामिल है, जहां इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान लड़ाई में हालिया दिनों में शिद्दत आ गई है। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा ने आज जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को जयपुर से झंडी दिखाकर रवाना किया और खाटीपुरा में अहम कोचिंग टर्मिनल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नया टर्मिनल रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजीद मजबूत बनाएगा اور مسافروں کو

0: गेंदे खेलने के बाद, और ब्रिट्स 20 रन पर खेल रही हैं अगली बॉल और मारने की कोशिश, लेकिन फिर नाकामयाब रही। स्क्वेयर लेग के फील्डर के पास गेंद पहुंची, बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय।
1: जानी मानी अभिनेता टॉम ऑल्टर का 29 सितंबर को निधन हो गया। उन पर केंद्रित विशेष आज के फनकार कुछ ही पलों के बाद।

0: कैसी बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान।
1: सदमा ना पहुंचे कोई मेरे जिस्म-ए-ज़ार पर, आहिस्ता फूल डालना मेरे मजार पर। हर चंद खाक में था मगर ता फलक गया, धोखा है आसमान का मेरे गुबार पर।
0: ये थे थॉमस बीच ऑल्टर, जिनका जन्म 22 जून 1950 को मसूरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। दरअसल टॉम ऑल्टर एक अमेरिकन क्रिश्चियन मिशनरीज के बेटे थे। बचपन का उनका समय हिमालयन हिल स्टेशन लैंडोर में बीता था। वैसे आपको बता दें, टॉम ऑल्टर ने हाल ही में एक लेख में बताया था कि उनके जो परदादा थे वो ओहायो यूनाइटेड स्टेट्स से सन 1916 के जमाने में भारत में आए थे और उसके बाद भारत में उनका परिवार अलग अलग जगहों पर रहा। टॉम ऑल्टर के पिता इलाहाबाद के इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाया करते थे। इसके बाद वो सहारनपुर की एक सेमिनरी में पढ़ाने लगे थे। बाद में उनके माता पिता ने राजपुर में एक आश्रम शुरू किया था जिसका नाम था मसीही ध्यान केंद्र। फिर जबलपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर राजपुर में रहने के बाद देहरादून और फिर वो मसूरी में जाकर बस गए।
2: मैं जल्दी से एक बात बताता हूँ, अमर प्रेम दिल्ली में लगी थी, हम मसूरी में थे उस टाइम। तो मसूरी में फिल्में बहुत बाद में लगती हैं, पहले देहरादून आती है फिर धीरे धीरे मसूरी आ जाती हैं। तो हम लोग रात की बस पकड़ के मसूरी से रात का सफर करके दिल्ली गए थे ये फिल्म देखने के लिए, अमर प्रेम, मुझको याद है। 3 बजे का शो देखकर फिर थोड़ा सा खाना वाना खा के वापस आकर हमने ये 6 बजे के शो देखा, फिर रात वाली बस से हम वापस आए मसूरी। तो ये अमर प्रेम से इतना हमारा अमर प्रेम था उस टाइम। तो इस फिल्म के भी गाने मतलब एक के बाद एक सब सुपर हिट थे और बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन एक जो गाना है जो जिसका इस फिल्मी दुनिया से एक खास ताल्लुक है वो मैं पेश करना चाहूंगा। उस गाने का नाम है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।

बचपन से ही चूंकि उत्तर प्रदेश के इलाकों में रहना हुआ तो उनकी हिंदी बहुत ही अच्छी थी। मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल में अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद टॉम अमेरिका चले गए थे। तब उनकी उम्र 18 साल की थी। एक साल तक वो येल यूनिवर्सिटी में रहे। 19 बरस की उम्र में टॉम टीचर बनकर आ गए जगाधरी हरियाणा में। ये वो दिन थे जब वो टीचर तो थे ही एक स्कूल में जिसका नाम सेंट थॉमस स्कूल था, लेकिन चूंकि स्पोर्ट्स से उनका गहरा लगाव था तो वो वहां बच्चों को क्रिकेट भी सिखाया करते थे। 2.5 बरस तक टॉम ऑल्टर जगाधरी में रहे। इसके बाद वो उसी स्कूल में चले गए जहां उनकी खुद पढ़ाई लिखाई हुई थी, यानी मसूरी का वुडस्टॉक स्कूल। यहां भी उन्होंने थोड़े दिन पढ़ाया। जब वो जगाधरी में रह रहे थे तब हिंदी फिल्मों से उनका ज्यादा लगाव हुआ। इसी दौरान उन्होंने आराधना फिल्म देखी।

0: इतनी पसंद आई कि उन्होंने एक हफ्ते में 3 बार इसे देख डाला। यहां से टॉम ऑल्टर की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उन्होंने सोचा कि वो फिल्मों में काम करेंगे। इसके तकरीबन 2 बरस के बाद टॉम ऑल्टर फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी पुणे में एक्टिंग का डिप्लोमा लेने के लिए आ गए। सन 1972 से 1974 तक वो पुणे में रहे।
1: मैंने सन 72 में फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और एक्चुअली इस जगत का सफर तब शुरू हुआ था सन 72 से। 2 साल वहाँ रहा मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में, बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा लिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर 74 में 74 में मैं यहाँ आया था, मेरे ख्याल से मई का महीना था, और मैं अपनी मोटरसाइकिल पर पूना से बम्बई आया था। मुझको याद है, अच्छी तरह याद है, जेब में 44 रुपये थे और एक पुरानी मोटरसाइकिल थी मेरे पास, उसके

0: अलावा सपनों के अलावा कुछ नहीं था मेरे पास। ये सपनों का सफर तब शुरू हुआ था, काफी तकलीफें भी झेलनी पड़ी, आज भी झेल रहा हूँ। बट एक संघर्ष जो है ना, ये बहुत जरूरी है हर आदमी के जीवन में, और संघर्ष आज भी जारी है और एक मजेदार संघर्ष है।
1: टॉम ऑल्टर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो राजेश खन्ना बनना चाहते थे, वो एक रोमांटिक हीरो बनना चाहते थे। हालांकि फिल्मों में उनका जो करियर रहा वो बतौर हीरो नहीं बल्कि बतौर चरित्र अभिनेता रहा। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी।
0: राज कपूर की एक बहुत ही मशहूर फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, उसमें मैंने मंदाकिनी के ब्रदर का रोल किया था, एक पहाड़ी आदमी है, वो भी हिंदुस्तानी रोल, और ये जुनून से बहुत पहले। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, लोग जल्दी भूल जाते हैं, खैर कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं है। वो रोल मुझे बहुत बहुत पसंद आया क्योंकि वो अपनी जान की कुर्बानी देता है अपनी बहन के लिए, तो वो एक रोल था। फिर एक फिल्म आई थी शतरंज के खिलाड़ी, मिस्टर सत्यजीत रे की, उसमें मैंने अंग्रेज का रोल किया था ज़रूर, लेकिन उस अंग्रेज को शेर व शायरी में दिलचस्पी थी और हिंदुस्तान से बेहद प्यार था और उर्दू में बात करता था वो, तो वो बहुत ही एक दिलचस्प किरदार था शतरंज के खिलाड़ी में।
2: We are most grateful to His Majesty for granting us this interview.
3: इस मुलाकात के लिए हम सुल्तान आलम के बेहद शुक्रगुजार हैं।
2: We also appreciate his gesture in disarming his soldiers.
3: हम फौजियों की उनकी अति कदर करते हैं।
2: We regard it, we hope rightly, as evidence of his concern to negotiate a peaceful conclusion for the treaty.
3: हम समझते हैं अली जा अहदनामे के बारे में दोस्ताना बातचीत के लिए तैयार है।
2: I would like, if I may, to add a personal request to His Majesty that he please sign this treaty and formalize his abdication.
3: हमारी दरख्वास्त है सुल्तान आलम अहदनामे पर दस्तखत फरमा के अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो जाएं।
2: His Majesty shall have a maximum of 3 days for deliberation.
3: इस मसले पर फरमाने के लिए सुल्तान आलम को ज्यादा से ज्यादा 3 दिन की मोहलत मिलेगी।
2: After which the company will assume the administration of Oud.
3: बाद इस मुद्दत के कंपनी बहादुर अवध का सारा इंतजाम अपने हाथ में ले लेगी।
2: I hope the king has understood what I've said.
3: हमने जो कुछ कहा है उम्मीद है सुल्तान आलम समझ गए होंगे।
2: What is this? Please tell His Majesty that I have no use for that.
3: ये रेजिडेंट साहब की किसी काम की नहीं है।
4: आप हमारी दस्तार तो ले सकते हैं रेजिडेंट साहब, दस्तखत नहीं ले सकते।
0: और अब जहाँ तक हिंदी या हिंदुस्तानी का सवाल है, मैं तो मेरी पैदाइश तो मसूरी के है, यूपी की है। जिस जमाने में मेरी पैदाइश हुई यूपी के उस इलाके में लोग या तो हिंदुस्तानी में बात करते थे या तो उर्दू में। हिंदी तो उस इलाके में बाद में आई, मैं वेस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूँ, मसूरी देहरादून की बात कर रहा हूँ। बचपन में मेरे वालिद साहब उर्दू लिखते भी थे, पढ़ते भी थे, बात भी करते थे उर्दू में, तो शुरू से मेरे अंदर एक बहुत ही एक दिलचस्पी रही, एक शौक रहा उर्दू सीखने का। हिंदी तो हमने स्कूल में सीखी थी, तो मैं जब पूना आया था 1972 में फिल्म इंस्टीट्यूट में, मैंने कहा मैं इस शौक को अब मतलब उसको एक अंजाम भी दूँ। मेरे एक दोस्त वहाँ बने मोहम्मद रफीक, तो उन्होंने मुझको उर्दू सिखाना शुरू किया पूना में 2 साल तक। फिर मैं यहाँ आया तो मेरी खुशनसीबी ये रही कि उस्ताद जालिब साहब से मेरी एक मुलाकात हुई, बहुत जाने माने उस्ताद थे उर्दू के, उनका इंतकाल हुआ कुछ 6-7 साल पहले। तो 5 या 6 साल तक मुसलसल मैं जालिब साहब के साथ उर्दू सीखता रहा। जालिब साहब के बारे में इस वक्त कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ही जज्बाती मामला है, लेकिन अगर कुछ हद तक मुझको उर्दू आती है वो सिर्फ जालिब साहब की वजह से। लेकिन उर्दू का शौक मेरे अंदर इसलिए आया क्योंकि मेरे फादर बोलते थे, लिखते थे, पढ़ते थे उर्दू।
5: अच्छा।
0: और उस जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि यूपी के उस इलाके में जहाँ मेरी परवरिश हुई उस जमाने में उर्दू या हिंदुस्तानी जबानें चलती थी, हिंदी बाद में आई। शकील बदाउनी के एक शेर है, अगर वो बहुत ही जाने माने शायर थे, उन्होंने लिखा कि शकील दिल हूँ मैं हूँ मोहब्बतों का राजदान, मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। यानी कि शायरी और जिंदगी अगर जुदा यानी कि अलग अलग रहे तो तब आदमी शायरी नहीं कर पाता, शायद शायरी लिख पाता लेकिन कर नहीं पाता।
1: आज के इस कार्यक्रम में आप टॉम ऑल्टर की जो रिकॉर्डिंग सुन रही हैं, वो बहुत बरस पहले विविध भारती के एक इंटरव्यू के दौरान कही गई बातें हैं।
0: उस तरह से एक और फिल्म का नाम लूंगा मैं जरूर, उसका नाम था चमेली मेम साहब, जिसमें मेरा हीरो का रोल था। वो भी बहुत ही सिंपथेटिक रोमांटिक बहादुर इंसान था वो, तो मुझे वो रोल शायद सबसे ज्यादा पसंद है। वो फिल्म भी पसंद है लेकिन वो रोल मुझे बहुत पसंद है, और वो जो हीरो का रोल था वो मुझको

0: उस फिल्म के अलावा बस और एक फिल्म में मिला था हीरो का रोल, जो कभी कंप्लीट नहीं हुई थी फिल्म। तो मेरी जो तमन्ना थी ना, जो एक मसूरी से लेकर जो मैं तमन्ना लेकर यहाँ बम्बई आया था, उस फिल्म में जाकर वो तमन्ना जो है वो पूरी।
1: फिल्म क्रांति में उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर का रोल किया था।

0: सन 1993 में उन्होंने फिल्म सरदार में काम किया।
1: आज इस मीटिंग में जो फैसले लिए जाएंगे उनका असर सिर्फ इस मुल्क ही पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होगा। इसलिए मौजूदा हालात को देखते हुए और आप सब लीडरों के साथ बात करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द सौंप दी जानी चाहिए आपके हाथों में। हमें पूरी उम्मीद है कि आपके इन फैसलों से पैदा होने वाले हालात को संभालने के लिए आप सब तैयार होंगे।
0: टॉम ऑल्टर न केवल फिल्मों में सक्रिय थे बल्कि बरसों बरस तक वो टेलीविजन के लिए भी काम करते रहे।
2: प्रोफेशनली मैं सबसे पहले सिनेमा से जुड़ गया था क्योंकि उस टाइम में टेलीविजन था लेकिन बस उसको ज्यादा उसकी ज्यादा अहमियत नहीं थी। तो और हम आए थे बंबई में फिल्मों में काम करने के लिए, टेलीविजन में काम करने के लिए नहीं, या नहीं तो थिएटर में काम करने के लिए। तो सिनेमा से मैं जुड़ गया था और एक सपना था हीरो बनने का फिल्मों में, और कुछ एक छोटी सी हद तक वो सपना साकार भी हुआ। लेकिन आज भी, हालांकि टीवी में बहुत काम करता हूं मैं और टीवी से मुझे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन आज भी मैं अपने आप को फिल्म आर्टिस्ट मानता हूं। प्रेफरेंस में रखना बहुत मुश्किल है। प्रोफेशनल तौर पे तो टीवी को मैं ज़्यादा पसंद इसलिए करता हूं कि टीवी में एक मुसलसल आपको काम मिलता रहता है, और अगर आपकी सीरियल हिट हो गई तो जिस तरह जुनून हिट हो गया है, 5 या 5.5 साल तक लगातार आप एक ही किरदार को निभा रहे हैं तो बहुत उसमें मज़ा आता है। तो प्रोफेशनली आजकल मैं टीवी को ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन जो एक मज़ा आता है काम करने में, या जब आपकी पिक्चर हिट होके रिलीज़ हो जाती है या रिलीज़ होके हिट हो जाती है, वो जो मज़ा है जब आपकी पिक्चर हिट हो जाती है और लोग, मतलब बेशुमार लोग थिएटर हॉल में जाते हैं आपकी फिल्म देखने के लिए, तो वो जो मज़ा है वो सिर्फ सिनेमा में है, वो टीवी में नहीं है। तो उसका एक अलग मज़ा है फिल्मों का। और जहाँ तक थिएटर का सवाल है, वो एक नॉन प्रोफेशनल तौर पर मुझे थिएटर बेहद पसंद है क्योंकि थिएटर में आराम है, फुर्सत है, कोई जल्दी नहीं है, और एक चीज़ को आप बाकायदा 3-4 महीने तक रिहर्सल कर सकते हैं, उसके बाद आप पेश कर सकते हैं, ऑडियंस भी सामने बैठे हैं। तो हर चीज़ का एक अलग पहलू है, हर एक अलग मज़ा है। तो प्रोफेशनली जिस तरह मैंने कहा, शायद प्रेफरेंस मैं टीवी को दूं, और जहाँ तक मज़े का सवाल है तो शायद प्रेफरेंस को मैं सिनेमा को दूँ, और जहाँ तक पर्सनल एक तसल्ली या सेटिस्फेक्शन का सवाल है तब मैं शायद प्रेफरेंस दूं थिएटर को।
3: तो आपने उसे अपने ही साए के घटने बढ़ने से परेशान कर दिया।
4: और क्या करते हुजूर, क्या है कि वहां से निकलने का रास्ता में और कोई मिल नहीं रहा था, और वो बेचारा इतना परेशान था कि उसके दिमाग में इतनी सी भी बात नहीं आ रही थी कि हम उस लाइट को कभी आगे खिसका रहे थे तो कभी पीछे, जिससे उसका साया कभी बढ़ रहा था तो कभी घट रहा था।
5: आपने कभी अपने

0: साये को घटते बढ़ते देखा है?
1: मैडम, हम दूसरों के सायों को नापते रहते हैं, अपनी फिक्र कहाँ। मिस्टर धनाज, आप इतने खामोश क्यों हो गए?
2: नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस
3: आप ये सोच रहे होंगे कि इस केशव कलसी से पहले आपकी मुलाकात क्यों नहीं हुई, क्योंकि अगर होती तो वो जमीन का टुकड़ा आपके हाथों से नहीं जाता।
4: मेरे दोस्त मुझे प्यार से के कहते हैं, काम का कलसी। आप भी मुझे के कहें तो बहुत मुसर्रत होगी।
1: और शुरू में मैं ये कहूं कि मेरी मदर को ये रोल बिल्कुल पसंद नहीं आया कि वो अपने बेटे को ऐसे रूप में देखना पसंद नहीं करती थी, तो उससे मुझको एक अंदाजा मिला कि हाँ, शायद ऐसा हो सकता है कि कैरेक्टर या किरदार जो है वो अपने अपनी निजी जिंदगी के ऊपर हावी हो जाए। लेकिन अंत में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये जरूर है कि आदमी जब कोई किरदार निभाता है तो वो अपनी निजी जिंदगी से कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसी बातें निकाल कर उस किरदार के अंदर डालने की कोशिश करता है। तो ये जरूर है कि केशव कलसी का जो किरदार है, मेरे अंदर जब मैंने वो शुरू किया था कैरेक्टर, तो मेरे अंदर कुछ थोड़ा सा गुस्सा था और एक जिद थी मेरे अंदर दिखाने की कि मैं इस तरह का रोल कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा गुस्सा था, थोड़ी सी जिद थी, तो मैंने अपनी जिंदगी से ये चीजें निकाल कर उस कैरेक्टर के अंदर डाल दी। लेकिन मेरे ख्याल से वो जो कैरेक्टर है वो मेरी निजी जिंदगी के ऊपर हावी नहीं हुआ, बल्कि 5.5 साल तक इस कैरेक्टर को निभाते निभाते बीच में कभी कभार ये मुश्किल हुआ कि उस कैरेक्टर के अंदर वही गुस्सा, वही जिद, उसको बरकरार रखना मुश्किल हो गया था मेरे लिए 5.5 साल तक। तो बीच में एक बार मैंने उसको थोड़ा सा ढीला भी छोड़ दिया था जानबूझकर, और मुझको लगा कि कोई नोट करेगा नहीं। लेकिन 2-3 लोग मेरे पास आए थे पब्लिक में से, और उनने बाकायदा मुझको गालियां दी कि ये तुमने क्या किया, अचानक तुमने नरम क्यों बना दिया। तब वापस मुझे अपने आप को बिल्कुल कस के रखना पड़ा। तो बहुत ही दिलचस्प रहा ये सफर केशव कलसी के साथ, और मेरे ख्याल से इस सफर से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझको।
5: चीलों से टॉम ऑल्टर का बड़ा गहरा लगाव रहा। जैसे कि हमने आपको बताया, टॉम ऑल्टर जब जगाधरी के एक स्कूल में पढ़ाया करते थे, उन दिनों में बच्चों को वो क्रिकेट भी सिखाया करते थे। अगर आप YouTube पर खोजें तो आपको महान सचिन तेंदुलकर का एक बहुत पुराना, लगभग शुरुआती दौर का इंटरव्यू नजर आएगा। वो टॉम ऑल्टर ने ही लिया था। खेलों से अपने जुड़ाव के बारे में टॉम ने हमें बताया था।
1: एक्चुअली खिलाड़ी बनना चाह रहा था, खासकर क्रिकेट का, तो मैं उतना अच्छा खिलाड़ी नहीं था, तो मैं बन नहीं पाया। स्पोर्ट्स में, मतलब शुरू से, बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, यूं कहना चाहिए कि एक जुनून सवार रहा मेरे ऊपर स्पोर्ट, आज भी है। स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स की दुनिया से, खिलाड़ियों से बहुत गहरा है मेरा एक रिश्ता रहा है शुरू से, बचपन से। क्रिकेट के साथ धीरे धीरे जो है मेरा रिश्ता और गहरा होता जा रहा है, और लेकिन स्कूल में ऐसा कोई खेल, ऐसा कोई स्पोर्ट था ही नहीं जिसमें मैंने हिस्सा नहीं लिया, स्कूल और कॉलेज में दोनों। और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैंने बास्केटबॉल में भी हिस्सा लिया, तो बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, क्रॉस कंट्री, इन सारे जो खेल हैं इन सब में मैंने हिस्सा लिया। आजकल मैं खेलता हूँ क्रिकेट, और थोड़ी बहुत रनिंग भी करता हूँ मैं। मैं लिखता भी हूँ स्पोर्ट्स के बारे में, पेपर्स में, मैगजीन्स में, स्पोर्ट्स के मैंने कई प्रोग्राम्स भी बनाए हैं टीवी के लिए, और कॉमेंट्री भी मैंने दी है। तो मालूम नहीं, स्पोर्ट्स से मुझे एक हमेशा एक प्रेरणा मिलती रहती है कि स्पोर्ट्स जो है हमको बहुत कुछ सिखा सकता है जिंदगी के बारे में, जिंदगी का संघर्ष जो है किस तरह लड़ना चाहिए वो आदमी स्पोर्ट्स से सीख सकता है। तो इसलिए स्पोर्ट्स ने शुरू से लेके आज तक मुझको बहुत सहारा दिया है, सुकून भी दिया है, राहत भी दी है, और मुझको सिखाया बहुत कुछ है स्पोर्ट्स ने।
5: टॉम ऑल्टर का थिएटर से गहरा लगाव रहा है, इस बारे में उन्होंने बताया।
1: थिएटर में इसलिए मैं करता हूँ, ज्यादातर पैसे के लिए तो मैं करता नहीं हूँ थिएटर। पूरा जो सिलसिला है थिएटर का, एक आपने पहले दोस्तों के साथ प्ले को आपने जांचा, फिर आपने पढ़ा, फिर उसके बाद आपने रिहर्सलें की, रिहर्सलों के अंदर इतनी तब्दीलियां आ जाती हैं हर चीज़ में, फिर आखिरकार एक परफॉर्मेंस भी होता है वो भी ऑडियंस के सामने। तो एक लंबा एक सफ़र है ये थिएटर का, तो मुझे वो सफ़र बेहद पसंद है। वो सफ़र आपको थिएटर, इसमें सिनेमा और टीवी में नहीं मिलता है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। लोगों के साथ दोस्ती कायम करना, नए रिश्ते पैदा हो जाते हैं रिहर्सल करते करते परफॉर्मेंसेस का, और हर परफॉर्मेंस में कुछ नए रंग आ जाते हैं। तो ये मज़ा है थिएटर का कि आपको फुर्सत मिलती है, एक टाइम मिलता है आपको, एक अरसा पूरा आपको मिल जाता है। मैंने मेरे ख्याल से 15-20 प्लेस किए हैं बॉम्बे में आके, एक प्ले है जो मैं अपने दो बहुत ही अजीज दोस्तों के साथ

0: किया करता था नसीरुद्दीन शाह और बेंजामिन गिलानी के साथ। उस प्ले का नाम है वेटिंग फॉर गॉडो, इंग्लिश का प्ले है, बहुत ही कठिन प्ले है समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी, लेकिन हम लोगों ने कम से कम 50-60 उसके शोज किए हैं और वो प्ले मुझको बेहद पसंद है, वेटिंग फॉर गॉडो।
1: संगीत में अपनी दिलचस्पी के बारे में टॉम ऑल्टर ने विविध भारती को अपने एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी।
0: क्लासिकल संगीत से कोई खास मेरा रिश्ता नहीं रहा है, ना तो हिंदुस्तानी क्लासिकल ना तो इंग्लिश क्लासिकल, लेकिन हाँ पुराने, अब तो खैर पुराने हैं, उस टाइम तो नए थे हमारे लिए, पुराने फिल्मी गीत मुझे बेहद पसंद है। और जहाँ तक इंग्लिश म्यूजिक का संबंध है तो बीटल्स के गाने, फिर ईगल्स के गाने, उससे पहले एक और फोक ग्रुप था पीटर पॉल एंड मैरी, उनके गाने ये मुझे आज तक मतलब बेहद पसंद है। इंडियन म्यूजिक में हाल ही में कुछ पिछले मैं देख रहा हूँ 1-2 साल से, कहीं से मालूम नहीं कहाँ से मेरे अंदर एक क्लासिकल म्यूजिक में एक दिलचस्पी पैदा हुई है जो पहले बिल्कुल नहीं थी मेरे अंदर। अभी हाल ही में मैं भोपाल में था तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का एक वहाँ पर कार्यक्रम था, तो फर्स्ट टाइम जिंदगी में मैंने ध्यान से बैठकर किसी एक इस तरह के प्रोग्राम को सुना और मेरी आंखों में तो आंसू आ गए सुनते सुनते। तो शायद इस बुढ़ापे में क्लासिकल म्यूजिक में भी एक दिलचस्पी मेरे अंदर पैदा हो रही है, लेकिन अब तक जो है मेरी इंटरेस्ट रहा है या तो फोक म्यूजिक में या तो पॉपुलर म्यूजिक में, रॉक में उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो फिल्मी गाने बस वही हमारे 3 जो सितारे हैं, किशोर जी, रफ़ी साहब और मुकेश जी, उनके गाने तो घंटों तक, क्या मैं दिनों महीनों तक सुन सकता हूँ। मैं सच बताऊँ कुछ इसका कारण क्या है मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आजकल जब गाने मैं सुनता हूँ तो मुझको 10 बार सोचना पड़ता कि आवाज़ किसकी है। शायद मेरे अंदर दिलचस्पी कम हो गई या शायद कुछ आवाज़ें जो हैं वो सेम टू सेम होती जा रही हैं, मुश्किल है। मुझको याद है हम आशिकी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसमें फर्स्ट टाइम कुमार शानू ने कुछ गाने पेश किए थे, अब मैंने उनकी आवाज़ पहली बार सुनी थी जब नया नया था वो, तो मैंने प्रोड्यूसर से कहा कि ये जो आदमी है कुमार शानू ये बहुत सक्सेसफुल रहेगा। उस टाइम में कुमार शानू की आवाज़ मुझको बहुत अच्छी लगी। बाकी जो नए नए हैं वो अब क्या बताऊं मैं, कुछ उनकी आवाज को पहचानने में मुझको तकलीफ, शायद इसलिए कि मैं पुराने जमाने में खोया रहता हूँ। ये गीत मुझे इतना पसंद है कि नाम लेते वक्त भी मजा आता है। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं।

0: छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वजदंती, भारत का गम एक्सपोर्ट।
2: वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। अच्छा लगता है जब कोई अपना पुकारता है नाम लेकर, अपना ही नाम खास हो जाता है हमारे लिए। इंतजार करना पड़ता है उस मासूम लम्हे के लिए, पर वो लम्हा जब आता है जिंदगी में तो बीतता नहीं, वो ठहर जाता है, वो लम्हा बर्फ हो जाता है हमेशा के लिए। उस लम्हे की खुशबू महका देती है जिंदगी को। अभी तक हम उस लम्हे में जी रहे हैं जब पहली बार तुमने हमें नाम लेकर पुकारा था।

जिंदगी जी लेते हैं हम, जैसे खिड़की से बारिश देखते हैं जब, और बूंदों को महसूस करते हैं अपने चेहरे पर, जैसे समंदर के किनारे बैठकर जब बतियाते हैं लहरों से, जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर होता है एहसास कि कितना विराट है ये संसार और कितने छोटे हैं हम इन चंद लम्हों में, जैसे हम जी लेते हैं सारा जीवन चंद लम्हों वाला ये जीवन।

0: वज्रदंती, वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: हम डुबकी लगा लेते हैं बीते हुए वक्त में, पुराने एल्बमों से, इसीलिए तो प्यार होता है हम सबको। किसी फुर्सत के दिन जब खोलते हैं पुराना कोई एल्बम, तो बीते वक्त के गलियारों में खूब टहलना होता है। यूं आती है बीते हुए दिनों की याद, जैसे अभी कल ही तो जिया था हमने ये सब।

जो काम पुरानी तस्वीरें करती हैं वही काम करते हैं पुराने गाने। कोई एक गीत, कोई एक सुर, कोई एक पंक्ति हमें ले जाती है कई बरस पीछे। अंताक्षरी वाला वो दिन, वो तुमसे चुपके से नजरें मिलाना, वो फिल्मी गानों के बहाने सबके सामने अपनी बातें कहना। कितने शरारती थे ना हम हमेशा से, अब देखो ना ये बजा पुराना गाना और ये चल पड़े हम बीते वक्त की यादों के रास्ते पर।

लोग जमा करते हैं जाने कौन कौन सी महंगी चीजें, जेवर। लोग परदेश जाते हैं खूबसूरत जगहों पर। दुनिया चीजों के प्यार में मुब्तिला हो जाती है। जिंदगी वो है जिसमें चीजें नहीं जज्बात जमा किए जाएं। जिंदगी वो है जिसमें हो प्यार की रोशनी। जिंदगी वो है जिसमें दो दिल एक ही लय और ताल पर धड़कते हों, जिसमें हम एक दूसरे के लिए जीते हों।

तुम्हारी देख भर लेने से दुनिया खूबसूरत लगने लगती है हमें। जरा सोचो, एक निगाह, एक मुस्कान भी बदल सकती है किसी की दुनिया। प्यार हो जाना दुनिया की सबसे खूबसूरत घटना है, और प्यार में जीना सबसे खूबसूरत बना देता है जिंदगी को। आओ हम इस संगदिल दुनिया में प्यार के नर्म फूल खिलाएं।

0: खबर मिल।
1: फिल्म भूल न जाना, संगीतकार दान सिंह।
2: एक चमेली के मंडवे तले, एक चमेली के मंडवे।
1: फिल्म चा चा चा, संगीतकार इकबाल कुरैशी।
3: फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम।
1: फिल्म ये दिल किसको दूं, संगीतकार इकबाल कुरैशी।

0: फिल्म माई लव, संगीतकार दान सिंह।
1: हम तेरे बिन जी ना सकेंगे सनम, हम तेरे बिन जी ना सकेंगे सनम।
0: फिल्म ठाकुर जरनैल सिंह, संगीतकार गणेश।
2: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार।
0: फिल्म सखी रॉबिन, संगीतकार रॉबिन बनर्जी। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।
3: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वजदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
4: वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक।

0: बड़ी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट UG पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देशभर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक जैविक तथा

परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर मालिगलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रिम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।